सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, यही सच्ची सेवा है। अच्छा,

ओम शांति। बाबा आए हैं हमें डबल लाइट फरिश्ता बनाने। फरिश्ता हमेशा डबल लाइट होता है। डबल लाइट का डबल अर्थ होता है। पहला अर्थ, मैं आत्मा प्रकाशमान और मेरा देह भी प्रकाश का बना हुआ, अपने स्वरूप को देखेंगे। और दूसरा अर्थ होता है, मैं आत्मा लाइट और मेरा मन भी लाइट, बहुत हल्का। दोनों का हमें बहुत अच्छा अभ्यास करना है। अपने को प्रकाश के शरीर में देखें और ये अनुभव करें कि मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। एक बहुत सुंदर सीन बाबा ने सुनाया था कि वतन में तीन फरिश्ते इमर्ज हुए और बाबा ने हाथ में हीरे लिए, उनका पाउडर बनाया और वो उन फरिश्तों के ऊपर छिड़क दिया और फरिश्तों के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल गई। चार

निर्विघ्न विघ्न विनाशक फरिश्ता। संकल्प करेंगे, मैंने इस देह में अवतार लिया है, मैं अवतरित फरिश्ता हूँ, इस संसार में आया हूँ जग का कल्याण करने के लिए, मेरा जन्म ही जग के कल्याण के लिए हुआ है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बाबा ने वतन से मुझे संपूर्ण पवित्र बनाकर इस धरा पर भेजा है कि जाओ बच्चे, चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैलाकर सभी को पवित्रता की शक्ति दो, पवित्रता का संदेश दो, प्रकृति को भी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दो, जिसे भी देखो उसे पवित्र वाइब्रेशंस दो। इस तरह हम अभ्यास करेंगे और आज सारा दिन अपने को इस धरा पर अवतरित पवित्रता का फरिश्ता समझेंगे। पानी पिए, दो बार अवश्य याद करें, भोजन खाएं 5 बार याद करें, स्नान करें 10 बार याद करें, घर से अपने कार्यों पर चलें तो यही संकल्प करें, मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता, मुझे बाबा ने भेजा है महान कार्यों के लिए, अब मैं अपना पाठ बजाने के लिए चलती हूँ और मेरे साथ स्वयं भगवान है। चलते हुए बाबा से सफलता का वरदान ले लें, ये बात भूले नहीं, जब भी कोई कार्य प्रारंभ करें बाबा से सफलता का निर्विघ्न भव का वरदान ले लें और इस स्मृति को पक्का कर दें कि बाबा मेरे साथ है। फिर कर्म क्षेत्र पर चलें, हर कदम पर सफलता होगी और महसूस होगा बाबा अपनी 1000 भुजाओं के साथ मेरे साथ है, मेरे पास है। तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, भिन्न भिन्न कर्मों में अलग अलग तरीकों से घूमेंगे, तो मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, मुरली सुनेंगे मैं फरिश्ता मुरली सुन रहा हूँ, 10 बार अभ्यास करेंगे और ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरा जन्म इस संसार में पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाने के लिए ही हुआ है, मैं फरिश्ता सर्वाकर्षणों से मुक्त हूँ, संसार का कोई भी आकर्षण, इसकी कोई ब्यूटी, इसकी कोई धन संपदा मुझे अपनी ओर नहीं खींच सकती, मैं तो सर्वाकर्षणों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, चलता फिरता लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। आज सारा दिन इसका आनंद लेंगे। ओम शांति।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जिस प्रकार दिल कभी बूढ़ा नहीं होता है और नहीं वह बुढ़ापे का अनुभव करता है, उसी प्रकार मनुष्य की भावनाएं भी कभी बूढ़ी या पुरानी या आउट ऑफ डेट नहीं हुआ करती हैं। इसीलिए अब तो उम्र हो गई, आखिरी वक्त है, अब क्या होगा, इस तरह की भावना मन में लाना ही सबसे बड़ा गुनाह है। इस प्रकार का अनुभव कभी मत करें। यह कमजोरी, बुजदिली और पस्त हिम्मती की बात है। कोई अवसर को अवसर नहीं होता, सभी अवसर शुभ हुआ करते हैं। यह तो हमारे मन की भावनाएं हैं जो अवसर का कु और सु में वर्गीकरण करती हैं। काम करने की इच्छा बलवती है तो प्रत्येक पल, प्रत्येक समय सब ठीक होता है। कोई समय खराब या अशुभ नहीं होता। बस शुरू कर दो अपना काम। आगे तभी आप बढ़ सकोगे, तभी आपकी प्रगति हो सकती है। अपना कोई भी कार्य शुरू करने में मनुष्य को जरा भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। अपनी भावनाएं तत्काल कार्य रूप में बदल देना चाहिए। प्रगति और सफलता के महल इसी भावना पर खड़े होते हैं। अगर आपकी भावना मजबूत है और विश्वास सुदृढ़ है तो निश्चय ही आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप इस स्थिति में नहीं होंगे तो आपके लिए कोई भी सफलता नहीं है। आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मानव की दशा में कभी कभी बड़ी समस्या भी आ जाया करती है। मनुष्य किसी बात का निश्चय तो कर लेता है कि वह अमुक या ऐसा कार्य करके रहेगा, पर भावनाएं नहीं रहती हैं। उसका दृढ़ निश्चय एक प्रतिज्ञा मात्र बनकर रह जाता है और उसकी प्रतिज्ञा पड़ी रह जाती है। कुछ समय बाद यह प्रतिज्ञा भी ठंडी पड़ जाती है, टाई टाई फिस। इस प्रकार के निश्चय प्रायः आपके जीवन में आते हैं। किन्हीं क्षणों में भावावेश में आकर आपने जरूर कुछ निश्चय किया होगा, पर क्या वह पूरा हुआ? शायद नहीं। कुछ समय बाद हम अपने इस प्रकार के दृढ़ निश्चय ठंडे कर देते हैं। इसके पीछे हमारी भावनाओं का न होना है। भावनाओं के न होने के कारण इस प्रकार के निर्णय निश्चय रखे रह जाते हैं। हमारी गाड़ी फिर पुराने ढर्रे पर चलने लगती है। इससे बड़ी मजेदार बात और क्या हो सकती है? खुल जा सिम सिम कहा और खजाना मिल गया। इस कहानी ने मुझे बहुत समय तक बड़ा रोमांचित रखा। सचमुच यह एक चमत्कार है। मनुष्य के लिए यह एक अलौकिक शक्ति है। वास्तव में इस खुल जा सिमसिम का प्रयोग कर हम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खजाना पा सकते हैं। अली बाबा की तरह हमें भी खजाना

ईश्वर ने हर आदमी का खजाना, उसका भाग्य कहीं न कहीं छिपा रखा है। आदमी इसकी खोज में बराबर लगा रहता है। जिसने पा लिया, उसका भाग्य खुल गया, जीवन बदल गया। पर अधिकांश लोग जीवन भर भटकते ही रह जाया करते हैं और उनको अपना भाग्य प्राप्त ही नहीं होता है। वह तड़पते घिसटते रह जाया करते हैं। बस यही खेल दुनिया में चला आ रहा है। ईश्वर ने सबको बराबरी से उत्पन्न किया है। उसने किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता है। यह सारे भेदभाव हमारे अपने बनाए हैं। ईश्वर ने सबको समान शक्ति साधन दिए हैं। अजब जो अपनी शक्ति और साधन का जितना अधिक उपयोग करता है, वह उतना ही अधिक सुखी संपन्न होता है। जो नहीं कर पाते, वह जीवन भर हाय हाय करते हुए मर जाते हैं। इसमें ईश्वर का या अन्य किसी का कोई दोष नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा आदमी अपने जीवन में सब कुछ पाता है और दूसरा कुछ नहीं पाता है। आदमी आदमी ही क्यों, जुड़वा बच्चों में भी यह फर्क देखा गया है। एक भाई शानदार जीवन यापन कर रहा है, दूसरा गली गली ठोकर खाता नौकरी की तलाश में भूखा प्यासा भटकता नजर आता है। आखिर क्यों? दोनों में ऐसा क्या फर्क पड़ जाता है? कहां इस प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है? आप स्वयं देखें कि शायद आपकी हालत पहले से बदतर हो गई, जबकि आपके अन्य साथी कहां से कहां पहुंच गए। क्या गड़बड़ हो गई? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? गंभीरता से विचार करिए, आपका क्या निष्कर्ष है? हो सकता है कि कोई चौंका देने वाला निष्कर्ष आपके सामने आ जाए। पाया गया है कि जो आगे बढ़ गया, उसमें एक विशेष गुण था। अपने इसी गुण के कारण वह आगे निकल गए, प्रगति कर गए। दूसरा पिछड़ गया, यह एक गुण होता है। ईश्वर ने सबको यह गुण दिया है। अगर कोई इसका प्रयोग ना करे तो इसमें किसका दोष है? सोचिए इस पर। आप आंखें बंद कर लीजिए और एक मिनट के लिए सोचिए कि इस समय आपकी अच्छी या बुरी जो भी हालत है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप स्वयं, आप ही अपनी विपत्ति हैं। आप चाहें तो अपना जीवन बना सकते हैं, आप चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

इमर्सन का कहना है, हम अपने भाग्य विधाता हैं, कोई हमारा भाग्य विधाता नहीं है। यह बात एकदम ठीक है। ईमानदारी के साथ कहा गया यह मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। क्या आप इस सत्य से इनकार कर सकते हैं? जब हम स्वयं अपने ही भाग्य विधाता हैं, तो इसका अर्थ है कि हम स्वयं अपना जीवन बनाते और बिगाड़ते हैं। हमारे जो कार्य होते हैं, उनके ही अनुरूप हमारा जीवन यापन होता है। यह सत्य आप अपने जीवन में प्रतिदिन घटित होते देख सकते हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए जहां दृढ़ भावनाएं आवश्यक हैं, वहीं पर दृढ़ भावनाओं के लिए आवश्यक है उत्साह और उमंग। एक प्रकार से यह एक दूसरे से जुड़ी मिली कड़ियां हैं, जो मिलकर सफलता की जंजीर का निर्माण करती हैं। उत्साह का ही दूसरा नाम खुलजा सिमसिम है। जब तक आप उमंग उत्साह का प्रयोग न करेंगे, तब तक खुलजा सिमसिम का उच्चारण प्रभावकारी नहीं हो सकता। उत्साह उमंग भी एक गजब की अलौकिक शक्ति है। इसका प्रयत्न कर मनुष्य क्या नहीं कर सकता। इसके द्वारा सब कुछ संभव है। उत्साह उमंग के द्वारा ही हम भावनाओं को दृढ़ रखने में समर्थ हो सकते हैं। जिस किसी भी मनुष्य में उत्साह उमंग नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अपने हालातों पर आंसू बहाता बहाता एक दिन वह इस दुनिया से चला जाता है। उसका जीवन स्वयं के लिए भार बन जाता है। आपका मन हमेशा उत्साहपूर्ण रहना चाहिए। हर समय उमंग आनंद का बना रहना जरूरी है। प्रत्येक कार्य उत्साह के साथ करिए, फिर देखिए कठिन से कठिन कार्य आप कितनी सरलता के साथ कर गुजरते हैं। उत्साह बड़ी अलौकिक शक्ति है। यह आपकी क्रियाओं की प्रेरणादायक है। इसे हमेशा बनाए रखिए। उत्साह एक बहुत बड़ा वरदान है, एक अलौकिक शक्ति है। ईश्वर ने यह वरदान हमें दिया है। अतएव अपना प्रत्येक कार्य हमें उत्साह के साथ करना चाहिए। वह कार्य किसी भी प्रकार का क्यों न हो, पूरे उत्साह से करें, फिर देखिए उसका चमत्कार। उत्साह पूर्वक बिना नानू के जो भी काम किया जाता है, वह देखिए कितनी जल्दी समाप्त भी हो जाता है। आनन फानन खत्म होता है। उसके बाद जो भी काम बेस समय में किया जाता है, अथवा न नू करके जिसको रोज ही कर कहना कहते हैं, अगर वह 10 मिनट में खत्म होने वाला होगा, तो उसे पूरा करने में एक घंटा लग जाएगा। इसलिए जो भी काम आप करें, उमंग उत्साह के साथ कीजिए, तो वह उसके होने वाले समय से भी कम समय में संपन्न हो जाएगा और साथ ही साथ आपको सफलता भी मिलेगी।

0: रुक, तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

उत्साह से हमारे में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह हमको परिश्रम करने की शक्ति देती है। यही हमारी खुल जा सिम सिम है। हमारा शरीर थकावट का अनुभव नहीं करता। हमारे शरीर का लैक्टिक एसिड कम से कम खर्च होता है। लैक्टिक एसिड खत्म होने पर हम थकावट पा जाते हैं और तब हमारे लिए आराम करना बड़ा जरूरी हो जाता है। बिना थकावट के किया गया कार्य शीघ्र पूरा होने के साथ साथ उसका अच्छा फल भी देता है। यह प्रमाणित सत्य है। उत्साह मनोबल उठाता है। उत्साह कार्य क्षमता बढ़ाता है। उत्साह के कारण थकावट नहीं आती। थकावट न आने से आप नाना प्रकार की बीमारियों से अपनी रक्षा कर डालते हैं। थकान कई प्रकार की बीमारियों को खत्म कर देती है। आलस्य उत्पन्न करती है। आलस्य के उत्पन्न होने पर कार्य में शिथिलता के कारण एक दिन का काम दो दिन में समाप्त हो पाता है। फिर उसका फल लाभदायक होने की शंका भी बनी रहती है। अतएव उत्साह का दामन हमेशा पकड़े रहें, अपने मन में उमंग बनाए रखें, नया उत्साह हमेशा उत्पन्न करते रहें। आखिर किसी काम को करने में आपको झिझक क्यों उत्पन्न होती है? आप कुछ परेशानी से क्यों अनुभव करते हैं? क्या इसीलिए कि वह कार्य आपके उपयुक्त या आपकी इच्छा अनुकूल नहीं है? ऐसा है तो भी आप उस कार्य को करें। जो भी कार्य करें उसे उत्साह के साथ करें। इस प्रकार का काम करने से आपके मन को एक आनंद भी मिलेगा। प्रसन्न मन से होठों पर मुस्कान रखकर काम करिए। देखिए वह कितनी जल्दी समाप्त होता है, साथ ही उसका शुभ परिणाम भी मिलेगा। रो रो कर या झींकते हुए कोई भी काम करना अच्छा है क्या? आखिर क्या बात है, क्यों आप करते हैं? ऐसा करने से आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, थकावट भी ज्यादा आएगी, समय भी लगेगा। तो क्यों नहीं आप उसको प्रसन्न मुद्रा में करते? नौकरी पेशा वर्ग या और कारखानों में काम करने वाले लोग अपना रोजमर्रा का काम उबासियां ले लेकर करते हैं, चेहरे लटकाए फाइलों में घुसे रहते हैं। कोई उमंग उत्साह उनके मन में अपने दैनिक कार्यों के प्रति नहीं है। रोज रोज की एक सी जिंदगी, इसी कारण ऐसे लोग सारे जीवन एक ही पद पर पड़े रह जाते हैं। वह कभी प्रगति नहीं कर पाते। जो उत्साह उमंग के साथ अपना काम करते हैं वह अपने उच्च अधिकारियों के प्रिय होते हैं। वह तरक्की कर जाते हैं। उनका जीवन आनंदमय होता है। अपने काम को वह उत्साह पूर्वक तेजी के साथ करते रहें। एक दिन आपको उसका पुरस्कार अवश्य मिलेगा। आपकी सब जगह कद्र होगी। मुर्दे की तरह काम करने वाले लोग भला जीवन में क्या कर सकते हैं? तो जो भी कार्य करें उत्साह से करें, पूरे उमंग से भरपूर होकर करें। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता बन...

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य को हासिल करना वास्तविकता में सहज है। लोग आरोग्य को एक साधना समझते हैं। प्रायः तब आरोग्य की कीमत पता चलती है जब व्यक्ति उस स्वास्थ्य को खो देता है। जब किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो तब लगता है कि ओहो, किसी भी हालत में वापस हम अपने आप को स्वस्थ बना लें। क्या ऐसे तरीके हैं कि हम अपने आप को बीमार पड़ने ही न दें? क्या स्वास्थ्य की इस कुंजी को बचाए रखने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। अगर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, अपने आहार पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने आसपास होने वाले प्राकृतिक बदलावों पर अगर ध्यान देते हैं, बहुत सारी चीजें हम सहेज कर रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। और हमारा स्वास्थ्य हमारी ही मुट्ठी में। पिछली बातचीत में दोस्तों हम डॉक्टर राहुल मोदी जी से बातचीत कर रहे थे कि कैसे शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है और भोजन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए और ये प्रोटीन कहाँ से मिलता है। इन सभी विषयों पर भी हमें जानकारी लेनी है। आज हमारे साथ डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रखते हैं, पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, मगर भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में वो प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर अनेकों लोगों को उन्होंने स्वास्थ्य की शिफा दी है। आइए आज उनसे करते हैं बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम कल की बातचीत में आपने ये चीज बताई कि हम क्रेविंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रोटीन की कमी के कारण भी ये क्रेविंग महसूस करते हैं। उनका मन ये कहता है कि हाँ, ये खा लो, ये कुछ कर लो। तो इसके बारे में अधिक जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हम ये चीज आजकल देखने को मिलता है कि लोग भोजन होने के बाद भी कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते हैं, सिर्फ मीठे की नहीं। आजकल एक डेजर्ट कल्चर चल पड़ा है, लोग आइसक्रीम्स खाना चाहते हैं या फिर मिठाइयां भी है तो उनको भी ठंडा करके खाने की एक आदत आ गई है। कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेविंग आपने बताई, खाने के बाद भी कई लोग चाय पीने की डिमांड करने लगे हैं, जो ऑफन अनहर्ड होता था पहले। तो ये क्रेविंग्स जो आ रही हैं, ये मन में आ रही हैं, ऐसे आप ये चीज कह रहे थे, ये क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे की वजह क्या है?
1: भैया, हमने अपना भोजन डिस्टर्ब कर दिया है और एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि वी आर ईटिंग अ वेरी सैड एंड डेड प्लेट, कि हमारा जो भोजन है वो एकदम मरा हुआ और दुखी भोजन। मरा हुआ और दुखी भोजन का मतलब है कि वो सिर्फ प्रोसेस, जो भी चीज प्रोसेस की जाएगी और जिसको अत्यधिक तल दिया जाएगा और फिर उसको पैक कर दिया जाएगा कि वो उसका स्वाद बना रहे, तो वो भोजन एक मृत भोजन माना जाता है। आप नोटिस करिए कि इस समय हम एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब आटा, चावल, चीनी, मैदा, मतलब आटा का जो भी आप डाउनलाइन, भुट्टे का आजकल, आज देखिए मेक्सिकन आजकल नाचोज, ये सब टाकोज, ये सारी जो चीजें सब भुट्टे से बनी चीजें हैं। तो हम आज सिर्फ प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट खाते चले जा रहे हैं और हमारी प्रोटीन की क्वांटिटी उस पूरे भोजन में कम होती चली जा रही है। जैसे पहले हम लोग, आप एक भारतीय थाली को देखिए तो उसमें क्या था, दाल था, चावल था, रोटी थी, सब्जी थी, दही का एक चीज था और सलाद था, उसमें नींबू था, धनिया था, आप देखिए उसमें सब कुछ था। और नमक हमेशा हमारे भारतीय भोजन में कम की तरफ डाला गया, तभी उसको बैलेंस करने के लिए अचार डाला गया और चटनी डाली गई, एक पूरा एक अच्छा देसी भोजन की प्लेट बन। पर हम इस समय इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जैसे चिप्स हुआ, सैंडविचेस हुई, बर्गर्स हुए, पिज्जा हुआ, तो हम अपने भोजन को गड़बड़ करते चले गए और नोइंगली अनोइंगली हमने अपना प्रोटीन इनटेक, हमें जितना होना चाहिए, जैसे एक बड़े वयस्क में 0.83 लिखा जाता है, 0.8 माना जाता है, हम आजकल एक देख रहे हैं कि हम लोग नॉर्मली 0.5 या इवन 0.4 ग्राम्स पर केजी तक हम लोग अपने भोजन में प्रोटीन की क्वांटिटी कम कर चुके हैं। अच्छा, हमको वेजिटेरियन या नॉनवेज सोर्स ऑफ प्रोटीन से ज्यादा भरोसा वो आपने जो बोला डब्बे वाले प्रोटीन पे हो गया, और हम उस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं कि डब्बा वाला प्रोटीन पी लेंगे तो पूरा शरीर ठीक हो जाए। तो हमको सबसे पहले अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा ठीक करनी चाहिए।
0: जब आप ये बात कहते हैं कि प्रोटीन के लिए आज हम ये जो डब्बा में आ रहा है, पाउडर आ रहा है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के नाम पे हम ये जो चीजें प्रोटीन खा रहे हैं, हम तो यही सोच रहे हैं कि हाँ इसी से प्रोटीन मिलेगा। अगर जब आप कहते हैं प्रोटीन खाने में होना चाहिए, तो प्रोटीन का नेचुरल सोर्स कहाँ है, कहाँ से प्रोटीन्स मिलेंगे?
1: भैया, इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज ये समझे कि प्रोटीन कैसा है, ये हम दो तरीके से डिसाइड, एक क्वांटिटी कि कितना है और दूसरा क्वालिटी। तो आप पहले ये देखिए कि आपका जो प्रोटीन है उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि क्वांटिटी, तो उसकी वो भरपूर क्वांटिटी में हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अब हम अगर बात करें भैया, तो वेज सोर्स और नॉन वेज सोर्स, और अब तो एक तीसरा आ गया है वीगन सोर्स। तो वीगन को भी वेज में ही बहुत से लोग मान लेते हैं, बट वीगन में सबसे ज्यादा प्रोटीन दो चीजों से मिलता है। एक स्पाइरुलिना करके ब्लू एल्गी है, उसका वो सोर्स है। इस सोर्स को नासा ने ढूंढा था और इसका कैप्सूल बनाया था कि आप इसको खा लीजिए, और ये बना था जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सबसे कम है। तो सोचिए सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स इसको माना गया। और दूसरा भैया टोफू से मिला, जो कि सोया मिल्क, और ये टोफू जापानीज और कोरियन फूड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसको हम और आप अपनी भाषा में बोले तो ये सोयाबीन का जो दूध बनता है उससे बना हुआ पनीर, इसका स्वाद अपने पनीर से थोड़ा डिफरेंट होता है या थोड़ा ज्यादा डिफरेंट होता है, बट मुझे पनीर का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वेजिटेरियन सोर्सेज में हम जिनके बारे में बात करते हैं, तो वो दो में डिवाइड किया जाता है, एक मिल्क बेस्ड और एक प्लांट बेस्ड। तो मिल्क बेस्ड में तीन सोर्स, दूध, दही, पनीर, और इसमें पनीर मिल्क जो है वो सबसे कम है उसमें प्रोटीन
0: की मात्रा।
1: यस, दही को बेटर माना जाता है भैया, क्योंकि प्रोटीन के साथ बहुत सारे गुड बैक्टीरिया आपको मिलते हैं, और सबसे ज्यादा प्रोटीन फिर आता है पनीर में। और ये भी कहा जाता है तुरंत आपने अगर दूध फाड़ा है, वो जो छेना है उसको अगर खाइएगा तो वो परफेक्ट है। और हमारे पुराने आपके राजस्थान में भी देखिए भैया, जब पनीर की सब्जी बनती तो एकदम तुरंत फाड़े हुए दूध की सब्जी बन जाती है, वो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और फिर प्लांट में हम लोग ये सारे छोला, राजमा, मटर, मूंग, मोठ, चना, जितने भी लेग्यूम्स हैं उसमें हम इसको मानते हैं। नॉनवेज में फिश, एग, मीट। तो नंबर वन फिश, फिर एग, और लास्ट में मीट। ये प्रोटीन का सोर्स है। ये भी कहा जाता है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको दही की क्वांटिटी ठीक रखनी चाहिए, दालें ठीक से अपने भोजन में डालनी चाहिए, और जिससे प्रोटीन आपके शरीर को मिलता रहे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो ये कहा जाता है कि आप मछली या अंडे का प्रयोग करें जिससे आपको प्रोटीन अच्छा हो, और अगर आप वीगन हैं तो आप टोफू का इस्तेमाल करें और स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करें जिससे आपके शरीर में प्रोटीन आपको मिले।
0: भारतीय भोजन की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो अक्सर थाली में हम हमेशा दाल का इस्तेमाल देखते आए हैं। जैसे अगर दिन में दो बार भी हम भोजन करते हैं, अगर सुबह का नाश्ता छोड़ दें, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन में, हम देखते हैं कि दोनों वक्त पे दालों का इस्तेमाल किया जाता है। दालों को सब्जियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे मूंग की बात करें, मसूर की बात करें, तुअर, राजमा इत्यादि, तो अलग अलग दालें बदलकर हर दिन दाल खाने की परंपरा तो भारत में है ही। तो उसके चलते तो प्रोटीन की डिमांड वैसी ही पूरी हो जानी चाहिए।
1: भैया इसमें दो चीजें, एक जो हम लोग ने पहले कहा क्वालिटी और क्वांटिटी। अब आप रोज एक कटोरी दाल खा रहे हैं कि दो चम्मच दाल खा रहे हैं? अब तो ऐसे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो दाल ही नहीं खा रहे हैं। या आप तो बहुत सटल वे में या शांत आपने एक सिंपल तरीके से बोल दिया, तुअर खाइए, मसूर खाइए, आपने दाल मखनी की तो बात ही नहीं करी कि बच्चों को पूरा उसको फ्राई करके, मतलब आपको फ्राई कर देना है, उसमें मक्खन डाल देना है और रात भर सेम आंच में उसको पकाना है। देखिए जो चीज जितनी ज्यादा पकाई जाएगी उसकी उतनी अंदर की जो ताकत है वो कम होती चली जाएगी। आप मूंग जो है, मूंग की दाल खाइए और आप अंकुरित मूंग खाइए, आपको अंकुरित मूंग में ज्यादा प्रोटीन मिलेगा वनस्पत मूंग की दाल में। आप चने को, चने की दाल या छोले खाइए और उसके बाद भैया चने को अंकुरित करके खाइए, जो काला चना आता है अपना, आप देखिए उसका कितना बेटर, जो अंकुरित हुआ है उसमें एक जीवन नया आया है, तो उसने अपने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर सिंपल कर लिया और आपने उसको खा लिया। तो आपके लिए जो हमने बोला भैया क्वांटिटी एंड क्वालिटी, आप रोज खाइए, दाल को खाइए, आप दूध लीजिए, दही लीजिए अपने भोजन में, पनीर लीजिए। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो दूध से एलर्जी है उनको, वो अदर प्रोटीन जिससे वो सोया मिल्क ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। प्रकृति चिकित्सा में अगर कोई आदमी इलाज करने आता है तो उसके भोजन में से जो है उसको और सिंपल बनाया जाता है और उसमें प्रोटीन और फैट की मात्रा कम की जाती है, क्योंकि इन दोनों को पचाना थोड़ा मुश्किल होता। आप खुद ही अभी एक प्राकृतिक चिकित्सालय से होकर आए हैं और आपने अपना अनुभव जो मुझे बताया कि सबसे पहले तो आपका भोजन ही बंद कर दिया गया, तो उन्होंने ना तो कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान दिया, ना प्रोटीन पे, ना फैट पे, ना मिनरल पे, ना विटामिन पे, उन्होंने सीधे सब कुछ बंद कर दिया। और हम प्रकृति चिकित्सा में क्यों बंद करते हैं सब कुछ, कि आपकी जो आते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आराम मिले, और जहां उसको आराम मिलेगा वो जो एनर्जी खर्च हो रही है उसको चलाने में वो बचेगी, तो वो शरीर शोधन कार्य करेगी, वो शरीर में ताकत प्रदान करने का काम करेगी। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है, पर क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी।
0: डॉक्टर साहब, इसको आसानी से समझने के हिसाब से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसे आपने प्रोटीन के सोर्सेस तो बता दिए, जैसे भोजन में हर वक्त दाल बनती है, सुबह शाम दाल बन रही है, अब जैसे आपने कहा कि 0.8 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए, तो सिंपल सा प्रश्न ये होगा कि क्या घर में जो दो वक्त भोजन बन रहा है तो दोनों वक्त एक एक कटोरी दाल खाना आवश्यक है, उससे काम हो जाता है?
1: अगर आप बढ़ते बच्चे हैं तो आपको थोड़ा अदर सोर्सेस की तरफ भी जाना चाहिए, जैसे दही हुआ, दूध हुआ, पनीर हुआ। अगर आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, घर पे हैं, तो वो आपके लिए इनफ है। और आप दो टाइम दाल की बात नहीं हो रही है, आप इसमें पक्का थोड़ा बहुत हफ्ते में 2-3 दिन दही जरूर खाएंगे, आप हफ्ते में 1-2 दिन पनीर की सब्जी जरूर खाएंगे। जो हमारे भाई लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ हफ्ते में 1-2 दिन नॉनवेज जरूर खा रहे होंगे। तो प्रोटीन भैया सबको मिल जा रहा है। हाँ, हम अगर बहुत कम प्रोटीन खाएंगे तो हमारा शरीर कोशिश करेगा कि इसको कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन में कन्वर्ट करने की, फैट को प्रोटीन में कन्वर्ट करने की, पर वो एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, उस वो पूरा हो नहीं पाता है। तो प्रोटीन जरूरी है और बहुत सारे सोर्सेस हैं भैया। थोड़ा प्रोटीन आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे मिलेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट मतलब आप जो फल खा रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा, और आपको सब कुछ मिलेगा, पर उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। असली सोर्स आपको दाल से मिलेगा
0: जी। जैसे आपने कहा असली सोर्स दाल है, और जैसे आपने अंकुरित दाल और दूध की बात आपने कही, जैसे अंकुरित चीजों की आपने बात कही, प्रायः हम देखते हैं कि पका हुआ भोजन खाने के मामले में हम अपने आप को भारत जैसे देश में थाली की जब बात कही जाती है तो अंकुरित चीजें कच्चा खाने के बारे में बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता, पके हुए भोजन के रूप में ही हम प्रोटीन को लेने की बात करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि अंकुरित जो दालें हैं, अंकुरित मूंग है, चना है इत्यादि के बारे में आप कह रहे थे, क्या उसको जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए कि भाई हाँ अभी ये बात समझ में आई है तो इसको खाना ही है, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए?
1: अंकुरित कोई भी कोशिश करना चाहिए कि आप उसको सुबेरे के नाश्ते में खाएं, तो आपके शरीर में वो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होगा। आप प्लीज उसको 3-4 दिन अपने नाश्ते में जरूर डालें, और अगर आपके दांत मजबूत हैं और पाचन तंत्र ठीक है तो आपको उसको कच्चा खाना चाहिए। आप स्वाद के लिए उसमें थोड़ा प्याज, थोड़ा टमाटर और हल्का सा नींबू निचोड़ के हल्का नमक डाल के आप खा सकते हैं, पर आप कच्चा भी खाइएगा तो आपके लिए बिना ये सब डाले भी आपके लिए बहुत अच्छा। अगर आपका थोड़ा सा दांत कमजोर है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो आप उसको हल्का सा भाप दे सकते हैं, प्रेशर कुकर में डाल के एक सीटी दे सकते हैं, उससे वो थोड़ा मुलायम हो जाएगा तो आप उसको खा सकते हैं। और अगर आप इसको अपने नाश्ते में लें तो आपको बहुत अच्छा इससे फायदा होगा। आप देखिए हमारे जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं वो चने का सत्तू या अंकुरित चना, अंकुरित मूंग जरूर खाते हैं अपने भोजन।
0: अब एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये है कि जैसे आपने बीच में बातचीत में ये भी बात कही कि आजकल के बच्चे प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, अब बच्चों को प्रोटीन की कमी, खैर दूध पी रहे हैं तो चलो ठीक बात है, मगर दालों के ऊपर बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। अक्सर घर में जो माएं हैं या दादी हैं या नानी हैं, वो लोग जो भोजन बच्चों को खिला रही हैं वो बहुत मशक्कत करती हैं कि कैसे न कैसे इनको ये प्रोटीन की मात्रा दी जाए। कोई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम प्रोटीन को आसानी से बच्चों को खिला सकें, किसी चीज में मिक्स करके या कोई ऐसी चीज?
1: भैया आपको बच्चा अगर छोटा है तो आप उस दाल को पीस के उसको खिला सकते हैं, उसको पेस्ट बना के खिला सकते हैं, बट मैं ये सबको बोलता हूं कि थोड़ा मन कड़ा करके अपने बच्चे को जरूर खिलाइए। लॉट ऑफ थिंग्स हैव एक्वायर्ड टेस्ट। जो चीज, एक बात इसको आप जरूर मानेंगे, जो चीज शरीर के लिए अच्छी है उसमें स्वाद नहीं है, और जिस चीज से शरीर को नुकसान होता है वो बेहद स्वादिष्ट है। तो आपको किसी न किसी रूप में बच्चे को इसको खिलाना पड़ेगा, और खिलाना पड़ेगा नहीं, खिलाना चाहिए इसको। और उसको अगर आप खिलाएंगे तो उसके ही भविष्य के लिए अच्छा।
0: आजकल ये एक प्रचलन देखने को मिलता है, जैसे आपने सोयाबीन की बात कही, लोग अक्सर आटे में सोया का आटा मिला देते हैं, आटा पिसवाते समय उसमें सोयाबीन डाल देते हैं, और ये क्या ये सही चीज है कि भाई इस बहाने जो प्रोटीन की मात्रा में हम ऐसे सीधे नहीं खा रहे हैं तो भी कम से कम सोया के जरिए आटे में वो चीज मिल रही है, तो क्या वो चीज सही है?
1: इसको रोज के आटे में इसको नहीं लेना चाहिए भैया, क्योंकि अगर आपको गलती से भी किसी को थोड़ा सा प्रोटीन से एलर्जी है या ग्लूटेन से एलर्जी है तो ये उसको मल्टीफोल्ड बढ़ा देगा। सेकेंडली मैं हमेशा इस पक्ष में हूं कि जो चीज जैसी है उसको वैसे लेना चाहिए। अब बहुत सी चीजों का मिक्सिंग और मैचिंग लोग करने लगे हैं, जिसका मैं पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि आप जितना मिक्स एंड मैच चीजों को करेंगे वो उतना ज्यादा आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा के रखेगा। मैंने इस एग्जाम्पल को बहुत सारे लोगों को देता हूं कि अगर आप कहीं आग जला रहे हैं, वहां आपने लकड़ी रखी है, पेपर रखा है, कोयला रखा है, मिट्टी का तेल डाला है, पेपर है, तो हर चीज अलग अलग स्पीड से जलेगी और वो बहुत देर जलेगी। तो इसी तरह जब आप बहुत मिक्स एंड मैच ये बहुत सारे दाल मिलाकर खाएं या बहुत सारे आटों में बहुत सारी चीजें मिलाकर खाएं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत देर तक ऊपर रहे। मैं पर्सनली एक पक्षधर हूं सिंगल ग्रेन और सिंगल पल्स के, आप उसको बदल बदल के खाइए और उसको रोज चेंज करके खाइए, वो ज्यादा बेटर है भैया मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ लोगों को इसका स्वाद जच गया है, कुछ लोग चाहते हैं कि जो वो खा लें, तो अगर आप उसमें आप संतुष्ट हैं और आप उसको अच्छा मान रहे हैं तो जरूर इसका प्रयोग करें।
0: डॉक्टर साहब, बातों बातों में प्रोटीन से संबंधित ऐसी अनेकों चीजें आज समझ में आई हैं और प्रोटीन को अपने शरीर के निर्माण के लिए कितनी महत्ता है ये भी समझ में आया है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या क्या प्रोटीन के स्रोत हैं, कहाँ से हम प्रोटीन अपने भोजन में ला सकते हैं, ये भी बात समझ में आई है। दोस्तों, प्रोटीन का हर दिन भोजन में होना आवश्यक है। अगर आप दालें खाते हैं, दूध खाते हैं, तो आप प्रोटीन की मात्रा को संतुलित करते हुए खा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप दालों को अंकुरित करके खाते हैं, अंकुरित मूंग, अंकुरित चना इत्यादि चीजें जो अंकुरित करके खाते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। और ये सुबह के नाश्ते में अगर आप ये खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और भी विषय हैं जिस पर चर्चा हम कल की बातचीत में जारी रखेंगे, आज समय इशारा करता है कि यहाँ विदाई लेनी होगी। आप सभी दोस्तों की तरफ से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर हमें आज जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज सहज स्वास्थ्य में जो चीजें सीखी हैं वो सब कुछ आप इस्तेमाल करेंगे, अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो उनके खिलाने की थोड़ी मशक्कत करें ताकि हम अपने स्वास्थ्य को, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें। आज की बातचीत में इतना ही। रेडियो मधुबन पे कार्यक्रम जारी रहेंगे, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जब भी हम कुछ खास बात कर रहे हैं अवेकनिंग में, तो हमें लगता है कि जो पिछला हमने किया, उस पर काम हमने किया दिन भर में, अब आगे देखें कि क्या वो सही है या नहीं। बहुत बार आपका मन करता है कि हमारे साथ शेयर करें, हमारा भी इसी तरह से मन करता है कि आगे बढ़ते जाएं। आपके ईमेल्स आते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और पता चल रहा है कि हम रास्ता सही पकड़ कर आगे चल रहे हैं, अनुभव होते जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, हम इस वक्त बात कर रहे हैं एंगर की। पिछली बार हमने देखा था कि इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन एंगर के वो छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम नॉर्मल मान के चलते थे, और इरिटेशन तब हो रही थी जब हमारे अनुसार टाइम पर काम नहीं हो रहा था, और फ्रस्ट्रेशन तब जब लोग हमारे अनुसार काम नहीं कर रहे थे। अगर थोड़ा सा रुक कर हमने देखा, एक दिन का अनुभव हमारा ये कहता है कि यस, आई कुड रियलाइज इरिटेशन हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, रोकी जा सकती है। अब थोड़ा और गहरे में जाते हैं, थोड़े वो स्ट्रॉन्ग वर्जन्स गुस्से के, जिसमें आती है हमें रिजेंटमेंट या फिर कहें हेट्रेड। क्यों होती है रिजेंटमेंट और हेट्रेड जो तब हमारे हाथ से बाहर होती सिचुएशन होती है, लेकिन इसे भी ला सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम करना है अपना ध्यान रखना। अब इस पर कैसे काम करें, बात करने के लिए हमारे साथ है रामा कुमारी सत्य शिवानी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि जिस तरह के हमारे पास लोगों के मेल्स भी आ रहे हैं, हर बार की बातचीत है, समवेयर इतनी छोटी छोटी बातें जिन्हें जीवन का हिस्सा बनाया हुआ था, साथ पकड़ के, जो आप हर बार कहते हैं कि पकड़ के चल रहे होते हैं, तो वो बोझ अनजाने में ही ढोते जा रहे थे। अब अगर उनको छोड़ना, एटलीस्ट यू नो इट्स नॉट दैट आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड एनी एवरी टाइम, बट आई नो इट कैन गो, यू नो दैट बिलीव एंड दैट रियलाइजेशन मेक्स मी फील वेरी लाइट।
1: इट्स लाइक बीमारी, इलनेस है। एक है बीमारी जो हमने स्वीकार कर ली थी कि पूरा जीवन ही हमारे साथ रहेगी, और एक है कि अब थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही होते हैं पता होता है कि ये ठीक हो सकती है। तो दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक है कि सारी जीवन इस बीमारी को झेलना है, और एक है ये तो छोटी सी चीज है, ये ठीक हो जाएगी,
0: मुझे दवाई मिल गई है, यू नो।
1: हमने इरिटेशन को देखा, और फिर इरिटेशन के लेवल पर अगर नहीं उसको रोका तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन होती जाती है। एंड हम बहुत बार ये अपनी वोकैबुलरी में भी कह देते हैं, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मतलब मुझे ये लग रहा है कि मेरी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तभी होती है कि आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एंड इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। सो इट कुड बी ट्राइंग टू चेंज पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल सिचुएशंस एंड इट्स नॉट हैपनिंग। मुझे अपने आप को बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा कि लोग और सिचुएशंस अपने अनुसार चलेंगे। मेरा रोल है कि मैं उनको राय दूं, गाइड दूं, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को रोक दूं। इस नहीं अगर मेरे अनुसार हुआ तो आई एम नॉट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। कई बार जो हमारा औरों के प्रति गुस्सा होता है, वो इतना ज़्यादा हम अपने अंदर उसको भर लेते हैं कि फिर हमें वो गुस्से के अलावा और कोई एनर्जी हमसे क्रिएट ही नहीं होती। एंड दिस इज़ मोस्टली यू नो बिकॉज वी हैव द फीलिंग कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मेरे जीवन को ही पूरा जैसे ऊपर नीचे कर दिया। सो देन आई होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट पीपल, दैट स्पेसिफिक पर्सन एटलीस्ट। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, और मैंने उसके बारे में एक वो पकड़ लिया है अपने अंदर, एनर्जी को ब्लॉक कर लिया है। या रिजेंटमेंट, क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे इंसल्ट किया है, किसी ने ऐसी कोई बात कह दी है मुझे जो मैं अब जीवन भर उस बात को भूलने नहीं वाली हूँ। या तो मुझे कह दी है या फिर मेरे बारे में पीछे कह दी है जो फिर मैं उसको नहीं भूलने वाली।
0: अच्छा, और मैं ये कहती हूँ कि मैं उसे भूलना ही नहीं चाहती, यू नो। कितनी बार वो रिजेंटमेंट जो है वो मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाती है। वो घाव रिश्ता ही रहे तो अच्छा है, हम ये कहते हैं।
1: हाँ, लेकिन घाव अगर वहीं रहा और हर बार याद आता रहा तो वो घाव की हालत क्या हो जाएगी? नुकसान किसका हो रहा है? सी, हर समय हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नुकसान किसका हो रहा है ये पकड़ के रखने से। हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम जब पकड़ के रखते हैं तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान होता, और अगर मुझे छोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए छोड़ना है। वी नॉट डूइंग अ फेवर टू एनी वन। सम पीपल से, लेकिन उन्होंने गलत ही इतना किया कि क्यों उनको फिर हम भूल जाए उस बात को, अपने लिए। इट्स जस्ट फॉर माई सेल्फ। तो ये जो, और ये कोई ऐसे नहीं कि गैरों के साथ हो रहा है या वर्क प्लेस में हो रहा है, अपने लोगों के साथ जिनके साथ यू आर लिविंग इन द हाउस एवरी डे इन एंड डे आउट, लेकिन इकट्ठे रहते हुए अगर ये इस तरह की चीज़ें अपने अंदर अक्यूमुलेट करके हम रखते हैं, सो इट इज़ अ बिग क्वेश्चन कि घर का पूरा एनवायरनमेंट कैसा है और हम सब की जो उस घर में रह रहे हैं मेंटल स्थिति कैसी है.
0: क्योंकि ये एंगर कहीं ना कहीं जस्टिफाइड मान लेता हूँ मैं.
1: हाँ, बिकॉज आई फील लेट डाउन, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, अगेन मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं की, लेकिन जो हुआ वो भी नो वन इज सेइंग के इट वाज राइट और व्हाटएवर. लेकिन अब जब सारा दिन हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, तो किस एनर्जी के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अपने अंदर क्या क्या भर के रखा हुआ है. और ऐसे कोई एक आधे के साथ नहीं है, हमारा कईयों के साथ ऐसे छोटी मोटी बातें हैं और हम उसको पकड़ के रखते हैं, एंड वी थिंक वी जस्टिफाइड इन होल्डिंग इट देयर. यू नो मैनी कपल्स जैसे अब मिलते हैं कि उनका कुछ हुआ है आपस में, कोई एक इशू हो गया, प्रॉब्लम आ गई, सिचुएशन आ गई, खत्म हो गई ये सिचुएशन क्रॉस हो गई. सी दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग कि किसी से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई थी या समवन चीटेड ऑन अ रिलेशनशिप, चीटेड इन बिजनेस, चीटेड एट वर्क, वट एवर, सिचुएशन इज़ गॉन, वो परिस्थिति खत्म, हम वापस आ गए हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं या इकट्ठे घर पे रह रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी वो अभी तक पकड़ी हुई है.
0: अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. मैंने ये रियलाइज़ किया है ओवर द इयर्स, यू नो, लाइक अब ज्ञान को समझते हुए, कि जो हम ये सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं ना, जब हम सामने बैठ के कुछ कोई सिचुएशन आ गई, सपोज कुछ हो गया जिसको हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद जब हम बैठते हैं कि चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैड क्रिएटेड, व्हाट हैड हैपेंड, That doesn't work.
1: और हम सिर्फ वो एनालिसिस भी क्यों कर रहे हैं कि मैं आपको समझा दूं कि आप फिर से मत करना. यू नो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. इट्स जो हम कहते हैं ना लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि अगर हम उनसे जो गलती हुई मैं बात करूं फिर जाकर, शुड आई डिस्कस ऑल दैट, विद व्हाट इंटेंशन, आपकी क्या इंटेंशन है,
0: हम थोड़े ऊपर हो जाएंगे
1: कि उनको बताना कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, एंड देन सेंडिंग आउट द एनर्जी कि यू नो आप गलत हैं मैं सही हूँ.

0: Are they in my control?
1: No, no, no. But no. Then it means, see, I cross one situation.
0: Lekin I am having to cross lot of situations. See, hamara focus...
1: Because of somebody else, the situation has come. Suppose let's take a situation, you know. Let's take, business dealing, you know. We were going fine. I was telling my husband only, or partner, that don't go into this thing. This will not work very well because I can see it. He didn't understand, and he went into this business. Whole of our family things were dependent on them, on the whole thing. Jaise bhi wo karega, jaise jayega. And he went, unhone kiya, aur wo major disaster hua. Theek hai? He created that situation without even taking my opinion. Ab agar hum baithte hain samajhne ke liye ki what went wrong. Is it not right?
0: It is very right. Lekin kis energy or intention ke saath baithte hain? Aap ye dekho, hum jab bhi baithte hain na baat karne ke liye, subconsciously hamara jo energy level hai, wo ye hai ki main dusre ko samjha dun ki tum galat hai.
1: See, but unka decision to galat hi hua tha na.
0: It's okay. Unhone galat samajh ke nahi kiya tha. Unhone apne perspective se us time राइट ही लिया था. हम ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कशन का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि व्हाट वाज इट दैट वेंट रॉन्ग, यू नो, नॉट दैट यू वर रॉन्ग, यू डिडंट आस्क मी, आई वुड हैव गिवन यू द राइट एडवाइस. एक सिचुएशन है ना, एक डिसीशन गलत हुआ, व्यक्ति गलत नहीं है. हम जो एनर्जी भेजते थे ना, आप गलत थे. ये एनर्जी हम लोगों के परिस्थिति तो छोटी होती है, वो इन्वेस्टमेंट छोटी चीज़ थी, लेकिन ये हमारे रिलेशनशिप में एक वो लेकर आता है. जब हम हर ऐसी सिचुएशन के बाद छोटी छोटी बातें, बच्चे ने मार्क्स ज्यादा नहीं मिले, हस्बैंड और वाइफ आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, यू शुड हैव डन दिस. नाउ इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. हम क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को कि तुम गलत थे या मैं सही था? दैट्स नॉट ट्रू. वी शुड नेवर रब इन दैट सिचुएशन. यू नो, हम बार बार घर में बहुत रब इन करते रहते हैं उसको बार बार, और दूसरे का घाव पहले जो जिससे वो गलती होती है वो कितने गिल्ट में होता है. दे नो व्हाट दे हैव डन. वी नीड टू उनको कंफर्टेबल करने के लिए, हमें एक्चुअली हमारा रोल होना चाहिए उनको कंफर्टेबल कर दे, ताकि वो उस गिल्ट से, उस पेन से बाहर निकल आए. लेकिन हम तो और भी ज्यादा उसको रब इन करते हैं.
1: हम भी तो पेन में गए हुए होते हैं ना.
0: फ्रॉम
1: इट मींस समवेयर उनको कुछ भी हील करने से पहले आई हैव टू बी हील्ड.
0: कि एक तो वो परिस्थिति मुझे ना इतना उसको एक परिस्थिति ही रहने दो, उसको एक इन्वेस्टमेंट ही रहने दो, वो एक बिजनेस डील ही थी.
1: यहाँ पे ना वो राइटियस एंगर लगने लगता है कि मैंने कहा था, यू नो, और वो बार बार जो, और वो बहुत लोगों के साथ हो रहा है.
0: पर लेकिन वो एक बहुत पर्सनल एजेंडा बन जाता है घर में, एंड वो कहीं ना कहीं हम उसको यूज करते हैं. और स्पेशली अगर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए और सामने वाला कुछ बोले, तो हम उसको उसकी सारी गलतियां पहले याद दिलाते रहते हैं. दिस इज वेयर आई सेड इट बिकम्स लाइक अ कॉम्पिटिशन, कि किसने ज्यादा गलतियां की हैं, किसकी गलतियां ज्यादा बड़ी. यू नो, इफ आई से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप बोलोगे आप क्या बात कर रहे हो,
1: आपको कहने का क्या हक है, आपको अपने आप को देखा है कि आपने क्या किया.
0: सो दिस इज नॉट अ लर्निंग. ये कोई लर्निंग नहीं हो रही है. ये हम एक दूसरे को आगे नहीं उठा रहे हैं, हम दोनों ही फिर एक दूसरे को और ही पुल डाउन करते हैं. रिजल्ट क्या निकलेगा? व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट ऑफ दैट डिस्कशन? कि दोनों ही एक दूसरे से और भी खिंचते जाएंगे. अगर घर में ऐसा कुछ हो जाता है, इमीडिएटली जो स्टेबल रह सकता है अपने ऊपर ध्यान, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे घर के वायुमंडल को, एंड स्पेशली जिनसे वो गलती हुई है, ये बच्चे से भी हो सकती है, मार्क्स उसके कम हो सकते हैं, इतनी सारी सिचुएशंस हैं, तुरंत उसको इट्स ओके, इट्स ओवर, इट्स फाइन, यू कैन कम आउट ऑफ इट. इट हैज़ टू बी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, बजाय के उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस
1: लो करना.
0: जो हम कह रहे हैं ना, उनसे बार बार वो गलती होती है. ये जो थॉट है ना, जो हम क्रिएट करते हैं, इनको तो ये सीखते नहीं है एक बार भी. इन्होंने बार बार यही वाली गलती करनी है. हम क्या एम्पावर कर रहे हैं? और बी डूइंग द ऑपोजिट, बी नॉट रियलाइजिंग कि ये एक एक थॉट जो हमारी क्रिएट होती है, यू नो, इवन सिंपल थिंग्स लाइक किसी से गलती हुई है, वो ट्राई कर रहा है, कोई और गलती भी हो सकती है पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, और वो ट्राई कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए, एंड सामने वाला कहता है आई एम सॉरी, मैं फिर से नहीं करूंगा. एम आई रेडी टू बिलीव दैट?
1: नो, बिकॉज माई हर्ट इज टू स्ट्रॉन्ग.
0: सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये फिर से नहीं होगा, मैं अंदर ही थॉट क्रिएट कर लेती हूँ, अगर फिर से किया ना तो फिर. सो मैंने, किसी ने एक एनर्जी क्रिएट की है कि मैं फिर से नहीं करूंगा. यहाँ से क्या एनर्जी जानी चाहिए? कि यस आई एम श्योर आप फिर से नहीं करोगे. ये बोलने की चीजें नहीं है. हम ऊपर से तो शायद बोल देंगे,
1: एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. ओह नो, नेवर. आई थिंक

0: या मतलब रिलेशनशिप में या फिर बच्चों के साथ भी, जब बच्चे कहते हैं कि मॉम आई एम सॉरी आई हैव डन दिस सिगरेट पीने के बाद, या कभी, एंड पेरेंट्स कभी भी ये माने नहीं पाते कि नहीं करेगा,
1: तो दैट इज द रीजन कि वो नहीं करते हैं. और फिर हम ब्लेम उन पर डालते हैं. हमें ध्यान रखना है, दिस इज ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट. लेकिन ये कब होगा? जब खुद अपने वर्ड की वैल्यू होगी तो दूसरों के वर्ड की भी वैल्यू होगी. अगर सामने वाला कहता है मैं नहीं करूँगा, इमिजिएटली क्रिएट अ थॉट कि यस अब ये नहीं करेंगे. यू नो, उनकी थॉट को एम्पावर करो. ये हमें बहुत ध्यान रखना है. हम थॉट क्रिएट कर देते हैं.
0: अच्छा,
1: सी अब जैसे आपने ये थॉट क्रिएट किया कि ये तो फिर हो जाएगा,
0: चलो देखते हैं. हाँ. You know, चल देखेंगे, लेट्स सी, एंड दिस इज व्हाट, बट देन अगेन
1: लेट्स सी विद टाइम क्या होता है. एंड फिर साथ में बोल भी देंगे, अगर फिर किया ना आपने ये,
0: फिर अच्छा नहीं होगा.
1: इटसेल्फ इज अ थॉट के आई हैव अ डाउट कि आप फिर से करने वाले हो. हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं. हमें लगता है कि हम उनको वार्निंग दे रहे हैं शुरू में. यही हमें ध्यान रखना है कि ऐसी एनर्जी सारा दिन क्रिएट करते रहें जो खुद को भी एम्पावर करे और औरों को भी एम्पावर करे. ये हम क्योंकि अटेंशन नहीं रखते तो हमें ध्यान नहीं है कि हमारा एक एक थॉट कैसे दूसरे को डिसएम्पावर करता है. तो जब इकट्ठे हैं, चाहे ऑफिस में हैं चाहे घर में हैं, ध्यान रखें कि ये जो अपने अंदर भर के रखा हुआ है एक दूसरे के प्रति, इसको ख़त्म करें. और इसीलिए पिछली बार भी हमने देखा था कि फिर जब वो एंगर के रूप में बाहर निकल के आता, वो एक्सप्लोजन, तब ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ जाती
0: जो हमने कभी सोची नहीं थी. बिल्कुल.
1: और फिर हम तुरंत दूसरे को एक्सप्लेन करते कि आई डिडंट मीन टू से दिस, मेरा तो बिल्कुल कोई भाव नहीं था. लेकिन जो भी हमारे अंदर से निकला है वो इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ क्रिएट होता जाता. और निकलने वाला जो क्वांटम है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जो क्रिएट हुआ है दैट मस्ट बी सो मच के जो
0: वो उसको इतना निकला है, ओवरफ्लो होना था और इस कारण होना.
1: तो जो निकला बाहर, शब्द जो निकले, वो तो उतना नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि सामने वाला हो सकता है उसको भूल जाए. लेकिन जो मैंने इतना संभाल के रखा है वो मेरे अंदर कितना नुकसान करता होगा. तो हमेशा जब भी ये आती है ना थॉट्स अपने अंदर, उसी टाइम रुक जाना चाहिए. वी नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारी थॉट हम चेंज कर सकते हैं. ये जो हम पकड़ के रख लेते हैं ना, ये हर्ट के मेरे साथ धोखा हुआ या उन्होंने रिलेशनशिप में गलत किया, चलो मैंने माफ़ तो कर दिया, हम इकट्ठे तो रह रहे हैं, लेकिन क्या एनर्जी क्रिएट करके इकट्ठे रह रहे हैं? ऐसे इकट्ठे रहने का या ऐसे इकट्ठे काम करने का व्हाट वुड बी द पर्पस, जबकि जो ट्रैवल कर रहा है अक्रॉस वो एक नेगेटिव एनर्जी है. हम बच्चों के लिए इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन बच्चों को क्या वायुमंडल दे रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति वो दर्द पकड़ कर रखा है. एंड फिर होता क्या है, जैसे ही कोई आर्ग्यूमेंट होती, वो सारा हर्ट, वो सारा दर्द जो अक्यूमुलेटेड है, वो सारा फिर शब्दों में निकल आता.
0: तो फिर तब क्योंकि हमने ना एक और बिलीफ सिस्टम ये कि जब तक कि उसको सजा नहीं मिलेगी, जब तक कि उसको रियलाइज नहीं होगा, यू नो द अदर पर्सन ने, वो बार बार रिपीट करेगा.
1: लेकिन ये हम अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले लेते हैं औरों को रियलाइज करवाना. अब सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी आई विल नॉट डू इट अगेन, लेकिन हम कहते हैं आपको रियलाइज ही नहीं हुआ है कितनी गलती हुई है. आपको रियलाइज नहीं हुआ है मतलब आई एम ट्राइंग टू से मेरा दर्द नहीं खत्म हुआ है अभी. आप ऐसा कुछ करो जिससे मेरा दर्द खत्म हो. जिस दिन मेरा दर्द खत्म होगा उस दिन मैं बोलूंगी कि आपको रियलाइज हुआ है. इट्स नॉट पॉसिबल. आप मेरा दर्द नहीं खत्म कर सकते. इट इज माय प्रोसेस, आई विल हैव टू वर्क ऑन दिस. लेकिन हम अपने ऊपर वर्क करने के बजाय सामने वाले को बोल देते हैं आपको नहीं रियलाइज हो रहा है, आपको नहीं रियलाइज हो रहा है. क्यों? क्योंकि आई एम इन पेन. आई वॉन्ट देम टू डू समथिंग जिससे मेरा दर्द चला जाए. जिस दिन मेरा दर्द जाता है आई से आपको रियलाइज हो गया कि आपसे गलती हुई है.
0: अब आपको रियलाइज हुआ है. और फिर मैं उसको हथियार तो बनाया ही होता है.
1: तो दैट वी इफ वी शिफ्ट द फोकस कि हाँ वो आत्मा भी अपनी जर्नी पर है, वो रियलाइज कर रहे हैं, पर क्या मैं रियलाइज कर रही हूँ
0: कि मैं अपने लिए क्या क्रिएट कर रही हूँ?
1: जो जो रियलाइजेशन कराने हैं अपने आप को करा लो, खुद अपनी बात मानते जाओ और अपने को इतना दर्द मत दो. ये जो जस्टिफाइड समझ लिया है कि जो दूसरों ने गलत किया, वी नॉट सेइंग कि जो उन्होंने किया वो सही था, बट अब हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है. वो पास्ट हो गया ना, लेकिन हम तो उसको बार बार क्रिएट करते
0: हैं. दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए कितना गलत है?
1: अपने लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है। और फिर जो हमारे अंदर क्रिएट होता फिर वो ऑब्वियसली औरों तक पहुंचता, एंड फिर वो पूरे घर का वायुमंडल,
0: समाज, एवरीवेयर।
1: बट आई थिंक स्पेसिफिकली दिस वुड बी वेरी एप्लीकेबल इन कपल्स टुडे, हस्बैंड वाइफ। छोटी छोटी बातों की बहुत सारी चीजें, यू नो, मदर इन लॉ के साथ हस्बैंड ने कैसा किया, मदर इन लॉज हैं भी साथ में या अलग रह रहे हैं या शायद हैं भी नहीं, लेकिन वो बात
0: मेरी मम्मी के साथ, हाँ, लाइक एंड इट स्टेज, इट्स देयर।
1: सो नाउ दिस इज वेरी डैमेजिंग, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये जो रिजेंटमेंट अपने अंदर भर के रखते हैं, ये है, इसको तो हम कचरा ही कहेंगे ना, जो अपने अंदर भर के रखा है। और ये बिटरनेस से मैं अपने आप को कड़वा बनाती जाती हूँ,
0: अपने लिए बहुत, अपनी नेचर वैसी बनती
1: है। ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिन्स है। आज हम अपने शरीर को तो डिटॉक्सिफाई करते हैं, नेचुरल डाइट लेते, इसको कौन डिटॉक्सिफाई करेगा? इसके लिए कुछ नहीं करना है, दो मिनट बैठो, पास्ट है, फिनिश हुआ। लेकिन उन्होंने किया, कोई बात नहीं, उन्होंने किया, हर्ट किसने क्रिएट किया और अभी तक क्रिएट कर रही हूँ, उस बात को ख़त्म हुए 8, 10, 15 साल हो गए, मैं अभी तक दर्द क्रिएट कर रही हूँ, कब तक? दिस आई हैव टू स्टॉप एंड चेंज। इट्स नॉट फॉर देम, इट्स नॉट फॉर एनीवन एल्स, इट्स फॉर मी। क्योंकि ये बिटरनेस जब तक मैं नहीं ख़त्म करती, आई कैन नॉट बी हैप्पी, एंड प्रेजेंट मेरा अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर भी नहीं होगा। एंड एक व्यक्ति के प्रति पकड़ी हुई बिटरनेस एक के प्रति नहीं रहती, वो और रिश्तों में
0: क्योंकि
1: भी
0: जाते। वो अंदर रहा ना, वो कहाँ,
1: वो बिटरनेस है। तो वो बिटरनेस तो मेरी ऐसे वाइब्रेशन है ना, मैं जहाँ भी जाऊँगी, जिसके भी संपर्क में आऊँगी, कहीं ना कहीं वो बिटरनेस मेरे अंदर से फ्लो करेगी। तो इसलिए अपनी ये सफाई करते रहना चाहिए। और क्योंकि ये रिजेंटमेंट, अगर रिजेंटमेंट लेवल पर नहीं ख़त्म हुआ तो नफरत,
0: ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते करते जीते जाते हैं, यू नो, पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं ऐसे रिजेंटमेंट्स रखे हुए। लेकिन जो नफरत है वो कई बार तो मतलब इतने घातक लेवल पर भी आती है। और जब हम अपने आप को विक्टिम समझकर, यू नो, और वो विक्टिम कई बार तो ये है कि हमारे अपनों ने विक्टिम बनाया। जो विक्टिम जब किसी बड़े लेवल पर कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई ऐसा क्राइम हो जाता है, तब जो विक्टिम है, तब जो हेट्रेड पूरे समाज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति और फिर अपने प्रति।
1: यस, लेकिन इसमें भी, यस, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि हमें कुछ ईमेल्स भी ऐसे आते कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा किसी ने इस तरह का पाप किया है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मतलब वो अपनी डेस्टिनी खुद ही लिख देते कि इसके बाद जीवन में खुश रहना ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि जो हुआ that was not right for you, lekin ab aage how long do you want to carry that bitterness and that pain? ab isme ye hota ki pehle to ye jo victim wali feeling hai ki main, you know, apne aap se nafrat kai baar hame ho jati ki main hi gandi hu, kya main hi galat hu, mere sath unhone aisa kiya kaise, kisi ne galat itna kiya, to apni self esteem pehle crash ho jati, to wo pehle apne aap ko samjhana padega ki isme मेरी कोई गलती नहीं थी, यू नो, समवन एल्स हैज मेड सम वेरी बिग मिस्टेक, इट वाज नथिंग टू डू विद मी बीइंग अ बैड पर्सन, यू नो, हम अपनी इमेज यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, अपने आप के लिए नफरत क्रिएट करते, और दूसरों के लिए तो जो जिम्मेवार थे वो तो करते ही हैं, और अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट करते जाते। इतनी बड़ी बात के बाद भी एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज टू फॉरगिव एंड टू फॉरगेट। उनको नहीं, उनको नहीं फॉरगिव कर सकते हम, क्योंकि वो उनकी अपनी यात्रा है, लेकिन हमें अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने आप को हल्का करना पड़ेगा, उस बात को मुझे फिनिश करना ही पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं कि हमने एक बार आज बोला एंड इट्स ओवर, आई हैव फॉरगॉटन, इट विल टेक टाइम। लेकिन जब अपने ऊपर से जिम्मेवारी हटा दी कि मेरी इसमें गलती नहीं थी, किसी और ने किया, लेकिन अब मैं और गलत अपने साथ नहीं होने दूंगी, यू नो, एक पर्टिकुलर बात के लिए अब मैं अपने ऊपर कितनी, किसी और ने मेरे ऊपर घाव लगाए, लेकिन जो रोज का घाव मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ
0: उसको रीलिव कर करके
1: आई एक्चुअली गो थ्रू द एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर है वो मेरा टेप रिवाइंड होता जाता है।
0: एंड देन वी लैश आउट, यू नो, वी लैश आउट, हर एक उस व्यक्ति को लैश आउट करेंगे जो हमारे साथ सिंपथाइज करेगा, यू नो, बिकॉज समवेयर वो नफरत और रिजेंटमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो वो जो मैंने क्रिएट किया, Sister Shivani, the amazing thing is that if even once I'm able to register this, कि ये जो अब पेन है ये मैं क्रिएट कर रही हूँ,
1: मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, हमें लगता है कि वो सिचुएशन की वजह से हो रहा है, ये पेन मैं क्रिएट कर रही हूँ एंड पूरी पावर सारी मेरे पास है, इसको कब फिनिश करना है एंड ये मैं अपने लिए कर रही हूँ. यू नो समटाइम्स वी फील कि अगर हमने फॉरगिव कर दिया वो सामने वाले को, फॉरगिव मतलब अंदर से, तो हम गलत कर रहे हैं. ऐसे इंसान को हमें फॉरगिव करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको नहीं फॉरगिव कर रहे हैं, हम अपने को फॉरगिव कर रहे हैं. ये याद रखना है, डू नॉट, यू नो वो एक घाव है जो बना हुआ है, उस घाव की हीलिंग भी कर सकते या फिर उस घाव को रोज़ रोज़ रोज़ और गहरा कर सकते हैं. अपने आप से प्यार करना शुरू करो. हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन अब नफरत क्रिएट करके हम अपने साथ गलत कर रहे हैं. दूसरों को हम नहीं रोक पाए जिन्होंने गलत किया, खुद को खुद को तो रोक सकते हैं.
0: हम खुद के साथ एक्चुअली गलत करते जा रहे हैं.
1: हम अपने से नफरत करके अपने को बहुत बड़े बड़े घाव दे रहे हैं. ये उन घावों से भी बड़ा है जो किसी और ने दिया होगा.
0: और दूसरों से नफरत करके भी हम यही कर रहे हैं बेसिकली,
1: अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं. तो अपने से प्यार करो, अपने को क्षमा करो और अपने पर रहम करो. वी डोंट नीड सिंपथी फ्रॉम एवरीवन एल्स, कंपैशन, लेकिन वो भी अपने आप से, खुद के लिए. और उसके लिए हमें इसको अब ख़त्म करना पड़ेगा. मेक इट स्मॉल, है बहुत बड़ी बात, लेकिन अपने मन की शक्ति को उसको लेकर उसको छोटा करो, क्योंकि तभी आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर सेल्फ आई विल नेवर कम आउट ऑफ दिस. यू नो हम ही अपने आप को कहते मैंने इस बात को तो मैं कभी नहीं भूल सकती. अपने आप को कहो मैं भूल गई, आई एम ओवर एंड आउट विद इट नाउ, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ.
0: वेरी ट्रू. यू नो पहले मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आती थी ये बात कि अपने लिए करना होता है. यू नो यू शुड फॉरगिव फॉर योरसेल्फ, कि आपको उनको माफ करना है, उनको लेट गो करना है अपने लिए. अपने लिए इन द सेंस कि इट विल मेक यू फील गुड या आप बड़े महान बन जाओगे. तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था कि मुझे महान नहीं बनना, लेकिन आई सडनली रियलाइज्ड कि इट इज़ नॉट दैट. जितना जो कुछ भी हो रहा है, मैं चाहे मैं छोटी सी चीज़ के लिए पेन क्रिएट कर रही हूँ, छोटी सी चीज़ के लिए गुस्सा क्रिएट कर रही हूँ, इरिटेशन, रिजेंटमेंट, उसने किसी ने कुछ भी किया, कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई कुछ भी कर सकता है, वो उनका अपना है. चाहे वो मेरे लिए बहुत यू नो ज़िंदगी में नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ. इट्स सच एन अमेजिंग रियलाइजेशन. वी नीड टू रियलाइज someday, we need to realize कि हमें अपने आप को कितना प्यार करना है. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. आई थिंक आज समवेयर एक बहुत बड़ा वो एक मिथ ब्रेक हुआ है कि किसी के भी प्रति गुस्सा या एंगर बेसिकली अपने प्रति रख रहे हैं हम. ओम शांति. अगर मन में कोई सवाल कोई बात उठती है आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, या तो हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सूत्र मिला है, इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें. बहुत पुरानी बातें भूलेंगे, बहुत कुछ जो पकड़ के बोझ में जी रहे हैं वो छूट जाएगा, एक नई जिंदगी आपके साथ होगी. ओम शांति.

हर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झन झन झन झन झन झन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया

ने पुकारा हाय दई कोई आओ सखी कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ बोली कहा कृष्ण मैं सुपर है पर ना दूंगा डगरिया छोड़ तो।

0: अब रैन कुदीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, रैन कुदीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, राधा को विदा के इशारे, राधा को विदा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध लिया।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ नए किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का तारीख है विशेष 10 जून। तो चलिए 10 जून की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं और बात करते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। राष्ट्रीय शके 1948, शके 20, गते 27, अधिक

ज्येष्ठ बुधवार आज है, विक्रम संवत 2083 अधिक ज्येष्ठा कृष्ण पक्ष दशमी और बुधवार रेवती आज है। इस्लामी हिजरी 1447 जिलहिज बुध मुकत्तर आज है और इसके साथ ही दामोदर मेनन इनका जन्मदिन है और विश्व नेत्रदान दिवस भी आज है। तो विश्व नेत्रदान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत से सराबोर आपको सुनाते हैं, आध्यात्मिक भाव से सराबोर एक गीत आपके नाम अभी आनंदी आनंद आपको आएगा। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बड़ा ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। चलिए इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ। आज जैसे कि विश्व नेत्रदान दिवस है, तो विश्व नेत्रदान दिवस जो है खास प्रत्येक विश्व के विभिन्न देशों में नेत्रदान किया जाता है। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार
0: नमस्कार जी।
1: जब आप आते हो तो हमारे दिल की खुशियाँ बढ़ जाती है। खुशियाँ के साथ में मेरा एक गाना भी है सर, वो गाना हो जाए तो और ज्यादा खुशियाँ बढ़ जाएगी। बढ़ाने के लिए आपके साथ में मैं बोल रहा हूँ। मेरा उसका मुखड़ा है, मुखड़ा और मुखड़ा क्या देखो दर्पण माए, मुखड़ा क्या देखो दर्पण माए, दया गर्म नहीं है मन माए। कबीर वाणी है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर?
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। और
1: दया धर्म नहीं मन माए, मुखड़ा देखो दर्पण माए, ये है सर भजन। ये भजन हो जाएगा तो कबीर वाणी का है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखड़ा देख ले दर्पण में जरा प्राणी।
1: सभी साथिया, सभी सभी साथिया को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी धन्यवाद सर।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका गुड़ीलाल जी। बहुत ही प्यार से आपने याद किया और अपना गाना भी आपने बताया है। प्रदीप जी का एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनना चाहते हैं, तो चलिए। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ उस गीत की तरफ। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, सुनते रहो मस्कर रहा।

0: ओम शांति, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जौनपुर यूपी से खास डॉक्टर संजय जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा जो है उनका अनुभव है अध्यात्म के साथ साथ उनके जीवन का जो है। गीता पर उन्होंने पीएचडी की है और इसमें भी मूल्य शिक्षा यानी विद्यार्थी जीवन में कैसे गीता का उपयोग होता है, इस विषय पर उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ तत्वों के बारे में जानते हैं। आप सभी की तरफ से डॉक्टर संजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति।
3: ओम शांति।
2: कैसे हैं आप?
3: अच्छा हूँ
2: जी। जी जी। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए।
3: मैं डॉक्टर संजय सिंह, जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और हमारी शिक्षा दीक्षा जौनपुर के ही तिलकधारी महाविद्यालय से हुई है, जो कि प्रदेश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है। वहीं से मैंने अपनी शिक्षा पूरी की है। मेरा शोध कार्य भगवद गीता पर रहा है और उसमें यह देखा गया कि भागवत गीता के जो शैक्षिक और दार्शनिक तत्व हैं उनको हम वर्तमान शिक्षा में कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन वह धीरे धीरे एक तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड और यंत्रवत होता जा रहा है और बच्चे जो हैं वो एक कंपटीशन का जो दौर है, बहुत ही मानसिक तनाव
2: जी जी जी जी,
3: और एक तरह से वो एक अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। और मैं देखता हूँ कि बच्चे फेलियर को मैनेज नहीं कर पाते और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो उनका जो हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा जो शुरू में चलती थी, तो नैतिक शिक्षा हमारे धर्म ग्रंथों का ही एक निचोड़ है कि व्यवहारिक रूप से नैतिक शिक्षा वही है जो हमारे धर्म ग्रंथों में कहे गए हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा हमारा कालजयी ग्रंथ है जिसमें कि सारे धर्मों, वेद शास्त्रों, उपनिषदों का निचोड़ है और उसमें आपके जीवन से जुड़ी हुई हर क्षेत्र के हर पहलू को उन्होंने छुआ है। तो उसमें यह भी है कि एक विद्यार्थी का जीवन कैसे होना चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ ब्रह्मचारी हो, अल्पहारी हो और उसकी एक नियमित दिनचर्या हो और उसमें शारीरिक मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हो, उसका आहार कैसा हो, सात्विक आहार, सात्विक आहार ऐसा आहार वैसा विचार, सात्विक आहार, सात्विक दिनचर्या और टीचर्स द्वारा योगा और कुछ गीता के जो उपदेश हैं, अगर उनको प्रतिदिन बच्चों को प्रार्थना के समय अगर उनको बताया जाए रोज़ एक एक उस उद्देश्य, तो उनके जीवन में एक परिवर्तन होगा, उनमें एक अस्थायित्व आएगा और वह जो है अपने जीवन में सहज रूप से बेहतर ढंग से विकास कर सकें। क्योंकि आज हमारे यहाँ जो पूरा व्यवस्था है वहाँ आईक्यू टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्ध, लेकिन इसके साथ एक होता है ईक्यू, इमोशनल कोसेंट, भावनात्मक लब्धि। तो बच्चा जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब आईक्यू टेस्ट की होती हैं।
2: बिल्कुल।
3: और इमोशनल कोसेंट वो कहीं ना कहीं जो है उसकी अनदेखी हो जाती है
2: जी, जी।
3: जिससे वो बाद में समाज के साथ जीवन की चुनौतियों के साथ समायोजन बैठाने में उनको समस्या आती है, क्योंकि उनका सामाजिक, आध्यात्मिक, वैचारिक, चारित्रिक और उनकी जीवन की आदतें, हैबिट्स, आदतें, आप पहले आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें आपकी निर्माण करती हैं। तो उनका जो जीवन शैली है उसमें उनका आहार और क्या वो देख रहे हैं टीवी में, क्या चीज़ें वो ग्रहण कर रहे हैं, तो और उनके सोचने का आकांक्षा स्तर क्या है। कुछ लोग होते हैं ना कि हवाई किला बना लेते हैं जिसका कोई ज़मीनी आधार नहीं होता है, या देख ही देखा वो अपना बना लेते हैं एम्बिशन कि हमको ये करना है, ये है, तो आज चमक दमक की दुनिया है। तो एक तरह से कुछ दिन बाद जाकर के उनको फ्रस्ट्रेशन, जीवन से खिन्नता, और जब कभी वो अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी उनका जीवन साथी के साथ वो संतुलन, उनका जीवन स्मूथली चल नहीं पाता है, क्योंकि उनका वैचारिक पृष्ठभूमि उन कमज़ोर है, उनके पास उतना गहन ज्ञान नहीं है जीवन का। पुस्तकीय ज्ञान तो है, वो भी तकनीकी आधारित, आज की है कि हम क्या पढ़ें कि हमको अच्छी नौकरी मिल जाए या अच्छी सैलरीज मिल जाए, जॉब मिल जाए, मेरी इनकम हो जाए। तो मात्र इनकम हो जाने से जीवन सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर सुविधा परक जीवन, सुविधाएं तो बढ़ सकती हैं लेकिन जीवन सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर होने के लिए आपके पास कुछ वैचारिक पूंजी होनी चाहिए, आध्यात्मिक पूंजी होनी चाहिए, आध्यात्मिकता साथ आपका जुड़ाव होना चाहिए, जीवन की वास्तविकता से आप परिचित हों, जीवन क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य बहुत आत्म केंद्रित है कि हमारा कोई ऐसा लक्ष्य है कि जो पूरे समाज के लिए लाभकारी है। देखना है आपका लक्ष्य कितना ब्रॉड है, केवल आप अपने लिए जीवन जीते हैं कि अपने लोगों के लिए भी जीवन जीते हैं। तो आपका जीवन मूल्य क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, और जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे करें, उनके साथ हम समायोजन कैसे बैठाएं। सहज योग उसमें एक है, दुखम सुखम समाचरित, कि जीवन में जो सुख दुख आते हैं उसमें अटल होकर के, अविचल होकर के, शांत रहकर का सामना अगर हम करेंगे तो हर समस्या का कोई न कोई हल है। बस उसे हल, उस हल तक पहुंचने की क्षमता अगर मेरे में है तो समस्या हल हो जाती है। तो एक तरह से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, चारित्रिक निर्माण, शारीरिक स्वास्थ्य और एक सुंदर बेहतर समाज की स्थापना के लिए गीता के ज्ञान का, गीता के शैक्षिक और दार्शनिक तत्वों का शिक्षा में समावेश अति आवश्यक है, मैं समझता हूँ। नहीं तो आने वाला जीवन तनाव का जीवन होगा। टेंशन युग चल रहा है, आने वाली सदियों में इतने मानसिक रोगी होंगे कि समाज में बहुत उथल पुथल हो जाएगी।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गीता एक ऐसी डिवाइन पुस्तक है, दैवीय ग्रंथ है, जिसका कि उपयोग शिक्षा में, समाज के निर्माण में किया जाए तो बहुत ही सुखद और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त होगा।
4: जी
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी बातें आपने शेयर किया। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को और सभी को अच्छा लग रहा है। तो जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे सबके लिए।
3: सबसे पहले यह है कि जीवन में धनवान होने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा इंसान बनना, और एक ऐसा इंसान बनिए जो कि अपने लिए भी और समाज के लिए भी खुशी और कल्याण बांटने लायक आप बने। केवल धन कमाने की मशीन बनना, जीवन में अंत में आपको लगेगा कि यह धन की भी एक सीमा है, एक धन कमाने से भी, धन ही एकमात्र ऐसा साधन नहीं है कि जीवन में सुख प्रदान कर सके। धन एक ऐसा साधन है जो अच्छे जीवन के निर्माण में सहायक हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है।
4: बिल्कुल।
3: हाँ, तो इसलिए जीवन के चतुर्दिक विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए, आपका शैक्षिक पक्ष वैचारिक पक्ष, चारित्रिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, सारी चीज़ों का एक संतुलन होना चाहिए। एक ऐसा संतुलित व्यक्तित्व बने कि जिससे कि समाज, आने वाली पीढ़ियाँ जो है वह सुंदर बन सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
2: चलिए डॉक्टर संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे बढ़ते हुए आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और आशा करूंगा डॉक्टर संजय जी की बातें आपके समझ में आ गई होगी, तो एक बार उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए गीता को सुनिए, उसके बारे में समझिए और जानिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ लीजिए आपके लिए एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग।

0: कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
6: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्चीव ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
8: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
9: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है और कुछ अच्छी अच्छी विशेष बातें भी हम आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, एक कहानी हम आपको सुनाना चाहेंगे कि एक छोटे दीपक गांव का एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में साधारण था, जब भी परीक्षा होती थी उसके अंक कम आते थे। गांव के लोग कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा जी। हर एक गांव में ऐसे लड़के होते हैं, हर एक आसपास लड़के होते हैं कि वो कम परीक्षा में कम मार्क्स लेते हैं। वैसे अर्जुन का था। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास टूटने लगा। वह एक दिन उदास होकर गांव के बाहर बैठे एक बुजुर्ग शिक्षक के पास गया। शिक्षक ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, आज रात इसे पहाड़ी तक लेकर जाना, जो पहाड़ी की चोटी है वहाँ पर लेके जाना। अर्जुन ने पूछा, इतने छोटे दीपक से अंधेरे में रास्ता कैसे दिखेगा? शिक्षक मुस्कराए और बोले, पहले कदम भर की रोशनी तो मिलेगी, फिर अगले कदम की। तो रात हुई, अर्जुन दीपक लेकर चला। सचमुच दीपक केवल कुछ कदम आगे तक ही रोशनी देता था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया रास्ता भी दिखता गया। कुछ देर बाद वह सफलतापूर्वक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। अगले दिन शिक्षक ने पूछा, तुम वहां कैसे पहुंचे? अर्जुन बोला, मैंने बस एक एक कदम आगे बढ़ाया। शिक्षक ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। सफलता का पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखता। जो लोग छोटे छोटे कदम उठाते रहते वे अंत में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। उस दिन के बाद अर्जुन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। उसने बड़े सपनों की चिंता छोड़कर छोटे प्रयासों पर ध्यान दिया। कुछ वर्षों बाद वही लड़का गांव का सबसे सम्मानित अधिकारी बना। तो यह कहानी यही सिखाती है कि हमें डायरेक्ट बहुत लोगों की शॉर्टकट से अमीर बनने की इच्छा होती है। एक साल में अमीर बनना, एक साल में करोड़पति बनना, एक साल में मेरी बहुत बड़ी कंपनी होना, तो इतने कम समय में नहीं हो सकता है। कुछ बातें लोगों को लगती कि बहुत तुरंत तुरंत हो जाए, अर्जी अभी अभी भी चाहिए, क्योंकि अभी का जो जीवन चल रहा है सब भाग दौड़ का चल रहा है और सबको लगता है कि मुझे तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। लेकिन सफलता की चोटी पर वही लोग पहुंचे हैं, अगर उनका इतिहास देखेंगे तो उन्होंने छोटी छोटी पहले जो मंजिलें हासिल की, फिर बड़ी, ऐसे करते करते वो आगे बढ़े। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट, चाहे आप धीरूभाई अंबानी की जीवन कहानी देखो या कोई भी बड़े हस्त की आप कहानी देखो, स्टीव जॉब्स की देखो, या संसार में जो भी बड़े हो गए, आज भी बड़े हैं, उनकी कहानी देखो। पहले उन्होंने एक छोटे कदम बढ़ाए, फिर बढ़ाते बढ़ाते वो आगे गढ़े और आज उनका नाम विश्व में रोशन हुआ है। तो इसीलिए ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें लगातार चलना है, रुकना नहीं है। शॉर्टकट कोई सफलता का होता नहीं, बस हमें मंजिल पर चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बताएंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, आज बलराज भल्ला जी का भी जन्मदिन है। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। इनके पिता महात्मा हंसराज प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और डीएवी कॉलेज लाहौर के प्रथम प्रधानाचार्य थे। बलराज भल्ला बड़े ही साहसिक थे और जोखिम उठाने को सदा तैयार रहते थे। जीवन के अंतिम दिनों में वह गांधी जी के अनुयायी हो गए थे। क्रांतिकारी बलराज भल्ला का जन्म 10 जून 1988 को पंजाब के गुजरावाला जिले में हुआ था। हाँ जी नमस्कार। हेलो हेलो, शायद फोन कट गया है। तो हम बात बता रहे थे कि क्रांतिकारी भल्ला का जन्म 10 जून 1988 को पंजाब के गुजरावाला जिले में हुआ था। महात्मा हंसराज इनके पिता थे, जो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और डीएवी कॉलेज लाहौर के प्रथम प्रधानाचार्य थे। बलराज भल्ला ने 1911 में एमए की परीक्षा पास की थी, परंतु राज बिहारी बोस और खुदराम बोस आदि के प्रभाव से वो छोटी उम्र में ही क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। इस कारण उनकी विश्वविद्यालय की डिग्रियां वापस ले ली गई। बलराज बड़े साहसी थे और बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम्राज्यवाद के कुछ प्रतिनिधियों की जान लेने या सरकारी बैंकों को लूटने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो लोग तो हमारे ही हैं, यहाँ आकर राज कर रहे हैं, हमें ही लूट रहे हैं, तो इसलिए उनका वो ख्याल था। वायसराय की गाड़ी पर बम फेंकने के अभियोग में वर्ष 1919 में बलराज बल्ला को 3 वर्ष की सजा हुई। दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में भी उन पर मुकदमा चला था और कठोर कारावास की उन्हें सजा दी गई। बलराज बल्ला भारत के ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के अनुयायी थे। हेलो जी, नमस्कार।
10: आवाज नहीं पहुंच रहा है भाई जी, आवाज नहीं पहुंच रहा है।
9: आवाज नहीं पहुंच रहा है? आवाज तो आ रही है मेरी, यहाँ तो दिख रही है बहुत बड़ी।
10: आपका आवाज
9: अच्छा,
10: पहले फोन किया, मेरा आवाज आपको पहुंचा।
9: हाँ, पहले फोन पे आवाज नहीं आ रही थी। आवाज जी जी जी जी, आप कैसे है जी?
10: बहुत ही अच्छे भाई जी। ओम शांति,
9: ओम शांति, ओम शांति।
10: कहानी अच्छी लगी, न्यूज भी अच्छे से आज के, और सभी दोस्तों को, रेडियो मधुबन परिवार को शुभाज भाई का नमस्कार। भाई जी नमस्कार।
9: जी जी जी जी,
10: बढ़िया हूँ, अभी बढ़िया।
9: बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई जी, जो इतनी उम्र होते हुए, इतने बुजुर्ग होते हुए भी रेडियो मधुबन को सुनते भी हैं और सभी को नमस्कार, याद प्यार देने के लिए फ़ोन भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बता रहे थे कि बलराज बल्ला जी के बारे में। तो देखो दोस्तों, कितने हमारे ऐसे देश के वीर नौजवान थे जो उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए कितना क्रांतिकारक कदम उठाया, जो स्वयं की परवाह नहीं की, जो आज हम इतने खुले से जीवन जी रहे, तो उन क्रांतिकारकों ने अपना बलिदान दिया है। तो बलराज बल्ला लाला लाजपत राय के अनुयायी थे। अपने कार्यों के लिए सहयोग प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से बल्ला ने एक गुप्त रूप से जर्मनी को भी यात्रा की थी। जीवन के अंतिम दिनों में बलराज बल्ला का राजनीतिक हिंसा पर से विश्वास उठ गया था और वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसक मार्ग के अनुयायी भी बने थे। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, आज राहुल बजाज जी का भी जन्मदिन है। भारत के सबसे सफल उद्योगपति में से एक उद्योगपति हैं। वो बजाज समूह के अध्यक्ष थे, जिसे भारत और विदेशों में विनिर्माण उत्पादों और वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए जाना जाता है। हाँ जी, नमस्कार, ओम शांति।
1: ओम शांति, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। सुबह से बोलता हूँ जटाना से। सोमनाथ भाई जी, कैसे हो?
0: बस बढ़िया है, आप कैसे हैं?
1: बस हम भी बढ़िया है, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी जी जी,
1: और आपकी आवाज भी हमको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप जो बताते हैं अच्छी आवाज में, दमदार आवाज में आप बताते हैं, तो हमको भी एक खुशी लगती है।
0: चलो, आप हमारा ऐसा बताकर हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल सर, हम तो आपकी आवाज से बहुत खुश है।
0: जी जी,
1: जब आपकी आवाज सुनते हैं तो हमको एक सुकून आ जाता है। चलो भाई, हमारे सोमनाथ भाई जी आए हैं, हम बात कर ले और आपकी बातें हमको भी शेयर करें, आप हमको भी बातें बताते हैं, हमको आप बताते हैं, तो हमको भी खुशी रहती है कि जो आप बता रहे हैं सर, अच्छी अच्छी बातें, कहानी भी बहुत अच्छी बताई और बहुत अच्छा लगा। हमको आपकी बातें बताता रही है, हम की आवाज़ सुन रहे हैं, सभी मित्रों आपकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं। हमारे मुरेलाल जी आते गए, हमारे कई सारे संग्राही हैं, सभी मित्र आपकी बातें सुन रहे हैं।
0: जी जी जी,
1: बहुत अच्छा लगा सर। बुधवार है आज, गणपति जी के अगर कोई याद कर रहे हैं तो आपकी पसंद का कोई गाना गणपति जी का सुना दीजिए। हम तो कोई फरमाइश नहीं देते, लेकिन आपकी तरफ से कोई अच्छा गणपति जी के का गीत सुना दीजिए सर, ठीक है?
0: जी जी जी जी
1: जी सर, नमस्ते सर, ओम शांति।
0: नमस्ते, ओम शांति। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि आज राहुल बजाज जी का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, बजाज समूह का व्यवसाय दोपहिया वाहन, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिक लैंप, पवन ऊर्जा, विशेष मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील फोर्जिंग, बुनियादी ढांचे का विकास, सामग्री हैंडलिंग उपकरण, यात्रा, जनरल और जीवन बीमा और निवेश में वित्तीय सेवा जैसे क्षेत्र में फैला हुआ है। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। हेलो जी, नमस्कार। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
2: बुराराम बोल रहे हैं सर।
0: हाँ बोलिए, कैसे हैं आप बुराराम जी?
2: बीमार लोग अभी है।
0: जी जी,
2: लेकिन आपका प्रोग्राम सुन रहा मैं, बोला सुबह सुबह राम राम सुन रहा।
0: जी जी, जरूर
2: करता ही रहता हूँ। और सब मन, सब भाइयों को, मधुबन भाइयों को और सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम।
0: जी जी जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार से, ख्याल से आप। जी बोलिए।
2: भजन है मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ऐसा करके भजन सुनाएंगे तो अच्छा।
0: मेरे झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, जरूर जरूर ये गीत मिलता है तो जरूर हम सुनाने की कोशिश करेंगे। जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि राहुल बजाज के बारे में। राहुल बजाज जी का जन्म 10 जून 1938 को हुआ था। बजाज व्यावसायिक घराने की नींव राहुल बजाज के दादा जमलालाल बजाज ने रखी थी। आने वाली पीढ़ियों ने बजाज घराने के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। राहुल बजाज ने कैथोलिक एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र की डिग्री और बम्बई विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। एक इंटरव्यू में राहुल बजाज ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया उसका श्रेय, पूरे श्रेय उनकी पत्नी रूपा बजाज को जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शादी की अनोखी बात शेयर की। राहुल बजाज ने कहा कि 1961 में जब उनकी शादी मराठी ब्राह्मण परिवार की रूपा गोलप से हुई तो वह उस दौर के सभी राजस्थानी मारवाड़ी उद्योग घराने में होने वाली पहली लव मैरिज थी। ये मारवाड़ी थे और मराठी थे तो ऐसे में दोनों परिवार के बीच तालमेल बैठना बड़ा मुश्किल था। राहुल बजाज ने सन 1965 में बजाज सुमो की बागडोर संभाली। उनके कुशल नेतृत्व में कंपनी ने लाइसेंस राज जैसे कठिन समय में भी सफलता के नई बुलंदियों को छुआ। सन 1980 के दशक में बजाज दो पहिया स्कूटरों का शीर्ष निर्माता था। सुमो के चेतक ब्रांड स्कूटर की मांग इतनी ज़्यादा थी कि इसके लिए 10 साल तक वेटिंग पीरियड था। राहुल कई कंपनियों के बोर्ड अध्यक्ष भी थे। जो पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा कि चेतक 10 साल वेटिंग में थी। और हमें भी याद आता है हमने 97 में पहली जो स्कूटर ली थी वो भी चेतक थी और बजाज की थी। तो अभी यादें ताज़ा हो रही है। तो आर्थिक क्षेत्र और उद्योग दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुना गया था। वो साल था 2006। उनको IIT रुड़की से 7 विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई है। बजाज ऑटो पहले मुख्य तौर पर थ्री व्हीलर्स का काम करती थी। हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्कार सर। नमस्कार
0: जी। जी जी
3: आप?
0: बस बढ़िया है। आप कैसे हैं?
3: वाह क्या बात, आप भी बढ़िया क्या कि हम भी बढ़िया होंगे।
0: जी जी
3: जी सब चीज दुनिया में मिले ना मिले मगर खुशी तो होनी चाहिए।
0: जी जी
3: है, अच्छे विचार हैं।
0: जी जी
3: अच्छे लोगों के विचार देखने के हैं ऐसे।
0: जी जी
3: तो अच्छा लगता है। तो आसपास में धरती आकाश भी मुस्कुराते रहते हैं।
0: जी
3: आपको नमस्कार करते हैं नवी किरण को। नवी किरण में हमेशा हर चीज नवी आती है।
0: जी जी जी जी
3: और हमारे सभी शो बिल्कुल नवे आते हैं। एक हर चीज के अंदर बहुत कुछ समाया है। हर शो में हर कार्यक्रम में हम सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अगर वो सुनते नहीं है तो हमारा मतलब खुराक नहीं मिलता है। वो सुनने के बाद में हमें और भी खुशी बढ़ जाती है और आपकी आवाज़ सुन के और हमारे सभी बहनों की भाइयों की और सभी की आवाज़ बहुत अच्छी है और फोन करते हैं सभी की भी अच्छी है। और आज जिनका भी जन्मदिन है सभी को नमस्कार, ओम शांति। चाहे गांव हो, शहर हो या राज्य हो कोई, हम नमस्कार करते हैं। जन्मदिन तो बहुत अच्छा होता है और बस यही कहेंगे आज गाना क्या गाएंगे। गाना तो एक थोड़ा गुनगुनाता हूँ।
0: हाँ जल्दी गुनगुनाइए।
3: अगर रेडियो मधुबन से फोन न करते मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर रेडियो मधुबन से फोन न करते मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम राहुल बजाज जी के बारे में बात कर रहे थे कि राहुल बजाज जी ने कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया और घर घर में एक नाम पहुंच गया हमारा बजाज। जो टीवी में भी आड़त आती थी हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, तो घर घर में ये नाम उन्होंने फैला दिया। तो भारतीय बिजनेस जगत की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में नामक पुस्तक के मुताबिक कमलनयन बजाज के पहले बेटे के लिए राहुल का नाम जवाहरलाल नेहरू ने खुद चुना था। इसे लेकर उनकी बेटी इंदिरा गांधी नाराज हो गई थी। दरअसल इंदिरा जी की इच्छा थी कि वह अपने बेटे का नाम राहुल रखे। बाद में इंदिरा जी के पोते का नाम राहुल गांधी रखा। खास बात यह है कि राहुल बजाज ने अपनी पहली संतान का नाम राजू रखा है। जी हाँ, और उन्हें पुरस्कार और सम्मान भी बहुत सारे मिले हैं। राहुल बजाज को उनके व्यापार क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान को देखते हुए बहुत सारे पुरस्कार मिले। सन 2001 में भी भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण भी मिला और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के द्वारा उन्हें पूर्व छात्री का अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। और हमारा भी ये सौभाग्य है कि हमने भी हमारी एक उनसे मुलाकात लेनी थी तो उनका अपॉइंटमेंट ही हमने लिया। उनका अपॉइंटमेंट लेकर, हेलो जी नमस्कार,
4: ओम शांति जी।
0: ओम शांति बोलिए।
4: नीरज गुप्ता बोल रहे हो जी, गोंदिया से।
0: जी जी गुप्ता जी बोलिए।
4: आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है सर।
0: जी जी जी जी जी बहुत Hello? अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, फोन करने के लिए धन्यवाद।
4: हाँ जी, वो नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलेगा सर?
0: हाँ, नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम तो चालू ही है, पूरे भारत भर में चालू ही है। अभी 6 अगस्त से अभी पूरे भारत में ये प्रोग्राम और महाराष्ट्र में भी होने वाला है। 10 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य ये जारी रहेगा। जी जी ठीक है।
4: कभी कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं वाला भजन सुनना है सर?
0: जी जी जी जी प्यासे को पानी वाला, ठीक है। पहली फरमाइश हम पूरी करेंगे, मेरे राम आएंगे तो ये गीत हम सुनाना चाहेंगे, तो कभी प्यासे को पानी वो बाद में सुना देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, ओम शांति। तो चलिए दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। अभी आप गीत सुनेंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे।

0: मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा गीत कितना सुंदर मन को आनंद देता है। तो आगे बढ़ते हुए हम फिर से बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, हम बता रहे थे कि राहुल बजाज जी का भी जन्मदिन आज है और उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई। हमारा सौभाग्य कि हमें उनसे एक मुलाकात की, उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके अपॉइंटमेंट हमने ही ली थी, उनसे मुलाकात हुई और बहुत काफ़ी अच्छे इंसान लगे हमें। लगभग आधा एक घंटा उन्होंने मुलाकात दी, तो बहुत अच्छे इंसान ऐसे भी होते हैं जो भारत के पद्म भूषण और इतने बड़े सफल उद्योगपति रहे हुए। तो आगे बढ़ते हुए हम बताना चाहेंगे कि गोपीनाथ जी का भी आज जन्मदिन है। जी हाँ, गोपीनाथ बोरदोलोई भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें कारावास भी जाना पड़ा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के कारण गोपीनाथ को पुनः सजा हुई थी। गोपीनाथ ने असम के विकास के लिए अथक प्रयास किए थे। उन्होंने राज्य हाँ जी नमस्कार
1: नमस्कार, ओम शांति। सोमनाथ भाई कैसे हैं?
0: ओम शांति, बहुत बढ़िया है। आप कैसे हैं?
1: अच्छे हैं। और ये
0: जी
1: उनका बताइए नाम है।
0: हाँ, आपका आवाज कट रहा है। जी जी,
1: बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया था ना, नाम की बात बताई थी कि इंदिरा गांधी की अपने बेटी का नाम रखना चाहती थी, फिर मोदी का नाम रखा।
0: जी जी जी जी जी,
1: बहुत अच्छी लगी जानकारी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत अच्छा।
0: जी जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए आपको भी।
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका।
0: जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू,
1: धन्यवाद।
0: ओम शांति ओम शांति। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हम बताना चाहेंगे कि गोपीनाथ जी का जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना, वो भी उनको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़े, उन्हें कारावास भी झेलना पड़ा। उस आंदोलन में उन्हें सजा भी हुई। तो गोपीनाथ ने असम के विकास के लिए अथक प्रयास किए थे। उन्होंने राज्य के औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया और गुवाहाटी में कई विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई। असम के लिए उन्होंने जो उपयोगी कार्य किए, उनके कारण वहाँ की जनता उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी थी। वस्तुतः असम के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। गोपीनाथ बोरदोलोई प्रगतिवादी विचार वाले व्यक्ति थे तथा असम का आधुनिकीकरण करना

चाहते थे। गोपीनाथ का जन्म 10 जून 1890 में असम में नौगांव जिले के रोहा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम बुद्धेश्वर बोरदोलाई तथा माता का नाम प्राणेश्वरी बोरदोलाई था। इनके ब्राह्मण पूर्वज उत्तर प्रदेश में जाकर असम में बस गए थे। जब ये मात्र 12 साल के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। गोपीनाथ ने 1907 में मैट्रिक परीक्षा और 1909 में इंटरमीडिएट की परीक्षा गुवाहाटी के कॉलेज में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह कलकत्ता चले गए थे। कलकत्ता में बीए करने के बाद 1914 में उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 3 साल उन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुवाहाटी लौटने का निश्चय किया। गुवाहाटी लौटने पर गोपीनाथ जी सोनाराम हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करने लगे। 1917 में उन्होंने वकालत शुरू की। यह वह जमाना था जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश के आज़ादी के लिए अहिंसा और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। अनेक नेताओं उस समय गांधी जी के आदेश के अनुरूप सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। गोपीनाथ जी ने भी बिना किसी हिचक से अपनी चलती हुई वकालत को छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इस समय उनके साथ असम के अन्य नेता भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे। इन नेताओं में से प्रमुख थे नवीन चंद्र, चंद्रनाथ शर्मा, कुलाधार चलिया, तरुण राम फुकन आदि। वकालत छोड़ने के बाद सबसे पहले गोपीनाथ जी दक्षिण कामरूप और गोपालपाड़ा, जिसे पैदल दौरा कहते हैं, इस दौरे ने तरुण राम फुकन उनके साथ थे। उन्होंने जनता को संदेश दिया कि वे विदेशी माल का बहिष्कार करें, अंग्रेजों के काम में असहयोग करें और विदेशी वस्त्रों के स्थान पर खद्दर धारण करें। विदेशी वस्त्रों की होली के साथ साथ खद्दर के लिए चरखे और सूत काते। इसका परिणाम यह हुआ कि गोपीनाथ बोरदोलाई और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1 वर्ष कैद की सजा दी गई। उसके बाद उन्होंने अपने आप को पूरी तरह देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए ही समर्पित किया। 1926 में गोपीनाथ बोरदोलाई ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में भाग लेने के बाद जहां अपनी लोकप्रियता की वृद्धि की, वहीं वे सामाजिक जीवन से भी अधिक जुड़ते गए। 1932 में गुवाहाटी के नगरपालिका बोर्ड के वे अध्यक्ष चुने गए। उस समय असम की स्थिति एक पिछड़े प्रदेश जैसी थी, न तो अपना पृथक उच्च न्यायालय था, न ही कोई विश्वविद्यालय। गोपीनाथ जी के प्रयत्नों से यह दोनों बातें संभव हो सकी। फिर 1939 में जब कांग्रेस के प्रदेश विधानसभाओं के लिए चुनाव में भाग लेने को निश्चय किया तो गोपीनाथ बोरदोलाई आसाम से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विजय हुए और मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद से पूरी तरह से आसाम की जनता के लिए वो समर्पित हो गए और वे शेर असम ही नहीं थे, पूरे भारत रत्न भी थे। 1929 में सरकारी विश्वविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक के संबंध में सरकार का आदेश निकला तो गोपीनाथ बोरदोलाई ने विद्यालय का बहिष्कार आंदोलन चलाया था, परंतु शिक्षा के महत्व को समझते हुए उनके प्रयत्न से गुवाहाटी में कामरूप अकादमी और बरुआ कॉलेज की स्थापना हुई। आगे चलकर जब उन्होंने प्रशासन का दायित्व संभाला तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम मेडिकल कॉलेज तथा अनेक तकनीकी संस्था की स्थापना में सक्रिय सहयोग दिया। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में इनका कितना बड़ा योगदान रहा हुआ है, तो चलिए दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया है नई किरण इस कार्यक्रम को यही विराम देने का। कल फिर मिलेंगे नई किरण इस कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओम शांति।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। त्रिझटा का नाम त्रिझटा क्यों पड़ा जरा विचार करिए। और जी हाँ, अखरोट हमारी हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है, जरूर जानेंगे आप। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मीठा अचार, लेकिन किसका वो आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और आज का प्रश्न वाव बहुत सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग आशियाना में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है त्रिझटा का नाम, त्रिझटा कैसे पड़ा। आइए आज के विचार का विस्तार जानने के लिए हमें लौटना पड़ेगा रामायण की तरफ। ठीक है, तो कैसे नाम पड़ा जानेंगे। श्री रामचरितमानस के छोटे से छोटे पात्र भी विशेषता संपन्न है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। इसके स्त्री पात्रों में त्रिझटा एक लघु स्त्री पात्र है। ये पात्र आकार में जितना ही छोटा है, महिमा में उतना ही गौरवान्वित है। संपूर्ण मानस में केवल सुंदरकांड और लंका कांड में सीता त्रिझटा संवाद के रूप में त्रिझटा का वर्णन आया है, परंतु इन लघु संवादों में ही त्रिझटा के चरित्र की भारी विशेषताएं निखर उठी है। छोटे से वार्ता प्रसंग में भी संपूर्ण चरित्र को समास रूप से उद्घाटित करने की क्षमता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता है। मानस के सुंदरकांड की एक चौपाई में त्रिझटा का स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है, जो जानेंगे। प्रस्तुति पंक्ति त्रिझटा के चार गुणों को स्पष्ट करेगी। त्रिझटा जाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। वह राक्षसी है, दूसरा श्री रामचरण में उसकी रति है, तीसरा वह व्यवहार निपुण है, और चौथा है विवेकशील है वह। राक्षसी होते हुए भी श्री रामचरणानुराग व्यवहार, कुशलता एवं विवेकशीलता जैसे दिव्य देवोपम गुणों की अवतरणा चरित्र में अलौकिकता को समाविष्ट करती है। संभवतः इन्हीं तीन गुणों के समाहार के कारण उसका नाम त्रिझटा रखा गया हो। संत कहते हैं उनके सिर पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी तीन जटाएं हैं, अतः इनका नाम त्रिझटा है। त्रिझटा राम भक्त विभीषण जी की पुत्री है। उनकी माता का नाम शर्मा है, वह रावण की भातृजा है। राक्षसी उसका वंश गुण है और राम भक्ति उसका पैतृक गुण। लंका के अशोक वाटिका में सीता जी के पहले पर अथवा सहचरी के रूप में रावण द्वारा जिस स्त्री दल की नियुक्ति होती है, त्रिझटा उसमें से एक है। अपने संपूर्ण चरित्र में सीता जी के लिए इसने परामर्शदात्री एवं प्राण रक्षिका का काम किया है। यही कारण है कि विरह कुला और त्रासिता सीता जी ने त्रिझटा के संबोधन में माता शब्द का प्रयोग किया है। त्रिझटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी में मोरी, माते विपति संगिनी ते मोरी। ऐसी शुभेच्छुका के लिए मां शब्द कितना समीचीन है। त्रिझटा की रति रामचरण में है। राम भक्त पिता की पुत्री होने के कारण इसका यह अनुराग पैतृक संपत्ति है और स्वाभाविक है। त्रिझटा के घर में निरंतर राम कथा होती है। अभी माता सीता से मिलने के थोड़ी देर पहले वह घर से आई थी जहां हनुमान जी जैसे परम संत श्री विभीषण जी से राम कथा कर रहे थे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। राक्षसी होते हुए भी त्रिझटा को मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान है। वह सीता जी के स्वभाव और मनोभाव को अच्छी तरह समझती है। वह ये भलीभांति जानती है कि सीता जी को सांत्वना के लिए और उसके मतलब उनके दुखों को दूर करने के लिए राम कथा से बढ़कर के दूसरा कोई उपाय नहीं है। सीता जी का विरह जब असह्य हो चला, तब मरणातुर सीता जी आत्म त्याग के लिए जब त्रिझटा से अग्नि की याचना करती है, सीता जी त्रिझटा से कहती है कि चित्ता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे, तो इस अनुरोध को वे बुद्धिमान राम भक्ता यह कहकर टाल देती है कि रात्रि के समय अग्नि नहीं मिलेगी, और सीता जी के प्रबोध के लिए वह राम यश गुणगान का सहारा लेती है। ज्ञान गुण सागर हनुमान जी ने भी जब अशोक वाटिका में सीता जी की विपत्ति देखी, तो उनके प्रबोध के लिए उन्हें कोई उपाय सूझा ही नहीं। वे सीता जी के रूप और स्वभाव दोनों ही से अपरिचित है। उन्होंने त्रिझटा प्रयुक्त विधि का ही अनुसरण किया। रावण त्रासिता सीता जी को राम सुयस सुनने से ही सांत्वना मिली थी। यह हनुमान जी ऊपर पल्लवों माने पत्तों में छुपे बैठे देख रहे थे। त्रिझटा के चले जाने के बाद सीता जी और भी व्याकुल हो गई। तब उनकी परिशांति के लिए हनुमान जी ने भी श्री राम
गुणगान सुनाए। दानवी होने के कारण त्रिजटा में दानव मनोविज्ञान का ज्ञान तो था ही, दानवों का अधिक विश्वास दैहिक शक्ति में है और इसीलिए इन्हें कार्यवृत्त करने में भय अधिक कारगर होता है। सीता जी को वशीभूत करने के लिए रावण ने भय और त्रास का सहारा लिया था और तदनुसार राक्षसियों को ऐसा ही अनुदेश करके ये चला गया था। सीता जी का दुख दुना हो गया क्योंकि राक्षसियां नाना भांति भयंकर रूप बनाकर उन्हें डराने धमकाने लगी थी। व्यवहार विशारद त्रिजटा के लिए यह असह्य हो गया था। वर्जन के लिए उस पंडिता ने विवेकपूर्ण एक युक्ति निकाली। उसने राक्षस मनोविज्ञान का सहारा लिया और एक भयानक स्वप्न कथा की सृष्टि की। उसने सब राक्षसों को बुलवा करके कहा, सब सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। त्रिजटा ने उन राक्षसियों से कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए है, 200 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। लंका में श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। पुकार करके निश्चय के साथ कहती हूँ, ये स्वप्न 4 मैंने कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर घिर पड़ी। तो इस तरह ये राक्षसियां भी जानकी जी की सेवा करने लगी। तो जानकी माता ने भी ये सब देखा तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो प्यारे श्रोता बंधु, संत कहते हैं भगवान के पास देने के लिए सबसे छोटी वस्तु कोई है तो वह है मोक्ष, और भगवान के पास देने के लिए सबसे बड़ी वस्तु कोई है तो वह है भक्ति। भगवान संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु और भोग प्रदान कर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, परंतु अपने चरणों की अविचल भक्ति नहीं देते। नारी भक्ताओं का चरित्र हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। लंका में सर्वश्रेष्ठ भक्ता त्रिजटा है, ऐसा संतों का मत है। तो इस प्रकार त्रिजटा चरित्र भक्ति विवेक और व्यवहार कुशलता का एक माणिक जन योग है। और इस तरह त्रिजटा ने विपत के समय में सीता माता की इस तरह सेवा की और आप अपने नाम से सार्थक हुई, इसलिए आपको त्रिजटा कहा जाता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए फिर से सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। अखरोट खाने के क्या फायदे हैं, अखरोट हमारी हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करता है वो आप जानेंगे। तो देखिए, अगर जी मिचलाता हो तो आप अखरोट खाइए, जी मिचलाता हो तो अखरोट खाइएगा। दाद पर अखरोट का तेल लगाने से ठीक हो जाता है दाद, ठीक है, दाद होता है बहुत, खुजली चलती है तो आप तेल लगाइएगा अखरोट का, इससे दांत ठीक हो जाएगा। जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं उन्हें अखरोट और 15 दाने किशमिश 15-20 दिनों तक खिलाइएगा, इससे बच्चों को बिस्तर पर पेशाब की आदत छूट जाएगी। जो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं उन्हें अखरोट और 15 दाने किशमिश के खिलाइएगा, 15-20 दिन तक लगातार खिलाना है, इससे बच्चों को बिस्तर पर पेशाब करने की आदत छूट जाएगी। अगर पथरी की समस्या है तो छिलके हुए घिरी सहित पूरा अखरोट बारीक कूट कर और छान कर एक एक चम्मच सुबह शाम ठंडे पानी के साथ कुछ दिनों तक लीजिएगा, पथरी गल करके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगी। जिसको भी पथरी की समस्या है, ठीक है, तो अखरोट के छिलके और घिरी सहित पूरा अखरोट बारीक कूट करके छानिएगा, फिर एक एक चम्मच सुबह शाम ठंडे पानी के साथ कुछ दिनों तक लगातार लीजिएगा तो पथरी गल करके बाहर निकल जाएगी। और जी हाँ, कृमि है तो बच्चों के पेट में कीड़े होने पर एक अखरोट की गिरी रोज खिलाइए, सारे कीड़े मल के साथ बाहर निकल जाएंगे। बच्चे क्या है, मीठा थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, कंट्रोल करो तो करते ही नहीं है, फिर इस तरह कीड़े पड़ जाते हैं, खुजली चलती है और सहायक खुजली चलती है कि सहन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में माताएं परेशान हो जाती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, एक अखरोट की गिरी बच्चों को खिलाइएगा तो सारे कीड़े मल के साथ बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सफ़ेद दाग है तो अखरोट का नियमित सेवन करिए, इससे सफ़ेद दाग में भी राहत मिलेगी। शरीर पर सफ़ेद दाग है तो अखरोट नियमित रूप से खाइएगा, सफ़ेद दाग से छुटकारा मिल जाएगा। फुंसियाँ है, फुंसियाँ निकलने पर रोज आप 5-6 अखरोट की गिरिया खाइए, काफ़ी राहत मिलेगी। भाई गर्मी में तो ये समस्या ज़्यादा ही हो जाती है, फुंसियाँ निकल आती है, तो 5-6 दिन तक मतलब 5-6 अखरोट की गिरिया खाइएगा लगातार एक सप्ताह, तो फुंसियों से राहत मिलेगी। अगर टीबी है, टीबी को तपेदिक भी कहते हैं, तो अखरोट की गिरिया दूध में मिलाइएगा, ठीक है, पहले तो घी में भूनना है, फिर पीस करके दूध में मिक्स करके इसका सेवन करना है। टीबी जिसको तपेदिक कहते हैं इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। और लास्ट नुस्खा भी बहुत अच्छा है, अखरोट खाने से मानसिक शक्ति बढ़ती है, अखरोट खाने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है, जिसको आप आजमा सकते हैं और इस तरह की समस्या है तो उनको ठीक कर सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है जो मैं दोहराने जा रही हूँ। देखिए, हमारे हाथों की जो पांचों उंगलियाँ है, ठीक है, ये पांचों तत्व से जुड़ी हुई है, तो कौन सी उंगली कौन से तत्व के साथ जुड़ी हुई है इसका नाम आपको बताना है। कि जैसे अंगुष्ट है, अंगूठा है, तो कौन से तत्व से जुड़ा हुआ है, तर्जनी उंगली है तो कौन से तत्व से जुड़ी हुई है, ये पांचों ही तत्व कौन सी उंगली के साथ जुड़े हैं नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक अल्फिरला लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: बस हम भी अच्छे हैं। एक दूसरे का हाल चाल पूछने का एक मौका रेडियो माध्यम से मिल जाता है। हमारे मित्र कैसे है, कैसे नहीं, वो जब बात करते हैं तो पता ही चल जाता है दीदी। लेकिन बात करे तो पता चले, नहीं करे तो कैसे पता चले।
0: जी जी जी,
1: कई ऐसे मित्र कभी कई दिनों से नहीं जुड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: जरूरी जुड़ना है, जुड़ेंगे तो एक दूसरे का हम जान भी पाएंगे। इस तरह से हमारे मित्र
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल आपने सही कहा है।
1: आज क्या?
0: हाँ जी, आज का विषय है अपना सफर खुद तय कीजिए, सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं, क्या कहेंगे आप?
1: वो तो सही है दीदी, क्या कहें कि हम दूसरे के सहारे चलेंगे तो दीदी कितने दिन चलेंगे और कैसे हम खुद आगे जा पाएंगे। क्योंकि हम देखो, आज घर में दो भाई रहते हैं और दो भाई एक भाई के कहने पर चलते हैं, इसके जो साथ में साथ करते रहते हैं और एक एक बिजनेस में दोनों साथ में रहते हैं और ऐसे बैठ रहते तो क्या करेगा। तो अलग अलग आप सीखिए, आगे जाइए। जिस किसी का सहारा तो मिलता, सहारा की जरूरत है लेकिन साथ की जरूरत है। फिर भी एक दूसरे को साथ साथ चलना नहीं है, अलग अलग कहिए तो आगे जाइए तो ही तो आप कुछ आगे कर पाएंगे। लेकिन सहारा तो जरूरी है कि सहारा मिलेगा तो हम आगे जाएंगे, लेकिन सब तो एक आगे जाने का मौका तो जरूर होना चाहिए। लेकिन भाई चलो, हम इतने साथ हम कैसे लेंगे, हम भी कुछ करेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन सहारे रहेंगे तो कैसे चल पाएंगे। तो जैसे बताऊं मैं कि मैं भी दीदी छोटा था तो मैं मेरे हिसाब से मैं आगे आए हूँ और मैं आज बहुत अच्छा हूँ और अच्छी तरह से मैं काम कर रहा हूँ और सभी मुझे नॉलेज भी मिल जाता है।
0: लेकिन
1: हमने दूसरे ने कुछ कहा तो ही हम समझ पाएंगे, ऐसा तो थोड़ा होता है। तो सेम आदमी कोई हम बिजनेस करते हैं तो कोई बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन ऐसे करो सही है लेकिन आप ही खुद के विचार करो, आप खुद आगे जाओ
0: जी।
1: आप कुछ करेंगे तो ही तो आगे जा पाएंगे। आप कोई खरीदी करने जाएंगे, आप जाएंगे और जाएंगे तो ही पता चलेगा ना, हम दूसरों को आपको लाके आएंगे लेके। तो अगर कोई किराने की दुकान है और दूसरे भाई माल लेके आए आपको देंगे और आप खुद सौदा करोगे, लेकिन आप जाइए तो आपको भी कुछ नॉलेज पड़ेगा कि भाई कितने के भाव पे आता है, कैसा आता है, तो ही तो हम कुछ सीख पाएंगे ना
0: जी।
1: ऐसे तो हम कैसे आगे जाएंगे सीख पाएंगे
0: जी।
1: तो
0: बिल्कुल,
1: दूसरे के सहारे पर नहीं रहना है, हमको खुद को आगे जाना है तो ही तो हम कुछ कर पाएंगे, वरना तो जैसे तैसे ही रह जाएंगे जैसे है ऐसे।
0: जी जी जी जी,
1: तो बस दीदी हम तो ऐसा कहेंगे, दूसरा को सहारा जरूरी है लेकिन आपको भी नॉलेज तो होना चाहिए ना। कुछ
0: नॉलेज भी और पूरा डिपेंड किसी पर थोड़े ना होना है, अपने विवेक शक्ति से भी काम करना है।
1: हाँ, विवेक शक्ति से भी काम करना है, हमारी बुद्धि से काम करना है
0: जी,
1: वही तो हम आगे जाएंगे
0: जी। तो
1: ठीक है,
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने विषय को भी स्पष्ट किया है, प्रश्न का जवाब देने की भी अच्छी कोशिश की है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं आज के विषय में। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। हमारे हाथों की जो ये पांच उंगलियां है, ये पांचों उंगलियां पांचों तत्वों से जुड़ी हुई है, तो कौन सी उंगली कौन से तत्व से जुड़ी हुई है आपको नाम बताना है। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: नमस्कार।
0: हाँ जी,
2: बस दुकान पे थे कपड़े।
0: जी जी जी,
2: कौन कॉल आ रहे हैं कि भी अभी लेने के लिए आ रहे हैं, तभी तैयार कर दूंगा।
0: अच्छा जी जी, अब देखिए जिनको जल्दी होगी वो तो आएंगे ही।
2: हाँ, ईयरफोन लगाया है इसलिए तो काम भी कर रहा हूँ।
0: अच्छा,
2: बात भी कर रहा हूँ।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तो कंचन भाई, आज का विषय है अपना सफर खुद तय कीजिएगा, सहारे इंसान को अक्सर कमजोर बना देते हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सफर तो खुद को ही तय करना है। हेलो।
0: हाँ जी मैं सुन रही हूँ।
2: मैं थोड़ा ये सुन करता हूँ, आवाज आ रही है?
0: हाँ हाँ आ रही है, आ रही है।
2: सफर तो खुद को तय करना है बेंदी, दूसरों का सहारा लेना है, लेकिन अनुभवी कोई है नहीं। हमें विश्वास है कि ये हमें सच्चे मार्ग बताएगा, तो इसका थोड़ा ये लेना है। हम उम्र में हमारी बात करें तो हम छोटे थे, उम्र कम थी, तो हमने हमारा मामा का लड़का था उसका सहारा हम लेते थे और ये सच्चा मार्ग बताते कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन कई लोग क्या है कि ये अपने अपना सोचते हैं, ये ऐसे और घाटे में आ जाए, ये और ये हो जाए तो ही मिले हमें, ऐसा तो अपने को ही आगे चलना।
0: हाँ जी हाँ जी जी।
2: और थोड़ा ग्राहक आ गए, बात सवाल का जवाब बात
0: नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाद में भी आप जुड़ सकते हो फिर भी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है कि हमारे हाथों की जो हथेली मतलब पांचों उंगलियां हैं वे पांचों तत्व से जुड़ी हुई है, तो कौन से तत्व से कौन सी उंगली जुड़ी हुई है ये आपको बताना है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, पहले भी प्रश्न पूछा था कि पांचों उंगलियों का नाम बताना, आप सभी ने नाम बताया है, अब यही पांचों उंगलियों पांचों तत्वों से जुड़ी हुई है, तो कौन सी उंगली कौन से तत्व से जुड़ी हुई है ये आपको बताना है। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है, अपना सफर खुद तय कीजिएगा, सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं, क्या कहेंगे आप? तो बहुत ही सुंदर आज का विषय है, प्रैक्टिकल विषय है, आप जुड़ सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो देखिए सफ़र तो खुद को ही तय करना है ना। वो कहते हैं ना कि बीमार हो जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग, अरे भाई हम तो आएंगे सिर्फ आश्वासन देने, लेकिन सहना तो आपको ही है। ऐसे ही सफ़र भी ऐसा ही है। चलिए हमारे श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
3: माता जी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
3: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मेरे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
0: जी।
3: हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी मैं सुन रही हूँ।
3: हाँ, आज के दिन की ढेर शुभकामना मंगल कामना
0: जी आपको भी।
3: क्या है
0: टॉपिक है? अपना सफर खुद तय करिएगा, सहारे इंसान को अक्सर कमजोर बना देते हैं।
3: बिल्कुल सही बात है ना, अपना सफर अपन जिंदगी में आए हैं, ठीक है, तो अपना सफर तो अपन को ही तय करना पड़ेगा ना। आप
0: जी.
3: किसी का सहारा लोगे तो कमजोरी बनोगे ना, सही है
0: जी। लेकिन वो कहते हैं ना, लेकिन एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि देखिए इंसान सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, लोगों के बीच रहता है, शहर में रहता है, अगर इंसान को इंसान की जरूरत नहीं होती तो वो जंगल में रहता, तो सहारा ढूंढने की कोशिश करते, क्या कहेंगे आप?
3: नहीं देखिए, इंसान इंसान का सहारा भी है, मगर जब जब तक अपन अपने मतलब सहारा मतलब यू है कि देखिए खुद खुद की हैसियत पे खड़े हो सकते हैं जितना खुद की हैसियत पे खड़ा होना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहे तो फिर सहारा भी जरूरी है, क्योंकि देखिए

0: तो बनती कोशिश आपको खुद को खड़ा होना है
1: जी, बिल्कुल।
0: क्योंकि मतलब देखिए, ये आजकल सारा तो आप ढूंढोगे मगर उसमें ताने बहुत मिलेंगे
1: जी।
0: जब तो कुछ नहीं, बाद में बोलेंगे इसको देखिए इसकी सहायता हमने की थी। तो इससे बेहतर आपको यही करना है कि बनती कोशिश किसी का सहारा ना लेने की कोशिश करें, और अगर फिर भी चुनौती है तो फिर आपको सहारा ले लीजिए, कोई वादा नहीं
1: जी।
0: मगर उसको जिसने आपका आपको सहारा दिया है कभी कभार, आप भी उसको उसको दे दीजिए या औरों को दे उसको दीजिए
1: जी,
0: ठीक है ना। उसको तो ये इंसान कर सकता है, बाकी तो सारा तो लेते ही है। मगर अब देखिए बुजुर्ग माँ बापों को वृद्धा आश्रम भेज देते हैं तो फिर वहाँ उनका तो सारा, जब बेटा छोटा होता है तो पाल पोस के बड़ा माता पिता सारा बनते हैं
1: जी,
0: और
1: जी।
0: जब माता पिता को सारा चाहिए तब उनको वृद्धा आश्रम भेज देते।
1: सही बात है,
0: ये कलयुग की हकीकत है
1: जी जी जी, बिल्कुल।
0: बस ये मैंने जो बोला इसमें इंसान समझ जाए तो बेहतर है
1: जी।
0: खुद के बलबूते पे खड़ा होना चाहिए। और प्रश्न क्या है
1: जी आज का? प्रश्न है, हमारे हाथ की जो पांचों उंगलियां है वो पांचों तत्व से जुड़ी हुई है, तो कौन सी उंगली कौन से तत्व से जुड़ी हुई है, उनका नाम आपको बताना है।
0: ठीक है, मैं सोच के ऑफलाइन देने की कोशिश करूंगा।
1: ठीक है, चलो
0: जय माता दी।
1: हाँ जी, जय श्री हरि, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। आइए अब यहाँ पर एक कल्प विराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो नमस्कार, क्या बात है? जो भी जुड़े हैं आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हमारे तक। हेलो, जो भी जुड़ते हैं आप थोड़ा सा जहां से नेटवर्क आता है वहां से जुड़िएगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही हैं और आपको आज हम बहुत बड़ी सरप्राइज भी देने वाले हैं। हेलो
1: हेलो नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई दानेरा से आपको सभी दोस्तों को प्रणाम नमस्कार ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: बस दीदी बहुत अच्छे हैं, काम काज चालू है, आपका प्रोग्राम आप और दोस्तों की बातें सुन रहे हैं दीदी, और बहुत बहुत अच्छा विषय लेके आए हैं, एकदम प्रैक्टिकल दीदी विषय लेके आए हैं आप। और
0: जी जी।
1: जो दीदी मैं कहूँगा,
0: हाँ जी,
1: कि बिल्कुल हमारे दोस्तों ने भी सही बात की थी कि किसी पर निर्भर, ज्यादा निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि अगर मैं एक जो बताऊ के जो एक लव्य था ना, वो उनका प्रशिक्षण नहीं किया था कौन से गुरु ने, वो तो उनको खुद ने
0: गुरु द्रोणाचार्य
1: चलाना सीखा था। हाँ, खुद ने धनुष बाण चलाना सीखा था। तो अगर एकलव्य ने ऐसा सोच लिया होता कि चलो ये तो विद्या सिर्फ गुरु के अलावा नहीं मिल पाती, तो ये कहावत भी नहीं रहती और ये भी नहीं कर पाता। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने आप पर बहुत सारा भरोसा रखकर रखे, और क्योंकि वो दूसरे लोग कर सकते वैसा हम भी कर सकते हैं, अकेले ही दूसरों से ज्यादा निर्भर रहे ना। तो फिर अभी हमारे दोस्तों ने भी बात बताई थी कि ताना भी देते हैं कि चल चल तुम इतना उछलो मत, ये नहीं तो मैंने तुम्हें ये काम सिखाया था या मेरी वजह से तुम ये है और तुम इतना उछलते हो, ये है वो, ऐसा भी ताना भी लोग करते हैं। तो अपने आप पर बहुत हौसला रखना जरूरी है और मेहनत लगन बहुत जरूरी है जीवन में। हर कोई काम कर सकती है जो अपनी मेहनत और अपने आप पर भरोसा, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूंगा दीदी कि दूसरे पर भरोसे से ज्यादा न रहे और खुद पर भरोसा रखे।
0: क्या बात है
1: दीदी,
0: बहुत सुंदर सुरेश भाई, बहुत ही अच्छी आपने बात कही है कि डिपेंड तो रहना नहीं है, आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। लेकिन हाँ, वो कहते ना इंसान समाज में रहता है तो एक दूसरे की जरूरत रहती, वो बात अलग है, लेकिन पूरे डिपेंड हो जाए वो भी नहीं होना चाहिए।
1: हाँ वो तो रहती है, लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है, हमारे लोगों की भी जरूरत पड़ती है, वो जरूरतें तो अलग है दीदी
0: जी।
1: लेकिन अपने आप पर भरोसा रखकर चले और परमात्मा पर भरोसा रखकर चले तो दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं रहती है
0: जी जी जी।
1: अपने आप सब कुछ जो करना चाहते हैं, अपने सपने, अपने समाज कुटुंब के लिए, देश के लिए वो कर सकते हैं।
0: जी जी जी
1: जी जी जी नमस्ते
0: जी, नमस्ते, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आज हम आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। आप याद करिए शनिवार को कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं, घावरी बातें। घावरी बातें में आप सभी को पता है कंचन और रतन आती है, तो रतन को तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, कंचन को भी जानते होंगे, लेकिन चलिए कभी कंचन ऑन एयर स्टूडियो में कभी आए नहीं, पहली बार आपसे मिलने आए हैं, तो आप सभी मिलना चाहेंगे ना? जरूर मिलाएंगे, पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
2: हेलो हेलो दीदी, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते सगुना बहन, कहाँ खो गए थे, बहुत समय के बाद जुड़े हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: आप भी खो गए थे ना?
0: हम भी खो गए तो आ गए, अब आप भी आ गए, चलिए लौट आए फिर से।
2: तो मैं बोला दीदी से बात कर लेते हैं, चलो
0: जी।
2: बहुत,
0: लेकिन हमको आए हुए 10-12 दिन हो गए, हम अच्छे, आप सुनाइए।
2: लेकिन मेरे ना बैलेंस नहीं खा रहा है।
0: अच्छा चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो?
2: हाँ बहुत अच्छे है अभी तो। मौसम की वजह से थोड़ा सर्दी जैसा हो गया है।
0: अच्छा जी जी जी, मौसम क्या है, बहुत ही अभी गर्मी है और गर्मी से अगर आप एकदम एसी या कूलर में से गर्मी में निकलते हो तो शरद गर्म हो ही जाता है। तो सगुना बहन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आप घावरी बातें कार्यक्रम के हमारे कलाकार है कंचन जी, उनसे मिलना चाहेंगे? आरजे नाम नहीं बताऊंगी, नाम आपको ही बताना है।
2: हाँ
0: जी, तो चलिए स्वागत है सुनीता जी आपका आशियाना कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से श्रोता बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन कि आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं।
2: अरे हमें तो बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम। आप जा देखने जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो कंचन और क्या
0: रतन
2: हाँ, तो घूमने जाते हैं तो राजस्थानी भाषा में बोलते तो हमें इतना अच्छा लगता है। राजस्थानी भाषा तो हमें पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी और आप भी ऐसे चलो समय हो गया है खाने का और खा ले थोड़ा फिर घर चले और चले ये सब बातें होती तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि चलो हम भी उनके साथ घूमने ही गए हैं ऐसा लगता है हमको।
3: बिल्कुल आप जुड़े रहे और हमें भी ऐसा ही लगता है कि भाई हाँ हम लोग ही केवल दो जने नहीं घूमे बल्कि जो अपना एक समुदाय है वो पूरा घूम ले।
2: और दीदी कभी कभी तो मैं फोन लगा लेती हूँ लेकिन लगता नहीं है फोन।
0: अच्छा
2: मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, बोला चलो ये कार्यक्रम चालू हो गया तो मैं बात करूं लेकिन कभी नहीं लगती बात नहीं होती।
0: अच्छा अच्छा,
2: बहुत अच्छा कार्यक्रम तो... चला रहे हैं आप।
3: बहुत धन्यवाद
2: कार्यक्रम
0: जी। तो अच्छी बात है कि देखे एक पंथ दो काज हो गए हैं, आशियाना में भी जुड़ गए और गांवरी बातों के आरजे से भी मिल लिया आप। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है सगुना बहन। और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे?
2: विषय क्या है दीदी?
0: आज का विषय है कि अपना सफर खुद को तय करना है, न कि दूसरों पर हमें आश्रित रहना है, क्या कहेंगे आप?
2: हाँ तो वो तो सही बात है दीदी, अपना सफर खुद को तय करना है और ऐसे नहीं है कि दूसरे पर डिपेंड नहीं होना, कभी किसी की जरूरत पड़ जाती है हमको
0: जी
2: तो सहारा लेना भी पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो सहारा लो फिर तो ऐसे आदत पड़ जाएगी ना।
0: जी जी बिल्कुल,
2: सहारा लेने की आदत पड़ जाएगी तो वो हमारा काम कर लेगा वो हमारा काम कर लेगा, ऐसे तो हम आदत पड़ जाएगी तो हम आलसी बन जाएंगे
0: जी,
2: हमारी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अपने खुद के पैरों पर हम खड़े होके खुद के परमात्मा के सहारे हम चलेंगे तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे हम।
0: बिल्कुल, सहारा एक दूसरे के आवश्यकता सबको पड़ती है लेकिन कितना लेना है वो स्वयं को सोचना है, पूरा ही डिपेंड रहेंगे तो फिर तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिल्कुल, और दूसरों का भी समय वेस्ट करेंगे।
2: और बाबा हमको बोलते हैं ना कि खुद के सहारे जियो दूसरे का सहारा ऐसे नहीं लेने का, कोई भी काम हो तो अपने खुद कर देने का और दूसरों की सेवा करने की, दूसरे से सेवा लेने की नहीं।
0: जी बहुत अच्छी बात है, आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
2: प्रश्न का जवाब है सबसे छोटी उंगली है जल, दूसरी है पृथ्वी, तीसरी आकाश, चौथी वायु और अंगूठी का नाम है अग्नि।
0: चलिए तो सगुना बहन आप कार्यक्रम सुनिए, आपके प्रश्न का जवाब हम कार्यक्रम के अंत में जरूर सुनाएंगे, सही है गलत है जरूर आप सुनेंगे। हाँ, ठीक है हाँ जी, और समय मिले तो जुड़ते रहिए। थैंक यू। तो सुनीता जी जिनका नाम है घावरी बातें कार्यक्रम में कंचन, तो आप जुड़ सकते हैं और आप भी कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो सुनीता जी हमारे साथ है। और सुनीता जी आपने अपना सफर कैसे तय किया? आप सरकारी शिक्षिका है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूंगथला में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है, इस मंजिल तक पहुंचने तक आप समझ सकते हैं काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इस बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो
1: हेलो नमस्कार, ओम शांति। हमारी प्यारी बहन उषा जी और हमारी दो बहनी और आई है उनका रेडियो मधुबन स्टूडियो में तहे दिल से उनका अभिनंदन शुक्रिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत और हमें भी आपसे मिलने का अवसर मिला।
1: मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ और नियमित रेडियो मधुबन का सोता हूँ और हमारी प्यारी बहन कंचन बहन और रतन की मैंने बहुत सारे जो मारवाड़ी में हमारे राजस्थानी भाषा सुनी है और तीसरी बहन हमारी उषा बहन की मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और आपकी बातें हमारे प्रेरणा रूप बनती
3: है। बहुत सुंदर, और आप लोग श्रोता बंधु इस प्रकार से हमें प्रेरणा देते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। राजस्थानी मारी और उषा जी की भाषा को नहीं, ना ही खाली अपनी भाषा है, बल्कि समूचे आपने राजस्थान की भाषा है, माया माँ की भाषा।
1: राजस्थानी तो हमारी मातृभाषा है, तो मोहने घनी अच्छी लागे, बढ़िया लागे, और मोहरे घर वाला सब सुने तो इन्होंने पण घनी अच्छी लागे, बढ़िया
3: लागे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर।
1: हमारी कंचन बहन
3: और अबे तो कही है कि स्कूल में भी पढ़ाई जासी राजस्थानी भाषा, वो जब से आदेश हुए है कोर्ट को तो मन तो घनी खुशी हो रही है कि मारी अपनी भाषा, एक छोटे से समुदाय की भाषा नहीं बल्कि समूचे राजस्थान की भाषा हो जासी।
1: मने राजस्थानी भाषा वालों ने घनी खुशी की बात हुई है मारे लिए के यो के मारे टाबर है बीजा है सब तो मारी मातृभाषा में वो ने पढ़ मिले तो वो घना वो ने सीखे पण वो पण घना धके आई वो ने छा पड़ी भाषा में के की है की नहीं। जो हिंदी भाषा अमुक हो या करे तो वो ने छोटा बच्चों ने कम पतो चला करे
3: जी,
1: तो आपकी भाषा हमारे जो राजस्थान में जो हिंदी और हमारी मातृभाषा में जो पढ़ने के लिए जो किताब दी है तो बहुत खुशी की बात है।
3: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा।
1: और हम रेडियो सुनने वाले सभी मेरे प्यारे मित्र हमारे सुरेश भाई जोटाना, सुरेश भाई पिनवाड़ा, सुरेश भाई जानेरा, कंचन भाई और भी हमारे रेडियो परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार है।
0: दयाराम जी आज ये बताइए कि आपको घावरी बातें कार्यक्रम कैसा लगता है, क्योंकि अक्सर हमारे कंचन बहन पूछते हैं कि भाई हमारे श्रोता बंधु सुनते हैं कि नहीं सुनते, उनको कैसा लगता है, तो आप बताइए घावरी बातें कार्यक्रम कैसा लगता है आपको।
1: घावरी बातें कार्यक्रम तो मने घनो घनो अच्छो लागे, बढ़िया लागे, मने खुशी हो है घावरी बात इतनी मने मस्त लागे, इतनी बात हमारे दिल रे अंदर जो छू कर जावे तो बहुत ही अच्छी लागे, बढ़िया लागे। और वास्तव में हमारे जो घर में परिवार में जो हमारी बहनी है और हमारे जो घर वाले सभी सुनते हैं तो उनको बहुत ही अच्छी लगती है आपकी जो मारवाड़ी भाषा है, जो गांव की बातें, गांव की बातें जैसे महिलाएं होती है तो एक दूसरे के पास जाती है तो अपनी बात करती है और कोई भी काम होता है तो बात करती है तो अपनी भाषा में करती है तो बहुत अच्छी लागे, उन्होंने सीखवा घणो बधो मिले।
0: जी बिल्कुल सही क्यों आप, अपनी भाषा के कई शरम घना जना शरम राखे करे राजस्थानी क्या बोला आपा, पर क्यों नहीं बोला, अपनी खुद की मातृभाषा बोलनी चाहिए।
3: और देखो दिल के जो उद्गार हुए ना,
1: मातृभाषा से जुड़े हुए हैं तो हम मातृभाषा तो हम बोलते हैं अपने आपस में अपने परिवार में तो मातृभाषा ही हम बोलते हैं।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है।
1: अलावा हम कई भाषाएं सीख गए हैं जैसे मधुबन से जुड़ा हूँ तब से लेकर हिंदी भी बहुत अच्छी मुझे भी आती है और सीखा हूँ।
0: जी जी
1: और सभी को नमस्कार है, ओम शांति। मैंने समय ज्यादा ले लिया
0: नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज भाई कंचन बहन आए हैं तो समय तो लेना ही था तो
1: जी। और कंचन और हमारी एक बहन तो उषा बहन तो हमेशा के लिए हमारे आशियाना में थी, लेकिन आज हमारी कंचन बहन बड़ी आई और रतन बहन आए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारी बहन आज रूबरू उससे भी बात हो रही है, उसको भी हमारी बात को पता चलता है कि हम जो कार्यक्रम करते हैं वो हमारे श्रोता सुनते हैं, मैं हम दूध धो रहे हैं तो बर्तन में जा रहा है कहीं और जा रहा है।
3: वाह वाह क्या बात कहिए भाई जी आपने, लगता है कि मेरे दिल की धड़कन को बहुत करीब से समझाए, क्योंकि जब जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है भाई हाँ ये प्रोग्राम सही जगह पहुंच भी रहा है, यानी वैसे तो इतना बड़ा मैनेजमेंट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने जनों के प्रयास है।
0: हाँ जी
1: जी, हमारी प्यारी बहनों को एक बताना चाहता हूँ दीदी, मैं रेडियो मधुबन के जन्म दिवस पर वहाँ आता हूँ तो मैंने आपको करीब से देखा है।
0: अच्छा।
1: और जो हमारे कई भूमिका है आपकी हमने देखी सुनी है, तो जैसे किसी कार्यक्रम में आते हैं कोई हमारे महिलाओं नहीं सुनती है तो उसको हिस्सा को न कार्यक्रम में भी आपकी कोई बातें हम मुझे भी सुनने मिलती है, बहुत ही खुशी की बात है, धन्यवाद
0: जी। चलिए दयाराम जी आज के प्रश्न का जवाब देंगे,
1: सवाल का जवाब तो सीधी मैं ऑफलाइन दे दूंगा।
0: अच्छा ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से, पहले गुजरात लाखनी में रहते थे अभी राजस्थान में ही रहते हैं रामपुरा गांव, और आप खेती का काम करते हैं, आप जैसलमेर के पास है।
3: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अच्छी प्रतिभा रखते हैं आप, अच्छी जानकारी रखते हैं।
0: जी जी जी, और ऐसे ही रेडियो मधुबन का पूरा परिवार हमारा जो हमारे श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं सभी बहुत अच्छे हैं, रेगुलर लिसनर है हमारे।
3: पर मुझे तो आज बात करके ऐसा लगा जैसे कि हम एक परिवार के बीच में बैठे।
0: तो एक परिवार ही है रेडियो मधुबन, पूरा परिवार,
3: कम्युनिटी का रेडियो नहीं बल्कि एक परिवार का रेडियो।
0: जी जी जी। तो हमारे अभी तो बहुत सारे श्रोता बंधु हैं, उनसे बात होना, वो कहते हैं ना कि मुश्किल है, कुछ जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ना चाहेंगे तो फिर से जुड़ सकते हैं आपसे बात करने के लिए। हम तो चाहते हैं कि आपसे बात करें, और विषय तो हम रोज ही स्पष्ट करते रहते हैं और रोज ही खुशनुमा जीवन की बातें होती है, लेकिन अगर आप कोई जुड़ना चाहते हैं और गांवरी बातें कार्यक्रम में जो कंचन का रोल करते हैं, इनका असली नाम है सुनीता, तो सुनीता जी से आप मिलना चाहते, कुछ बात करना चाहते तो जुड़ सकते हैं रेडियो मधुबन से। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। ठीक है, बाकी चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो, हाँ जी गणी खम्मा सा, कैसे हैं आप उमेश सिंह जी? हाँ जी हाँ जी, तो आप घावरी बातें कार्यक्रम सुनते हैं?
1: यदा कदा समय मिलता है तो उसके उपरांत तो सुन लेते हैं, बाकी थोड़ा भी संभव नहीं है।
0: जी जी, राजस्थानी भाषा में आता है, शनिवार को 12 बजे आता है, रविवार को 12:30 आता है, ऐसा कुछ है टाइम।
1: अच्छा अच्छा, बिल्कुल प्रयास करेंगे दीदी।
0: हाँ जी हाँ जी, तो जो सुनीता जी हमारे साथ बैठे हैं, आरजे सुनीता जी, वो घावरी बातें कार्यक्रम में कंचन का रोल अदा करते हैं।
1: जी जी जी
0: जी,
1: प्रश्न का समय समाप्त हो गया क्या?
0: नहीं नहीं, आप प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं, आज के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।
1: अभी ऑन एयर है।
0: हाँ जी,
1: एक्चुअली प्रयास तो किया था दीदी, परंतु फोन लाइन था, लाइन व्यस्त थी।
0: जी जी, काफी लोग जुड़ रहे थे ना।
1: कर रहा हूं।
0: जी जी,
1: तो प्रश्न का उत्तर है कि जो पंच तत्वों का प्रतीक है हमारा हाथ है।
0: जी, हाथों की जो हमारी पांचों उंगलियां हैं, तो कौन से तत्व से कौन सी उंगली जुड़ी हुई है?
1: जी जी, और इसका प्रत्युत्तर है अंगूठा है वो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है।
0: जी,
1: और चर्दनी है वो वायु तत्व से है, मध्यमा है वो आकाश तत्व से है, अनामिका है वो तत्व से है, और कनिष्ठा है वो जल तत्व से जुड़ी हुई है।
0: अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं सही है गलत है, कार्यक्रम के अंत में हम जरूर आपका जवाब देंगे, आप जरूर जुड़िएगा। और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना कि सफर तय करने के लिए किसी का सहारा मत लीजिए, किसी का सहारा लेकर के कमजोर मत बनिए, स्वयं का सफर स्वयं तय करिए।
1: बिल्कुल बात सही फरमाई आपने, सहारा लेने से व्यक्ति जो उसकी मंजिल है वो थोड़ी ओझल हो जाती है, फिर उसमें थोड़ा निडालपना आ जाता है, और कई बार है वो उस सारे के कारण भटक भी जाता है। और राही अगर अकेला मंजिल तय करता है बिना सारे के, तो जरूर उसको बाधाएं आएगी, परंतु वो एक दिन लक्ष्य पर जरूर पहुंच पाएगा। तो प्रयास यही करना, जैसे मैं एक छोटा

0: पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अब जो नोटबुक है या जो पाठ्यक्रम की पुस्तक है वो बिल्कुल सटीक है, परंतु वो सारा ले लेता है पासबुक का, कुंजी का, ठीक है वो सारे के बदौलत उस मंजिल जो टारगेट था, लक्ष्य था, वहां तक नहीं पहुंच पाता है।
1: जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है और बहुत बहुत आभार आपका। जी
0: धन्यवाद दीदी।
1: जी हाँ जी, तो ये थे उमेश सिंह जी ग्राम ओसिया जो जोधपुर के पास आया है। तो बहुत ही सुंदर आपने विषय को स्पष्ट किया है। सुनीता जी कुछ कहना चाहेंगे?
2: हाँ, तो उमेद सिंह जी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा। मैं भी स्कूल में टीचर हूँ और मैं ये एक जो अंतराल अभी बीच में बच्चों की अभिव्यक्ति के दरमियान आया है उसके अंदर, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में बताया कि पासबुक और कुंजी जैसी चीजें हैं
1: जी,
2: ये जिम्मेदार हो गई हैं। क्योंकि आप और हम लोग अपने समय को देखें तो बच्चों की अपनी एक अभिव्यक्ति होती थी, बच्चों की एक अपनी शैली होती थी जिसमें वो अपने विचार बिना किसी सहारे के अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता था,
1: उससे बुद्धि भी चलती थी,
2: बुद्धि का विकास होता था,
1: जी
2: चहु आयामी विकास होता था, चहुमुखी विकास होता था, वो सोच सकता था अलग अलग डायमेंशन में। लेकिन जब से ये पासबुक वगैरह चले हैं बच्चे के अंदर रटन शक्ति बढ़ गई है, बच्चे रटता है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति जैसी कौशल जो एक महत्वपूर्ण है वो
1: जी
2: खत्म हो रहा है।
1: सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है फिर क्यों मेहनत करें।
2: बस
1: चले, हमारे और भी श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
3: हेलो, ओम शांति जी।
1: हाँ जी नमस्ते मंजू जी, ओम शांति, कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छे हैं। सुनीता दीदी जी को भी नमस्ते।
2: नमस्कार मंजू जी, आपका भी तहे दिल से नमस्कार।
3: आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मधुबन रेडियो परिवार के साथ है। आप तो आते नहीं हो कभी, आपको सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे हम घूमने निकले हैं।
2: वाह बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं। मैं और कंचन जी अकेले नहीं घूमते हम लोग रतन जी, बल्कि हम लोग साथ साथ घूमते
3: हैं। साथ साथ बहुत ही मतलब जानकारियां इतनी घर बैठे मिल जाती है, हमारे सामने आप बोलते हो लगता आ जाता है कि ये चीजें बता रहे हैं।
2: मुझे भी आज अपने परिवार को देख करके, परिवार को सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इसी प्रकार से सुनते रहिए। वास्तव में जो घर में बैठे हैं महिलाएं या कामकाज भी कर रही हैं, सभी के लिए, महिला भाइयों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा रेडियो, क्योंकि एक शुद्ध मनोरंजन की दृष्टि से आज केवल यही साधन बच गए हैं जो एक शुद्धता परोस रहे हैं आपके सामने।
1: मंजू जी अक्सर सुनीता जी कहते हैं कहीं मेरा समय तो वेस्ट नहीं जा रहा है, हमारे श्रोता बंधु सुन रहे नहीं सुन रहे हैं, मैंने कहा आप चिंता मत करिए कभी आइए हम मिलवाते हैं।
3: बहुत सारे श्रोता कहीं कहीं से जुड़ते हैं, हमें खुद को पता नहीं कि इतना रेडियो सुनते हैं मधुबन को लोग जुड़ नहीं पाते। आज मैंने कितनी कोशिश की है सब जाके जुड़िए, वो नंबर ही नहीं आया आपकी वजह से।
2: तो बहुत खुशी भी मुझे भी आप लोगों से सभी से मिल करके।
1: तो मंजू जी आपने जवाब तो दे दिया जी,
3: बहुत ही अच्छा प्रयास और की जो आवाज है ना और हंसी का क्या कहना, बस बहुत ही खुश हो जाते हैं।
2: चलिए बहुत धन्यवाद, आप लोग इसी प्रकार से पसंद करते रहे कार्यक्रम को, हम लोग मोटिवेट होते रहे और समय निकाल करके समय समय पे आपसे मिलते
3: रहे। आपकी आवाज से, आपकी बातों से, आपके प्रयासों से बिल्कुल घर बैठे बैठे हमें तो बहुत फायदा मिल रहा है। लेकिन कोई नई सुने तो वो अलग बात है, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है मैं तो कभी कभी पार्टों में घूम जाती हूँ, बाकी तो सुनने वगैरह नहीं देते रेडियो मधुबन।
1: क्या बात है, हमारी मंजू जी बाड़मेर से है
2: जी
1: और बहुत ही पुराने श्रोता है, रेडियो मधुबन परिवार के सदस्य है।
2: बहुत सुंदर।
1: और इस बार थोड़े
3: रेडियो की तो मैं बहुत ही पुरानी श्रोता हूँ, जैसे मेरे को समझ पड़ी तब से मैं रेडियो की शौकीन रही हूँ। रेडियो मेरे को बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक स्रोत रेडियो लगा क्योंकि ना थोड़े इसमें टाइम वेस्ट होता है।
2: हाँ काम करते रहो और रेडियो सुनते रहो
1: जी।
3: हाँ अपना काम करते रहो, मस्त रहो, बस
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जुड़ते रहिए बीच बीच में समय मिले ऐसे, ठीक है?
3: बिल्कुल, कल मैं
1: कही दिया था कॉल लगा नहीं फिर। जी चलिए फिर भी आज जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आपका मंजू जी। और अब यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो देखिए, हम तो सिखाते ही रहते हैं। आज हम चाहते हैं कि आज का व्यंजन आप सुनीता जी से सीखें, ठीक है? तो तैयार हो आप सभी सीखने के लिए? चलिए, सुनीता जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सुनीता जी, आज आप अपने मन पसंद की रेसिपी सिखा सकते हैं, और आज आप बड़ा सा बैग लेकर के आए, तो कुछ लेकर के आए लगता है, ऐसा लग रहा है।
2: जैसे ही आपने मुझसे रेसिपी की बात कही तो मेरे मन में भी यही था कि क्यों नहीं मैं जो कुछ लेकर के आई हूँ उसी की रेसिपी आपसे शेयर कर दूं।
1: अरे वाह, क्या बात है! तो क्या लेकर के आए?
2: मैं आज लेकर के हूँ नींबू के छिलकों का अचार।
1: नींबू के छिलकों का अचार? देखे मेरे प्यारे श्रोता बंधु, नींबू तो वैसे ही हम यूज करते हैं ना, अभी तो गर्मी का मौसम है, शरबत बना बना करके पीते हैं, लेकिन छिलकों को अक्सर क्या करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन छिलके भी यूजफुल है, तो जरूर हम सीखना चाहेंगे।
2: छिलके यूजफुल नहीं बल्कि नींबू से कई गुना यूजफुल।
1: जी जी, विटामिन सी छिलकों में ज्यादा होता है।
2: हाँ, विटामिन सी होता है, रफीस होता है, और आम तो आम गुठलियों के दाम वाली बात है, तो बात ही अलग हो जाती है। और जब हम हो हिंदुस्तानी गृहणियां, तो हम कोई भी चीज को
1: वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारे श्रोता बंधु शायद आपसे बात करना चाहेंगे। हेलो
3: जी, नमस्ते। पहले तो हमारे कंचन बहन जी को नमस्ते।
2: आपको भी नमस्कार भाई, नमस्कार।
3: जी सर, बताऊँ जटाना से, आपका फेवरेट मैं कार्यक्रम सुनता हूँ। मेरा तो गांव की बातें फेवरेट है, क्योंकि मैं भी छोटे से गांव में रहता था। सभी गांव की जो मुझे परंपरा याद है, और सभी मुझे परंपरा हमने सीखी हुई है, जैसे आप हर दम गांव की बातें में बता रहते हैं, और आपकी आवाज से आपके जो बोल रहे हैं हमारे को बहुत अच्छा लगता है। आपका जो फेवरेट शब्द है, मैं बहुत अच्छा एक फेवरेट शब्द था आपका, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस ये आप जो शब्द है आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी ऐसी आप जो हंसते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है।
2: तो भाई जी, आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, ये हमें अच्छा लगता है, सुनते हैं।
3: अगले हफ्ते भी आपने बहुत अच्छा गावरी बातें में सुनाया था, पुरुषोत्तम मास की जो बातें बताई थी। मैं एक भी शब्द, एक भी मैं एपिसोड चुकता नहीं हूँ, मैं हर एपिसोड आपका सुनता हूँ गावरी बातें।
2: और आज तो मेरा भी मन गदगद हो गया, काफी प्रेरणा मिली मुझे भी, काफी मोटिवेशनल मिला कि आप लोग सुनते ही इतना पसंद करते।
3: कई सारी बातें गांव की जो आप बताते हैं, गांव में कैसे पहले रहते थे, छोटा सा मकान था, कच्चा मकान था, लेकिन लोग अच्छे रहते थे,
2: खुशियाँ
3: रहते थे, खेत में जाना, पानी में जाना, तालाब में जाना, कई सही सारी बातें आप बता रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा चार्जिंग किया है और अच्छा लगा। आपका ज्यादा वक्त मालूम है कि, लेकिन बस मैं आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा सुनता हूँ आपका, और आपको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कंचन जी और रतन जी की जो जोड़ी है उसके लिए सलामत रहे।
1: थैंक यू।
3: हर समय से गावरी बातें में अच्छी बातें लेके आए, ऐसी हम शुभकामना देते हैं आपको। नमस्ते, ओम शांति।
2: नमस्ते, नमस्ते, ओम शांति।
1: थैंक यू भैया। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, ये भी हमारे रेडियो मधुबन परिवार के बहुत ही पुराने सदस्य,
2: बहुत अच्छा,
1: और रेगुलर आप लिसनर है, रेगुलर फोन कॉल्स करते हैं। तो अच्छा, चलिए अब आप है ना, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आप रेसिपी सिखा दीजिए।
2: चलिए, तो मुझे अभी बड़ा फास्ट काम करना।
1: हाँ जी, हाँ
2: जी। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि कई बार हम लोग नींबू का रस निकाल करके रख लेते हैं, फ्रिज कर लेते हैं उसको।
1: हाँ जी।
2: तो मेरे पास में हो गए बहुत सारे छिलके इकट्ठे।
1: जी,
2: छिलके इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ कि कांच की बढ़नी के अंदर आप उसको लीजिए, प्लास्टिक की बढ़नी के अंदर नहीं, कांच होना,
1: कांच होना चाहिए। हाँ, जी।
2: नहीं तो वो प्रतिक्रिया होकर के, और
1: बिल्कुल प्लास्टिक तो क्या, नींबू एसिड। हाँ, है प्लास्टिक,
2: तो इस
1: को
2: प्रकार
1: करता
2: से
1: है।
2: उसके अंदर आप जितने भी हो आपके पास में नींबू स्टोर करते जाइए, नींबू स्टोर करते जाइए।
1: जी,
2: और उसको एयर टाइट रखना है, खुला सा नहीं रखना है,
1: मतलब नींबू निचोड़ने के बाद वो छिलके स्टोर करना है, और एकदम ढक्कन फिट लगाना है।
2: उसमें बस काला नमक डाल दीजिए, काली मिर्ची डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, सिंपल नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक, यानी तीनों तरह के नमक डाल दीजिए।
1: जी,
2: और हींग डाल दीजिए।
1: जी,
2: लास्ट के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी शक्कर, सभी चीजें मिला करके उसको हिला लीजिए, और इसको 5-7 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। आपका इतना खट्टा मीठा ऐसा टेस्टी अचार बनकर के तैयार हो जाएगा कि एक बार कहते ना मुंह में पानी आना, चटकारे ले लेकर के खाना, वो आपका सार्थक हो जाएगा।
1: क्या बात है, न तो इसमें तेल की आवश्यकता है, नहीं गैस की आवश्यकता है।
2: बस खास बात तो यही है कि पूरा तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा इससे, क्योंकि गैस पर हमने उसे चढ़ाया ही नहीं
1: जी।
2: हाँ, बर्नी को हर बार हिलाना है और थोड़ा टाइट रखना है, धूप में रखना है
1: जी जी,
2: ये बातें ध्यान रखेंगे।
1: तो बस क्या करना है, आप शरबत बनाओ ना तो छिलके को फेंकिएगा मत।
2: हाँ।
1: छिलके को संभाल करके रखिएगा और कांच की बर्नी में डालिएगा, कांच की बोतल में, ठीक है। इकट्ठे हो जाए कि भाई हाँ आपके पाव भर 300 ग्राम ऐसे 500 ग्राम जैसे छिलके इकट्ठे हो जाए, तो इसमें क्या क्या डालना है आपको, काला नमक, सेंधा नमक और समुद्री नमक, तीनों ही नमक डालना है। काली मिर्च डालनी है, काली मिर्च का पाउडर डालना है,
2: काली मिर्ची हाँ पाउडर,
1: हाँ जी, लौंग का पाउडर डालना है और आपको थोड़ा गुड़, थोड़ा शक्कर डालना है और ये सब डाल करके एक बार हिला दीजिए। हिलाने के बाद धूप में रखिएगा।
2: थोड़ी लाल मिर्ची भी डालनी है।
1: हाँ, लाल मिर्च भी डालिएगा, टेस्टी लगेगा। और फिर आप धूप में रख दीजिए, 4-5 दिन तक धूप में रखना है, उसके बाद ये अचार तैयार,
2: बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाएगा।
1: तो कितना मतलब वेस्ट में से बेस्ट आपने सिखाया है।
2: हींग लगे ने फिटकरी, रंग भी चोखो आए,
1: क्या बात है। तो सुनीता जी, बहुत सुंदर आपने रेसिपी सिखाई है। इस तरह हम तो चाहते कि कभी कभी समय निकाल करके आ जाइएगा।
2: बिल्कुल।
1: तो बहुत बहुत आभार आपका,
2: आपने मुझे एक अवसर दिया, इसके लिए भी शुक्रिया आपका।
1: साथ ही साथ अब समय भी पूरा होने को आया है, तो अब यहीं पर हम इस कार्यक्रम को समाप्त भी करेंगे। आज के विचार तो आपने सुने ही है, बहुत ही सुंदर रहा है। सुंदर से जो नुस्खे दिए हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अखरोट खाने के क्या क्या फायदे हैं, कौन सी बीमारियां ठीक करते हैं, वो आप सभी ने जाना है। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी हुई, और जो रेसिपी में आपको वेस्ट में से बेस्ट सिखाया है, नींबू के छिलके का अचार बनाना मत भूलिएगा। अगर बिगड़ भी जाएगा तो क्या चला जाएगा, वैसे ही छिलके तो आप फेंकने वाले थे।
2: और डाइजेशन के लिए तो बहुत ही लाभदायक
1: जी, बिल्कुल, डाइजेस्ट मतलब डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, तो जरूर आप बना करके खाइएगा। और बिगड़ जाए तो इधर भेज दीजिएगा, हम वापस सुधार करके भेज देंगे आपका। ठीक है। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, हमारे हाथ की हथेली के जो पांचों उंगलियां है वो कौन सी उंगली कौन से तत्व से जुड़ी हुई है। तो पहले तो मैं आपको जवाब दे देना चाहूंगी, फिर कौन कौन जुड़े हैं नाम भी जरूर बताना चाहूंगी। तो देखिए, अंगूठा है, अग्नि तत्व से जुड़ा है, ये ऊर्जा, पाचन शक्ति और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अब तर्जनी उंगली, ये वायु तत्व से जुड़ी हुई है, तो ये गति, विचार और मानसिक सक्रियता से जुड़ी हुई मानी जाती है। फिर मध्यमिका है, सबसे लंबी उंगली, जो आकाश तत्व के प्रतीक है, तो ये विशालता, संतुलन और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। अब है जिससे हम तिलक लगाते हैं, अनामिका, ठीक है, ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है, ये स्थिरता, शक्ति, धैर्य और शारीरिक मजबूती से जुड़ी मानी जाती है। लास्ट है चिट्टी उंगली, जिसको हम कनिष्का कहते हैं, ये जल तत्व से जुड़ी हुई है और ये भावनाओं, कोमलता, सौंदर्य और शरीर में तरल संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे हाथ की पांचों उंगलियां हमें हर पल याद दिलाती है कि हमारा शरीर भी प्रकृति के पांच तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से बना है। जब ये तत्व संतुलन मतलब संतुलित रहते हैं, तब जीवन में स्वास्थ्य, शांति और खुशहाली बनी रहती है। तो जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमारे श्रोता बंधुओं का नाम बताना चाहूंगी, सुरेश भाई जोटाना से आपका सही जवाब है, कंचन भाई मंडाली से आपका भी सही जवाब है, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आप विषय में जुड़े हैं, जवाब नहीं दिया है, उम्मेद सिंह जी ग्राम ओसिया से आपका जवाब भी सही है, सुरेश भाई धानेराव से, मंजू जी बाड़मेर से, सगुना बहन जोटाना से, दयाराम जी लाखनी से, आप सभी का जवाब सही है। आप सभी के लिए हम ढेर सारी तालियां बजाना चाहते हैं। और लास्ट में आज का मीठा मोती भी आपको सुनाना चाहेंगे, जो बहुत ही सुंदर है। मनुष्य को नकारात्मकता तब घेरती है जब वो अपने को श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित रखता है। अब आप सभी से इजाजत चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे। एक कल क्या है, सद्गुरुवार, और कल पूछने वाली हूँ पहेली, तो एक सुंदर सी पहेली के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 107.8 एफएम द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक महिला अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था के बीच किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार बनती है। साथियों, महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि बेटे की चाहत में गर्भपात करवा देते हैं, बेटी के स्कूल जाते वक्त लड़के ने सीटी बजाई तो लड़की का स्कूल छूट गया, तुम पराए घर से आई हो तो जायदाद में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, घूंघट निकालना ही छोड़ दिया। तो इस तरह बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। आज के इस नाटक के द्वारा हम जानेंगे कि महिलाएं किन किन कारणों से हिंसा का शिकार बनती है।
1: आज आपको ले चलते हैं राजस्थान सिरोही जिले के एक ऐसे गांव में जहां रहता है जगदीश। जगदीश के परिवार में उनकी माँ रमा, पिता सीताराम के साथ कुल 10 सदस्य रहते हैं। जगदीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसका विवाह पड़ोस के जिले की पुष्पा से हुआ है। बहू पुष्पा पहली बार गर्भवती हुई है और उसका 9वां महीना चल रहा है। पुष्पा की माँ बीमार होने के कारण पुष्पा को डिलीवरी के लिए पियर लेकर नहीं जा पाती है। इस वजह से सास रमा बहू को ताने कसती है और साथ साथ बार बार पुष्पा को पोता चाहिए कहकर परेशान करती रहती है। चलिए चलते हैं पुष्पा के घर और देखते हैं अभी वहाँ क्या चल रहा है।
2: बीनणी, ए बीनणी, कटे परी की, मारा पग घना दुख है, थोड़ा दबा तो।
3: माँ जी, मने घना चक्कर आ रहा है माँ जी, मारी तबियत ठीक कोनी, सुबह 4 बजा की उठोड़ी हूँ, रात की 10 बजा तक काम कर रही हूँ, अबे मारी ताकत कोनी, मैं सोवा जा रही हूँ।
2: चक्कर आ रहा तो काई करूँ मैं, अनि दुनिया में तू ही एकली महिला कोनी जो माँ बनवा जा रही। अरे मैं तो 60 टाबरा ने जन्म दी दो पर घर रो सारो काम करती, समझी।
3: माँ जी आपको समय अलग हो।
2: सामने बोल रही थू, ए जग्या थारी लुगाई ने समझा दे, गणिया में बोले।
4: थारी ही हिम्मत क्या न हुई मारी माँ के सामने बोलवा की।
3: थाने खबर है मैं गर्भवती हूँ, पूरा टाइम चल रो, फिर भी तुम्हारा मैं हाथ उठा रहा हूँ।
4: देख पुष्पा, तू मने मारवा पे मजबूर मत करया कर, घर का काम तो थाने ही करना पड़ी।
3: थाने खबर है कि मारो पूरो टाइम चल रहो, मारो सु काम कोनी हो रहो, क्या समझाऊं थाने, आ आ मारो पेट दुख रहो। आ
4: पुष्पा, पुष्पा कई होयो थारे, माँ माँ जल्दी आ, थारी बिंदड़ी ने कई होयो।
2: अरे कई नहीं होयो, जा दाई माँ ने बुला ला, बालक ने जन्म दिवारी पीड़ा है। बिनणी सुन, मारे तो पोतो ही चाहिए।
5: बधाई हो काकी सा, जलेबी खावा वो लक्ष्मी जी आया है।
2: बाटो आयो, मारे तो छोरा रो खर्चो बढ़ गयो।
5: काकी सा, छोरा छोरी अपना हाथ में कोनी, बिनणी और बालक दोई घना कमजोर है, या को ध्यान राख जो, मैं जाऊं। राम राम।
2: पोतो तो दीदो कोनी और ध्यान रखो।
3: सुनो पिंकी रा पापा, अपनी पिंकी रा मालिश करानी है, घनी कमजोर है, ताकि माँ ने कौन
2: काई जरूरत कोनी मालिश वालिश करवा की, वेजा ही पड़ता दरता मूर्ति, छोरिया ने घने माथा पर नहीं बिठानी।
3: सो जाए।

0: और पिंकी को मेरिट लिस्ट में नाम आयो। गांव वाला सब ढोल बजान पिंकी को स्वागत करवा रहा है। नाश्ता पानी की तैयारी करो।
1: अरे वाह वाह वाह, या तो घनी खुशी री बात है। मारी लाडो तो मारो नाम कर दी दो।
2: देखा आपने, पुष्पा ने परिवार के विरोध के बावजूद पिंकी को अच्छी शिक्षा दिलवाई। पिंकी ने भी मेहनत कर पढ़ाई की और आगे चलकर नामी वकील बन गई। पिंकी ने अपनी बहन को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई है। अब वह अपने परिवार के साथ साथ समाज की अन्य बालिकाओं और महिलाओं के साथ खड़ी होती है। इस बात से पिंकी के दादा दादी, परिवार वाले सभी बहुत खुश हैं और पुष्पा की तारीफ करते कहते हैं कि बहू हो तो ऐसी जिसने बेटी को इतना काबिल बनाया।
3: श्रोताओं, सुना आपने कैसे हमारे समाज में एक महिला को जन्म से लेकर हर पड़ाव में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ समाज बल्कि अपने परिवार के अंदर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर देती है। महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, वो आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित नहीं कर पाती है। कभी कभी महिला सुसाइड भी कर लेती है या फिर तलाक ले लेती है। फिर भी अगर हम हिंसा को बढ़ावा देते हैं तो उसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज आप सभी देखते व सुनते भी होंगे कि अधिकांश समाज में बेटों की संख्या ज्यादा है और बेटियों की कम। दलालों को पैसे दे करके दूसरे समाज की बेटियों को बहू बना रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जब नारी ठान लेती है तो हम यही कह सकते हैं, नारी तू ना हारी। पुष्पा ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर अपने पति सास ससुर के विरोध के बावजूद भी अपनी बेटी पिंकी को उच्च शिक्षा दिलाई। इस नाटक से हमने ये जाना कि महिलाएं किस किस प्रकार से हिंसा का शिकार बनती है। हम भी अगर अपने आसपास देखें तो हमारे परिवार तथा समाज के अंदर जाने अनजाने में महिलाओं को इस प्रकार के हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आज के इस नाटक से आपने जो सुना इसे अपने जीवन में डालने का प्रयास करेंगे और आप किसी महिला के जीवन में होने वाली हिंसा का कारण नहीं बनेंगे तथा अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रेरणादायक कार्यक्रमों के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन और कहिए सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। आइए आरजे उषा के द्वारा सुनते हैं इस एपिसोड के मर्म को प्रस्तुत करता हुआ एक दिल को छू लेने वाला गीत।

0: बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ, अब तो बस करो।
0: बहू, क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो,
3: शोक को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

साथ होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबके लिए अपना और आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हम राही। जी हाँ, हम राही, वही प्रोग्राम जिसमें कहानियां होती हैं दिव्यांग साथियों की, जिसमें कहानियां होती हैं जीवन साथी की तलाश में आने वाली चुनौतियों की, और जीवन साथी मिलने के बाद किस प्रकार जीवन आगे बढ़ाया जाता है, कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है। और ऐसे में अगर जब पति पत्नी दोनों ही बेरोजगार हों तो उसके बाद परिस्थितियां कैसी होती हैं, आज का कार्यक्रम कुल मिलाकर के इन्हीं सब बिंदुओं पर आधारित है। और पिछले कुछ कार्यक्रमों से आप देख रहे हैं लगातार इस तरह की कहानियां आ रही हैं। हम क्या करें साथियों, संयोग ही कुछ ऐसा बन रहा है कि पहले आपने पंडित रामशरण पाराशर जी और उषा जी को सुना, फिर आलोक शर्मा जी और नीतू जी को सुना, और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो एक छोटा सा गुजराती परिवार है, राजकोट गुजरात से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में, कल्पेश करेलिया सर एवं अक्षिका करेलिया मैडम। तो कल्पेश जी और अक्षिका जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू संदीप जी और रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब के सभी साथियों को हमारी ओर से नमस्कार।
2: थैंक यू मधुबन रेडियो और संदीप जी और हमारी ओर से भी नमस्कार
0: जी। तो श्रोताओं, आपने सुना हमारे दोनों मेहमानों को, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और हर किसी के चेहरे पर खुशियां लाते रहो, यही हम सब का मूल मंत्र होना चाहिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अक्षिका जी, सबसे पहले हमारे सुनने वालों को आप अपने बारे में कुछ बताइए जरा।
1: जी सर, मेरा बर्थ गुजरात के द्वारिका में हुआ है, सभी ने नाम सुना ही होगा आप लोगों ने
0: जी।
1: और मैं बाय बर्थ ही ब्लाइंड हूँ, टोटली ब्लाइंड हूँ
0: जी।
1: और मेरी पढ़ाई 9th तक बहरीन में हुई है, जो कि गल्फ कंट्रीज में आता है।
0: क्या बात तो,
1: है जी। तो 9th तक मेरी पढ़ाई अरेबिक लैंग्वेज में हुई है।
0: वाह
1: जी, थैंक यू। और उसके बाद गुजरात में आकर मैंने 10th यहाँ पे भावनगर में एक ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पे किया। और उसके बाद मैं सुरेंद्रनगर जो है पंकज जी और मुक्ता जी, उनके वहाँ पे मैंने म्यूजिक में विशारद और थोड़ा बहुत होम साइंस और 12th तक पढ़ाई, वो सब मैंने वहाँ से किया। और ये जो इंस्टीट्यूट है, आप कई लोग जानते होंगे कि शादी भी कराते हैं ब्लाइंड कपल की, तो वहाँ से ही हमारी शादी।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत जबरदस्त। तो मतलब आज का कार्यक्रम तो एक तरह से कई भाषाओं के इर्द गिर्द है, मतलब हालांकि मुझे तो ना तो गुजराती ही आती है ना मुझे अरबी आती है, लेकिन आपने तो अरबी भी सीखी है।
1: जी सर जी।
0: क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूब। इसके अलावा मतलब एजुकेशन में क्या रहा है आपका?
1: एजुकेशन में 12th तक मैंने किया है और म्यूजिक में हारमोनियम और वोकल में विशारद किया है।
0: अच्छा, 12th के बाद फिर पढ़ाई नहीं कर पाए आप?
1: नहीं कर पाई मैं।
0: ओके ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, बहुत खूब। लेकिन

0: जबरदस्त अनुभव बताया आपने बहरीन वाला, आगे जानेंगे आपसे इसके बारे में भी। कल्पेश जी,
1: हाँ जी,
0: अक्षिका जी ने तो बताया अपने बारे में, आप भी बताइए जरा।
1: मैंने सुरेंद्र नगर में प्राथमिक शाला जो एमटी दोषी अंध विद्यालय है वहाँ मैंने 1 से 7 तक पढ़ाई की है प्राथमिक स्कूल में। बाद में मैं अहमदाबाद नवरंगपुरा में आया, वहाँ मैंने 8वीं में एंट्री ली, लेकिन वहाँ गर्मी ज्यादा रहती थी, वो मुझे नहीं यहाँ
2: सेटल नहीं हो पाए वहाँ पे,
1: तो वहाँ 6 महीने निकाला। बाद में फिर अमरेली एक स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल अमरेली में गुजरात में है, वहाँ मैंने 8 से 10 तक पढ़ाई की और बाद में संगीत भी वहाँ मैंने किया है। मतलब
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो आजकल क्या कर रहे हैं कल्पेश जी फिर आप?
1: आजकल तो बस यहाँ मैं राजकोट में ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सभी ऑर्केस्ट्रा में जो मैरिज फंक्शन होते हैं उसमें कीबोर्ड बजाने का काम भी कर रहा हूँ, और साथ में जो सप्ताहें होती हैं, भगवत सप्ताह, भागवत कथा होती है या राम कथा होती है, उसमें भी मैं कीबोर्ड बजाने के लिए शास्त्री जो लोग होते हैं, पंडित लोग, उनके साथ मैं जाता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो आप दोनों ही दृष्टिबाधित हैं?
2: जी बिल्कुल, दोनों ही टोटल ब्लाइंड
0: हैं। तो अक्षिका जी, जो आपकी जो बीमारी है उसका क्या नाम है, डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं इसको?
2: सर इसका नाम तो मुझे खैर नहीं पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नर्व्स है वही सूखी हुई है, जो मतलब आईज का प्रॉब्लम नहीं है।
0: तो कभी जांच वगैरह हुई डॉक्टरों के पास जाकर के?
2: बिल्कुल, बहुत जब मैं छोटी थी तब द्वारिका में मेरे दादाजी ने और फैमिली वालों ने बहुत ही कोशिश की, अहमदाबाद और नवसारी और बॉम्बे पे मतलब बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता।
0: अच्छा अक्षिका जी, ये द्वारिका तो धार्मिक नगरी है।
2: जी सर।
0: तो मतलब ये धर्म के हिसाब से भी कई जगह प्रयास हुए होंगे आपकी आंखों की रोशनी आ जाए, ऐसा भी कुछ रहा या नहीं?
2: नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं रहा।
0: ये बहुत अच्छी बात है, वरना तो मतलब ऐसा होता है ना कि वो उसके पास जाना है, उसके पास जाना है, यहाँ ये चढ़ाना है, वहाँ वो चढ़ाना है, तो
2: सही बात है। नहीं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ।
0: ये बहुत अच्छी बात है कुल मिलाकर के। और कल्पेश जी, आप भी जन्मजात दृष्टिबाधित है?
1: हाँ जी, मेरे इसे ऐसा हुआ है कि जन्म से मैं दृष्टिबाधित नहीं था। पहला जब मेरा जन्म हुआ तब मैं 2 महीने तक दिखाई दिया था मुझे।
0: अच्छा।
1: 1.5 महीना जो कहते हैं उसको।
0: जी।
1: तो उसके बाद ये हुआ कि एक अंधश्रद्धा से जुड़ा हुआ भी इसमें मामला है।
0: जी जी।
1: कि हम लोग राजकोट आ रहे थे, ये मुझे मेरी मदर ने बताया था मुझे कि भाई हम लोग राजकोट आ रहे थे, तब एक बस में कोई दो लेडी थी, उन्होंने एक पानी मुझे, क्योंकि बालक जब बच्चा जब नाना छोटा सा होता है तब ये रोता है, तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे बहुत रोता है, तो एक, एक हमको दीजिए। और ये दो लेडी थी वो अनुभवी थी, वो मतलब
0: अच्छा,
1: थोड़ी उम्र से बड़ी
0: थी, मतलब थोड़ी सी,
1: हाँ बुजुर्ग थी। तो उन्होंने मुझे गोद में लिया, पानी वानी पिलाया, तब मैं बंद भी हो गया रोना मेरा,
0: क्योंकि म्यूजिक रोना बंद हो गया और घर वालों का रोना चालू हो गया, ऐसा तो नहीं?
1: वो तो है। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने पानी वानी पिलाया और जब हम लोग राजकोट आए तो राजकोट में फिर मेरा रोना शुरू हो गया, और जब बाहर हम निकले तो मेरे पापा ने और मेरे जो बड़ी मम्मी है उनको आँख में से कुछ सफेद दाना जैसा कुछ दिखाई दिया। तब यहाँ राजकोट में एक केशु भाई करके एक डॉक्टर है, यहाँ उनको बताया तो उन्होंने ये बताया कि भाई देखो उनको एक बड़ी हॉस्पिटल है डॉक्टर ध्रुव, उनके पास ले जाइए। तो वहां मुझे डॉक्टर ध्रुव के पास ले गए और वहां मेरे आंखों को मशीन के द्वारा तलाश किया गया, तो बताया गया कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो आंखों से उनकी रोशनी चली गई है। तो मेरे दादाजी है वो बहुत चिंता में पड़ गए, बहुत टेंशन हो गया उनको कि हमारे तो ये परिवार में पहला ये ऐसा मामला हुआ है।
0: जी जी जी जी जी जी
1: तो और बस वहां से मेरी कहानी शुरू हो जाती है जो दृष्टिहीन की बातें हैं।
0: वहां से जो है संघर्ष शुरू हुआ जो अब तक जारी है, क्यों?
1: हाँ जी बस वही।
0: तो जैसा कि हमने जाना आप दोनों के अनुभवों से कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही संगीत से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप दोनों की परिस्थितियों से मिलता जुलता कोई गीत याद आ रहा है इस वक्त जो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा सकें आप दोनों की ही आवाज में, और उसके बाद में फिर जो है आपके मिलने की कहानी पर आते हैं।
2: जी
0: जी, चाहे तो आप द्वारिकाधीश की नगरी से हैं तो कोई कृष्ण भजन भी सुना सकते हैं
2: जी,
0: और नहीं तो कोई भी गुन धुन जो अभी दिमाग में आ रही हो उसको गुनगुना दीजिए। चलिए तो कोई बात नहीं, आगे सुनेंगे फिर आपसे। इसका मतलब ये है
2: जी, अभी कुछ याद नहीं आ
0: रहा। अभी ऐसा होता है कई बार जब मौका आता है तो याद नहीं आता है। तो चलिए अक्षिका जी, अब आप दोनों के मिलने की कहानी पर आते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई?
2: शुरुआत में ऐसा है सर कि मैं जहाँ पे थी सुरेंद्रनगर स्कूल में, तो वहाँ पे मेरे जो गुरु थे जिनसे मैंने संगीत सीखा विपुल व्यास जी करके
0: जी,
2: तो वो वहाँ पे टीचर थे। और अमरेली के बारे में इन्होंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे एड्स से बाद इन्होंने पढ़ाई की, तो वहाँ पे ये विपुल जी और ये इनके दोनों साथ में पढ़ते थे पहले। तो ये विपुल जी है वो इनको भी जानते थे और मुझे भी अच्छी तरह से जानते थे
0: जी,
2: तो इन्होंने हमारा मतलब कांटेक्ट करवाया।
0: अच्छा,
2: क्योंकि मैं जब सुरेंद्रनगर छोड़कर यहाँ राजकोट सेटल होने के लिए आ रही थी तो विपुल जी ने इनको फोन किया कि ये मेरी, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक एज एन असिस्टेंट भी काम किया था थोड़े दो तीन साल
0: जी,
2: तो उन्होंने इनको बताया कि ये मेरी ये असिस्टेंट टीचर है, मैं इनको भेज रहा हूँ राजकोट में
0: जी।
2: और मुझे उस टाइम गाइडेंस चाहिए था कि राजकोट में म्यूजिक के फील्ड में क्या किया जा सकता है मतलब। तो ये पहले से ही राजकोट में सेटल्ड थे तो इनके पास विपुल जी ने मुझे गाइडेंस के लिए भेजा था।
0: कब की बात है ये?
2: ये 2011 की बात है।
0: अच्छा, और आपका विवाह कब हुआ?
2: 2012 29 जनवरी।
0: चलिए अच्छी बात है। तो मतलब अक्षिका जी या कल्पेश जी के बारे में बात होने से पहले भी क्या कहीं चर्चाएं हो रही थी या शादी के बारे में आप या आपका फैमिली में से कोई सोच रहा था?
2: जी सर, सोच रहे थे पहले भी और ढूंढने की कोशिश भी की लेकिन कहीं हो नहीं सका, मतलब ढूंढ नहीं पाए। लेकिन मेरा विचार तो ये था पहले जब मैं सुरेंद्रनगर में थी तब कि मुझे अगर जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मैं उस टाइम में म्यूजिक कर रही थी और मेरा विचार ऐसा था कि इसी में मुझे जॉब लेना है। तो मेरा विचार ऐसा था कि अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं मतलब अपने पेरेंट्स का ख्याल रखूंगी और बस ऐसे ही मतलब रहना चाहती थी मैं, शादी करना नहीं चाहती थी, ऐसा पहले मेरा विचार था।
0: अच्छा,
2: ये है सर।
0: नहीं तो जब विचार चल रहा था तो कहीं पे चर्चाएं भी हुई थी क्या?
2: चर्चाएं तो हुई थी, एक दो रिश्ते भी देखे लेकिन वो नहीं ठीक थे, मतलब
0: वो टाइटेड थे या ब्लाइंड ही थे?
2: ब्लाइंड ही एक ही रिश्ता था
0: ब्लाइंड। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया किसी के भी मन में, फैमिली में आपके, कि भाई मतलब लड़की तो ब्लाइंड है, जो पति हो वो साइटेड होना चाहिए या थोड़ा सा मतलब?
2: नहीं नहीं, ऐसा है इसमें कि मेरी मदर जो है वो मतलब मुझे बहुत सपोर्टेड है पहले से
0: जी जी जी,
2: तो उनको ये पता था कि हमारी बच्ची ब्लाइंड है तो उसको इसके जैसा ही मिलेगा, तो वो ठीक से रह पाएगी, हम उनका ये विचार था। और पढ़ाई में भी ऐसा हुआ था संदीप जी, बहरीन में जब मुझे एक स्कूल में भेजने की बात आई थी तब मेरे बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं मेरे यहाँ के, मेरे यहाँ तक के मेरे फादर भी और उनके बड़े भाई और वो सब, वो ऐसा मानते थे कि ये तो ब्लाइंड है, ये क्या करेगी क्या पढ़ेगी, ये इसको घर में रहने दो, एक कोने में बैठेगी खेलेगी, तो ये विचार था। लेकिन मेरी मदर ने संघर्ष करके सबके साथ और कुछ भी करके मतलब मुझे पढ़ाया, इस हिसाब से उसकी वजह से मैं यहाँ पर मतलब जो भी पहुंच पाई हूँ मैं आज उनकी वजह से।
0: कभी आपके दिमाग में आया अक्षिका मैम कि मैं मम्मी से ये प्रश्न पूछूं, जैसे आपने कहा कि माताजी का यही मानना था
2: जी
0: कि आपका जीवन किसी दृष्टिबाधित के साथ ज्यादा अच्छा हो सकता है
2: जी,
0: तो कभी मन में आया आपका ये प्रश्न पूछने का कि मैं पूछूं मम्मी ऐसा क्यों है, मतलब साइटेड के साथ क्यों नहीं हो सकता या किसी और के साथ क्यों नहीं हो सकता है?
2: उनका मानना ये था, मैंने पूछा तो नहीं लेकिन हम जब कभी बातें करते थे तो वो मुझे बताती थी कि मैं देखती हूँ कि मतलब जो साइटेड लोग होते हैं वो अगर मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन तो उनका मानना था कि वो कभी क्या कर देंगे, कभी क्या कर देंगे, तुम थोड़ी देख पाओगी, तुमको कैसे पता चल सकेगा, थोड़ी 2400 कलाक उनके पीछे घूम सकते हैं।
0: असुरक्षा की कहीं ना कहीं भावना मतलब उनके हिसाब से थी
2: जी सर।
0: जी जी जी, चलिए बहुत खूब। तो जब मतलब प्रस्ताव आया कल्पेश जी की तरफ से आया होगा मेरे ख्याल से, तो
2: सर उसमें ऐसा हुआ था मैं आपको
0: अब भाई आप नहीं बताओगे तो क्या करें, मुझे निकलवाना पड़ेगा ना जी।
2: तो जब मैं सुरेंद्रनगर छोड़ रही थी और उस टाइम मैं मतलब अपना सामान लेने मैं और मेरे सिस्टर आए हुए थे
0: जी।
2: तो वो सामान लेने के बाद हम लोग, जो मैंने आपको बात किया ना विपुल जी के बारे में
0: जी,
2: उनके घर गए और मैंने जब बात किया गाइडेंस के बारे में
0: जी,
2: तो विपुल जी ने सीधा इनको फोन लगाया और इनको बोला, और उन्होंने फोन उस टाइम स्पीकर रखा था इसलिए हम सुन पाए ये सब। उन्होंने बताया कि भाई मैं ऐसे अपनी एक असिस्टेंट है उसको वहाँ भेज रहा हूँ, आप उनको गाइडेंस कीजिएगा। तो उन्होंने बताया कि वो तो सब ठीक है सर, लेकिन हमें हमारी लाइफ के बारे में भी कुछ अब सोचना पड़ेगा ना, इसका
0: गाइडेंस वाइडेंस तो होती रहेगी, या तो शादी की उम्र हो गई है
2: जी।
0: मतलब पता चला कि गाइडेंस भी दे दी और हुआ कुछ नहीं
2: तो विपुल जी ने फिर उनको बताया कि पहले आप इतना तो कीजिए, उसके बारे में हम बाद में उनके मदर फादर से बात करके कुछ देखते हैं।
0: बाप रे बाप, मतलब विपुल जी तो सोच रहे थे कि बस जो है आ गया लड्डू हाथ में खा लो अब तो कल्पेश जी
1: वो क्या हुआ कि भाई जब ये विपुल जी बातें ला रहे थे
0: तो
1: ये मुझे फोन पर ये बातें सब बताई, मैंने यार ये क्या हुआ कि जरा मेरे पूरे बम फूट गए यार, मैंने पिस्तौल फोड़ ही दिया कि भाई हमारे लाइफ के बारे में तो कुछ सोचो, बाकी तो सब ये मार्गदर्शन ये तो सब होता रहता है, यहाँ सब मार्गदर्शन लेने के लिए
0: आने का मार्गदर्शन तो है अरे बाप रे बाप आपने हाँ कहीं इसीलिए तो नहीं की थी कल्पेश जी कि भाई मार्गदर्शन तो देना ही है, हो सकता है कि मतलब अपना काम भी हो जाए, ऐसा तो नहीं था?
1: नहीं नहीं ऐसा भी नहीं हुआ था, क्योंकि संदीप जी पहला तो ये तो सब विपुल जी के साथ मेरा हम लोग मित्र में है फ्रेंड्स है, तो ये तो सब ये तो होता था, मजाक की बातें तो होती थी हमारी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये मेरी यहाँ असिस्टेंट है और उनको स्कूल के या ऑर्केस्ट्रा जो भी कोई प्रोग्राम है
2: तो क्या करना चाहिए राजकोट में म्यूजिक के फील्ड में।
1: हाँ तो मैं मुझे इस समय बताया गया था कि उनको स्कूल में जॉब ढूंढनी है, तब मेरे पास एक स्कूल भी आया था कि वहाँ एक लेडीज की जरूरत थी म्यूजिक लेडी की
0: जी, जी, जी, जी।
1: तो उनकी जरूरत थी वहाँ, तो मैंने ये बताया कि भाई देखो ये यहाँ तो कैसा होता है संदीप जी की प्राइवेट स्कूल जो ज्यादा देता नहीं है सैलरी नहीं देती या 5,000 या 10,000 में भी आपको बहुत कम ये स्कूल मिलेगी यहाँ। तो एक स्कूल आया तो वो सिर्फ यही बातें कर रहे थे कि देखो हम 2,500 से ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो हम भी जानते हैं आजकल के 2,500 में तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता।
0: बिल्कुल सही है।
1: तो मैंने उनको ये मतलब हमारी जो व्यास जी है मेरे मित्र उनको मैंने बताया कि देखो ये स्कूल में तो जो नहीं करेगी उनको हमारे एक बार हमारे पास भेजो और उनको मैं बताऊंगा कि आप ऑर्केस्ट्रा में अगर काम करेंगी या म्यूजिक क्लास घर में अब आप शुरू कर देंगे तो स्कूल पे प्राइवेट जॉब है उनसे ज्यादा ये हो सकता है,
2: हो सकता है।
1: तो मैंने ये बताया और बस उन्होंने बताया कि देखो फिर मुझे यहाँ भेजा और मेरी साड़ी भी आई थी, मेरी साली उनके साथ आई थी। तो ये उन्होंने ये बात की कि देखो मुझे म्यूजिक में शास्त्रीय उनका म्यूजिक शास्त्रीय संगीत का इंटरेस्ट उनमें ज्यादा है,
2: क्लासिकल में ज्यादा मुझे मैं रुचि रखती हूँ।
1: तो मुझे लगा कि देखो ये ऑर्केस्ट्रा में तो काम नहीं करेंगी क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में क्लासिकल की जगह बस कम होती है,
0: ऑर्केस्ट्रा में तो थोड़ा धूम धड़ाका चाहिए होता है ना।
2: हाँ वही वही।
1: तो मुझे मुझे ये आ गया था कि भाई चलो उनको शास्त्रीय संगीत के बारे में ही है तो क्लास शुरू करने का ये मुझे आइडिया आया था तब। और बस ये बाद में जब शादी हुई तब एक दो लड़के भी आए थे और थोड़ा क्लास भी शुरू किया था। लेकिन देखो वो क्या है कि हम क्लास भी शुरू करते हैं लेकिन मकान को भी बदलना पड़ता है ना जो।
0: अच्छा घर घर अभी आपका अपना नहीं है, आप किराए से रह रहे हैं मतलब।
2: किराए पे रहते हैं संदीप जी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मकान हमने रखा हुआ था उसमें ये गाते करते हैं सब म्यूजिक का।
0: किराए मकान की कई सारी परेशानियां होती हैं, आप जानते हैं इस बात को। कुल मिलाकर के स्थायी रूप से कोई भी मतलब वो नहीं है ठिकाना नौकरी का। अच्छा अभी कोई अब तो मिल भी गए, शादी भी हो गई और गाइडेंस भी दे दिया, कोई गीत गा रहा है। जी तो हाँ। कोई आ रहा है गीत इस सिचुएशन पर, दो लाइनें अगर गुनगुना सके आप दोनों। कीबोर्ड कल्पेश जी खुद बजा रहे हैं जी।

0: वाह, बहुत खूब, जबरदस्त, क्या बात है। तो ये मतलब आप दोनों का एक दूसरे से वादा भी है, तो कल्पेश जी ने ये भी सोचा होगा ना कि ऑर्केस्ट्रा तो मैं करता हूँ तो ये शास्त्रीय ही कर ले तो ठीक है, क्या जरूरत है दोनों को ऑर्केस्ट्रा करने की, क्यों? अच्छा कल्पेश जी, मतलब जो है कि कोई आपने परीक्षा भी ली थी क्या, कोई गाना वाना सुन के सुना के बताओ तब जा करके मतलब पसंद करेंगे, ऐसा कुछ था या नहीं? बस ठीक है सब।
1: नहीं, ये सब हुआ था कि जब हमारे घर में ये लोग आए थे तब मेरे पापा भी संगीत के ज्यादा

0: ये जो है शौक शौकीन है,
1: अच्छा, वाह।
0: तो वो भी बैठे थे। तो मैं तो ये जब उनकी जो मुलाकात ले रहा था, तो पापा ने बोला कि देखो भैया आप उनको गाना बाना जरा गवाओ। तो पता चले कि ये लड़की कैसा गाना गाती गाती है कि नहीं है। तो फिर मैंने पूछा देखो आप एक गाना मुझे सुनाइए, तब पता चलेगा कि ऑर्केस्ट्रा में आवाज की ज्यादा होती है, साउंड डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि बड़े बड़े साउंड पर गवाया जाता है। यहाँ तो थ्री वे सिस्टम है या फोर वे सिस्टम, इसमें ये लोग गाना गवाते हैं आजकल। जो मैरिज फंक्शन में हो, रिसेप्शन के तौर पे तो ये साउंड चलता है। तो उन्होंने एक गाना सुनाया था, पहला गाना था उनका, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है,
0: वो
1: वाह, वाह,
0: गाना मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, उनका पहला गाना।
1: हाँ,
0: और
1: तो
0: मैंने मैंने मैंने तो समझ लिया था कि आपकी काबिल क्या है।
1: नहीं, वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि आपके कानून ने समझा। अक्षिका जी सुना दीजिए फिर दो
2: जी
1: लाइनें।

0: जिंदगी में कर लिया मुझे धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा।
1: बहुत जबरदस्त जबरदस्त समझा और तक मतलब इसी सिलसिले को
2: आगे बढ़ा रहे हैं आप दोनों, ये बहुत अच्छी बात है और ये कहीं ना कहीं हम सब का भी बहुत फेवरेट गीत है। तो गीत की बात हुई, क्षिका जी क्या आपने भी कभी ख्वाहिश जताई थी कि भाई मैं भी कुछ सुनूं? उसकी जरूरत नहीं पड़ी?
3: नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जब मैं इस गाने के बाद हमने इनको एक मैंने और मेरी सिस्टर ने गरबा सुनाया था
2: अच्छा,
3: उसके साथ वो मतलब गुनगुना रहे थे तो मुझे तभी पता चल गया।
2: अच्छा कि बढ़िया कि तभी मतलब कि ठीक है गाना वाना आता है मतलब आपने समझ लिया। अच्छा क्या बात है। तो मतलब कुल मिलाकर के आप दोनों के परिवार खुश थे, संतुष्ट थे और सहमत थे?
3: जी सर बिल्कुल, मेरा परिवार तो पहले से ही मैं बीच में आपको एक बात बताना भूल गई थी।
2: बताइए बताइए।
3: जब इनको कॉल किया था वो विपुल जी ने, मैंने आपको अभी बताया पहले, तो वो कॉल खत्म होने के बाद विपुल जी ने हमको बता दिया था, मुझे और मेरी सिस्टर को, कि मतलब उन्होंने तो मतलब उनके दिमाग में तो 4-5 साल से ये बात चल रही थी हम दोनों को मतलब
2: 4-5 सालों से मतलब कल्पेश जी गाइडेंस दे रहे थे लेकिन जो है वो गाइडेंस जो है यहाँ पर आकर के सफल हुआ मतलब
3: जी, तो उन्होंने हमको बताया था कि ये

0: अच्छी जगह है और पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, और आप लोग देख लीजिए एक दूसरे को, परिवार को मिलाकर अगर आपको ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाना, मतलब ये बात
1: मतलब उनकी तरफ से तो पूरा कंफर्म ही था सारा कुछ,
0: जी जी
1: वो
0: सर
1: तय आपको करना था, आपकी फैमिली को
0: जी
1: करना था।
0: जी सर
1: तो कल्पेश जी,
2: हाँ जी,
1: कितनों को गाइडेंस दिया आपने अक्षिका मैम से पहले, ये बताइए
2: नहीं,
1: जरा।
2: गाइडेंस देने में तो मैं ऐसा है कि ज्यादा गाइडेंस तो उन्होंने ये अक्षिका जी को दिया है, दूसरे लोगों मेरे पास गाइडेंस सिर्फ ही गाइडेंस में ही आते थे। हाँ,
1: अच्छा, और कुछ नहीं था मतलब।
2: और कुछ नहीं था, और उनको मैंने ज्यादा गाइडेंस दे दिया है, जो दे दिया है वो आजकल हम लोग साथ में हैं। और ये
1: नहीं
2: सब
1: तो एक बात बताइए ना
2: हाँ
1: कि भाई, जो कहते हैं ना एक वो एक दिल में जो धक धक होती है,
2: हाँ जी
1: वो
2: ना,
1: किसी और को भी गाइडेंस देते हुए हुई थी कि भाई यहीं पर ही हुई वो?
2: वो इसलिए क्योंकि हमको एक हमारी जो स्कूल जो है
1: जी
2: उसमें तो एक सिखाया गया था कि भाई मेरे जो गुरु है अजीत सिंह वाघेला करके म्यूजिक
1: क्या बात है, बहुत
2: के,
1: जी।
2: तो उन्होंने बताया था, क्योंकि जब ये सब मुझे संगीत सिखा रहे थे तब हम लोग हमारी एमटी दोसी स्कूल में दो लोग हम साथ में ही थे,
1: जी
2: लेडीज लोगों को और जेंट्स लोगों को साथ में ही सिखाते थे। तो
1: जी जी जी जी
2: ये भी होता था कि भाई हमारे अजीत सर को कभी कभी, क्योंकि उनके उनके डायबिटीज था उनको, तब कभी कभी ये बीमार रहते थे, तो कभी उनको संगीत क्लास में नहीं आते थे पीरियड लेने के लिए,
1: जी
2: वो ज्यादा जो कहते हैं ना रजा पर रहते थे, उनकी उनकी हाजिरी नहीं होती थी। तो मुझे बताया गया था कि जब आप कोई लेडीज को भी म्यूजिक सिखाओ तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम बस यही एक काम करेंगे कि जो
1: क्या
2: आजकल
1: बात है, कुल
2: के
1: मिलाकर
2: हमारे,
1: के कोई गलत भावनाएं मन में नहीं आनी
2: हाँ बस
1: चाहिए।
2: बस बस
1: बहुत
2: वही
1: खूब, बहुत। और कोई जब
2: तो,
1: अपने गुरु को याद करता है ना तो बहुत खुशी होती है, मुझे भी अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और गुरु की शिक्षा को आपने अक्षरशः उसका पालन किया, ये
2: हाँ जी
1: बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत कम लोगों में होता है ऐसा, लेकिन होना
2: हाँ
1: यही चाहिए। और जिन
2: हाँ
1: लोगों के अंदर ये भावना होती है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहते हैं, और वो सब के सब सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि गुरु का आशीर्वाद उन सबके साथ होता है। खैर, तो संघर्ष का दौर शादी के बाद से ही शुरू हो गया था या फिर सब कुछ सही चल रहा था?
0: सर इसमें ऐसा है कि शादी के बाद ही संघर्ष, वैसे बोले तो शादी से पहले ही हो गया था, क्योंकि शादी जब इनको मतलब हमने शादी करनी थी हमको, तो थोड़ा बहुत मतलब फ्रेंड सर्कल से और सबसे मतलब उधारी वो सब करना पड़ा था, तो वो जो हमको है वो चुकाने में शादी के बाद 3 साल लगे थे सर। तो ये संघर्ष की बात है, उस वो 3 साल के बाद हम लोग
2: सर धीरे धीरे
0: धीरे धीरे
2: सर
0: करके हम लोग मतलब प्रोग्रेस में थे अपना भुगतान या कुछ करने के लिए, या थोड़ी बहुत बचत भी बड़ी करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि इनका जो है वो ऑर्केस्ट्रा का काम तो ऐसा है कि जो मानसून के 4 महीने होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है मतलब प्रोग्राम वगैरह,
1: ठीक है।
0: तो सितंबर महीने से शुरू होता है ये भागवत सप्ताह वगैरह और जून महीने तक चलता है, तो इस दरमियान जो भी मतलब अर्निंग होता है हम उसमें से थोड़ी बहुत बचत करते हैं और रूटीन खर्च में थोड़ी बहुत खर्च होती है, तो 4 महीने में जो हमने बचत की होती है वो सब मतलब यूज हो जाती है, फिर सितंबर महीने से हमें जीरो से शुरू करना होता है सर।
1: यानी कुल मिला के संघर्ष तो तभी से पता था कि होगा आगे,
0: होगा
1: लेकिन
2: होगा
1: आप
2: हाँ,
1: दोनों
2: लेकिन
1: ने एक दूसरे का साथ निभाने का जो वादा किया है
0: जी सर
1: उसके आगे वो संघर्ष जो है वो फीका है।
0: पर
1: तो
0: भी
1: ये
0: चला
1: जो बचत
0: गया
1: आप करके 4 महीने तो चला लेते थे, लेकिन इस बार तो पूरा साल ही ऐसा निकल गया, तो
0: जी।
1: कैसे फिर काम चलाया आप लोगों ने, जरा अगर आप लोग बताना ठीक समझें तो बताइए हमारे सुनने वालों को।
0: सर ऐसा है कि अभी यहाँ पे गुजरात में कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, ब्लाइंड कपल्स और ब्लाइंड फ्रेंड्स, तो जिनको हमारी परिस्थिति का पता था उन्होंने जिनसे जितना हो सका उतना हमको हेल्प किया है अपनी ओर से, तो जैसे तैसे करके चल रहा है सर।
2: फिर यहाँ तो ऐसा है संदीप जी कि ये तो शहर है राजकोट, तो उसमें क्या होता है कि जो किराए का मकान होता है तो वहाँ मकान मालिक जो होते हैं वो हम थोड़ा कम भी किराया दे या तो वो ये लोग ये सोचते हैं कि आप खाना बाना कम खाइए, मतलब हमारा किराया जो है वो पहले दे दीजिए।
1: अच्छा, यानी किराएदारों का तो खैर वो मकान मालिक का थोड़ा सा ऐसा ही रहता है
0: और होता है सर। और एक प्रॉब्लम वो हमने ये मतलब एक्सपीरियंस किया सर कि ब्लाइंड होने की वजह से जल्दी से कोई
2: मकान नहीं मिलता,
1: ये बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर विषय है ये श्रोताओं। आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित हैं, पति पत्नी हैं, तो उनका क्या कसूर है, लेकिन लोग इस आधार पर उनको मतलब मकान देने तक से कतराते हैं। ये थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है,
0: क्योंकि तो हम ये सोचते हैं संदीप जी कि अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो इसका तो हम सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका क्या किया जा सकता?
1: इसका क्या किया जा सकता? वो लोगों ने एक दुर्भावना मन में मतलब ऐसी उनके घर कर गई है।
0: जी जी,
1: ये बहुत ही गलत है। लेकिन ये
2: और संदीप जी दूसरा तो ये है कि हम जब कोई भी किराए का मकान लेते हैं तब हमको ये कहना पड़ता है कि देखो आप उन लोगों को एक ये होती है बात के ये लोग साफ सफाई रखेंगे या कोई ये छोड़ देंगे,
0: कोई गिर गए या दुर्घटना हो गई तो ये हम पर आ जाएगा सब, या ऐसे दो तीन रीजंस हो सकते।
1: मतलब वही मतलब जो कहते हैं ना कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए मैं हमेशा से यही बात मानता हूँ, कहता हूँ कि मतलब हमारे अपने समाज को जागरूक करने से ज्यादा जरूरी है कि हम ये मुख्य धारा का जो समाज है ना उसको जागरूक करें।
0: जी बिल्कुल।
2: फिर उनको ये भी बताना पड़ता है मकान मालिक को, देखो आप हमें एक बार मकान दे दीजिए, 2 महीने या 3 महीने के बाद हम फिर अगर मकान को हमें बदलना है तो ये तो ये जोखिम हमें उठाना है, हम ब्लाइंड लोग हैं तो हमें
0: चांस दीजिए हमको मतलब।
2: तो उनको डेमो बताना पड़ता है कि ये लोग साफ रखते हैं।
1: बताइए, बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है अक्षिका जी।
0: जी सर।
1: कि खासकर महिलाएं और उनके फैमिली के लोग इस बात की चिंता करते हैं, समझते हैं कि भाई शादी के बाद लड़की का जीवन जो है वो कैसा रहेगा, उसको तकलीफ तो नहीं होगी। आप जब ये बता रही हैं कि संघर्ष कहीं ना कहीं शुरू से ही था।
0: जी सर।
1: फिर भी आपकी फैमिली को या आपको कभी लगा नहीं कि यार आगे चल के कैसे काम चलेगा, कैसे होगा, ये बात कभी मन में नहीं आई?
0: वो सर इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है।
1: हाँ बताइए बताइए।
0: शादी से पहले जब हमारा मतलब शादी फाइनल हुई तो मेरी फैमिली वाले गए थे इनके घर पे देखने के लिए।
1: जी।
0: तो उस वक्त मेरे क्योंकि पहले मुझे मैं सच कबूल करूं तो मुझे पहले खाना बनाना या कुछ नहीं आता था शादी से पहले।
1: जी जी जी जी।
0: तो मेरे फादर ने उनका मतलब स्वभाव थोड़ा स्ट्रिक्ट है।
1: जी।
0: तो उन्होंने जब वहाँ देखने के लिए गए थे तो उनको बताया था सबको कि मेरी बेटी है वो अर्निंग करने में आपके बेटे को जरूर हेल्प करेगी लेकिन वो खाना कभी नहीं बनाएगी।
1: अच्छा।
0: जी ऐसा बोल दिया था मेरे फादर ने।
1: ओके।
0: और तो ये मेरे मतलब मेरी देवरानी है तो उन्होंने कहा था कि भाई ये रसोई नहीं आती इसको तो ये क्या करेंगे ये लोग मतलब। तब ये जो साहब हैं वो खड़े हो गए कि उनको नहीं आती वो सीख लेगी कोई बात नहीं जिंदगी हमें निकालनी है।
1: बिल्कुल सही है।
0: तो वहां से मेरी मदर और सभी को मतलब ये विश्वास हो गया था कि कुछ भी हो जाए ये इनको भूखी नहीं रखेंगे या दुखी नहीं रखेंगे।
1: ये बात सुनकर के मतलब आपके पिताजी भी प्रभावित हुए।
0: जी।
1: जब ये बात ठीक है, कल्पेश जी को तो गाइडेंस तो देनी थी चाहे चाहे गाने की दो चाहे खाने की दो
2: नहीं वो क्या है संदीप जी के मारे मेरे मित्र है विपुल व्यास जो उन्होंने उनका जो गुरु है वो तो उनका और उनकी पत्नी जी है मेरी भाभी
1: जी
2: तो उनका भी मुझे एक सपोर्ट था कि देखो अक्षिका जी को खाना बना नहीं आएंगे उनको खाना नहीं आता है तो हम लोग इसमें हेल्प करेंगे इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है।
1: जी।
2: तब मुझे ये एक प्रकार का एक हिम्मत मिला था कि चलो ये हमारे भाई साहब है, वो मुझे लाइफ में पूरा सपोर्ट करेंगे, करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो संदीप जी, ये खाना उनको आता है या ना आए, लेकिन म्यूजिक

0: तबला बजाना आता है, तो लेडीज लोग जब तबला बजाती है तो उनके हाथ तो वैसे ही कोमल होते हैं
1: जी,
0: तो तबला भी अच्छे अच्छे तरीके से बजता है।
1: क्या बात।
0: लेकिन हाँ, ये जब तबला बजाती है तो लगता है कि नहीं, ये कोई मर्दाना हाथ पड़ा है तबले पर।
1: वाह, ये जब तबला बजाती है तो आप बज जाते हैं फिर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप कीबोर्ड बजाते हैं, अक्षिका जी तबला बजाती हैं, और आप दोनों गा भी लेते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी तो छोटी मोटी आपके घर में ही हो गई।
0: हम हमारे घर पे तो करते हैं, लेकिन
1: मकान मालिक बर्तन बजा देते हैं तो काम पूरा हो गया। सही है।
0: तो लेकिन हमारे
1: अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी अक्षिका जी गुजराती गरबे की।
2: जी सर,
1: गुजराती परिवार है और जो है अच्छा माहौल है
2: जी,
1: तो
2: सर
1: थोड़ा सा गरबे की भी झलक हो जाए हमारे सुनने वालों के लिए।
2: जी बिल्कुल सर
1: जी।

ಚುಮ್ಮಿರಿ ರೇ ಮಾಣಿ ಚುಮ್ಮಿರಿ ರೇ.

0: वाह जबरदस्त,
1: क्या बात है, पूरा माहौल गरबामय हो गया
2: यहाँ पर। थैंक यू
1: जी। तो श्रोताओं आप सब समझ रहे होंगे कि कार्यक्रम बहुत मस्ती से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आप सबने भी यहाँ तक इस कार्यक्रम को सुना है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप सबका प्यार है इस कार्यक्रम के प्रति। लेकिन मैं बताऊं आपको श्रोताओं कि जितना आसान जीवन हम समझते हैं उतना आसान है नहीं। अभी इन दिनों पिछले कुछ महीनों से जिस संघर्ष के साथ इन दोनों का जीवन चल रहा है, वो संघर्ष कार्यक्रम में मतलब बता पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अक्षिका जी की प्राइवेट जॉब भी हुआ करती थी, वो जॉब भी चली गई, और अब बहुत ज्यादा मुश्किलें इस परिवार के ऊपर हैं। फिर भी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान से ये परिवार आगे बढ़ रहा है। अक्षिका जी, ये जॉब वाली कहानी क्या है, जरा बताएं हमारे श्रोताओं।
2: जी सर, जॉब में ऐसा है कि जो मेरी सिस्टर है वो एक स्कूल में जॉब करती थी, नचिकेता स्कूलिंग सिस्टम करके, जो कि यहाँ पे एक कॉमेडी आर्टिस्ट है हमारे गुजरात में, स्नेहराम दवे करके, उनकी खुद की स्कूल है ये। तो मेरी बहन इसमें जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे जब म्यूजिक के लिए वैकेंसी हुई म्यूजिक टीचर की, तो उसने मैं उनको बात की साईराम जी को कि मेरी सिस्टर है ऐसे म्यूजिक के लिए, मतलब सब कुछ बताया मेरे बारे में उसने
1: जी।
2: तो मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरी जॉब लग गई वहाँ पे
1: जी।
2: वो उसमें मैं इसको मतलब आभारी हूँ उसकी, मेरी सिस्टर की वजह से मेरी ये छोटी सी जॉब हो गई
1: जी।
2: लेकिन बच्चे नहीं आ रहे और फीस भी नहीं आ रही, तो कुछ वेतन भी नहीं आ रहा है वहाँ पे।
1: कुछ ऐसा आश्वासन है अक्षिका जी कि जब बच्चे आ जाएंगे, स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो आपको वापस रख लिया जाएगा, या उसकी भी कोई संभावना नहीं है?
2: नहीं सर, ऐसा तो है, उन्होंने बताया कि हम किसी को भी मतलब नौकरी अभी छोड़ेंगे नहीं, स्कूल शुरू होगा तब देखा जाएगा, ऐसा बोला।
1: अच्छा अक्षिका जी, आपने शुरू में जिक्र किया था कि बहरीन में आपने अध्ययन किया है।
2: जी सर।
1: तो वहाँ पे विशेष विद्यालय में आपने अध्ययन किया?
2: जी, ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पे।
1: वहाँ के विद्यालयों में, और आपने गुजरात में विद्यालय देखे होंगे, हो सकता है गुजरात के बाहर तो आपका जाना नहीं हुआ होगा इंडिया में।
2: नहीं,
1: लेकिन बहरीन में और गुजरात में आप क्या परिवर्तन आपने देखा, वहाँ पे स्थिति क्या थी और यहाँ क्या है, थोड़ा सा ये भी श्रोताओं को सुनना जरूरी है।
2: जी सर बिल्कुल। तो वहाँ पे

0: ऐसा है सर कि यहाँ ब्रेल की शुरुआत जब शुरू से की जाती है सिखाने की, वहां पे ब्रेलर पर की जाती है, सिखाया जाता है
1: अच्छा,
0: सीधे।
1: वहां पे ये जो स्लेट वगैरह सिस्टम है, 2 लाइन, 4 लाइन या 27 लाइन, ये सब नहीं है वहां पे?
0: कुछ भी देखने को आपको बहुत ही कम मिलता है वहां पे।
1: अच्छा अच्छा तो बच्चा
0: सीधा
1: मतलब
0: ब्रेलर
1: शुरू
0: से
1: से
0: ही
1: ही
0: शुरू है।
1: ब्रेलर, जैसे पहली क्लास के बच्चे को हमारे यहाँ कीबोर्ड वगैरह सिखाया जाता है,
0: जी
1: वहां पे कुछ नहीं ऐसा?
0: नहीं, बस ब्रेलर से ही सिखाया जाता है सीधे।
1: अच्छा।
0: जी,
1: जी, फिर इसके
0: और
1: अलावा
0: फिर उसके अलावा तो मतलब फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं
1: सुविधाएं?
0: यहाँ।
1: हाँ, उसी मामले में हम पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहां के विद्यालयों में आपने सुविधाएं ज्यादा देखी
0: जी,
1: या ऐसा नहीं है?
0: बहुत सुविधाएं तो बहुत मिली वहां पर मुझे। सबसे पहले तो स्कूल बस भी आती थी लेने और छोड़ने के लिए, स्कूल से घर तक और घर से स्कूल
1: मतलब
0: तक।
1: हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं थी?
0: नहीं, हॉस्टल में जरूरत नहीं थी, और जरूरत हुई थी एक बार, लेकिन फिर भी मैं वहां पे रह नहीं सकती थी, क्योंकि उनका जो खाना होता है सर वो तो नॉनवेज होता है, तो ये हॉस्टल में मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए। वैसे मेरे फैमिली भी वहां पे थी, तो मैं मुझे जरूरत नहीं पड़ी हॉस्टल में रहने की।
1: अच्छा, लेकिन आप डे स्कॉलर थे तो आपके लिए बस आती थी?
0: जी, सभी के लिए, मतलब जो बाहर रहते थे उनके लिए बस आती थी, और क्लास में एसी था सर, उसके बाद बस में भी एसी था, और घर पहुंचे तो घर में भी एसी था।
1: क्या बात है, वाह
0: ये
1: वाह वाह वाह
0: सुविधा का लाभ मिला था मुझे।
1: वाह, एसी का पूरा माहौल था मतलब।
2: मतलब मुझे एसी लेना पड़ेगा अभी।
1: ये इशारा समझ लो कल्पेश जी, आप मतलब देहरीन और गुजरात में अंतर देख लो आप तो कुल मिलाकर के ये है कि मतलब एक तरह से माहौल, मतलब जो रहा वहां का, आपको वहां पर एडजस्ट होने में दिक्कत नहीं आई?
0: दिक्कत आई थी सर, क्योंकि पहले तो ये लैंग्वेज ही, सबसे पहले तो मुझे वो स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि एज एन इंडियन वो किसी को नहीं, मतलब वहाँ पे जो वहाँ के अरब कंट्रीज के जो होते हैं उनको ही एडमिशन देते थे, और मुझे एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो बोहरा समाज की थी, तो उनकी वहाँ पे पहचान थी, तो उनकी रिक्वेस्ट से मुझे एडमिशन मिला था वहाँ पे। और अरबी लैंग्वेज सीखने में भी मुझे 6 साल लग गए थे
1: अरे
0: सर।
1: बाप रे बाप। अच्छा,
0: लेकिन जब आई तब इतनी अच्छी आ गई कि ये मैं नहीं बोलती, लेकिन वहां पे रेडियो स्टेशन पे जब मैं पार्टिसिपेट करती थी कॉलिंग, लाइव कॉलिंग प्रोग्राम, तो वो लोग बताते थे कि आपकी बोलने से ऐसे पता नहीं चलता कि आप अरेबिक नहीं हो, अरेबियन नहीं हो।
1: अच्छा, आप बोल के बताइए जरा कि रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रेडियो मधुबन।
1: हो गया, सुनते रहो
0: जी
1: मुस्कुराते रहो, भी आ गया।
0: नहीं, वो तो नहीं आया क्योंकि ऐसा है
1: देखो,
0: कि
1: हम भी समझ गए यार भी।
0: बीस साल हो गए छोड़े हुए, तो फिर बहुत कुछ भूल चुकी
1: ये
0: हूँ।
1: तो है, ये तो है। अच्छा, अरबी गीत तो आते होंगे आपको, संगीत, क्योंकि
0: हाँ
1: आपने कहा शुरू से आपको था, तो
0: जी
1: हो जाए फिर
0: जी
1: 2 लाइनें किसी अरबी गीत की भी।
0: जी बिल्कुल सही।

0: वाह बहुत जबरदस्त। तो वहाँ पे आपके जो दोस्त वगैरह बने थे उनसे संपर्क में हैं आप आज भी या नहीं, आप किसी से कोई संपर्क नहीं है?
1: अब तो बिल्कुल ही संपर्क छूट गया वहाँ से तो।
2: कभी मतलब क्या परिस्थितियों की वजह से नहीं हो पाया या फिर मतलब वहाँ के लोगों में इस तरह की भावना नहीं थी, क्या वजह है?
1: नहीं नहीं परिस्थितियों की वजह से भी नहीं और वो कोई भी रीजन नहीं है, लेकिन पता नहीं अब पहले थोड़ा बहुत संपर्क था लेकिन वहाँ पे अभी बहुत कुछ चेंजेस हो गए नंबर्स में और तो इसकी वजह से मुझे कुछ मिल नहीं पाया संपर्क।
2: वाकई में बड़ा मतलब परिस्थितियां बड़ी ही आप दोनों की ही जो है वो अजीब सी रही हैं और वो संघर्ष का दौर आज भी जारी है। कार्यक्रम के अब बिल्कुल अंतिम हिस्से में हैं हम लोग अक्षिका जी।
1: जी सर।
2: और आपने जो एक जिक्र किया था मैं चाहूंगा थोड़ा सा 2 मिनट उस पर भी चर्चा हो जाए ताकि हो सकता है आज का ये कार्यक्रम सुन करके, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हर किसी के मतलब का कुछ ना कुछ हो हमारे इस हमराही कार्यक्रम में इस गुलदस्ते में। तो आपने बताया एक फैमिली के बारे में जो फैमिली विवाह कार्य में लगी हुई है, दृष्टि बाधितों का विवाह वो करवाते हैं।
1: जी जी सर।
2: तो क्या प्रक्रिया है, कितना माहौल मतलब कैसा रहता है और किस तरह से वहाँ पे जीवन साथी को ढूंढने में मदद की जाती है, थोड़ा सा ये बताएं।
1: जी जी सर। जो सुरेंद्र नगर है वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज, CU SHA प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज, और वहाँ पे जो दंपति है ब्लाइंड मुक्ताबेन डगली और पंकज जी डगली, तो ये दोनों जो है वो पूरा इंस्टीट्यूट चलाते हैं और बच्चियों को शुरू से लेकर मतलब बचपन से लेकर पढ़ाई कराते हैं, कॉलेज जो भी मतलब जहाँ तक उसको पढ़ना है वहाँ तक पढ़ाते हैं और होम साइंस भी सिखाते हैं, म्यूजिक कंप्यूटर ब्यूटी पार्लर ऐसी बहुत सारी मतलब चीजें सिखा कर उसको ये काबिल बनाते हैं कि वो समाज में कुछ अपना अपने बल पर कर सके। योग्य बनाकर उसकी शादी भी की जाती है और शादी भी ये लोग जो लड़के होते हैं उनको पूरी तरह जांच करके देख करके और दोनों परिवारों को मिला करके वो ग्रुप मैरिज करवाते हैं और उसमें भी जो चीजें होती हैं वो सुई से लेकर अलमारी तक सभी चीजें वो देते हैं।
2: क्या बात है, वाह, मतलब गृहस्थी बसाने में पूरा वो अपना सहयोग देते हैं। अच्छा अक्षिका जी आपने आजकल सीख लिया खाना वाना बनाना कि नहीं?
1: नहीं नहीं सर मैंने सीख लिया था, जो ये विपुल जी हैं उनकी वाइफ है।
2: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस ये सीखने में, थोड़े टाइम में उनके एक आध हफ्ता रही थी और उन्होंने मुझे जितना जरूरी था वो मैंने सीख लिया है। तो दाल चावल सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, एक चपाती में वो सब थोड़ी तकलीफ होती है अभी भी।
2: नहीं तो फिर आ जाए हमारी टीम खमन ढोकला खाने फिर आज।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: वो बना लेते हैं आप, मतलब
1: थोड़ा बहुत बना लेती
3: है। ये आलू पोवा बहुत अच्छा बनाती है।
2: अच्छा अच्छा चलो पोहे खाने फिर रेडियो मधुबन की टीम आ रही है गुजरात में।
1: जी बिल्कुल स्वागत।
2: फिर आपने कहा ही नहीं कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में।
1: वो तो अमिताभ जी जैसे बड़े लोग ने बोल दिया तो हमको बोलने की जरूरत नहीं
2: है। ये भी ठीक है। तो अब बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूंगा कि आप दोनों आपकी समाज से हमारे सुनने वालों से अगर कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ संदेश है या आप चाहें कि लोग आपसे जुड़ें ऑर्केस्ट्रा में इनवाइट करें तो कल्पेश जी बताएं जरा अपने बारे में। आप अपना नंबर भी चाहें तो दे सकते हैं ताकि आपको हमारे देश भर के श्रोता जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को जो इतना प्यार देते हैं अगर किसी कार्यक्रम में आपको इनवाइट करना चाहें तो।
3: हमें ऑर्केस्ट्रा में कीबोर्ड बजाता हूं तो आप हमें भी इनवाइट कर सकते हैं या हम आपको भी इनवाइट कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9925371970, ये मेरा मोबाइल नंबर है
2: 9925371970। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ श्रोताओं, आप चाहें तो इनसे बात करके इनको मदद भी कर सकते हैं 9925371970।
3: बस वही
2: संदेश आपका कल्पेश जी, आप कुछ अपनी तरफ से अपने दिल की बात जो शायद हम नहीं पूछ पाए और आप कहना चाह रहे हो इस कार्यक्रम के माध्यम से।
3: हाँ तो ये बात मुझे एक कहना है कि देखो हम लोग ने हमारी एक बात हमने शुरू से यह बात रखी कि भाई हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, तो किराए के मकान में रहते हैं तो आजकल ये मोदी जी की एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना
2: जी,
3: मैंने वहाँ दो बार फॉर्म फिलअप किया है
2: जी।
3: तो पिछले साल वो ड्रॉ हो रहा है तो उसमें भी नहीं हो रहा है, हो पाया, लेकिन अब भगवान के ऊपर हमने ये छोड़ दिया है कि बस अगर लगता है तो ये एक मकान मिल जाए तो इसमें म्यूजिक क्लास शुरू करके भी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि किराए के मकान में संदीप जी हमने तो बताया
2: कि आपकी बात कल्पेश जी। ऐसे में मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे उन जागरूक साथियों से जो गुजरात में है कि आप लोग जो जानते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो राजकोट शहर के अगर कोई साथी हो जो एक्टिव हो और किसी भी संगठन के माध्यम से अगर इस परिवार की मदद आप लोग करवा पाए तो मुझे लगता है आज के इस कार्यक्रम को हम सफल कह सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी आप सबकी, कोई भी व्यक्ति जो राजकोट में हो वो इस बारे में इनकी मदद करे, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से कई बार उदासीनता हो जाती है और अधिकारी कई बार सुनते नहीं है, ये दिक्कतें आती है। लेकिन जब दो चार लोग पढ़े लिखे लोग जब जाते हैं उनके सामने तो फिर अधिकारियों की बोलती बंद होने में भी देर नहीं लगती है, इसीलिए आप सबकी मदद की आवश्यकता रहेगी जी। अक्षिका जी आप भी अपना संदेश दे दें हमारे सुनने वालों को।
1: बस यही के रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से जो ये प्रोग्राम हो रहा है हमारा ही, तो इसमें मैं ये चाहूंगी कि हम ब्लाइंड लोग तो सुनते ही है ये प्रोग्राम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दृष्टिवान लोगों तक ये प्रोग्राम पहुँचे और हमारी जो समस्याएं होती है वो उनको समझ सके, जागरूकता आए।
2: बहुत अच्छा लगा आप दोनों को आज इस कार्यक्रम में सुन करके, और आपके संगीत को भी सुना, आपकी बातों को भी सुना, आपकी परेशानियों को भी सुना और आपकी खट्टी मीठी अच्छी यादों को भी हमने जाना। तो
3: हमें भी जी, हमें भी अच्छा लगा कि भाई बस ये रेडियो मधुबन के अंदर
1: माध्यम से हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला
2: जी। जी जी, निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद में आप लोगों के आने वाले जीवन में परेशानियां कम हो जाएं और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आती रहें। तो श्रोताओं मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ, तब तक रेडियो मधुबन को ट्यून इन करके रखें और अपनी प्रतिक्रियाएं सुझाव शिकायतें देने के लिए डायल करें 94-14-15-14-15। और बस मैं भी जाता हूं, खमन ढोकला खा के आता हूं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
5: शांति नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग उपस्थित हैं। और हमारे साथ आज स्पेशल मेहमान मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निखिल जी हमारे साथ हैं, निखिल कोठारे। निखिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप मुंबई से हैं और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है रन कर रहे हैं काफी टाइम से, और एक लंबा समय हुआ है, तो मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी कैसे रन होता है और उसमें किस तरह की मशक्कत करनी पड़ती है और अपॉर्चुनिटीज क्या है, और इसमें बहुत सारे क्रिएटिव करने के ऑप्शंस मिलते हैं, क्रिएटिव आइडियाज को फॉलो अप कर सकते हैं, लोगों के बीच में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यूनिक बिजनेस है मेरे ख्याल से, जो भी लोग आते हैं थोड़े क्रिएटिव माइंड वाले इसमें आते हैं, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या क्या क्रिएटिविटी अपने फील्ड में किया है थोड़ी देर में। थैंक यू निखिल। यस, इसके बाद हमारे साथ हैं विदुरा कोटारे। विदुरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप भी इसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में हैं और आप दोनों मिलके इसको रन कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक जिज्ञासा भी रहती है कि क्या एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी भी होती है क्या, बहुत सारे लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है चीजें ऐसे समझते हैं, लेकिन ये स्पेशली कुछ चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं अलग से, इसमें वो चीजें आज हम लोग आपसे जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में।
6: थैंक यू रमेश जी, थैंक यू।
5: यस यस, और इसके साथ में हमारे साथ आनंद जी आज एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं, वेलकम सॉन्ग, तो आनंद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तो आइए स्वागत में मैं चाहूंगा आनंद जी हमारे विदुला जी एंड निखिल जी अर्चना जी के लिए बहुत ही प्यारा से गीत सुनाइए, उसके बाद हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करेंगे।
7: मैं आपको सुनाना चाहूंगा आज आनंद फिल्म का जिंदगी कैसी है पहली हाय।
5: बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी कैसी है पहली।
7: मैंने गायन सीखा नहीं है तो थोड़ा सा मुझे समझ के चलिए।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
7: थैंक यू। जिंदगी कैसी है पहली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी तो हंस

कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए

0: कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। धन्यवाद।
1: चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आनंद जी, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छी तरह से आपने गुनगुनाया उसे और कहीं भी कोई गलती नहीं किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कुछ विशेष मित्र जुड़े हैं। सुभाष जी ने याद किया है निखिल सर को, विजला जी को, और जय रमेश हैं अर्चना दीदी को, और सिंगर आनंद जी को भी याद भेजा है और बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें। और एक नए टॉपिक पे बात करने वाले, इसलिए उनकी जिज्ञासा बड़ी है और वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। मीनल जी ने भी याद भेजा है, आप सभी को ओम शांति लिख के भेजा है, और सलमान जी ने भी लिख के भेजा है, याद कर रहे हैं हमें भी, और नीता जी ने भी याद भेजा है ओम शांति। और आनंद जी आपके लिए वेरी नाइस, आनंद जी करके लिख के भेजा है, नाइस सिंगिंग। सुभाष जी आपके लिए आनंद जी सुन, सुभाष जी ने भी भेजा है, आनंद जी बहुत ही अच्छा आपने आनंद फिल्म का गाना सुनाया कर। मिनल जी ने वेरी वेल गाना आपने बहुत अच्छा गाया करके भेजा है आपके लिए, थैंक यू सो मच आप सभी को। और आइए मैं निखिल सर से आपको जोड़ना चाहूंगा। निखिल जी, जैसे कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कि वो एक ब्रांड होती है एडवर्टाइजमेंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट होना शुरू हो जाता है वो एक ब्रांडिंग करना शुरू कर देते, तो एक अच्छे ब्रांड और प्रोडक्ट को सेल करने का जो सिस्टम है या तरीका क्या है, मार्केट में अच्छी तरह से वो अपना जो है काम कर जाए, इफेक्टिवली वो प्रोडक्ट सेल हो जाए, सिंपली बातों में अगर हम लोग कहें तो, इसके बारे में आपके विचार हम सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका निखिल।
2: थैंक यू रमेश जी। सो एडवर्टाइजिंग जो सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट है, लेकिन इफ वी हैव टू जस्ट टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग तो उसमें एक कंपनी ले लीजिए फॉर एग्जांपल। तो
1: जी जी
2: रमेश जी, आपके घर पे कौन सा डिटर्जेंट आता है?
1: हाँ जी,
2: आपके घर पे कौन सा डिटर्जेंट आता है? विच डिटर्जेंट डू यू यूज?
1: मैं तो यहाँ वो पियर्स देते हैं हम लोगों को पियर्स साबुन देते हैं।
2: राइट, सो पियर्स साबुन आप यूज करते हैं, दैट्स द सोप दैट यू यूज। सो अगर हम बोलेंगे घर पे अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप बोलते हैं कि सोप भेजिए या फिर आप बोलते हैं पेयर्स भेजिए?
1: हाँ वो बात सही है, हम नाम बोल देते हैं
2: नाम बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट ब्रांडिंग इज, कि वो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो ब्रांड का नाम लेते हैं ना कि वो प्रोडक्ट। तो ये जो जर्नी है वो एक साथ मतलब एक घंटे में या फिर एक दिन में या एक साल में नहीं होती, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, उसको बनाने में टाइम लगता है और पैसा भी लगता है।
1: बिल्कुल
2: राइट right? तो जब भी हम जर्नी चालू करते हैं एडवर्टाइजिंग जो बात करते हैं तो उसकी जर्नी बहुत लंबी होती है, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि हमारा बायर कौन है, कौन हमारा प्रोडक्ट लेने वाला है, उसको यूज क्यों करने वाला है, ना कि यूज करने वाला है कि नहीं वो तो एक बात हो गई, लेकिन क्यों कर रहा है वो और एक बात हो जाती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क कि व्हाई आर प्रोडक्ट ओनली। आपका जैसे चैनल है एफएम का, तो व्हाई डू पीपल लिसन टू दैट पर्टिकुलर चैनल एंड नॉट कोई और, क्यों नहीं? सो ये जो क्यों है क्वेश्चन, वहीं से हमारे एडवर्टाइजिंग का सारा क्वेश्चंस जो आंसर्स मिलते हैं वो वहीं से मिलते हैं। सो आई थिंक एडवर्टाइजिंग का जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, तो पहले पूछना चाहिए कि व्हाई इज एडवर्टाइजिंग, उसको क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाई इज एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो आपको अगर यू नो जस्ट टू एक्सपैंड कि कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं और जो बोलते हैं कि हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, तो बोले सो क्वेश्चन ये आता है कि आपने ब्रांड कब लॉन्च किया, हाउ मेनी पीपल नो योर ब्रांड। आपने कंपनी लॉन्च की ना कि ब्रांड लॉन्च किया, तो वो एक फर्क होता है जो समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। आई मीन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो कि यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी नॉट अ ब्रांड। ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग एक मुख्य किरदार प्ले करता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फैक्टर इन क्रिएटिंग अ ब्रांड, और एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए एडवर्टाइजिंग की बहुत जरूरत होती है, ना कि मार्केटिंग या फिर सेल्स की। सो वो फर्क जानना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ब्रांडिंग के लिए कुछ टाइम जरूर लगता है, ऑन द स्पॉट वो चीजें नहीं होती है, मार्केट में जाएगा फिर बहुत लोगों के पास वो चीजें घूमती रहेगी, तब जाके वो चीजें और उसके साथ में लोग खरीदते जाएंगे और उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें बेनिफिट मिलेगा और फिर वो चीजें ब्रांडिंग की तरफ आगे बढ़े। लेकिन साइमल्टेनियसली मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट साथ साथ में चलेगा तो कुछ समय के बाद वो ब्रांडिंग बन जाती है एक अच्छा। तो निखिल बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने बताया। और अब आइए विजला जी से भी एक सवाल कर लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग ब्रांडिंग की बात कर रहे थे, उसके साथ में एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग यानी बिजनेस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है ऐसा मुझे लगता है कि कभी कभी दोनों साइमल्टेनियसली भी चलते हैं, लेकिन समय के साथ साथ आज ऐसा लग रहा है कि बिजनेस करना है तो एडवर्टाइजमेंट करना ही है ऐसा लगता है आज। तो मैं चाहूंगा कि वो ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा अपने विचार जरूर शेयर।
3: यस, थैंक यू रमेश जी। बेसिकली एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस है एक ओवरऑल, अगर हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था 2002 में, सो हमें अभी 20 साल हुए हैं ये बिजनेस में। तो वो टाइम पे जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी, वहां पे ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग ज्यादा हुआ करता था, जैसे हम न्यूज़पेपर में एड्स देखते थे, टीवी पे एड्स देखते थे, या होर्डिंग्स कैंपेन्स बनते हैं, वो टाइप का जो टारगेट ऑडियंस, वो जो कस्टमर था वो टाइम पे 20 साल पहले जो कस्टमर हुआ करता था और अभी का जो कस्टमर है उसमें बहुत फर्क है। पहले अगर आपको एक एग्जांपल दे तो ब्रांड के साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्ट लोग करते थे। जब भी हम सुनते थे हमारा बजाज, वो जो ट्यून अभी भी आपको किसी को भी याद रहेगी कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, राइट? सो एक इमोशनल कनेक्ट हुआ करता था, वो प्रोडक्ट देख के लोग जाके बाय कर। अभी जो एडवर्टाइजिंग जैसे ट्रेंडिंग चल रहा है, इट इज मोर टुवर्ड्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म आई वुड से ऑफ एडवर्टाइजिंग। What I want, I get that in front of me on my phone in a second. तो अभी वो target audience, वो customer ही change हो गया है, उसे सब कुछ अभी तुरंत चाहिए। एक चीज मैंने Google पे type की, चश्मा, तो मुझे हजार एड्स दिखाता है गूगल की ये टाइप का चश्मा है, ये टाइप के फ्रेम्स अवेलेबल है, मैं ऑनलाइन जाके फ्रेम अपने आप को देख सकती हूँ। सो इट्स आई वुड से इट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट ओवर द इयर्स, एंड ऑब्वियसली उसके साथ ये सारी जैसे एडवर्टाइजिंग इवॉल्व हुआ है उसके साथ ऑब्वियसली सारे मीडियम्स भी इवॉल्व हुए हैं। ट्रेडिशनल मीडियम्स ऑब्वियसली आर देयर, वो भी उतने ही इफेक्टिव है आज भी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एंटायर चेंज दैट हैज हैपेंड, वी ऑल हैव टू इवॉल्व टू दिस न्यू टाइम ऑफ एडवर्टाइजिंग। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू एवरी सिंगल डे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। विद्रा जी, अच्छी तरह से आपने बताया कैसे बिजनेस और जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है दोनों एक साथ एक दूसरे के पूरक हैं। पहले के जमाने में और अभी में काफी अंतर आ गया है। आप गूगल में टाइप करके बहुत सारी वैरायटीज जो है उसके देख सकते हैं, और पेन के भी देख सकते हैं, फ्रेम्स हो या फिर जो भी चीजें आपको देखना है, यू गेट मल्टीपल, मना बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक और बात पूछने में आता है कि भाई इतने सारे ब्रांड्स हैं और इतने सारे कंपनीज हैं, इतने सारे लोग हैं, फिर भी कुछ लोगों को कुछ पसंद आता है, तो वो कैसे हम लोग उसके लिए क्या होता है, क्या आप बताना चाहेंगे? तो पर्टिकुलर जैसे कि नाम बता के वो चीजें लेते हैं, जैसे निखिल जी ने उसको बताया, तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे कंपटीशन अभी हैं, उस बीच में हमारा एडवर्टाइजमेंट काम करेगा या प्रोडक्ट क्वालिटी इम्पोर्टेंट काम करेगा?
3: आई थिंक बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज प्रोडक्ट किसके वजह से चलता है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो प्रोडक्ट चलना ही है। बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक जो दिखता है वो बिकता है, तो अगर वो प्रोडक्ट को अच्छे कपड़े नहीं पहनाए तो वो प्रोडक्ट अपील नहीं करेगा, और अगर मैंने वो सही मीडियम के सामने वो प्रोडक्ट को राइट टारगेट ऑडियंस के सामने राइट टाइम पे अगर नहीं दिखाया तो अगेन वो प्रोडक्ट फेल जाएगा। सो ऑल दिस आई वुड से गो हैंड इन हैंड। ऐसा कुछ एक फॉर्मूला नहीं है कि इसके लिए, जो अभी निखिल जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसके पीछे बहुत सोच होती है, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी जब भी हम लोग बनाते हैं तो ये सारी चीजें हमको, मतलब जो एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस है वो क्या कपड़े पहनता है, वो कौन सी गाड़ी में ट्रेवल करता है, वो कहाँ काम कर रहा है, तो इसका पूरा स्टडी करके फिर उसकी स्ट्रैटेजी है, फिर उसका हम लोग क्रिएटिव्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं इन डिफरेंट मीडियम्स। सो इट्स अ जर्नी आई वुड से। ब्रांडिंग इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इन वन डे, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। इट टेक्स इयर्स, इट इज एन एक्सपीरियंस, इट इज अ जर्नी दैट अ ब्रांड गोस थ्रू।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि कोई चीज का ब्रांडिंग करना इतना आसान भी नहीं है और टाइम टेकन है, लेकिन एक बार वो चीजें बनती हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम भी होता है। चलिए, एक सवाल आया है, मैं चाहूंगा कि निखिल जी, मैं ये सवाल सुरेश जी का है, लिखते हैं, आजकल कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करने से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं, आपका क्या विचार? अच्छा, इनका पूछने का तरीका यह है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें कंपनी प्रोडक्ट का क्वालिटी पे कम ध्यान देती है लेकिन मार्केटिंग में ज्यादा पैसा यूज करती है, ऐसा उनका कहना है, तो क्या आपके विचार है?
2: सो वेरी गुड क्वेश्चन सुभाष जी, बट इट्स अ वेरी सिंपल आंसर. हु इज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ मनी, ये क्यों डाल रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है. दे वॉन्ट टू कैप्चर द मार्केट फास्ट, सेल्स बढ़ाना है. ब्रांडिंग डज नॉट वर्क ओवर, ये ब्रांडिंग कर ही नहीं रहे और ये मार्केटिंग भी नहीं कर रहे, ये एक्चुअली सिर्फ सेल्स स्ट्रेटजी है. पैसा जितना डालो लोगों के सामने खड़ा करो प्रोडक्ट को, बट दे डोंट, सो दिस इज नॉट मार्केटिंग एक्चुअली. ये मार्केटिंग ना है ना ब्रांडिंग है, ये सेल्स स्ट्रेटजी
1: का लोगों का सोच है और वो सोचते हैं कि पैसा मार्केट में डालो, पैसा नहीं.
2: यस, एंड दिस इज फ्लाई बाय, लाइक आज है कल नहीं है. इनको पड़ी नहीं है कि 10 साल के बाद मेरे बारे में क्या लोग सोचते हैं, मेरा ब्रांड है भी या नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो ऐसी कंपनीज ज्यादा देर नहीं टिकती हैं, ये आती हैं जाती हैं. देर आर पीपल हु कम अप विद बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लाइक विदुल ऑल्सो सेड, लाइक यू नो, नो मैटर हाउ मच आई शाउट, मैं कितना भी जोर से चिल्लाऊं, जब तक मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तब तक वो वापस रीसेल नहीं होगा, इट विल नॉट गेट बॉट अगेन. And ऐसे this is like Subhash was asking, like lot of people are pumping in a lot of money in advertising, लेकिन ये नहीं टिकेंगे ज्यादा टाइम, नहीं टिकेंगे, एक हाथ दो साल आपको दिखेंगे, बिकॉज जब तक उनके पास पैसा है तब तक करेंगे. पीछे किसने देखा है कि उनका फिगर्स क्या है? वी नो सो मेनी ऑनलाइन कंपनीज हो जो अभी दिखाते हैं कि यू नो दे आर एडवर्टाइजिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, लेकिन अगर आप उनके बुक्स देखेंगे तो दे आर इन लॉसेस, सिर्फ नाम बड़ा कर दिख के रख दिया है, एंड दे विल डाई. एंड वी आर द पीपल, वी आर द जनता जो चूज करेगी कि ये प्रोडक्ट चलना है या नहीं चलना है, आगे जाके हम ही खरीदने वाले इनको. आई थिंक दिस इज नॉट एडवर्टाइजिंग, दिस इज नॉट मार्केटिंग और नॉट ब्रांडिंग, दिस इज जस्ट सेल्स, बस मुझे बेचना है.
1: निखिल जी बहुत अच्छी बात आपने बताया, आशा करता हूँ सुभाष जी को आपका जवाब सुन के समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है. और पूजा जी ने याद भेजा है, फिर बाद में मिनल जी ने भी याद भेजा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा निखिल जी, एक और बात आती है कि जैसे हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं, आज एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था कि हम लोग चलो न्यूज़पेपर में टीवी में ऐड देने का सोचते थे या फिर उसके लिए काम कर रहे, लेकिन आज के समय में डिजिटल एक माध्यम बन गया है और मोबाइल फोन से भी डिजिटली हम लोग जो है अपना प्रोडक्ट भेज सेंड कर सकते हैं, तो ये कितना कारगर है वो थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आज के समय में समझो होममेड वर्क है, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट जो भी घर से भेजना चाहते हैं वो, तो शायद उनके लिए अच्छा रहेगा, दे कैन पुट उनका प्रोडक्ट ऐसे डिजिटली और लोगों को बेच सके ऐसा.
2: करेक्ट करेक्ट. सो डिजिटल मीडियम, अगर इफ आई लुक एट इट ओनली एज अ डिजिटल मीडियम, देन इट्स अ वेरी ग्रेट टूल, बट अनफॉर्चुनेटली करंट मार्केट, एटलीस्ट इंडियन मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग इज लुक्ड एट एज अ ब्रेन नॉट एज अ टूल. सो फर्क ये है कि जैसे प्रेस है या रेडियो है या टेलीविजन है या फिर मैगजीन्स है, होर्डिंग्स है, ये सारे टूल्स हो गए, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडियम इज सपोज टू बी अ टूल टू बी यूज्ड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के मार्केट सिनेरियो में डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम अ बिग बबल, इट्स अ बबल, वो बर्स्ट होने वाला है, बट इट इज जस्ट अ बबल. सोचना ये है कि सो आई टेल यू वेयर वी कम फ्रॉम, लाइक यू नो वी आर वेरी ओल्ड स्कूल, अभी कंप्यूटर्स नहीं थे तभी हम एडवर्टाइजिंग में आए थे, तो वी आर ओल्ड स्कूल, वी हैव सीन ट्रांजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी कमिंग इन टू द पिक्चर, एडवर्टाइजिंग में टेक्नोलॉजी का एडवेंट देखा है, कैसे वो इन्वॉल्व हुआ है. तो वेन वी talk about digital medium, तो are we using it as a tool to sell our idea, or is it something that we are using to think कि अच्छा अभी ये market है तो इसको कहाँ पे पकड़े, ये बंदा है तो ये कहाँ पे मिलेगा, social media पे मिलेगा या Google पे मिलेगा या कहाँ पे मिलेगा, पकड़ो इसको. That is how people are using it. आजकल trend क्या हो गया है कि you know आपको क्या, आपका क्या product है वो बाजू पे रखो, आपको कितना likes चाहिए वो पहले पूछते हैं, आपको कहाँ पे sell करना है ये पहले पूछते हैं, क्यों सेल करना है, डिजिटल पे क्यों यूज करना है वो नहीं पूछते. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन इंडिया, इंडियन मार्केट में ये एक पूरा मार्केट बन गया है, सेल्स मार्केट, जहां पे डिजिटल इज जस्ट सोल्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर. इट इज अ ग्रेट टूल अगर आपके प्रोडक्ट को या आपके कंपनी को उसका फायदा होने वाला है. क्या आपको सोशल मीडिया पे होना जरूरी है, क्या आपका ऑडियंस वहां पे है या फिर वो गूगल पे ज्यादा रहता है, या सोशल मीडिया पे भी इज योर टारगेट ऑडियंस ऑन फेसबुक मोर और इज ऑन ट्विटर मोर या लिंक्डइन पे हो है, ये जब तक आप पूछेंगे नहीं, ये आपको जब तक ये इन चीजों का जवाब नहीं मिलेगा या नहीं मालूम होगा, तब तक आप सोशल मीडिया या डिजिटल को वेस्ट कर रहे हो, वो स्पैमिंग हो जाता है। एक मैंने लाइक डाला कि मुझे आई एम लुकिंग फॉर समथिंग विच इज लाइक अ जैकेट एंड आई गेट बम्बार्डेड विथ 10 डिफरेंट कंपनीज। न्यूसेंस वैल्यू हो गया ये, इट इज अ न्यूसेंस वैल्यू नाउ। इट इज गुड एंड इट इज बैड, आपको जिस तरीके से इफ इट इज यूज्ड वाइजली एंड इन मेजर्ड वे देन इट इज अ गुड टूल, अदरवाइज इट बिकम्स अ स्पैम। सो मेरे हिसाब से अगर ओल्ड स्कूल के बारे में बात करें तो पुराने जमाने में यू नो वी यूज टू हैव दोज लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स न्यूज पेपर में, यू नो एंड द एंड ऑफ द डे वो रस्ते पे मिलते थे, यू नो डिजिटल मार्केटिंग इज रिप्लेसिंग फ्लायर्स। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूल, लेकिन एनी एंटरप्रेन्योर या एनी होम एंटरप्रेन्योर आल्सो जो घर से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको सही में सोचना चाहिए कि ये कहां तक किस हद तक मुझे फायदा इस मीडियम का होने वाला है, इस टूल का होने वाला है, मेरा बायर क्या उस मीडियम पे है या नहीं है। किसी को चल जाता है, किसी के लिए वो अच्छा है टूल, लेकिन इट इज नॉट सो ट्रू फॉर एवरी कंपनी और एवरी एंटरप्रेन्योर।
1: बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो आज हम लोग अच्छा माध्यम है, लेकिन वो उपयोग कितना है, क्या मेरे लिए कितना उपयोग है, क्या मैं उसका सही इस्तेमाल कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, ये इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और कैसे आप सेल करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट रेगुलर रूटीन में यूज करने वाला है, खाने पीने का आइटम है, तो आप दूर तक उसको सेल नहीं कर सकते या पोस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खाने पीने वाला आइटम तो लोग तो आज का मतलब एक घंटे के पहले आपको मैसेज कर सकते, तो वो एक घंटे में आपका डिलीवर होगा क्या प्रोडक्ट, वो भी इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे ख्याल, और इन सारी चीजों को देखकर आपको शायद डिजिटल माध्यम उतना फ्रूटफुल जो चीजें देनी चाहिए, और डिजिटल में भी आपके जो ग्रुप बनाए हैं वो कितने आपको जानते हैं चार, तो वो आपके साथ कैसे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो काफी अच्छा माध्यम है, लेकिन माध्यम को यूज करना मेरे ख्याल से इट विल टेक टाइम, आपको सर्वे करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। सेम चीजें जैसे हम लोगों को बताते रहना चाहिए, और बताते फिर वो चीजें आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आप उन चीजों पे काम कर सकते हैं। तो कोई भी चीज हो, इट इज अ टूल, लेकिन टूल को आपने कैसे यूज करना है, आप कितना टाइम उसके ऊपर काम करते हैं, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे लिए वर्क करता है या नहीं करता।
2: कर
1: जैसा वर्क करेगा तो उस हिसाब से फिर आप जो है उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं आगे। निखिल थैंक यू।
2: एक चीज है और एक चीज मुझे क्लैरिफाई करनी थी अबाउट डिजिटल मीडियम, इट इज अ ग्रेट टूल अगेन, लेकिन उसमें इमोशनल कनेक्ट नहीं होता।
1: बिल्कुल,
2: देयर इज नो इमोशनल कनेक्ट। जो ट्रेडिशनल मीडियम्स में जो इमोशनल कनेक्ट हुआ करता था, लाइक यू नो हैंड फील टच जो बोलते हैं, yeah, वो सब नहीं होता। सो इट इज अगेन फॉर अ स्पेसिफिक मार्केट, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए वो परफेक्टली फिट होता है एज अ डिजिटल टूल।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली में क्या है, वो लोग जब मार्केट में जाके या शॉप में जाके जो चीजें खरीदते हैं या जो एक कनेक्शन है एक्चुअली में ना, हम लोग मुझे याद है वो केमिस्ट शॉप में हम लोग थे, एंड वो व्यक्ति दूर से ही हमको दिखाई देते ना, उसकी मेडिसिन हम लोग निकाल के रखते थे, तो उससे उनकी इतनी खुशी, वो मैटर नहीं कि वो कौन सा मेडिसिन खा रहे, क्यों खा रहे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके चेहरे पे जो स्माइल उस चीज को देखकर आती थी, दैट वन मना विदाउट एनी थिंग फन रिलीज हो जाता था कि अरे ये तो आ भी गया काउंटर। तो शायद वो जो स्माइल ही है वो शायद इस डिजिटल मार्केट में नहीं हो सकती, यू कैनॉट रिप्लेस दैट थिंग, वो चीज़ है। तो वो एक अच्छी चीज है, तो शायद वो चीजें हम लोग मिस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। और तो आइए मैं फिर से अभी विदुला को जोड़ना चाहूंगा। विदुला जी, एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग चलो बिजनेस करना है, हमें ब्रांडिंग करना है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या तरीका है, क्योंकि काफी टाइम से आप इस बिजनेस में, एडवर्टाइजिंग बिजनेस में है, आपने बहुत सारे कंपनी को टिक आउट किया होगा, उनके ग्रोथ को देखा होगा, उनका कंटिन्यू ब्रांडिंग को देखा होगा, तो वो चीजें आपके सामने से हुई है, तो मैं चाहूंगा कि नए एंटरप्रेनर को आप अच्छा गाइड भी कर सकते हैं कि हाउ द थिंग्स शुड बी गो।
3: यस डेफिनेटली रमेश जी, आई टोटली बिलीव कि एनी आइडिया एक कहीं से ड्रीम से स्टार्ट होता है, और वो ड्रीम अगर हमें हासिल करना है तो उसको एक गोल की तरह अगर हम लोग देखें एंड उसकी तरफ राइट एक्शंस भी ले, तो वी डेफिनेटली आर आई वुड से सक्सेसफुल। अनदर थिंग आई वुड लाइक से इज व्हाट एवर यू डू, एनीवन हु वांट्स टू से, अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए आइडियाज लेके लोग आ रहे हैं, एंड अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स है, अमेजिंग आइडियाज है, लेकिन एक चीज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वेदर यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग इज like I said, passion is one thing, but what you do consistently every single day is what matters. कि अगर आप एक चीज कर रहे हो, अगर एक बिजनेस रन कर रहे हो, तो आप क्या कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो. एक दिन उठ के एक चीज की तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है. यू विल हैव टू कीप डूइंग योर रिसर्च. यू नीड टू बी अपडेटेड विथ योर मार्केट ट्रेंड्स, जो चल रहा है अभी. एवरीथिंग यू विल हैव टू बी अपडेटेड एंड एट द सेम टाइम कीप योर गोल फिक्स्ड कि मुझे ये अचीव करना है. सेकेंडली, another very important point I want to add here is become your domain expert. Agar kuch bhi kar rahe ho, to make sure that you become an expert in that domain. It is very, very important ki aapko log aapki pehchan aapke business se ya aap jo bhi kar rahe ho usse associate kare log usko. So that is what matters. And I think leadership quality, though, obviously, if you're running a business, if you are an entrepreneur, if you are running a team, then leadership ki quality bhi utni hi important hai. But at the same time, staying grounded. So hum jaise bolte hai na ki any entrepreneur actually needs to create more leaders under him. So that is, I say, a true leader jo apne niche leaders create kar sakega, wo in the true sense leadership role mein fit hota hai. So ye sari thodi thodi qualities I feel are very important you know, for any entrepreneur who's wanting to start or wanting to get into any business or any anything that he's starting new. So I think I've covered a lot of things that I personally practice, me and Nikhil personally practice in our day-to-day lives, which are important, and that is what everyone needs to do in some way or the other.
1: जी जी विदुला, काफी अच्छी बात आपने बताया. एक आइडिया जो आपके जहन में आती है वो आप जितना अच्छी तरह से उसके बारे में फुल्ली सोच लेते हैं और समझ लेते हैं, मेरे ख्याल से वो आइडिया अगर आपको खुशी देता है तो दूसरों को भी देगा. आपको अगर उससे बेनिफिट मिलता है तो दूसरे को भी देगा. लेकिन बात आती है कि सिर्फ आइडिया आने से और उसको प्रैक्टिकल में लाने में जो चीजें लगती हैं, जो टूल्स रखते हैं, वो प्रॉपरली आप अगर यूज करते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो चीजें आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी व्हेन यू डू मार्केटिंग. विदुला जी है, निखिल सर है, इन सभी लोगों को थोड़ा अगर आप इनके संपर्क में आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इजी होगा. थोड़ा सा आपको जैसे कि प्रोडक्ट का एक इन्वेस्टमेंट अलग होगा और एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट अलग होगा. दोनों चीजों को अगर आप साइमल्टेनियसली लेके और फिर उस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से फास्ट एक रन अप आप कर पाएंगे. वो एक बिजनेस अच्छा आपको करने को आएगा या कर पाएंगे आप, ऐसा मुझे लगता है. तो विन विन सिचुएशन होती है को प्रोडक्ट आइडिया एंड फिर एक बार आपको दो चार मार्केटर से आपको अगर बात करेंगे तो उनके आइडियाज को कैसे वो चीजों को कैसे वो प्रोडक्ट जाएगा, कैसे वो चीजें स्मूथली पहुंचेगा लोगों तक, वो और उसके लिए किस किस माध्यम से हम लोगों को ये चीज पहुंचा सकते हैं और कौन खरीदार है, ये सारी चीजें आपको एक बार पता चल जाएगा. तो मुझे लगता है विदुला जी इन चीजों के लिए आपको हेल्प कर सकती हैं और एक आइडिया आपके पास हो जो आपको खुशी दे. यार आपको खुशी नहीं देगा, आपने सोच लिया कि भाई ऐसा करने से बिजनेस होगा. बिजनेस नहीं, आपको बिजनेस करना है लेकिन बिजनेस का आइडिया नहीं चाहिए. बिजनेस के बारे में नहीं सोचना, आपको आइडिया वो होना चाहिए जो आपको खुशी दे. प्रोडक्ट के बारे में अभी नहीं सोचो, आपको जो आइडिया खुशी देगा फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो मार्केटिंग हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से नेचुरली वो आपका एक बहुत सुंदर तरीके से जो है आप काम कर पाएंगे और वो खुशी देगा तो चीजें अपने आप लोगों के पास पहुंचेगी. अल्टीमेटली जो चीज हम लोग बनाएंगे उससे लोगों को खुशी मिले या उसको यूज करने में आसानी हो, आनंद मिले उनको, है ना. तो वो आपको टच होना चाहिए. इट इज नॉट जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट अच्छा वाला सोचता हूँ, ऐसा नहीं होता है. मेरे ख्याल से ये चीजें, मेरे ख्याल से वो शायद उसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा आपको और बहुत ही फिर उसके पीछे बहुत काम भी करना. यस अर्चना जी, मैं चाहूंगा कि निखिल सर से कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिए, नहीं तो बताइए मुझे कि कैसे कनेक्शन बना दिया आपने.
4: थैंक यू. वेलकम विदुला एंड निखिल. रमेश जी, निखिल और विदुला को तो मैं 3-4 साल से जानती हूँ एक्चुअली.
1: अच्छा, अच्छा.
4: मेरे बुक लॉन्च के समय मुझे मेरा क्रिएटिव आर्टवर्क बनाना था और मैंने एक एजेंसी को बनाने दिया था और उन्होंने उसको पूरी तरह से मैसअप कर दिया था और मैं ढूंढ ही रही थी अभी कौन बनाएगा, मुझे मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन बाकी थे। तो हमारी रिलेटिव है संजना कोठारे, निखिल कोठारे सिस्टर, तो उन्होंने बताया कि माय ब्रदर डज दिस, कि निखिल करते हैं। सो ऐसे ठीक है, तो उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने उनका मैंने दिमाग खराब कर दिया 3 दिन। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो भी चाहिए थे, बट इतना पेशेंटली उन्होंने मेरा सारा काम करके दिया, इतना फ्लॉलेस एंड सुपर्ब। मतलब मेरे बुक लॉन्च का जो क्रिएटिव आर्टवर्क था, इट वॉज एक्सीलेंट। मतलब जैसे मेरी इच्छा थी, एकदम यू नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड परफेक्ट क्वालिटी। इट वॉज जस्ट सो नाइस और मेरे हर एक रिक्वायरमेंट को वो इतनी पेशेंस के साथ यू नो कर रहे थे। सो आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट निखिल। सो ऐसे उनसे पहचान हुई। एंड अभी रोनिका जी जो हमारे साथ शो पे गाती हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था जब मैं उनसे बोल रही थी कि यू नो कौन ऐसे अच्छे लोग हैं जिनको हम इंटरव्यू कर सकते हैं हमारे शो पे, तो उन्होंने मुझे विदुला एंड निखिल का नाम बताया। एंड आई सेड उनको तो मैं जानती हूँ बट मेरे ख्याल में नहीं आया था। सो थैंक्स रोनिका। एंड वो तुरंत ही रेडी हो गए और मैं जानती हूँ इनके कंपनी का कैलिबर और वो कितने अच्छे हैं उनके यू नो जो भी करते हैं उसमें, तो उनको शो पे लाना तो बनता ही था। सो आई एम सो हैप्पी निखिल एंड विदुला टू हैव यू ऑन द शो।
1: शो पे लाना मतलब आपका बुक का मार्केटिंग तो नहीं ना इनडायरेक्टली?
4: नहीं नहीं, मैंने बुक का नाम भी नहीं लिया अभी तक। तो मैं एक सवाल पूछना चाहती थी दोनों को। मुझे आपके शो का टॉपिक बहुत अच्छा लगा, वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। एंड आप थिंक क्रिएटिव एज अ कंपनी में कौन से यू नो एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं? सो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे या उनकी कंपनी में आपकी सेवा लेने चाहे तो उन्हें ज्यादा जानकारी मिलेगी। सो इफ यू कैन जस्ट शेयर।
2: श्योर श्योर श्योर। थैंक यू अर्चना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज वंडरफुल वर्ड्स अबाउट अस, थैंक यू। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू सेल स्मार्टर विदाउट सेलिंग, एक्चुअली सेलिंग। फर्स्ट सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर। सो यू हैव अ कंपनी, आपका एक प्रोडक्ट है, आपकी एक कंपनी है। व्हेन यू स्टार्ट ऑफ, ओके, फॉर एग्जाम्पल इवन फॉर यू अर्चना, इट्स लाइक योर बुक दैट यू रोट विद अ पैशन, यू स्टार्टेड समथिंग विद अ लॉट ऑफ पैशन, एनर्जी के साथ लेकर, वाह मुझे कुछ करना है, मुझे कोई नाम बनाना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ नेम इन द मार्केट, यू नो पीपल शुड रिमेंबर मी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट विद दिस, 90% ऑफ देम स्टार्ट विद दिस, हार्डली 10% विल से नहीं मुझे पैसा बनाना है, यू नो बाकी गया सब बाजू पे, यू नो let leave everything aside. So but 90% of the times entrepreneurs start with this passion ki mujhe kuch acha product ya company market mein launch karna hai, and then what happens, they start register and they start with like you know logo banaya, visiting card banaya, brochure banaya, ye sab kiya, and then they start selling, and then suddenly they start realizing ki sales nahi ho raha, so they start getting into sales, okay, full time sales sales sales, kya kaise bikega kaise bikega, what is the next thing that I can do to galle mein paisa aana chahiye, you know that is a typical thing, and then suddenly they realize ki wo passion reh gaya piche, when we started it was with a passion and then it is gone. This is what happens when you get into sales. Sales is very important, by the way, sales strategy hona bahut zaruri hai, lekin we forget the passion that we launched the company with, we launched the product with, you know, and then we start selling harder, not smart, we start working hard to create those sales. This is where if you just step aside, aapka sales strategy rehne do baaju pe, let you know it should run on auto mode. The moment you start thinking about marketing and creating the name again, aapka jo passion tha, the reason why you started the company in the first place, if you get back to that and if you think how do I make my name bigger than my product, bigger than my company, that is the time that you will start thinking, acha mujhe to I need to create a brand, I need to create something which is an identity in the market, wo dekh ke, wo naam dekh ke, wo logo dekh ke, people should just automatically sell. Like for example, right now I asked Ramesh, what soap does he use, and he said Pears.
4: Yes.
2: He didn't say I buy soap, I buy Pears, right? Similarly, what about your company, what about your product? The moment people start buying into the name, aapka jo philosophy hai, aapka jo passion hai, they start buying into that, the sales starts happening automatically. You don't need to create you know, extra, you don't need to take extra efforts, or you don't need to create extra, put in more money. Initially, you might need to put in money, but this moment it becomes a brand, then the expense starts coming lower. The investment starts coming lower on marketing and advertising. Then you just have to make a presence. How many times have you seen a Fevicol ad and seen no dabba? Kabhi unko Fevicol use karte hue dekha? Kabhi nahi. It's just Fevicol. And if you want to reach that level, yes, it takes time and money. Time and money, either you go aggressive, you need time and money. Or if you go, if you don't want to do that, don't want to go aggressive, then the second option is to go slow. And you, the only thing, two things you will need is time and money. The difference is that if you go aggressive, you need more money, less time. And if you go aram se, then it is more time, less money. But either ways, these are the two things that we will need anyways. But if you want to sell smarter, you want to start selling smarter, you need to start building a name in the market rather than putting your product out there and expecting great results. You know what insanity ka definition hai na, Einstein ne bola tha. Repeating the same action over and over again. So it's like that, you know, you keep selling, you keep selling, you keep selling, and you keep selling. People will just buy the product, say, great product. But if you keep selling your name rather than your product, people will say, wah, kya product banaya. And who made it? Oh, this company made it. So that's the difference. You can sell smarter or you can sell harder. That's your option. And right now the situation is 90% of the companies are selling harder. They hard sell. Ye lo, ye lo, ye lo, ye lo, ye lo. Nobody is going to remember which product, kya kaun si company aayi thi, kya product leke aayi thi. Bas product acha tha. Use karke throw kar diya. So that is where smarter selling comes in play, where you know, the older companies, the companies which were born 20 years back, they thought of creating a value in the market 20 years later also, and it is still alive. So selling smarter is about creating a name in the market. So that's a simple formula. Sell smart, create a name, and everything else falls into play.
4: Thanks, Nikhil.
2: Yeah, thank you. Okay. Thank you for asking.
1: Nikhil ji, bahut bahut dhanyawad. Shukriya, bahut achhi tarah se aapne bataya ki kaise smarter selling kar sakte hain hum log. To chaliye jaate jaate main Vidula ji se kehna chahunga ki aap is advertising field mein kaise aapka enter hona hua. Aap bahut kuch aur kar sakte the.
3: I think starting से I was pretty much focused कि मुझे ये line लेनी है. Of course मेरा drawing अच्छा था, जो अभी I don't know how true that is in the current situation, but yes, you know, I come from that time जब भी you know, parents used to say कि अरे commerce, science, engineer बनो, doctors बनो, यही सब हुआ करता था at that point of time. And to choose a profession like this was a little challenging because nobody from my family had that kind of a career choice made earlier. But yes, I was pretty focused and I had done all my research कि मुझे ये करना है. And I was also very very clear कि मुझे खुद की company start करनी. I was an entrepreneur at the age of 21. Nikhil and I started this company together. You know, we used to actually, I would like to share that जब हम लोग ने start किया था, तभी हम लोग इतने young लगते थे कि हमें Nikhil used to wear a specs and go for a meeting so that we look a little older. Because लोगों को अरे ये तो just अभी college से निकले हुए बच्चे हैं, ऐसे ऐसे treat करते थे हम लोग को at that point of time.
2: So अभी भी बोलते हैं.
3: अभी भी बोलते हैं. Yes, we don't look that old still. But so that was where we started. And but वो clarity in thought बहुत important है, and वो था मेरे दिमाग में right from the beginning कि I chose that line and you know, then started my own company immediately. So that was how I started.
1: थैंक यू विजिलेंस, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. निखिल जी, मैं चाहूंगा कि जाते जाते, जैसे आजकल हम लोग बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीजें आ गया जिसके बारे में हमें डिस्कशन, तो आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट का भी एक अलग रोल है, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रोडक्ट को कैसे हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए, कौन सा माध्यम अच्छा है?
2: एक ही माध्यम अच्छा है, दिमाग. दिमाग लगाना. कोई भी माध्यम पिक करने से पहले दिमाग पे, अकल पे जोर लगाना चाहिए कि इज दिस द राइट मीडियम फॉर माय प्रोडक्ट और माय कंपनी. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स लाइक वी वर डिस्कसिंग, यू नो, काफी बार ऐसे भी हो जाता है कि अरे कोई आके बोलता है अरे डिजिटल मार्केटिंग में डाल दो पैसा, बहुत इट विल वर्क वेरी वेल, या फिर फ्लायर डाल दो, अरे तुम्हारा ऑडियंस तो सबको नाम दिखना चाहिए तो होर्डिंग डाल दो. ऐसा नहीं होता. आपको बहुत सोच समझ के यू नीड टू थिंक अबाउट द राइट मीडियम, कौन सा माध्यम सबसे बेस्ट है हमारे प्रोडक्ट के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम कहना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट टू द पीपल. उस हिसाब से आप अगर माध्यम चूज करें तो वो फर्क पड़ता है या फिर उसका इफेक्ट ज्यादा मिलता है। आफ्टर ऑल आपने आप बिजनेस कर रहे हो, आपको आरओआई चाहिए, आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसका आरओआई चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सेल्स के लिए शायद एक पर्टिकुलर मीडियम एप्ट हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट है, आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट है, तो शायद डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट हो सके। लेकिन अगर आपको मार्केटिंग करनी है या फिर आपको नाम बनाना है तो प्रोबेबली इट माइट नॉट बी द बेस्ट मीडियम। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हो, तो उस बेसिस के ऊपर आपको मीडियम चूज करना है, ना कि एक अच्छा डील मिल गया तो ले लिया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज नॉट गुड फॉर एवरीबडी, लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर का इतना बड़ा हो गया कि पूछो मत। लेकिन नो एवरीबडी, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, 18 साल का बच्चा, लाइक 16 साल के बच्चे, यू नो दे कीप प्रमोटिंग समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ देयर लीग। यू कैन नॉट बिलीव दैट अ 16 ईयर ओल्ड विल प्रोबेबली बी यूजिंग समथिंग व्हिच इज मेंट फॉर अ 40 ईयर ओल्ड, लेकिन उसके फॉलोअर्स ज्यादा है तो फिर उसको ले लिया इन्फ्लुएंसर करने। सो उसमें भी कोई सेंस होना चाहिए, इन्फ्लुएंसर पिक करने में भी कोई सेंस होता है, कोई लॉजिक होता है। सो माध्यम अगर चूज करना है तो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच होना चाहिए, आपके यूजर के साथ मैच होना चाहिए, ना कि आपके विचारों के साथ। लेकिन just because you feel like it you shouldn't be doing. So I think madhyam sabse best hai, apna dimag thoda dimag lagana chahiye.
3: I would just like to add a little more to what Nikhil said, Ramesh. Whatever is as in to simply explain any medium, so what we do actually is say if it is a company, so right from giving the name to the company to jiska brand identity hum log bolte hain, logo design karna, uska station, मतलब एक छोटा सा बिजनेस कार्ड जो होता है वो भी आपका सेलिंग पॉइंट है, वो भी आपको सेल से दिला सकता है, इफ इट इज डन इन द राइट वे, इन द करेक्ट वे। सो राइट फ्रॉम योर ब्रांड लोगो टू इट्स स्टेशनरी टू एक ब्रोशर जो आपका प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करता हुआ, एक सिंपल सा ब्रोशर हो, आपका कॉर्पोरेट प्रोफाइल हो, आपकी एड हो जो न्यूज़पेपर में आती हो, या फिर एक होर्डिंग है जो एक स्पेसिफिक अच्छे लोकेशन में जहां पे आपका टारगेट ऑडियंस आने वाला है वहां पे एक स्पेसिफिक होर्डिंग हो, या फिर लाइक निखिल एक्सप्लेन्ड वेरी वेल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी, इट कुड बी दैट ऑल्सो। सो दीज आर वेरियस मीन्स एंड मीडियम्स जिसके एडवर्टाइजिंग या प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं। इन सिंपल लेमैन टर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारे मीडियम्स मालूम होते हैं, लेकिन हाउ दीज आर सिंपल टूल्स जो हम लोग क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, वी इंटरेक्ट विद देम एंड वी वर्क विद देम ऑन ऑल दीज मीडियम्स। सो दैट इज लिटिल बिट अबाउट व्हाट एंड हाउ द मीडियम्स वर्क, adding to what Nikhil said.
1: जी जी जी विद्रा जी, थैंक यू सो मच अपने आइडियाज को ऐड करने के लिए। और मुझे लगता है कि हम लोग आज विशेष इस विषय को लेकर बातें किया जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट और उसका से कैसे ये सारी चीजें होती हैं, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल किया। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, ये चंद तालियां मेरी और।
2: थैंक यू, प्लेजर।
1: और विदिला आपके लिए भी ये चंद तालियां मेरी ओर से। थैंक यू सो मच आप दोनों,
3: थैंक सो मच रमेश जी फॉर मेकिंग अस सो कंफर्टेबल इन दिस इंटरव्यू, एंड बिग थैंक यू टू अर्चना जी,
1: अर्चना
3: इट रियली मींस अ लॉट, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों,
2: थैंक यू ऑल द ऑडियंस एज वेल, थैंक यू।
1: मार्केटिंग का जो स्ट्रेटजी है, कैसे मार्केटिंग होता है और कैसे मार्केटिंग करना है, मुझे लगता है कि आप अच्छे एक बिजनेसमैन के लिए जो टिप्स चाहिए या बिजनेस करने के लिए जो टिप्स चाहिए वो शायद आपके पास आ गया होगा। बस आपको अभी काम करना है तो वो आइडिया अपने दिमाग पे जोर डालिए, एक अच्छा आइडिया ढूंढ के निकालिए, फिर मार्केटिंग करिएगा। तो चलिए आप अच्छा बिजनेस करें और एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ लोगों के बीच में जुड़े, ताकि आपका नाम हमेशा के लिए ब्रांडिंग की तरह लोग याद करें आपको हमेशा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: कल्याण के।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मामा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? बोला, यस। तो मामा को बिल देता है, तो मामा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मामा, इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मामा, आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मामा, आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मामा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देखकर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इंडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर में आपका कर...

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी से चलते हैं बाजार की तरफ।
1: क्या कहा,
0: क्यों? अरे भाई, अपनी मीना और मिट्ठू बाजार की तरफ जो जा रहे हैं।
2: जल्दी जल्दी चलते हैं मिट्ठू, बाजार से बहुत सारा सामान लाना है।
3: सामान लाना है, वापस घर भी जाना है।
0: अरे ये क्या, सामने से तो मीना का दोस्त बिल्लू चला आ रहा है और बिल्लू का ध्यान बस अपने पेन की तरफ है, कहीं ये मीना से टकरा ना जाए। लो, जिसका डर था वही हुआ, हो गई बिल्लू और मीना की टक्कर।
4: ओ मीना, तुम्हें लगी तो नहीं, वो मेरा ध्यान इस पेन की तरफ था तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। और
2: मैं ठीक हूँ बिल्लू। अरे ये तो बहन जी का पेन है ना?
4: हाँ मीना, मैंने बहन जी से एक दिन के लिए उनका ये पेन लिया है, बहुत अच्छी लिखाई आती है इससे।
2: लेकिन तुम इस समय आ कहाँ से रहे हो?
4: स्कूल से।
2: स्कूल से? लेकिन छुट्टी हुए तो बहुत देर हो गई।
4: मैं तो रोज स्कूल से इसी समय आता हूँ, वहाँ बैठ के कभी खेलता हूँ और कभी पढ़ता हूँ।
3: कभी पढ़ता हूँ, घर आने से डरता हूँ।
2: मिट्ठू चुप।
4: मिट्ठू ठीक कह रहा है मीना, वो घर पे मुझे।
2: क्या हुआ बिल्लू, सब ठीक तो है ना?
4: मीना, घर पे माँ और पिताजी मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर तक स्कूल में ही रहता हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो?
2: माँ ने बाजार से कुछ सामान मंगवाया है, वही लेने जा रही हूँ।
4: मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो।
0: लो भाई, बिल्लू तो चल दिया मीना और मिट्ठू के साथ। बाजार पहुँच कर मीना ने साबुन, नमक और अंडे खरीदे।
4: लाओ मीना, ये सामान मैं पकड़ लेता हूँ।
2: ठीक है बिल्लू, ये लो, लेकिन ध्यान से पकड़ना, संभाल के।
3: संभाल के, अंडे खाएंगे उबाल के।
4: मीना, मिट्ठू कितनी तेज उड़ता है ना? अगर मेरे भी मिट्ठू की तरह पंख होते तो मैं ऐसे उड़ता, ऐसे।
2: बिल्लू ध्यान से।
0: बिल्लू अपनी दोनों बाजुएं फैला के बहुत तेज भागने लगा और आगे जाके एक आदमी से टकरा गया। अंडों की थैली नीचे गिरी और सभी अंडे टूट गए।
4: देखो ना मीना, ये अंडे टूट गए।
2: कोई बात नहीं बिल्लू, मैं माँ से पैसे लेकर और अंडे ले आऊंगी, तुम उदास मत हो।
4: अंडे टूटने से मेरे कपड़े भी खराब हो गए हैं, अब माँ मुझे बहुत डांटेगी।
2: तुम चिंता मत करो, हम हैंडपंप पे चल के तुम्हारी कमीज पानी से साफ कर लेंगे। और अरे बिल्लू रुको, तो बिल्लू, बिल्लू।
0: मीना ने बिल्लू को बहुत आवाज लगाई लेकिन वो नहीं रुका। और जब मीना ने अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को अंडे टूटने की बात बताई तो उन्होंने कहा,
5: कोई बात नहीं मीना, अंडे तो और भी आ जाएंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बिल्लू को चोट नहीं लगी, टक्कर होने के बाद कहीं वो गिर जाता तो।
2: माँ, बिल्लू बहुत घबरा गया था क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ उसे डांटेंगी, उसके कपड़े जो गंदे हो गए थे। माँ, क्या चाची उसे बहुत डांटेंगी?
5: मीना, कल स्कूल जाते समय तुम बिल्लू के घर चली जाना और उसकी माँ को बता देना कि बिल्लू की कोई गलती नहीं थी। हा?
2: हाँ माँ, ये ठीक रहेगा।
0: और अगले दिन मीना बिल्लू के घर पहुँची।
2: नमस्ते चाची।
5: अरे मीना, खुश रहो बेटी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ?
2: चाची जी, मैं स्कूल जा रही थी तो मैंने सोचा कि बिल्लू को भी अपने साथ।
5: बिल्लू तो स्कूल चला भी गया।
2: इतनी जल्दी चला गया?
6: हाँ, वो तो अब स्कूल भी पहुँचने वाला होगा। अब देखो ना, जल्दी जल्दी में बिल्लू ये पेन यहीं भूल गया।
2: चाची जी, ये बहन जी का पेन है, बिल्लू ने बहन जी से ये पेन एक दिन के लिए मांगा था।
6: मांगा नहीं होगा, बिल्लू जरूर बहन जी से बिना पूछे उनका ये पेन उठा के ले आया होगा। हाँ, भला बहन जी बिल्लू जैसे शरारती लड़के को अपना पेन क्यों देंगी?
2: ऐसी बात नहीं चाची, बिल्लू को बहन जी बहुत पसंद करती हैं। वो पढ़ने लिखने में भी तेज है और क्लास में कभी किसी को तंग भी नहीं करता।
6: मैं नहीं मानती।
2: चाची, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए स्कूल चल के।
6: ठीक है, चलो।
0: मीना और बिल्लू की माँ स्कूल पहुँचे। बिल्लू की माँ क्लास के बाहर छुप के खड़ी हो गई।
7: बच्चों, कल जो पाठ सीखा था वो सबको याद है?
8: जी बहन जी।
7: शाबाश, तो पहले इस प्रश्न का उत्तर दो, हमारा देश भारत कब आजाद हुआ था?
4: सन 1947 में।
7: शाबाश बिल्लू, चलो बच्चों अब बताओ स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
4: चाचा नेहरू।
7: अरे वाह बिल्लू, तुम्हें तो पूरा पाठ याद है।
4: बहन जी मुझसे गलती हो गई।
7: गलती? कैसी गलती बिल्लू?
4: बहन जी मैं आपका पेन घर पे ही भूल गया।
5: ये रहा आपका पेन बहन जी।
7: कमला बहन आप?
0: बिल्लू अपनी माँ को क्लास में देखकर बहुत घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसकी माँ बहन जी से उसकी शिकायत करने आई है।
7: बच्चों तुम बाकी के उत्तर याद करो, मैं अभी आती हूँ। आओ कमला बहन, वहाँ बेंच पर बैठकर बात करते हैं। अब बताओ कमला बहन, आज सुबह सुबह आप स्कूल में?
6: मैं ये देखने आई थी बहन जी कि स्कूल में बिल्लू का व्यवहार कैसा है।
7: बिल्लू का व्यवहार?
6: हाँ बहन जी, बिल्लू क्लास में शरारत तो खूब करता होगा, है ना?
7: नहीं नहीं, बल्कि बिल्लू तो बहुत समझदार और होशियार लड़का है। लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा?
6: क्योंकि घर पे बहुत सहमा सहमा और चिड़चिड़ा सा रहता है बिल्लू। कल भी जब मैंने उसे डांटा तो वो मुँह फुला के बैठ गया और कुछ खाया पिया भी नहीं। लेकिन आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी भी हुई और हैरानी भी कि बिल्लू स्कूल में बहुत खुश रहता है।
7: कमला बहन, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनकी तरफ हमारा व्यवहार प्यार और नम्रता भरा हो, नहीं तो उनमें आत्मविश्वास कहाँ से आएगा।
5: आप ठीक कह रही हैं बहन जी, वो तो आज मुझे स्कूल में बिल्लू का व्यवहार देखकर ही पता चल गया।
7: वो इसलिए कमला बहन क्योंकि स्कूल में हम सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देते हैं। कमला बहन अगर बच्चे कभी शरारत करें भी तो उन्हें डांट के नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए, इससे उनमें आत्मविश्वास आता है और उनका आत्मसम्मान बढ़ता है।
5: मैं समझ गई बहन जी, आज से मैं भी बिल्लू से हमेशा प्यार और नम्रता से बात करूंगी। क्या मैं उससे एक मिनट बात कर सकती हूँ?
7: हाँ हाँ, बिल्लू बिल्लू जरा यहाँ आओ तो।
4: जी बहन जी।
7: तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं।
4: क्या हुआ माँ?
5: बिल्लू बेटा, तुम्हारे स्कूल आके आज मैंने भी एक सबक लिया है। आज के बाद मैं और तुम्हारे पिताजी तुमसे बिल्कुल तुम्हारी बहन जी की तरह बात करेंगे प्यार और नम्रता से। और हाँ, आज जल्दी घर आना, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी।
3: खीर बनाऊंगी, खुद भी खाऊंगी
0: देखा दोस्तों, आप भी हमेशा सभी से प्यार और नम्रता से ही बात करना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता।
2: बच्चों को कभी सजा न देना, गुस्से में मत चिल्लाना,
3: डांट मार से बात न बनती, प्यार से तुम समझाना।
0: भाई वाह, चार पंक्तियों में कितनी गहरी बात समझा गए अपने मीना और मिट्ठू। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया, अब कहाँ चले सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल ठीक, अब चलते हैं खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज का खेल है बड़ा मजेदार, भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको चार वाहनों के नाम बताऊंगी, उन चारों में से एक वाहन किसी खास वजह से बाकी तीन से अलग है, तुम्हें मुझे उसी अलग वाहन का नाम बताना है। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो उन चार वाहनों के नाम हैं बस, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक। फिर से बताती हूँ, बस, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक। अब सोच के बताओ इन चारों में से वो कौन सा वाहन है जो है बाकी के तीन वाहनों से अलग।
3: बस।
1: वो कैसे रोशनी?
3: क्योंकि हाँ, बस बहुत तेज चलती है।
1: रोशनी तेज तो जीप भी चलती है, इसीलिए ये सही जवाब नहीं। चलो चलो जल्दी से सोचो।
3: मैं बताऊं बहन जी?
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
3: सही जवाब है ट्रैक्टर।
1: बिल्कुल ठीक कहा मीना, लेकिन ये तो बताओ कि ट्रैक्टर बस, जीप और ट्रक से अलग कैसे है?
3: बहन जी वो इसलिए क्योंकि बस, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक में से ट्रैक्टर ही ऐसा वाहन है जो खेती बाड़ी में काम आता है।
1: बिल्कुल सही मीना, शाबाश। बच्चों तुम में से ट्रैक्टर की सवारी किस किस ने की है?
2: मैंने।
1: अच्छा अच्छा समझ गई, ट्रैक्टर की सवारी तुम सब ने की है, तो मजा आया ना बच्चों?
2: जी बहन।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: हेलो स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज संदीप त्रिवेदी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पार्ट सेकंड ऑफ लेसन नंबर 10 फ्रॉम द बुक गोल्डन रेस एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द ट्रिब्यूट। The writer is देश बेनहूर। तो बच्चों, आज हम जो 10th लेसन है हमारा श्रद्धांजलि द ट्रिब्यूट, उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। और ये देश बेनहूर ने लिखा है, कल हमने इसको स्टार्ट किया था, तो बड़ा अच्छा एक मॉरल मोटिवेशनल स्टोरी है। ओके, अब मैं शुरू करता हूँ। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, ये शनिवार की दोपहर थी। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, और मैं अपने गांव के लिए निकल गया। लेफ्ट फॉर, लीव, मेन वर्ब है लीव, और लीव के बाद फॉर आता है। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल है, तो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट आती है। आई लेफ्ट फॉर माय विलेज द सेम बस, वही बस एक बार जो बताया था उसने कि एक खटारा बस में से वो जाता था पहले अपने गांव जब वो स्टूडेंट था। वॉज देयर इंस्पायरिंग इन टाइल द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, और उस बस को देख करके वही मेरी पहले की जो मेरी भावनाएं थी वो सब वापस मुझे याद आ गई, पहले की बातें। आई रश्ड टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, माई फेवरेट सीट। सबकी बस में कोई ना कोई फेवरेट सीट होती है, अगर बस भरी हुई हो तो बात अलग है लेकिन बस अगर खाली है तो फिर हर कोई चाहता है कि मैं बस अपनी फेवरेट सीट पर बैठूं। तो दैट्स वाई द ऑथर इज सेइंग दैट कि वो फटाफट अपनी सीट को लेने के लिए गए, और वो उनकी फेवरेट सीट है ड्राइवर के ठीक पीछे की सीट। फेवरेट की स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, कई बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई, फेवरेट। इन माई हरी, जल्दबाजी में, हरी मतलब जल्दबाजी, एच यू डबल आर वाई, आई ब्रूज्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, मेरा जो घुटना था, नी मतलब घुटना, वो दरवाजे से टकरा गया। इट हर्ट मी, और जाहिर सी बात है चोट भी लगनी थी। देखिए, हर्ट एक ऐसी वर्ब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, इट हर्ट मी, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, पास्ट इनडेफिनिट कह सकते हैं, पास्ट सिंपल कह सकते हैं, और ये अफर्मेटिव है या असर्टिव जिसको बोलते हैं आप, पॉजिटिव भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर पास सिंपल है तो ये वर्ब हर्ट होनी चाहिए, और एग्जैक्टली वर्ब हर्ट ही है। लेकिन हर्ट एक ऐसी वर्ब है जो तीनों फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सेम रहती है, हर्ट हर्ट हर्ट। जैसे गो वेंट गॉन हो जाता है, टॉक टॉक्ड टॉक्ड हो जाता है, लेकिन हर्ट जो है वो चोट लगना, वो तीनों फॉर्म में सेम रहता है हर्ट। जैसे पुट पी यू टी पुट पुट पुट, कट सी यू टी कट कट कट, शट शट शट। तो ये कुछ वर्ब ऐसी हैं जब ना तो कुछ चेंज होती हैं और ना ही स्पेलिंग इनमें बदलती है, ना इनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण इनका बदलता है। ओके, द ब्रीफ केस फेल ऑफ, मेरे हाथ में जो बैग था वो भी गिर गया, एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद, और एक छोटा सा पैकेट था कागज में लपेटा हुआ जिसके अंदर प्रसाद था, ऑफ लॉर्ड लिंगराज, लिंगराज देव का उसमें प्रसाद था। देखिए, प्रसाद जो हिंदी में हम बोलते हैं उसी का इंग्लिश में भी प्रसाद ही लिखा है इन्होंने। मीट फॉर माई डियर मदर, और वो मेरी प्यारी मम्मी के लिए मैं लेके जा रहा था, वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, और वो बस के फर्श पर गिर गया। आई फेल्ट एज इफ द एंटायर बस वाज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगा जैसे कि पूरी की पूरी बस मुझसे कोई प्रश्न पूछ रही है, मुझे कुछ कहना चाहती है, मुझे कुछ एहसास दिलाना चाहती है पूरी पूरी पूरी। क्या आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, अरे भाई कितने वर्षों के बाद, यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम, तो तुम्हारे घर के प्रति तुम्हारे मन में जो प्रेम था कभी आया थोड़ा बहुत भी तुम्हारे अंदर, कभी तुम्हें याद आई उस घर की, उस गांव की, उस मिट्टी की? इंस्टेड यू हैव सोल्ड इट टू द बूचर टू हेल्प योर सेल्फ बिकम अ सिटी बाबू। लेकिन उसके बजाय तुमने अपने आप को बेच दिया है कसाई को और एक शहरी बाबू बन गए हो। कर्स बी ऑन यू, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, शाप है तुमको। जब प्रसाद गिरा तो उसको ऐसा ही लगा कि ये कुछ जो है वो ठीक नहीं है। आई बोर्डेड द बस कलेक्टिंग द ब्रीफ केस, अपना बैग संभाल करके मैं बस में चढ़ा एंड द कंटेंट ऑफ सॉइल्ड पैकेट और वो जो मिट्टी से हो गया था जो पैकेट, वो भी वेयरिंग अ शेमलेस स्माइल, वो भी मेरे पर मान लो मुझे शर्मिंदा करने के लिए हंस रहा हूँ, फॉर द क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बस। और कंडक्टर और क्लीनर जो थे बस के वो भी मुझ पर हंस रहे थे। इट वॉज 5 in the evening, शाम के 5 बज गए व्हेन आई गॉट डाउन, जब मैं बस से उतरा। आई हैड रिटन बिफोर हैंड, मैंने पहले ही लिख दिया था, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप, और मेरा बड़ा भाई मुझे मिलने के लिए पहले से ही बस स्टॉप पर मौजूद थे। ही अपीयर्ड ऑल टायर्ड एंड वॉर्न आउट, ही अपीयर्ड अ लिटिल टायर्ड, कुछ उनको देख करके लग रहा था कि वो कुछ थके हुए से थे। गिव दैट ब्रीफकेस टू मी, लेकिन उन्होंने मुझे क्या कहा, वो बैग मुझे दे दो, दैट मस्ट बी हैवी, वो भारी होगा। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी, उन्होंने ऐसा कहते हुए लगभग मेरे से बैग खींच ही लिया। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, और मैं उनके पैर छूना भी भूल गया। लेकिन वो नहीं भूले कि बच्चा मेरा छोटा भाई शहर से आया है और मुझे इसका बैग लेना है। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं उनके पैर छूना भूल गया हूँ। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे आगे आगे चल रहे थे। ही वॉज वॉकिंग पास्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब वास वर होती है और वर्ब की वर्ब प्लस ING। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, हम गांव की सड़क पर चल रहे थे। डस्टी एंड एवर द सेम, वही धूल मिट्टी से भरी हुई और हमेशा की तरह वैसी की वैसी ही। आई वॉज यूजली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलोंग टू गो टू अ टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन, आमतौर पर शाम को मैं गलियों में से होता हुआ ट्यूशन पढ़ने के लिए एक अध्यापक के पास जाता था। मैं अभी उन्हीं गलियों को पार करके जा रहा था जिन गलियों से होकर के मैं ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क वेन आई रिटर्न्ड फ्रॉम माई स्टडीज, अपनी पढ़ाई करके जब मैं घर लौटता था तो आमतौर पर काफ़ी अंधेरा हो जाता था और बहुत देर हो जाती थी। अनफेलिंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू स्काउट मी बैक होम, टेस्ट आई शुड बी फ्राइटेंड, लेकिन मेरे बड़े भाई कभी ऐसा नहीं हुआ, अनफेलिंगली

क्या तुम थक गए हो? कम होल्ड माई हैंड, आओ मेरा हाथ पकड़ लो एंड वॉक विद मी, और मेरे साथ चलो. ही समटाइम्स यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स, और कभी कभी तो वो मुझे अपने कंधे पर बिठा लेते थे वाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर अ स्ट्रोल. कुछ देर खेतों पे जब जाने के लिए, घूमने के लिए जाते थे तो वो कभी कभी तो मुझे अपने कंधे पर भी बिठा लेते. द बस स्टॉप वाज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज. जो बस स्टॉप था वो कुछ दूरी पर तो था घर से. आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उनके पीछे ही था. आई हैड फॉलन, पास्ट परफेक्ट, मैंने कल भी बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉल, फॉल, फेल, फॉलन, ओके, एफ ए डबल एल ई एन. ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन. जब मैं पीछे रह गया तो वो रुके और वही उन्होंने अपना पहले वाला पुराना क्वेश्चन पूछा जो वो हमेशा पूछा करते थे. आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, मैं कुछ नहीं बोल सका. द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग अप इन मी, अब पुरानी बातें मेरे दिमाग में रह रह करके आ रही थी. वो बातें मुझे बार बार याद आ रही थी. द चाइल्डहुड डेज, वो बचपन के दिन, एंड द डेज नाउ, और आज के दिन. टाइम हैज कोएगुलेटेड फॉर मी, सी ओ ए जी यू एल ए टी ई डी, सी ओ ए जी यू एल ए टी ई डी, कोएगुलेटेड फॉर मी. अब समय ने मुझे बांध दिया है, समय ने ऐसा कर दिया है, आई हैव चेंज्ड, कि मैं बदल गया हूँ. बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरा बड़ा भाई, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज. वो ये सोच रहा है कि मेरे बड़े भाई में तो समय भी कोई परिवर्तन नहीं ला सका. एज इन दोज डेज, जैसे कि वो उन दिनों में थे, ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो आज भी मेरे आगे आगे चल रहे हैं, कैरिंग माई बैग, और मेरा बैग अपने हाथ में लिए हुए. आई फेल्ट सो स्मॉल, और अभी मैं अपने आप को बहुत बहुत छोटा महसूस कर रहा था, बहुत ही छोटा. खैर, बड़ों के आगे तो हमेशा छोटा छोटा ही रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहने का मतलब है कि आदर्श में, गुणों में, विचारों में, सोच में भी वो छोटा लग रहा था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने अपनी आदत कभी नहीं बदली, जबकि वो अब उम्र दराज हो गए हैं तो भी. लेकिन ये भाई साहब शहर में जाके चार किताबें पढ़ के नौकरी करके एवरीथिंग हैज फॉरगॉटन, सब कुछ भूल गए. हेजिटेटिंगली आई सेड, हिचकिचाते हुए मैंने कहा, ब्रदर, भाई, गिव मी दैट ब्रीफ केस, वो बैग मुझे दे दीजिए. लेट मी कैरी इट फॉर वाइल, कुछ देर मैं भी उठा लूँ ज़रा. डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो. डू नॉट यू वरी, ही सेड, उन्होंने कहा. इट इज़ हैवी, ये भारी है, एंड यू आर टायर्ड, और तुम थके हुए हो. लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं. यू मस्ट बी फीलिंग हंगरी, तुम्हें भूख भी लग रही होगी. इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील, अब ये शाम के भोजन का समय था. आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, मैं शांत होकर के उनके पीछे पीछे चलता रहा. क्या बोल सकता था, भाई ने कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं. वी रीच्ड होम, वही पास्ट सिंपल, रीच, रीच्ड, रीच्ड, हम घर पहुंचे. इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अंधेरा हो गया था. द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द सेक्रेड तुलसी प्लांट, और समय था जो पवित्र सेक्रेड तुलसी का पौधा होता है, आप सब जानते हैं, सभी के घरों में होता है, वहाँ दिया जलाने का समय हो गया था. अनलाइक दोज डेज, उन दिनों में, नन ऑफ माई नेफ्यूज रश्ड टूवर्ड्स मी हाउलिंग, कोई भी मेरे भतीजों में से मेरे पास दौड़ता हुआ नहीं आया. हियर इज अंकल, ये रहे अंकल. माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन, और मेरी भाभी किचन के अंदर से नहीं आई टू रिसीव मी, मुझे मेरा अभिवादन करने के लिए, मुझे लेने के लिए. आई वॉज ऑल क्वाइट, मैं बिल्कुल

0: शांत था एंड ओनली माई मदर केम, केवल मेरी माता जी आई, परिवर्तन ये भी है, एंड स्टूड नियर मी और मेरे पास खड़ी हो गई। तो केवल मेरी माँ मेरे पास आई, द सेकेंड ब्रदर, वो जो दूसरा भाई एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी वर नो वेयर टू बी सीन, उनको कहीं नहीं देखा मैंने, वो कहीं दिखे ही नहीं एक्चुअली, जिनकी वजह से बंटवारा हो रहा था। ओके, इन द एंटायर हाउस, पूरे घर में देर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, पूरे घर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कुछ अजीब सा चल रहा है, कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है। रादर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो मतलब जैसी शांति आमतौर पर कब्रिस्तान में होती है, शमशान में होती है, उतना ही सन्नाटा आज यहाँ पर पूरे घर में नजर आ रहा था। एज इफ द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कॉलेप्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एज इफ मानो द हाउस वॉज, ये पूरा का पूरा घर प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा था फॉर इट्स अल्टीमेट, इसके अंतिम ढहने की तैयारी कर रहा था, अंतिम जो नुकसान हो सकता था, बंटवारे से बड़ा कोई नुकसान हो नहीं सकता, जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं। आई ट्राइड टू बी नॉर्मल, मैंने एकदम शांत बने रहने का प्रयास, आई ट्राइड, वही पास्ट सिंपल, ट्राई TRY, फिर ट्राइड, ट्राइड, देखिए यहाँ पे एक चेंज है बच्चों, ट्राई की स्पेलिंग होती है TRY, ट्राई मतलब कोशिश करना, आमतौर पर वी डू मिस्टेक इट, हम गलती कर देते हैं, लेकिन ट्राई की जब सेकंड फॉर्म लिखेंगे हम तो TRY नहीं होता है, TRY की जगह IED हो जाता है, TRIED। तो मैंने बहुत ही सामान्य बने रहने का प्रयास किया हर एक के साथ, विद एवरीवन, बट देयर वाज दैट एबोमिनेबल लुल ऑल अराउंड, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरा दूसरा भाई और उसकी पत्नी, इन स्पाइट ऑफ दियर प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति के बावजूद, बजाय एट होम, घर पर शोड नो इमोशन, बस घर पर वो हैं, केवल उतना ही उन्होंने दिखाया, बाकी और कुछ नहीं, यानी उन्होंने मुझसे कोई प्रेम एम नहीं, ठीक है वो घर पर हैं, बस इतना ही था उनके लिए। देवर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन, वो क्योंकि बंटवारे के लिए पहले से तैयारी कर चुके थे, एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग, उनको किसी और बात की परवाह थी नहीं, बस जमीन जायदाद मिल जाए। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात में सो नहीं सका, एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ड क्वाइट अनइवेंटफुली, और अगली सुबह बिना किसी विशेष घटना के हो गई, बिना किसी खास घटना के अगली सुबह भी बीत गई। तो इट वॉज मिड डे, दोपहर में 7 or 8 पीपल हैड गैदर्ड इन अवर कोर्टयार्ड, हमारे आंगन में 7 से 8 लोग आ गए टू सुपरवाइज द डिवीजन, इस पूरे बंटवारे का निगरानी करने के लिए, पूरा बंटवारा उनकी देख रेख में होना था, कुलना के भाई, वो गांव के बड़े बुजुर्ग पंच परमेश्वर होते हैं ना, उस टाइप के लोग, कि कोई विवाद नहीं हो जाए। वी थ्री ब्रदर्स वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई भी वहाँ पर मौजूद थे, मदर वाज नॉट टू बी सीन, माँ नहीं थी वहाँ पे कहीं भी, माँ होती भी कैसे, माँ सहन ही नहीं कर सकती थी ना ये सब। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, अंतिम जुदाई का हम इंतजार कर रहे थे, एज इफ रेडी टू स्लाइस आउट द फ्लैश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी विच अवर पेरेंट्स हैड नरिश्ड सिंस द डे ऑफ दियर मैरिज, अपने विवाह के दिन से जिस घर को मेरे माँ बाप ने सींचा था, अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन किया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि आज हम सब भाई मिलकर के उसके टुकड़े टुकड़े करने पर तुल गए थे, लेकिन क्या करें, सब एक की वजह से, एक व्यक्ति अगर खराब आ जाता है घर में तो एवरीथिंग इज कॉलेप्स्ड, एंड देन वी वुड रन अवे इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, क्लचिंग अ पीस ईच। और फिर उसके बाद हम इस घर रूपी मांस का टुकड़ा करने के बाद तीनों की तीनों अपने अपने मांस के टुकड़ों को लेकर के अलग अलग दिशाओं में जाने वाले थे. ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टिल द लेसन इज नॉट ओवर, सो आई विल कम विद पार्ट 3 टुमारो फॉर द बुक गोल्डन रेज ऑफ राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. आज इतना ही, अब इसका जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट होगा कल. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड गुड बाय.
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार. आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां.
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे. भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार.
4: नीसी हंसी, इतनी सी खुशी.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील के नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: आप हो रे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: राघव तुम्हें पता है मैं तो बहुत कार्टून्स देखती हूँ, तुम देखते हो कार्टून्स?
2: हाँ मैं भी देखता हूँ।
1: शिक्षा तुम देखती हो?
3: हाँ मुझे भी कार्टून बहुत पसंद है।
1: कौन कौन से पसंद है?
3: मुझे तो सभी कार्टून पसंद है।
1: कुछ नाम तो बताओ।
3: डोरेमोन मेरा फेवरेट कार्टून है।
1: और राघव तुम्हारा?
2: मेरा भी सब फेवरेट कार्टून है।
1: अरे नाम तो बताओ।
2: डोरेमोन ऐसे ही।
4: ये क्या बातें हो रही हैं, आप लोग को सबको लग रहा है कार्टून देखने का मन कर रहा है।
1: हाँ जी दीदी,
4: कार्टून्स को याद कर रहे हो इसीलिए?
1: हाँ दीदी।
4: वैसे बच्चों को तो कार्टून्स बहुत पसंद होते हैं, सबको पसंद होते हैं, बट सबके फेवरेट अलग अलग होते हैं ना। की है
1: कई कई बार एक फेवरेट हो जाता है, मतलब
4: फिर चेंज हो जाता है।
1: हाँ
4: ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, सबकी मेमोरीज को ताज़ा करते हैं और कार्टून्स के बारे में ही बात करते हैं आज बच्चों की दुनिया में। ठीक है? हाँ। करेंगे बात।
1: हाँ जी।
4: तो बहुत मजा आने वाला है आज तो, मुझे लग रहा है, क्योंकि कार्टून्स तो बहुत इंजॉय करते हैं हम सब। बचपन में हमने भी किया, अभी आप लोग भी करते हो। तो कौन कौन है हमारे साथ, एक बार हमारे दोस्तों को आपका नाम तो बता दीजिए।
2: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
3: मेरा नाम शिक्षा है, मैं 10th क्लास में हूँ।
1: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
4: ओके, तो शिवांशी, शिक्षा और राघव, कार्टून सुनते ही क्या याद आता है आपको?
1: डोरेमोन।
4: ओके।
3: शिनचैन।
2: डोरेमोन और पोकेमोन।
4: पोकेमोन, पोकेमोन तो हमारे बचपन में भी आता था
1: दीदी। उस टाइम तो ना उसकी ग्राफिक्स इतनी अच्छी थी, मैं भी देखती थी, बट अब ना इतनी गंदी ग्राफिक्स करी, जैसे खिलौने होते हैं ना, और सो खिलौने चल रहे होते हैं ऐसा लगता है। हर एक अब कार्टून की पहले जिनकी ग्राफिक्स जितनी अच्छी थी ना, अब उतनी गंदी कर दी है, देखने में भी मजा नहीं आता।
4: मतलब पहले ज्यादा अच्छा लगता था आपको?
1: हाँ जी, अब नई वाली ग्राफिक्स में ना ऐसे लगते जो डॉल्स होती है ना, बस चल रही है,
4: वो डॉल्स को चला रहे हैं।
1: और आवाज भी इतनी अलग अलग कर दी है।
4: अच्छा ओके। हाँ राघव।
2: दीदी मैं तो जब टीवी पे चलाता हूँ तो मेरी किस्मत अच्छी होती है, इसीलिए पुराने वाले आते हैं।
4: आपको पुराने मतलब कितने पुराने वाले अच्छे लगते हैं?
2: मतलब ज्यादा पुराने नहीं अच्छे लगते,
4: मतलब 2-3 साल पुराने पहले वाले, ये और पुराने एकदम,
2: मतलब जब उनकी ग्राफिक्स अच्छी थी तब अच्छे है।
4: ओके।
2: वो वाले
1: मतलब 2020 से पीछे वाले जितने भी ना सारे अच्छे। 2020 के बाद ग्राफिक्स उन्होंने चेंज कर दिया, पहले उन्होंने ज्यादा हाई ग्राफिक्स करी, उसके बाद और हाई करने के चक्कर में सारे खिलौने ही बन गया।
4: तो मतलब वो फिर इतना मजा नहीं आता
1: पहले वाले में, बहुत
4: पहले वाले में
1: जैसे थोड़ा थोड़ा ब्लर होता था ना तो देखने में मजा आता था।
4: अच्छा
1: कब ठीक होगा, तो ऐसे इंटरेस्ट भी आता था पीछे, अब तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता,
4: टॉयज जैसा लगता है अभी।
1: हाँ
4: ओके। शिक्षा आपको क्या लगता है?
3: दीदी मुझे तो कार्टून अभी भी अच्छे लगते हैं।
4: कार्टून्स अच्छे तो लगते हैं क्योंकि उसमें स्टोरी भी होती है, वो फनी भी होते हैं।
3: हाँ।
4: है ना, और एक्शन भी होता है किसी किसी कार्टून में तो। हाँ
2: दीदी वो पोकेमोन में है ना, कभी पहले तो ऐसे मतलब जब गिरते थे ना और जब कोई थंडर शॉक मारता तभी बेहोश होते थे, अब तो ऐसे ही वो खड़े खड़े ही बेहोश हो जाते हैं,
4: खड़े खड़े बिना कुछ ऐसे किए हुए।
2: हाँ दीदी
4: उसमें वो भी होता था ना, पिका पिका पिकाचू।
2: हाँ दीदी।
4: हाँ तो वो एक दूसरे को फाइट करते हैं ना।
2: हाँ,
4: कौन सा वाला फेवरेट लगता है पोकेमोन आप लोगों को?
1: चार्लीजार्ड।
4: ओके।
2: पिकाचू।
4: पिकाचू। राघव को कौन सा अच्छा लगता है, इतने सारे देखते हो आप?
2: मुझे सब अच्छे लगते हैं, बस पिकाचू और सब लेजेंडरी पोकेमोन।
4: लेजेंडरी पोकेमोन।
1: पहले लेजेंडरी पोकेमोन का कुछ पता ही नहीं था पोकेमोन में, अब तो गॉड पोकेमोन, मून पोकेमोन, स्पेस पोकेमोन, इतने पोकेमोन है।
2: दीदी पहले ना पता नहीं होता था, जब ऐसे छोटे छोटे पोकेमोन के सामने वो बड़े आ जाते थे ना तो लगता था ये कौन से आ गए, मतलब हमको लगता था कि वो इनके एनिमीज हैं, फिर हमको बाद में पता चला कि वो लेजेंडरी पोकेमोन थे।
4: ओके तो अच्छा अच्छा ये बताओ मुझे, इतने सारे कार्टून्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं ना दिन भर में, तो उसमें से किसी का कोई एक डायलॉग है जो आप बोल सकते हो, जो बहुत बार बोलते हैं?
3: दीदी शिनचैन में एक डायलॉग है, वो बोलता है जब भी उसकी मम्मी उसको डांटती है ना तो अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो।
4: अच्छा जब डांट पड़ती है तब बोलता है, अरे बाप रे।
1: और दीदी जब वो घर पे आता है ना तो वेलकम होम बोलता है अपनी मम्मी को।
4: अच्छा
1: शिनचैन जब घर पे आ रहा है वो कहता है वेलकम होम मम्मी।
4: अच्छा मम्मी को भी वेलकम होम कर देता है, मम्मी तो पहले ही होम में होती है। ओके आपको याद है कोई शागब? नहीं याद आ रहा, अभी बाद में याद करके बोल देना ठीक है।
2: मैं इतना शिनचैन नहीं देखता ना।
4: नहीं कोई भी और कार्टून, कोई भी एक ऐसे लाइन आपको याद हो तो।
1: दीदी टीटू में ना जो उसके पापा है वो उसके पापा कहते हैं कि इस घर में मेरी चलती है, बस ऐसा मुझे ही लगता है। हर बार इतने भी एपिसोड है उनमें।

0: ये लाइन तो हमेशा आती है.
1: इस घर में मेरी चलती है ऐसा मुझे ही लगता है,
0: हाँ.
1: मतलब उनकी चलती नहीं है.
0: और उसकी मम्मी कहती है, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना.
1: हाँ शिक्षा.
2: दीदी, सभी कार्टून में ना डायलॉग सुन के मजा आ जाता है और हाल याद हो जाते हैं. अब टीटू के दोस्त भी अपना अपना डायलॉग बोलते हैं. अब उसमें उसका दोस्त है एक, उसका नाम गन्ना प्रसाद है. नाम ही
1: अच्छा.
2: उसका ऐसा, उसके सिर पर बस मक्खी घूमती रहती है.
1: हमेशा
0: जब भी वो बोलता है ना, मधुमक्खियां आ जाती हैं
1: जब भी बोलता है. अरे बाप रे,
0: क्या
1: नाम भी बड़े फनी फनी
3: ये
1: होते हैं
3: मैं
1: ना.
3: बोलने वाला,
1: कोई बात नहीं, नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, कोई ऐसा बात नहीं. तो ये नाम भी बड़े फनी फनी होते हैं ना.
3: हाँ दीदी.
1: तो मतलब आप लोगों को फनी कार्टून अच्छे लगते हैं.
3: हाँ.
0: दीदी, मोटू पतलू में भी है एक, मोटू का है खाली दिमाग, मेरे दिमाग की बत्ती ही नहीं जलती.
1: ओ बाप रे.
3: दीदी, घसीटा राम का है कि ना, 24 साल का तजुर्बा है मुझे.
1: ऐसा बोलता है
0: ऐसे वो तो. मुझे तो इस काम में
3: 20 साल का तजुर्बा,
0: 20 साल का तजुर्बा है.
1: ओके. और वो होता है सच में कि नहीं होता है?
0: नहीं, वो उससे काम कभी नहीं होता, बस तजुर्बा है,
1: केवल तजुर्बा होता है.
3: दीदी, कोई भी काम हो ना, बस मुझे तो इस काम में कोई भी काम हो, जैसे गड्ढा भी खोदना हो, मुझे तो 20 साल का तजुर्बा है, अभी गड्ढा खोद देता हूँ.
1: हाँ, और कर नहीं पाता उसके बाद.
3: कर पाता नहीं है.
1: इसीलिए हंसी आती है ना.
3: हाँ.
0: और दीदी, डॉक्टर झटका भी ऐसे, ओ मेरे प्रा दिलदारा.
1: उसके स्टाइल में हंसी आती है ना, उसके बोलने के तरीके में.
3: दीदी.
1: हाँ जी.
3: नोबिता रोज आके बोलता है, डोरेमोन जियान ने मुझे मारा.
0: दीदी दीदी दीदी, मोटू पतलू का भी है एक, वो इंस्पेक्टर चिंगम का, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल. बोले तो इम्पॉसिबल, तुम्हें हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम, रुको. कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं.
3: फिर
0: जब भी वो गन शूट करता है, नारियल गिरता है, चाहे ऊपर पेड़ ना हो.
1: अच्छा
3: दीदी, वो फिर ऐसे हाथ
1: कहीं से गिर जाता है नारियल,
0: कहीं से भी.
3: दीदी, वो ऐसे हाथ आगे करता था उसके, एकदम हाथ पतले होके उस चोर को पकड़ के इधर ले आते हैं पास में.
1: वाह, कानून के हाथ है ना. बहुत ही लंबे हो रहे हैं लग रहा है. अच्छा, आप लोगों ने कुछ बहुत और पुराने कार्टून्स देखे हैं? जैसे पहले कौन से आते थे? ऑसवर्ल्ड आता था, नॉडी आता था, ऐसा कुछ देखा है कभी आप लोग?
3: ओगी एंड द कॉकरोचेस देखा है.
1: उसमें क्या होता है?
3: मतलब एक कैट होती है और 3 कॉकरोच होते हैं. वो कॉकरोच है ना, वो कैट को परेशान करते रहते हैं.
1: ओके. कॉकरोच, लेकिन कॉकरोच तो ऐसे देखते हैं बाहर तो अच्छे लगते हैं ना, या बाहर ठीक लगते हैं इंसेक्ट?
0: वो रंग बिरंगे कॉकरोच है.
1: अच्छा.
0: पिंक, येलो और ग्रीन,
1: तो वो अच्छे लगते हैं. ओके.
3: दीदी, उन तीनों का नाम भी है.
1: क्या?
3: छगन मगन गगन.
1: छगन मगन गगन,
3: तीनों कॉकरोच का नाम है.
1: वाह. तो वो लोग भी क्या मतलब कुछ फनी फनी बोलते रहते हैं?
3: नहीं, वो परेशान करते रहते हैं पूरे टाइम, खाना चुरा लेते हैं फ्रिज में से.
0: ओगी को परेशान करते हैं, ओगी जो काम कर रहा होगा ना उसका काम खराब करके आएंगे.
1: अच्छा.
3: दीदी, मैं एक और कार्टून देखता हूँ, उसका नाम है ओ बचामो. वो जब कान के मैल निकालता है ना, तो उसके अंदर से भी सोना निकलता है.
0: अरे, उसमें ऐसे बता रहा है कि उसके पापा बहुत बिलियनर मिलियनर है, तो उनके घर में जो खाना बनता है वो भी मिलियंस का आता है.
1: अच्छा.
0: तो पैसों वाला थोड़ा वो है.
1: अच्छा, बहुत रिच
0: फनी,
1: है.
0: फनी भी है.
1: हाँ, ओके.
0: जो बच्चा है वो पैसे वाला भी है और फनी भी है हर बात पे. कछुओं पे चलता है वो. कछुओं पे चढ़ के उनकी राइड करता है.
3: एक और ना, मतलब वो पापा जादू, फिर लास्ट में वो ही जीतता है.
1: वही सबसे उसके जैसा कुछ करने का मन करता है क्या? अब जो वो करता है वो कार्टून
3: गरीब पर नीचे आधे कपड़े डालता है.
1: तो कुछ
0: और एक बार तो ऐसा था, घूमने चला गया, अपने पापा को बिना वरी कर दी खड़ी, मेरे बच्चे को ढूंढ कर. तो बहुत हंसी आई उसके बनी.
1: ऐसा कोई कार्टून है जो जिसकी तरह आपको लगता है तो बड़ा मजा आता? मन करता है जो वो करते हैं वो रियल लाइफ में आपको
0: होते हैं ना अपने दोस्तों के घर, वो करने का मन करते हैं, एक दूसरे के घर जाते आते हैं.
3: या हथौड़ी में जैसे वो क्राइम पकड़ाता है ना निंजा बनके, तो वो करने का मन करता है. जैसे कोई क्राइम
1: इतनी पावर करते हुए पकड़ना है, तो आप क्या लगता है राघव? अभी तो बहुत छोटा हूँ मैं, है ना? है राघव?

0: वेयर्ड हो रहा है। एक उसके पास दो पैन होते हैं, वो ब्लैक होल और व्हाइट होल, तो उससे अंदर जा सकते हैं। जब तक कोई व्हाइट पैन से ना होल नहीं बनाएगा तब तक अब बाहर नहीं आ सकते। तो
1: उसके अंदर करते क्या है लेकिन फिर?
0: उसके अंदर अपन सामान भर के फिर दूसरा व्हाइट होल बनाते, उधर से सामान वापिस। पर कभी अगर हम उसके अंदर चले गए और अपने पास व्हाइट पैन नहीं है तो कोई हमको बाहर ही नहीं निकाल
1: अरे
0: सकता,
1: बाप रे, तब तो मुश्किल हो जाएगी।
0: क्योंकि पैन तो अपने पास है ना।
1: ओके दीदी, फनी कार्टून तो देखने में मजा आता है, पर जब उनके हॉरर एपिसोड्स आते हैं ना, उनको देखने में तो बहुत ही मजा आता है। फनी के हॉरर भी होते हैं?
2: हाँ जी,
1: डोरेमोन का है, शिनचैन का है।
2: हाँ,
1: और मतलब अभी तो मैंने इन दोनों के ही देखे और किसी के नहीं देखे।
0: दीदी मैंने निंजा हथौड़ी के देखे हैं
1: हॉरर एपिसोड्स। तो उसमें डर नहीं लगता फिर आप लोगों को ऐसे देखने में?
0: नहीं दीदी, पर उसमें मैंने निंजा हथौड़ी का एक एपिसोड था, उसमें वो सब मतलब अफवाह फैली थी कि ना रात को उधर भूत आता है। तो ना उन चार दोस्तों ने जाने का प्लान किया, तो वो सब गए, तो वो ऐसे गिनते रहे गिनते रहे। फिर
1: उसमें ऐसे था कि सीढ़ियाँ गिननी थी।
2: अच्छा,
1: कह रहे थे कि दिन में सीढ़ियाँ 11 होती है पर रात को 12 होती हैं।
2: अच्छा,
1: तो रात को फिर एक सीढ़ी किसी ने एक्स्ट्रा लगा दी, जिसकी एक बिल्ली थी ना, एक जो उसका फ्रेंड था उसकी बिल्ली थी, वो बिल्ली ने ऊपर अपने वो रख लिया और 12 सीढ़ियाँ हो गई।
0: दीदी 12 नहीं थी,
1: 12 नहीं हुई, वो 13 ही हुई। उसके बाद ऐसे ही और कुछ था कि रात को पियानो बजता है, भूत घूमता है। फिर वो बाहर आए स्कूल के, तो उन्होंने एक फोटोग्राफ खींची, और फिर जब सुबह फोटोग्राफ मिली तब पता लगा उनमें से एक दोस्त तो बीमार थी, वो तो घर पे थी। और लास्ट वाला रिचुअल ये था कि वो किसी दोस्त बन के आता है वो भूत।
2: अच्छा,
1: तो फिर ऐसा था वो,
2: ये तो काफी खतरनाक था।
1: और डोरेमोन का भी ऐसा था कि ऐसा आया था कि जिस दिन डोरेमोन के क्रिएटर की डेथ हुई थी, उस दिन रात को 12 बजे के करीब ऐसा एक एपिसोड आया था कि ग्लोब है, ग्लोब के अंदर से खून निकल रहा है, नोबिता और डोरेमोन जा रहे हैं, उनके चीखने की आवाज़ें आ रही हैं।
2: अच्छा।
1: और जिस दिन डेथ हुई थी ना, उसके बाद ये चला था, बल्कि एपिसोड बनाया भी नहीं था ये।
2: अच्छा।
1: और दीदी इंटरेस्टिंग बात तो ये है, 21 सितंबर 1961 को उसकी डेथ हुई और 21 सितंबर 2010 को मैं हुई।
2: डेट सेम है आपकी?
1: हाँ।
2: ओके तो ये जो कार्टून्स है,
0: दीदी ये भी हो सकता है कि इसके अंदर वही वाला डोरेमोन का कैरेक्टर हो।
2: अच्छा, शिवांशी के अंदर लगता है आपको ये डोरेमोन जैसी?
1: मेरे पास भी दीदी एक पॉकेट होगी, मैं निकालूंगी हेलीकॉप्टर।
0: दीदी वो जो था ना, जब उसकी डेथ हुई थी तो उसके रूम में कोई उसको परिवार को देने के लिए उसकी आखिरी वो कोई चीज होती है ना, वो देखने गए थे, तो उनको मतलब टाइम मशीन दिखी थी, वो बिग लाइट और स्मॉल लाइट, एनीवेयर डोर, ये सब उधर गैजेट्स पड़े थे डोरेमोन के, तो सबको लगता है कि वही नोबिता था।
2: अच्छा, मतलब वो कार्टून के एपिसोड की बात कर रहे हो आप?
0: कार्टून के एपिसोड के नहीं, असली की बात है।
2: अच्छा,
0: मतलब उसने एनीवेयर डोर पकड़ के उसने बोला मैं अपने घर चला जाऊँ, तो उसने खोला और वो अपने घर पहुंच गया सीधा।
2: तो ये सारी बातें लेकिन सुनने सुनने में आती है ना, अभी कुछ ऐसा कन्फर्म तो नहीं होता है?
0: दीदी कन्फर्म है।
2: कंफर्म मतलब कंफर्म किसको बोलते हैं?
0: दीदी उसका नाम भी हिंदी में नोबिता ही है।
2: अच्छा, ओके।
0: दीदी उसने मिस्ट्री बताई थी अपनी कि डोरेमोन अच्छा। मेरे साथ ही रहता है, ये बचपन में वो मेरे साथ ही था।
2: ओके ठीक है, देखो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसको कई बार क्या होता है, कोई सिर्फ किसी के कहने पे हम सच है पूरी तरीके से नहीं मान सकते, लेकिन उसके पीछे रिसर्च होती है, उसके पीछे लोग प्रूफ्स इकट्ठा करते हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन सब बातों को हम कभी भी, जब तक प्रॉपरली रिसर्च्ड न्यूज़ नहीं बनती है, तब तक हम 100% नहीं कह सकते। तो इस बारे में भी बात करेंगे हम लोग कभी कभी, फिलहाल कार्टून्स के बारे में बात कर रहे हैं। और कार्टून्स आपकी फेवरेट्स कौन सी है तो आपने बताया, कोई ऐसी चीज आप लोगों को लगती है कार्टून्स में? अच्छा, फनी कार्टून्स तो बात किए, और जो फाइटिंग वाले कार्टून्स होते हैं वो कैसे लगते हैं, जिसमें लड़ाई होती है, गन्स होते हैं, ऐसे कोई कार्टून्स भी होते हैं?
3: हाँ होते हैं।
1: होते हैं दीदी,
2: देखते हो आप लोग? मज़ा नहीं आता या फिर
1: ज़्यादा मज़ा
0: दीदी
1: नहीं
0: मुझे आता है?
1: हर बार जो हीरो होता है वो लड़ता है फिर जीत जाता है, लड़ता है फिर जीत जाता है,
2: यही होता रहता है ना।
1: और क्या पता ही है, हीरो ही जीतेगा। अगर मान लो कभी हार गया तो दूसरी बार वापस लड़ाई करने जाएगा तो वापस
2: फिर जीत जाएगा,
1: पता है हीरो ही जीतेगा, तो देखने का क्या फायदा?
2: क्या फायदा?
0: दीदी मैं ऐसी चीजें नहीं देखता फालतू की। उसमें क्या होता है कि ना, वो पहले हीरो के पास कुछ नहीं होता तो वो ऐसे पंच से लड़ता है, फिर वो हार जाता है, फिर उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है, फिर वो मर भी जाता है। उसके बाद उसको किसी ने जिंदा किया तो उसने बोला कि अब मेरे को इससे बदला लेना ही पड़ेगा वरना ये पूरी ऐसे ऐसे कार्टून देखता हूँ मैं।
2: ऐसे वो वापस से आते हैं,
0: मतलब वो कार्टून नहीं होते, वो एनिमे होते हैं।
2: एनिमे होते हैं, ओके। और शिक्षा आप देखते हो ऐसे फाइटिंग वाले?
3: नहीं दीदी, मुझे मजा नहीं आता ज्यादा।
2: मजा नहीं आता ना,
3: वो तो बस फनी कार्टून में मजा आता है।
2: हाँ फनी तो बहुत इंजॉय करते हैं, तो आपको थोड़े थोड़े अच्छे लगते हैं ऐसे। क्या अच्छा लगता है उसमें
0: दीदी? मैं गन्स वाले नहीं देखता। जैसे कि किसी के पास वॉच होती है और वो उसे किसी भी एलियन के डीएनए मिला के वो कोई भी एलियन बन सकता है।
2: ओके, मतलब उसमें बहुत सब वो होता है ना कि क्या होगा आगे, सस्पेंस होता है।
3: हाँ दीदी, ये वाला कार्टून देखने में तो मजा आता है। उसमें एक कैरेक्टर है गोयन, मेरे को तो वो अच्छी लगती है, इसलिए मेरे को वो कार्टून पहले देखती थी, अब तो नहीं देखती, अब तो बस फनी कार्टून ही ज्यादा पसंद है।
2: कभी कभी किसी कैरेक्टर की वजह से भी कार्टून अच्छा लगता है।
3: हाँ।
2: कि उसमें ये है तो बहुत मजा आता है। ओके, तो आप लोग को क्या अच्छा कोई ऐसा कार्टून है जिससे आपने कुछ सीखा हो, आपको लगा हो कि ये चीज तो बड़ी अच्छी है, ये मैंने सीख लिया इससे, कोई ऐसी बात कभी लगी या नहीं भी सीखा तो बता सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है
0: दीदी, मतलब मैं डोरेमोन का एपिसोड देख रहा था, उसमें मतलब वो कोई जादू कर रहे थे कि अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर में पानी डालेंगे तो वो नीचे नहीं गिरेगा, तो वो उसमें कुछ लगाना भूल गए थे, तो उसने लगाया तो उसके बाद सच्ची पानी नहीं गिरा था। वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया पर मुझे लगता है कि वो सच है।
2: ओके ठीक है
1: जी, मैंने भी सीखा था।
2: क्या?
1: कि अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो जब हमारे साथ बुरा होगा तब हम और लोग हमारी हेल्प करेंगे। उस एपिसोड में ऐसा था कि नोबिता ने ऐसा सोचा था, मैं सबकी मदद करता हूँ तो भी मेरे को डांट पड़ती है, तो नोबिता ने सोचा मैं सबका बुरा करूंगा। तो फिर डोरेमोन ने उसको एक ऐसा मतलब बेल्ट दिया कि उसको लगाने से सारे बुरे काम करेंगे, ऐसा नोबिता को बोला। पर ऐसा था, जो बुरा काम करेगा उसको ठीक करने का है वो तो बेल्ट।
2: अच्छा, तो उसको बताया
1: वो सारा बुरा काम करने जा रहा था पर अच्छा हो रहा था। उसने क्या करा, एक क्रेन थी उसका जो मुंह था उसको दूसरी तरफ कर दिया।
2: अच्छा,
1: तो किसी और के ऊपर वो लोहे का रॉड गिरने वाला था, तो उसी टाइम उसको अपने आप हुआ कि मैं आंटी को धक्का मार देता हूँ, तो उसने उन आंटी को धक्का मारा तो रॉड, फिर वो आंटी बच गई। फिर ऐसे उसने किसी और की हेल्प करी। फिर रात को जब घर पे गंदे कपड़े करके आया ना, तो उसकी मॉम उसको डांट रही थी, तो जिस चीज की भी उसने हेल्प करी थी ना, वो सारे लोग आए उसको गिफ्ट दिया और उसकी मॉम को कहा इसने हमारी मदद की। तो इससे मेरे को ये सीख मिली कि हाँ, कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे जब हमारे साथ बुरा होगा तब वो भी हमारी मदद करेंगे।
2: सही बात है, और ये चेन ऑफ गुडनेस होती है, ये जरूर कनेक्टेड रहती है कहीं ना कहीं। पर एक बार शिक्षा से भी पूछ लेते हैं, उसने क्या सीखा?
3: दीदी मैं तो है ना सिंचाई नहीं देखती हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें वो तो 5 साल का छोटा सा बच्चा है जो अपने है ना प्ले ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। बाकी वो किसी का बुरा तो नहीं करता, पूरे टाइम उसमें हंसी हंसी होती रहती है। और वो उसमें एक चीज तो है, उन लोगों में लड़ाई हो जाए कुछ भी हो जाए पर वो हमेशा साथ रहते हैं।
2: हाँ ये एक अच्छी चीज है ना।
3: हाँ, वो एक दूसरे को तंग करेंगे परेशान करेंगे पर साथ में कोई दूसरा अगर परेशान करे तो वो दूसरे से लड़ जाते हैं कि नहीं ये मेरा दोस्त है इसको परेशान नहीं करना।
2: ये वो यूनिटी, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा कोई फनी वर्ड्स सीखे हैं क्या आपने कभी कार्टून से?
0: दीदी शिनचैन के कार्टून्स में तो सब फनी फनी होता है, पर जब उसकी मूवी जाती है ना तो वही हीरो होता है।
1: सारी बहादुरी दिखाता है,
2: बहादुर होता है वो। अच्छा
0: दीदी, मतलब इतना बड़ा मॉन्स्टर था उससे मतलब सब डरते थे, तो उससे ना बड़े बड़े बंदे भी डरते थे, पर शिनचैन है ना उसने बोला मैं 5 साल का नोहारा फैमिली का बच्चा हूँ मैं नहीं डरूंगा, तो उसने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया।
2: अच्छा,
0: बीच से काट दिया उसको।
2: मतलब डरा नहीं।
1: उस मॉन्स्टर ने इसके पेरेंट्स को पकड़ लिया था, तो अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए उसने ये सब करा था।
2: ओके,
1: मतलब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता है वो,
2: मम्मी पापा के लिए कुछ भी।
3: दीदी उसकी एक छोटी सी बहन है जो पैरों से नहीं चलती, मतलब घुटने घुटने से ऐसे चलती है और कुछ नहीं बोलती, पूरे टाइम की करती रहती है। हीवावारी नाम है उसका। उसको स्पेस से लोग आए थे ना, उसको पकड़ के ले गए थे, बोल रहे थे कि हमारे यहाँ की स्पेस की रानी है ये, हमारी रानी बहुत पहले खो गई थी। उसको वो पकड़ के ले गए, शिनचैन भी स्पेस में चला गया उसी स्पेस वाले यूएफओ पर लटक के। वो वहाँ पे गए ना, उसने अपनी बहन को बचाने के लिए पूरे स्पेस में ढूंढा, महल वगैरह पता चला, उसने अपनी बहन को बचा के दोबारा स्पेस से लेके आ गया। मतलब वो 5 साल का बच्चा है पर मूवी में एक्शन इतना करता है कि बिल्कुल हीरो है वो 5 साल का।
2: 5 साल का हीरो है वो।
3: हाँ
2: तो आपको अच्छी अच्छी बातें भी, मतलब आपको लगता है कोई फनी वर्ड्स है ऐसे लगता है जो आपने कार्टून से सीखे हो, कुछ ऐसा बोलते हो?
0: दीदी वो शिनचैन है ना, मतलब वो मतलब ऐसे किसी भी, मतलब किसी भी कीड़े के ना कपड़े, इंसेक्ट कपड़े डाल के फिर सबको डराता है। उसके बाद है ना वो मतलब जो भी क्राइम कर रहा होता है ना ऐसे उसके पास उड़ के चला जाता है वो इंसेक्ट्स के, क्योंकि उनमें विंग्स लगे होते हैं ना, तो वो ऐसे कूदता है और आराम आराम से उनके पास पहुंच जाता है और उसकी कमर पे लटक जाता है।
2: अच्छा,
0: तो फिर वो क्राइम भी पकड़ लेता है और फन सब को हंसा भी देता है।
2: ओके ठीक है, चलो कार्टून्स तो मतलब बहुत सारी चीजें सिखाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल हमें अच्छे कार्टून सिलेक्ट करके देखना बहुत ज़रूरी है जो हमारे अंदर यू नो वैल्यूज़ या कुछ अच्छी चीज़ें दे, हंसते हंसते मज़े करते करते, ऐसा नहीं है कैसे बोरिंग देख रहे हैं हम, कुछ मज़ा भी आए और अच्छे वैल्यूज़ भी आए, है ना? क्योंकि जो हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्या लगता है आप लोगों को?
3: पड़ता है।
2: हाँ या नहीं?
3: पड़ता है।
2: पहले हाँ या ना बताओ।
0: पड़ता है।
2: पक्का पड़ता है? ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं पड़ता और ऐसे बोल दिया कि पड़ता है?
0: नहीं पढ़ता है।
2: पढ़ता है। आप लोगों को पता है एक ना थ्योरी है जो मीडिया की थ्योरी है, उसको कहते हैं कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी में ये रिसर्च किया गया, जॉर्ज गर्बनर करके एक सोशल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये रिसर्च किया, बच्चों को कार्टून्स दिखाए और जो वायलेंट वाले होते हैं ना, बहुत मार धाड़ वाले कार्टून्स होते हैं, बंदूक से मारना, ऐसे तलवार से मारना, ऐसे वायलेंट वाले कार्टून्स, तो जो बच्चे ऐसे कार्टून्स ज़्यादा दिख रहे थे, उन्होंने रिसर्च किया कि धीरे धीरे क्या हुआ, वो बच्चे बाहर निकलने में थोड़ा डरने लगे, उनको लगने लगा कि कोई मार देगा या कोई कुछ कर देगा, तो उनके वो पहले नहीं डरते थे, पहले वो इंजॉय करते थे अपनी लाइफ आराम से, लेकिन बाद में उनके अंदर डर अंदर तक बैठ गया कि वो अकेले भी जाने में डरने लगे और लगने लगा कोई मार ना दे, और कोई कुछ गुस्सा भी करता था ना तो उनका हाथ ऐसे ऊपर हो जाता था कि मुझे भी मारना है या वो मुझे मार देगा, तो इसलिए उन्होंने ये फिर रिसर्च लिखी और एक थ्योरी बनाई जिसको कहा कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है पता है आप लोगों को? कल्टीवेशन जनरली क्या कल्टीवेशन का मतलब होता है?
1: तो कल्टीवेशन का मतलब होता है खाना जो उगाते हैं।
2: उगाते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि आप जिस तरह की चीजें देखोगे, जिस तरह के कार्टून्स देखोगे, उस तरह के ट्रेट्स, उस तरह की जो चीजें हैं आपके अंदर उग जाएंगी। पहले आप नहीं भी डरते होगे, लेकिन धीरे धीरे आप डरने लगोगे। पहले हो सकता है आप बहुत ऐसी चीजें, किसी को सरकास्टिक या चिढ़ाना या बुली नहीं करते होगे, आप अच्छे बच्चे होगे, लेकिन धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मजाक मजाक के उसमें बुली करने लगोगे, उसको चिढ़ाने लगोगे, किसी की हाइट पे, किसी के वेट पे कमेंट करने लगोगे, किसी को प्रैक्टिकल जोक्स, आप जो होते हैं ना जो किसी को नुकसान भी जिससे पहुंच सकता है, हार्मलेस जोक्स तो कर सकते हैं, ऐसे करने लगोगे, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता है तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में हम वैसे ही बड़े होके बन जाते हैं, तो फिर लोग हमसे फिर बचते हैं, हमारे दोस्त कम बनते हैं फिर धीरे धीरे। और दोस्त तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए?
1: चाहिए
2: चाहिए ना। तो इसलिए आपको जो चूज करना है कंटेंट, जो कार्टून्स है वो देख के चूज करना है ना, इंजॉय तो करना ही है, मजा तो आना ही चाहिए, लेकिन वैल्यूज भी होने चाहिए। ठीक है, चलो अभी फिलहाल करें गुड बाय।
3: बाय बाय।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वो भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक

0: स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में आपने बहुत कुछ जाना। आज हम आपको विवेकानंद के द्वारा लिखे गए साहित्य से चुनिंदा अंशों को उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। सुनिए, उन्होंने हमारे देश में प्रचलित जाति प्रथा और हमारे धर्म के बारे में क्या कहा था।
1: उन्होंने कहा था, हमारा राष्ट्र झोपड़ियों में बसता है और हम मुट्ठी भर लोग जो पक्के मकानों में रहते हैं उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनका अपमान करते हैं। हमारे करोड़ों लोगों के जीवन की नींव धर्म है। हमारे जीवन से अगर धर्म का सहारा छिन जाता है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे।
2: हमारा पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं तथा ऋषियों का जन्म हुआ है। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यहीं, केवल यहीं आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र की एक विशिष्टता होती है, अन्य सब बातें उसके बाद आती हैं। भारत की विशिष्टता धर्म है। समाज सुधार और अन्य सब बातें गौण हैं। हमारी जाति अभी भी जीवित है, धुक-धुकी चल रही है, केवल बेहोश हो गई है। देश का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। तुम्हारी राजनीति, समाज नीति, रास्ते की सफाई, प्लेग निवारण, दुर्भिक्ष पीड़ितों को अन्नदान आदि आदि चिरकाल से इस देश में जैसे हुआ है वैसे ही होगा। अर्थात धर्म के द्वारा यदि होगा तो होगा, अन्यथा नहीं। तुम्हारे रोने चिल्लाने का कुछ भी असर ना होगा। अतः यदि तुम धर्म का परित्याग करने की अपनी चेष्टा में सफल हो जाओ और राजनीति, समाज नीति या किसी दूसरी चीज को अपनी जीवन शक्ति का केंद्र बनाओ तो उसका फल ये होगा कि तुम एक बारगी नष्ट हो जाओगे।
0: हमारी जाति प्रथा के बारे में उन्होंने गहन मनन चिंतन किया था। इसके लिए उन्होंने लिखा है, हम जिन्हें नीच कर्म कहते हैं उन्हें निभाने वाले ही सच्चे वीर हैं।
2: संसार के इतिहास का अनुशीलन करने से प्रतीत होता है कि प्रत्येक नियमों के तहत ब्राह्मण आदि चारों वर्ण क्रम से पृथ्वी का भोग करेंगे। समाज का नेतृत्व विद्या बल से प्राप्त हुआ हो, चाहे बाहुबल से अथवा धन बल से, पर उस शक्ति का आधार प्रजा ही है। जिनके रुधिर स्त्राव से मनुष्य जाति की ये जो कुछ उन्नति हुई है उनके गुणों का गान कौन करता है। लोक जय धर्मवीर, रणवीर, काव्यवीर सबकी आंखों पर सबसे पूज्य हैं, पर जहां कोई नहीं देखता, जहां कोई एक वाह वाह भी नहीं करता, जहां सब लोग घृणा करते हैं, वहां वास करती है अपार सहिष्णुता, अनन्य प्रीति और निर्भीक कार्यकारिता। हमारे गरीब घर द्वार पर दिन रात मुंह बंद करके कर्तव्य करते जा रही हैं, उसमें क्या वीरत्व नहीं है।
1: हमारे देश में विवेकानंद ने सर्वप्रथम हमारा ध्यान उस गुमनाम जनता की ओर खींचा था।
2: ये जो किसान मजदूर आदि हैं, इनकी कर्मशीलता और आत्मनिष्ठा तुम में से कईयों से कहीं अधिक है। ये लोग चिरकाल से चुपचाप काम करते जा रहे हैं, देश का धन धान्य उत्पन्न कर रही हैं, पर अपने मुंह से शिकायत नहीं करते। माना कि उन्होंने तुम लोगों की तरह पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, तुम्हारी तरह कोट कमीज पहनकर सभ्य बनना उन्होंने नहीं सीखा, पर इससे क्या होता है। वास्तव में वे ही राष्ट्र की रीढ़ हैं। यदि ये निम्न श्रेणियों के लोग अपना अपना काम करना बंद कर दें तो तुम लोगों को अन्न वस्त्र मिलना कठिन हो जाए। कलकत्ते में यदि सफाई कर्मचारी एक दिन के लिए काम बंद कर देते हैं तो हाय तौबा मच जाती है। यदि 3 दिन वे काम बंद कर दें तो संक्रामक रोगों से शहर बर्बाद हो जाए। श्रमिकों के काम बंद करने पर तुम्हें अन्न वस्त्र नहीं मिल सकता और इन्हें ही तुम लोग नीच समझ रहे हो और अपने को शिक्षित मानकर अभिमान कर रहे हो।
0: इन श्रमजीवियों को स्वामी जी ने बहुत करीब से देखा था। भारत भ्रमण के दौरान वे इन नीरव कर्मियों से परिचित हुए थे।
2: इन लोगों ने सहस्त्रों वर्षों तक नीरव अत्याचार सहन किया है, उससे पाई है अपूर्व सहिष्णुता। सनातन दुख उठाया जिससे पाई है अटल जीवन शक्ति। ये लोग मुट्ठी भर सत्तू खाकर दुनिया उलट दे सकेंगे। आधी रोटी मिली तो तीनों लोक में इतना तेज ना अटेगा। ये रक्त बीज के प्राणों से युक्त हैं और पाया है सदाचार बल जो तीनों लोक में नहीं है। इतनी शक्ति, इतनी प्रीति, इतना प्यार, बेजुबान रहकर दिन रात इतना खटना और काम के वक्त सिंह का विक्रम। बड़ा काम आने पर बहुतेरे वीर हो जाते हैं। 10,000 आदमियों की वाहवाही के सामने काल पुरुष भी सहज में ही प्राण दे देता है। घोर स्वार्थ पर भी निष्काम हो जाता है, परंतु अत्यंत छोटे से कर्म में भी सबके अज्ञात भाव से जो वैसी ही निस्वार्थता, कर्तव्य परायणता दिखाते हैं, वे ही धन्य हैं। वे तुम लोग हो, भारत के हमेशा के पैरों तले कुचले हुए श्रमजीवियों, तुम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं।
1: स्वामी जी ने इन्हें नर नारायण माना है। इनकी प्रशंसा करते हुए वे आघाते नहीं थे। उन्होंने कहा, वे निरक्षर जरूर हैं, पर उनमें ज्ञान की कमी नहीं है।
2: हमारी जनता को पार्थिव वस्तुओं के बारे में बहुत कम ज्ञान है। हमारे जन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ दरिद्र होना अपराध नहीं है। हमारी जनता हिंसक नहीं है। अमेरिका और इंग्लैंड में मैं बहुत बार केवल अपनी वेशभूषा के कारण भीड़ों द्वारा प्रायः आक्रांत किया गया हूं, पर भारत में मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी कि भीड़ किसी मनुष्य की वेशभूषा के कारण उसके पीछे पड़ गई हो। पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे पशु हैं, उनकी तुलना में हमारे यहां के गरीब देवता हैं। इसलिए हमारे यहां के गरीबों को ऊंचा उठाना अपेक्षाकृत सहज है। अन्य सभी बातों में हमारी जनता यूरोप की जनता की अपेक्षा कहीं अधिक सभ्य है। लोग कहते हैं कि हमारे देश का जन समुदाय बड़ी स्थूल बुद्धि का है, वो किसी प्रकार की शिक्षा नहीं चाहता और संसार का किसी प्रकार का समाचार जानना नहीं चाहता। पहले मूर्खतावश

0: विप्रों ने ही तो धर्मशास्त्रों पर एकाधिकार जमा कर विधि निषेधों को अपने ही हाथ में रखा था और भारत की दूसरी जातियों को निम्न कहकर उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि वे वास्तव में निम्न हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते सोते उठते बैठते हर समय कोई कहता रहे कि तू निम्न स्तरीय है तो कुछ समय के पश्चात उसकी ये धारणा हो जाती है कि मैं वास्तव में निम्न स्तरीय हूं। इसे सम्मोहित या हिप्नोटाइज करना कहते हैं। मैं तो जाति पाति के मामलों में किसी भी धर्म के प्रति कोई पक्षपात नहीं रखता क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एक सामाजिक नियम है और गुण एवं कर्म के भेद पर आधारित है। जाति पाति की ही बात लीजिए। संस्कृत में जाति का अर्थ है वर्ग या श्रेणी विशेष। जाति का मूल अर्थ था प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति को अपने विशेष तत्व को प्रकाशित करने की स्वाधीनता और यही अर्थ हजारों वर्षों तक प्रचलित भी रहा है।
1: उन्होंने समझाया जाति जन्मजात नहीं कर्मजात होती है।
0: जैसे हर एक व्यक्ति में सत्व रज और तम तीनों गुण न्यूनाधिक अंश में विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार ब्राह्मण एवं क्षत्रिय आदि के गुण भी सब मनुष्यों में जन्म से ही न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। समय समय पर उनमें से एक न एक गुण अधिक प्रबल होकर उनके कार्यकलापों में प्रकट होता रहता है। आप मनुष्य का दैनिक जीवन क्रम लें। जब वो अर्थ प्राप्ति के लिए किसी की सेवा करता है तो वो निम्न स्तरीय होता है। जब वो स्वयं अपने लाभ के लिए कोई क्रय विक्रय करता है तो उसकी वैश्य संज्ञा हो जाती है। जब वो अन्याय के विरुद्ध अस्त्र उठाता है तो उसमें क्षत्रिय भाव सर्वोपरि होता है। अब जब वो ईश्वर चिंतन में लगता है भगवान का कीर्तन करता है तो ब्राह्मण तत्व को प्राप्त कर लेता है। ये स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए एक जाति से दूसरी जाति में चला जाना संभव है। यदि नहीं तो विश्वामित्र ब्राह्मण कैसे बन सके। ब्राह्मण का पुत्र सर्वदा ब्राह्मण ही नहीं होता यद्यपि उसके ब्राह्मण होने की संभावना अवश्य होती है। शिक्षा और अधिकार के तारतम्य के अनुसार सभ्यता सीखने की सीढ़ी थी वर्ण विभाग। यूरोप में बलवानों की जय और निर्बलों की मृत्यु होती है। भारत में प्रत्येक सामाजिक नियम दुर्बलों की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है।
2: विभिन्न कार्यों में महारत होने पर जाति विभाग होता है। स्वामी जी ने उसे इस प्रकार रोचक भाव से समझाया है।
0: विभिन्न श्रेणियों में विभक्त होना ही समाज का स्वभाव है, पर ये रहेगा या नहीं, विशेष अधिकारों का अस्तित्व न रह जाएगा। जाति विभाग प्राकृतिक नियम है। सामाजिक जीवन में एक विशेष काम मैं कर सकता हूँ तो दूसरा काम तुम कर सकते हो। तुम एक देश का शासन कर सकते हो तो मैं एक पुराने जूते की मरम्मत भी कर सकता हूँ, किंतु इस कारण तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते। क्या तुम मेरे जूते की मरम्मत कर सकते हो? तुम वेद पाठ में निपुण हो, यह कोई कारण नहीं कि तुम इस विशेषता के लिए मेरे सिर पर पांव रखो। तुम यदि हत्या भी करो तो तुम्हारी प्रशंसा और मुझे एक सेब चुराने पर ही फांसी पर लटकना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसको समाप्त करना ही होगा। यदि मछुआ को तुम वेदांत सिखलाओगे तो वो कहेगा हम और तुम दोनों बराबर हैं। तुम दार्शनिक हो, मैं मछुआ, पर इससे क्या, तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है वही मुझ में भी है। हम यही चाहते हैं कि किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त ना हो और प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए समान सुभीते हो। सब लोगों को उनके भीतर स्थित ब्रह्मत्व संबंधी शिक्षा दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए स्वयं चेष्टा करेगा।
1: उन्होंने कृष्ण और बुद्ध को देखने की नई दृष्टि दी।
0: ये एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि प्राचीन भारत ने जिन दो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया था वे दोनों ही क्षत्रिय हैं। वे थे कृष्ण और बुद्ध। और ये उससे भी अधिक ध्यान देने योग्य बात है कि इन दोनों ही देव मानवों ने लिंग और जाति भेद को न मानकर सबके लिए ज्ञान का द्वार उन्मुक्त कर दिया था।

0: टचीली के सांस्कृतिक दृष्टि से अति निम्न स्तरीय लोगों के स्वस्थ अभ्युदय की उसमें संभावना ही नहीं रही। कम से कम सैद्धांतिक दृष्टि से जाति व्यवस्था ने समूचे भारत को संपत्ति के और तलवार के प्रभुत्व में ना ले जाकर बुद्धि के आध्यात्मिकता द्वारा परिशुद्ध और नियंत्रित बुद्धि के निर्देशन में रखा। अन्य प्रत्येक देश में सर्वोच्च सम्मान क्षत्रिय को दिया गया है, जिसके हाथ में तलवार है उसे दिया गया है। भारत में सर्वोच्च प्रतिष्ठा शांति के उपासक को, श्रमण, ब्राह्मण, भगवत पुरुष को दी गई है। अन्य प्रत्येक देश का जाति विधान एक व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, पर्याप्त इकाई मानता है। संपत्ति, शक्ति, बुद्धि अथवा सौंदर्य किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जन्म का जातीय स्तर त्याग कर कहीं भी ऊपर उठ जाने के लिए पर्याप्त साधन होते हैं। यहां भी व्यक्ति को इस बात का पूरा अवसर है कि निम्न जाति से उठकर उच्च या उच्चतम जाति तक पहुंच जाए। केवल एक शर्त है, परमार्थवाद के जन्मदाता इस देश में व्यक्ति को विवश किया गया है कि वो अपनी अपनी समूची जाति को अपने साथ ऊपर उठाए।
1: स्वामी जी विश्व भ्रमण कर आए थे, हर देश के सामाजिक ढांचे का उन्होंने अध्ययन किया था।
0: जाति वास्तव में क्या है, ये लाखों में से एक भी नहीं समझता। संसार में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां जाति भेद ना हो। भारत में हम जाति के द्वारा ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां जाति नहीं रह जाती। जाति प्रथा सदा इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारत में योजना है कि प्रत्येक मनुष्य को ब्राह्मण बनाया जाए। ब्राह्मण मानवता का आदर्श है। यदि आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सदा निम्न वर्गों को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया गया है। जाति भेद एक सामाजिक प्रथा मात्र है और हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने उसे तोड़ने के प्रयत्न किए हैं। बौद्ध धर्म से लेकर सभी संप्रदायों ने जाति भेद के विरुद्ध प्रचार किया है, परंतु ऐसा प्रचार जितना ही बढ़ता गया, जाति भेद की श्रृंखला उतनी ही दृढ़ होती गई। जाति भेद की उत्पत्ति भारत की राजनीतिक संस्थाओं से हुई है, वो तो वंश परंपरागत व्यवसायों का समन्वय या ट्रेड गाइड मात्र है। हमारी जाति भेद और हमारी प्रथाएं राष्ट्र के रूप में हमारी रक्षा के लिए आवश्यक थी और अब आत्मरक्षा के लिए इनकी जरूरत ना रह जाएगी, तब स्वभावता ये नष्ट हो जाएंगी।
2: स्वामी जी ने इतिहास का उदाहरण देकर समझाया है।
0: यूरोप और अमेरिका में जिस तरह का जाति भेद है, भारतीय जाति भेद उससे अच्छा है। यदि जाति ना होती तो आज आप कहां होते? यदि जाति ना होती तो आपका ज्ञान भंडार और दूसरी वस्तुएं कहां होती? यदि जाति ना होती तो आज यूरोप वालों के अध्ययन करने के लिए कुछ भी ना बचा होता। वो कौन सा स्थल है जहां हम भारतीय समाज को स्थिर खड़ा पाते हैं? ये सदा गतिमान रहा है। कभी कभी जैसे कि विदेशी आक्रमणों के समय में ये गति मंद रही है, पर दूसरे अवसरों पर अधिक तेज रही है। मैं अपने देशवासियों से यही कहता हूं, मैं उन्हें दोष नहीं देता, मैं उनके अतीत में देखता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी देश इससे अच्छा काम नहीं कर सकता था। मैं उन्हें बताता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और उनसे केवल और अच्छा करने के लिए कहता हूं। जाति निरंतर बदल रही है, अनुष्ठान बदल रहे हैं, यही दशा विधियों की है। ये तो केवल सार है, सिद्धांत है जो नहीं बदलता।

0: उन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था की तारीफ करके समझाया कि
1: जाति व्यवस्था का नाश नहीं होना चाहिए, उसे केवल समय समय पर परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। हमारी पुरानी व्यवस्था के भीतर इतनी शक्ति है कि उससे 2 लाख नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है। जाति व्यवस्था को मिटाने की बात करना कोरी बुद्धिहीनता है। नई रीति यह है कि पुरातन का विकास हो। संसार हमारे देश का अत्यंत ऋणी है। यदि भिन्न भिन्न देशों की पारस्परिक तुलना की जाए तो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एवं निरीह भारत का जितना ऋणी है उतना और किसी देश का नहीं। पुराने समय में और आजकल भी उनसे बहुत से अनोखे तत्व एक जाति से दूसरी जाति में पहुंचे हैं। और यह भी ठीक है कि किसी किसी राष्ट्र की गतिशीलता और जीवन तरंगों ने महान शक्तिशाली सत्य के बीजों को चारों ओर बिखेरा है। परंतु भाइयों, तुम ये भी देख पाओगे कि ऐसे सत्य का प्रचार हुआ है रणभेरी के निर्घोष तथा रणसज्जा का सज्जित सेना समूह की सहायता से, बिना रक्त प्रवाह में सिक्त हुए, बिना लाखों स्त्री पुरुषों के खून की नदी में स्नान किए कोई भी नया भाव आगे नहीं बढ़ा। प्रधानता इसी उपाय द्वारा दूसरे देशों ने संसार को शिक्षा दी है, परंतु इस उपाय का अवलंबन किए बिना ही भारत हजारों वर्षों से शांतिपूर्वक जीवित रहा है। उससे भी पहले जिस समय का इतिहास में कोई लेखा जोखा नहीं है, जिस सुदूर धुंधले अतीत की ओर झांकने का साहस परंपराओं को भी नहीं होता, उस काल से लेकर अब तक न जाने कितने ही भाव एक के बाद एक भारत से प्रसृत हुए हैं, पर उनका प्रत्येक शब्द शांति तथा पीछे आशीर्वाद के साथ कहा गया है।
2: स्वामी जी हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं कि हमने अपने पूर्वजों की बनाई गई व्यवस्था पर ठीक से अमल नहीं किया।
1: हम भारतीय अतएव अतीत का जितना ही अध्ययन करेंगे उनका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। और जो कोई इस अतीत के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को विज्ञ करने की चेष्टा कर रहा है वो स्वजाति का परम हितकारी है। भारत की अवनति इसलिए नहीं हुई कि हमारे पूर्व पुरुषों के नियम एवं आचार व्यवहार खराब थे, वरन उनकी अवनति का कारण ये था कि उन नियमों और आचार व्यवहारों को उनकी न्याय संगत परिणति तक नहीं ले जाने दिया गया।
0: उन्होंने हमारी कमजोरियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है, सदियों से व्याप्त सामाजिक बुराइयों को गिनाया है। उन्होंने कहा,
1: मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जन समुदाय की उपेक्षा है, और वो भी हमारे पतन का एक कारण है। भारत में 2 बड़ी बुरी बातें हैं, स्त्रियों का तिरस्कार और गरीबों को जाति भेद द्वारा पीसना। तुम अपने देश के लोगों की ओर एक बार ध्यान से देखो तो मुंह पर मलिनता की छाया, कलेजे में न साहस न उल्लास, पेट बड़ा, हाथ पैरों में शक्ति नहीं, डरपोक और कायर यथार्थ राष्ट्र जो झोपड़ियों में निवास करता है, अपना पौरुष विस्मृत कर बैठा है, अपना व्यक्तित्व खो बैठा है। इस भारत भूमि में जन समुदाय को कभी भी अपनी आत्मस्वत्व बुद्धि को दीप्त करने का मौका नहीं दिया गया। हिंदू, मुस्लिम या ईसाई के पैरों से रौंदे वे लोग ये समझ बैठे हैं कि जिस किसी के पास पैसा हो वे उसी के पैरों के तले कुचल जाने के लिए ही पैदा हुए हैं।
2: ये पद दलित लोग ही भारत की ऊर्जा शक्ति हैं, इन्हीं से घन पैदा होता है।
1: वे लोग जो किसान हैं, वे जो लकड़हारे जुलाहे, जो भारत के नगण्य मनुष्य हैं, वे जाति विजित स्वजाति निदित छोटी छोटी जातियां हैं, वही लगातार चुपचाप काम करती जा रही हैं, अपने परिश्रम का कुछ भी नहीं पा रही हैं। फिर जिनके शारीरिक परिश्रम पर ही ब्राह्मणों का आधिपत्य, क्षत्रियों का ऐश्वर्य और वैश्यों का धन धान्य निर्भर है, वे कहाँ हैं? समाज का मुख्य अंग होकर भी जो लोग सदा सब देशों में जघन्य निम्न स्तरीय कहकर पुकारे जाते हैं उनका क्या हाल है? हे भारत के श्रमजीवियों, तुम्हारे नीरव सदा ही निदित हुए परिश्रम के फलस्वरूप बाबिल, ईरान, अलेक्जेंड्रिया, ग्रीस, रोम, वेनिस, जिनेवा, बगदाद, समरकंद, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डेनेमार, डच और अंग्रेजों का क्रमान्वय से आधिपत्य हुआ और उनको ऐश्वर्य मिला है, और तुम कौन सोचता है इस बात को?

0: हमने इन निम्न वर्ग को हमेशा ज्ञान के आलोक से दूर रखा है, पर अब वे भी जाग रहे हैं। आज से 150 साल पहले स्वामी जी ने हमें आगाह कर दिया था।
1: जीवन संग्राम में सदा लगे रहने का कारण निम्न श्रेणी के लोगों में अभी तक ज्ञान का विकास नहीं हुआ। ये लोग अभी तक मानव बुद्धि द्वारा परिचालित यंत्र की तरह एक ही भाव से काम करते आए हैं, और बुद्धिमान चतुर व्यक्ति इनके परिश्रम तथा कार्य का सार तथा निचोड़ लेते रहे हैं। सभी देशों में इसी प्रकार हुआ है, परंतु अब वे दिन नहीं रहे। निम्न श्रेणी के लोग धीरे धीरे ये बात समझ रहे हैं और इसके विरुद्ध सब सम्मिलित रूप से खड़े होकर अपने समुचित अधिकार प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं। यूरोप और अमेरिका में निम्न जातीय लोगों ने जागृत होकर इस दिशा में प्रयत्न भी प्रारंभ कर दिया है, और आज भारत में भी इसके लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। निम्न श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा आजकल जो इतनी हड़तालें हो रही हैं, वे इनकी इसी जागृति का प्रमाण है। अब हजार प्रयत्न करके भी उच्च जाति के लोग निम्न श्रेणियों को अधिक दबाकर नहीं रख सकेंगे। अब निम्न श्रेणियों को न्याय संगत अधिकार की प्राप्ति में सहायता करने में ही उच्च श्रेणियों का भला है।
2: पद दलितों की दुर्दशा की जड़ में है उनकी गरीबी, स्वामी जी ने कहा।
1: जिनका ऐशो आराम में लालन पालन और शिक्षा लाखों पद दलित परिश्रमी गरीबों के हृदय के रक्त से हो रही है, और फिर भी जो उनकी ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें मैं विश्वास घातक कहता हूँ। इतिहास में कहां और किस काल में आपके धनवान पुरुषों ने, कुलीन पुरुषों ने, पुरोहितों ने और राजाओं ने गरीबों की ओर ध्यान दिया था? वे गरीब जिन्हें कोल्हू के बैल की तरह पेलने से ही उनकी शक्ति संचित हुई थी। भारत वर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है जन साधारण की गरीबी। पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेता गण सदियों से उन्हें कुचलते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भारत के गरीब बेचारे ये तक भूल गए हैं कि वे भी मनुष्य हैं।
0: और अंत में उन्होंने वेदांत की सीख दी।
1: ये जाति डूब रही है, लाखों प्राणियों का शाप हमारे सिर पर है। सदा ही सहस्त्र जलधार वाली नदी के समीप रहने पर भी तृष्णा के समय पीने के लिए जिन्हें नाले का पानी दिया, उन अगणित लाखों मनुष्यों का सामने भोजन के भंडार रहते हुए भी जिन्हें हमने भूखों मार डाला, जिन्हें हमने अद्वैतवाद का तत्व सुनाया पर जिनसे तीव्र घृणा की, जिनके विरोध में हमने लोकाचार का आविष्कार किया, जिनसे जुबानी तो ये कहा कि सब बराबर हैं, सब वही एक ब्रह्म है, परंतु इस उक्ति को काम में लाने का तिल मात्र भी प्रयत्न नहीं किया। हम लोगों को अपने आप में एक आंतरिक महानता लानी है, और तब जो कार्य हम करते हैं उन्हें वो महानता प्रदान करनी है। यही चरित्र है। वेदांत इसे संसार में महानतम ऊर्जा मानता है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए 10 जून की बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और आज के दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और आइए बलराज बल्ला, देवेंद्र जाजारिया, प्रकाश पादुकोण, शिवदिन राम जोशी, MS गोपाल कृष्ण, राहुल बजाज, गोपीनाथ दामोदर मेनन, RP जानकी रमन, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही भाई वीर सिंह, अभिनेता जीवन, गिरीश कन्नाड, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए मैं आप सभी को ले चलता हूँ आज के दिन विशेष के साथ साथ आज के दिन की कुछ प्रेरणादारी सुंदर विचारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इंतज़ार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, इसलिए जो भी करना हो अभी करना शुरू कर दें। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। शाम के 4:00 कुछ समय हो गया है और आप सभी शाम को जो है विशेष रूप से एक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन डे शुरू हो जाता है। दिन पूरा ख़त्म होकर एक नई शुरुआत शाम की हो जाती है, तो अब एक परिवर्तन की वेला है। आज आप सभी को इस वेले की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपने विचारों को परिवर्तित करते जाइए और खुशी के साथ इस गाने को सुनिए। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आप सभी को ले चलते हैं आज के दिन विशेष के बारे में और बलराज बल्ला के बारे में बात करते हैं। भारत के बहुत ही पॉपुलर क्रांतिकारियों में से एक, इनका पिता महात्मा हंसराज प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और डीएवी कॉलेज लाहौर के प्रथम प्रधानाचार्य थे। बलराज बल्ला बड़े ही साहसिक थे और जोखिम उठाने को सदा तैयार रहते थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे गांधी जी के अनुयायी हो गए और क्रांतिकारी बलराज बल्ला का जन्म आज ही के दिन 1888 को पंजाब के गुंजरवाला जिले में हुआ। महात्मा हंसराज इनके पिता थे, जो एक प्रसिद्ध लाहौर के शिक्षाविद थे। बलराज बल्ला ने 1911 में एमए की परीक्षा पास करने के बाद राज बिहारी बोस और खुदीराम बोस आदि के प्रभाव से वे छोटी उम्र में ही क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए और शामिल होने के बाद इस कारण उनकी विद्यालय की डिग्रियां वापस ले ली गई। और बलराज बड़े साहसी थे और बड़े बड़े खतरा उठाने के लिए भी तैयार थे और उनका विश्वास था कि आज़ादी के पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम्राज्यवाद के कुछ प्रतिनिधियों की जान लेने या सरकारी बैंकों को लूटने में कोई बुराई नहीं मानते थे। अब क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने अंजाम देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो है चीज़ें इनके समझ में आने लगी और फिर बलराज वाइसराय की गाड़ी पर बम फेंकने का एक विशेष जो है प्लान बनाया। और अभियोग वर्ष में 1919 में बलराज बल्ला को 3 वर्ष की सजा हुई थी इस कार्य के लिए। फिर उसके बाद दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में भी उन पर मुकदमा चला और कठोर कारावास की सजा उन्हें दी गई। बलराज बल्ला भारत के ही बहुत ही पॉपुलर क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के बहुत ही करीबी थे और अपने कार्य के लिए सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से बलराज बल्ला ने एक बार गुप्त रूप से जर्मनी की भी यात्रा कर ली। जीवन के अंतिम समय में और बलराज बल्ला का राजनीतिक हिंसा पर से विश्वास छूट गया था और वे महात्मा गांधी के अहिंसक मार्ग को अपनाना चाहते थे और फिर इस तरह से आखिरी दिनों में उन्होंने अहिंसक मार्ग अपनाकर अपना जीवन को जिया। लेकिन 26 अक्टूबर 1956 को बलराज बल्ला का देहांत हुआ। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें बलराज बल्ला के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुके रुके रुके। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बलराज बल्ला के बारे में जानने के बाद आइए एक खिलाड़ी के बारे में आपको बातें बताना चाहूँगा, झांझरिया के बारे में। झांझरिया देवेंद्र इनका नाम है और ये अपने ही स्टेट के हैं और चूरू जिला से बिलोंग करते हैं। भारत के ऐसे एथलीट है, ब्राज़ील के शहर रियो आयोजित ओलंपिक खेलों में 2016 की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पैरा ओलंपिक में ये उनका दूसरा गोल्ड मेडल रहा। 12 साल पहले 2004 में पैरा ओलंपिक में ही उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम बढ़ाया था, मान बढ़ाया था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 के देवेंद्र झांझरिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता, जबकि श्रीलंका के दिनेश प्रियान हैरात ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुनाए हैं। तो चलिए देवेंद्र जी के बारे में कुछ अधिक जानकारी आपको देते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1981 को राजस्थान चुरू जिले में हुआ। मात्र 8 साल की उम्र में देवेंद्र के साथ ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसके चलते उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। वे एक पेड़ पर चढ़ रहे थे कि तभी उनका हाथ बिजली के तार से जा टकरा और 11,000 वोल्ट के करंट के कारण पूरा हाथ झुलस गया। तमाम कोशिशों के बावजूद देवेंद्र का बायां हाथ काटना पड़ा और ये उनके और उनके परिवार के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। देवेंद्र का हाथ कटा लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर जीने का जज्बा बना रहा। उनके मनोबल उनके घर वालों को हिम्मत दी और देवेंद्र ने घर वालों ने काफ़ी हिम्मत देते हुए उनको संभाला और उनके हिम्मत से देवेंद्र जी अपने आप को बहुत ही अच्छा फील किया और जल्दी ठीक भी हो गए। लेकिन हिम्मत दी और हिम्मत के कारण एथलेटिक की दुनिया में करियर बनाने का फैसला उन्होंने कर ही लिया। आखिर उनका जज्बा और हिम्मत काम आया, परिवार का सहयोग काम आया। देवेंद्र झांझरिया ने एथलेटिक्स में 2004 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। तब उनके खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने 62.15 मीटर दूर बाला फेंका था, लेकिन रियो के पैरा ओलंपिक खेल में देवेंद्र ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार उन्होंने 63.15 मीटर दूर बाला फेंका। तो इस तरह से पैरा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, इन सभी में उन्होंने अच्छा काम करते हुए देवेंद्र झांझरिया को 2004 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। वे पहले ऐसे पैरा ओलंपियन खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री का खिताब मिला है। वो 2017 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। और उपलब्धियों की बात करें तो 2012 में देवेंद्र झांझरिया पद्मश्री से सम्मानित होने वाले देश के पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने। देवेंद्र झांझरिया ने 2013 में फ्रांस के लियोन में आयोजित आईपीसी एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और 2014 में देवेंद्र झांझरिया फिक्की पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए और टोक्यो पैरा ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया 2020 में। तो ये थी कुछ खास बातें पैरा ओलंपिक खिलाड़ी विशेष देवेंद्र झांझरिया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं एक और खूबसूरत विचार के साथ। आपको जोड़ना चाहूँगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और कहते हैं कि महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। ये जॉन लुबॉक का सुंदर विचार आपके लिए। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, एक संत के बारे में बात करते हैं जो खांडेला शिखर राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं और अपने समय के जाने माने कवि और संत। इनके द्वारा रची गई सभी रचनाएं बहुत ही अलग थी और इनकी रचनाओं का मुख्य विषय ज्ञान, वैराग्य, प्राकृति चित्रण, प्रेम और भक्ति, भारतीय त्यौहार, देश चिंतन, पाखंड और समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार करना था। शिवाधीन राम जोशी, जी हाँ, इनका नाम है शिवाधीन राम जोशी। साहित्यिक भाषा ब्रज मिश्रित हिंदी इनकी थी और इनका साहित्य कविता के रूप में उपलब्ध है। जो साहित्य इन्होंने लिखा है वो कविता के रूप में संकलन करके लोगों के बीच में इन्होंने लाया है। और शिवदीन राम जोशी का जन्म आज ही के दिन 1921 को राजस्थान के शिखर जिले में खंडेला नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सूरजभान तथा माता का नाम लक्ष्मी था। शिवदीन राम जोशी ने अपनी अल्प अवस्था 10 वर्ष की उम्र में ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था। उनका ये लेखन कार्य जीवन पर्यंत चलता ही रहा। साहित्यिक बात करें तो इनके साहित्य में सवैया, मनहर, मनतंग, कुंडली छंद और कविता का प्रयोग तथा धमाल, भजन और गजलों का संवेश है। रचनाओं का विषय ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, प्राकृतिक चित्रण, प्रार्थना और उपदेश के साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, पाखंड, भ्रष्टाचार और काला चिंतन उनके साहित्य का मुख्य केंद्र रहा है। शिवदीन राम जोशी का 90% साहित्य अप्रकाशित रही है। शिवदीन राम जोशी की रचनाओं में कविता और छंद और आदि आदि चीज़ें शामिल थी, लेकिन उनकी कुछ पुस्तकें जो छंद, तरंग, अनुभव, लहर, कृष्ण सुदामा, चारित्र, कई मुख्य ये पुस्तकें उनकी बहुत प्रचलित हैं। और ब्रज मिश्रित खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू, फारसी और इस तरह के अलग अलग अंग्रेजी से भी इनका प्रयोग हुआ। आकाशवाणी अजमेर और जयपुर से भी इनकी रचनाओं का प्रसारण कई बार हुआ। राजस्थानी भाषा के साहित्य गोवर्धन सिंह शेखावत द्वारा संपादित शेखावटी के साहित्यकार व रघुनाथ प्रसाद तिवारी उमंग के ग्रंथ खांडेला क्षेत्र का सांस्कृतिक वैभव में भी शिवदीन राम जोशी जी का वर्णन आता है। और समय समय पर संतों के अपने आगाध अनुभव, ज्ञान, हृदय स्पर्शी वचनों और लेखन के द्वारा समाज व व्यक्ति में व्याप्त बुराइयों को दूर करके एक नई दिशा प्रदान की है। भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए लोगों की जीवन धारा को सही मार्ग की ओर मोड़ने का कार्य किया। शिवदीन राम जोशी का कार्य भी मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करना ही रहा। शिवदीन राम जोशी का निधन 27 जुलाई 2006 को हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें शिवदीन राम जोशी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर। इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आप सभी को ले चलता हूं एक और व्यक्ति के बारे में, राहुल बजाज के बारे में। भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे। वो बजाज समूह के अध्यक्ष थे, जिसे भारत और विदेश में विनिर्मित उत्पादों और वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए जाना जाता है। बजाज समूह का व्यवसाय विशेष रूप से टू व्हीलर, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक लैंप, पवन ऊर्जा, विशेष मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील, फ्रोजिंग बुनियादी ढांचे के विकास, सामग्री हैंडलिंग उपकरणों, यात्रा जनरल और जीवन बीमा और निवेश के वित्तीय सेवा जैसे क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं, राहुल बजाज जी के बारे में, एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में। तो 10 जून 1938 को बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ। बजाज व्यवसायिक घराने की नींव राहुल बजाज के दादा जमनालाल बजाज ने रखी थी। आने वाली पीढ़ियों ने बजाज घराने के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। राहुल बजाज ने कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त की थी। फिर उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र ऑनर्स की डिग्री और मुंबई विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। और इस तरह से एक टीवी इंटरव्यू में बजाज ने बताया था कि उन्हें अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया है, उनका पूरा श्रेय उनकी पत्नी रूपा बजाज को जाता है। और अपनी पत्नी के साथ हुई शादी से जुड़ी एक अनोखी बात भी शेयर की। राहुल बजाज ने यह भी कहा था 1961 में, जब उनकी शादी मराठी ब्राह्मण परिवार की रूपा गोलप से हुई, तो वह उस दौर के सभी राजस्थानी मारवाड़ी उद्योग घरानों में होने वाली पहली लव मैरिज थी। ऐसे में दोनों परिवारों के बीच तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने इस बात को समझा और मुश्किल को आसान कर लिया। अब बात करते हैं उनके करियर की थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं श्रवण राठौर, ऑफ नदीम श्रवण टीम, और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, और बातें कर रहे थे हम लोग विशेष राहुल बजाज के बारे में। जी हाँ, करियर की बात करें तो राहुल बजाज ने सन 1965 में बजाज समूह की बागडोर संभाली। कुशल मैनेजिंग कला के बारे में सभी चीज़ों को इन्होंने विशेष रूप से कंपनी के लाइसेंस राज जैसे कठिन मुश्किल और सफल और सभी चीज़ों में इन्होंने सफलता हासिल की और नई बुलंदियों को इन्होंने छुआ। 1980 के दशक में बजाज दो पहिए स्कूटर का पहला निर्माता था। समूह के चेतक ब्रांड स्कूटर की मांग इतनी ज़्यादा थी कि इसके लिए 10 साल तक का वेटिंग पीरियड था। राहुल कई कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। आर्थिक क्षेत्र और उद्योग दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा 2006 और 10 के लिए चुना गया। उनको आईआईटी रुड़की सहित 7 विश्वविद्यालयों द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि से उपाधि प्रदान की गई। हमारा बजाज ने पहुंचाया घर घर। जी, बजाज ऑटो पहले मुख्य तौर पर 3 व्हीलर का काम करती थी, जिसकी नींव राहुल बजाज के पिता कमलनाथ पान बजाज ने रखी थी। आज भी बजाज ऑटो दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। लेकिन 1972 में बजाज ऑटो ने चेतक ब्रांड नाम का स्कूटर इंडियन मार्केट में उतारा। इस स्कूटर ने बजाज को देश के कोने कोने और घर घर में पहचान दिलाई। स्कूटर ने भारत के मध्य वर्ग को एक नया सपना, या यूं कहे पहला सपना दिया। बजाज चेतक के लिए कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर हमारा बजाज स्लोगन तैयार किया। इस स्लोगन ने कई पीढ़ियों तक लोगों के मन पर राज किया। आज भी इसे हिंदुस्तान के सबसे सफल मार्केटिंग कैंपेन में से एक माना जाता है, हमारा बजाज। जी हाँ, आइए, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, और विशेष रूप से पुरस्कार और सम्मान की बात करें या भारतीय बिजनेस जगत की कहानियों की बात करें तो मंजूल पब्लिक सिंह नामक पुस्तक के मुताबिक कमल नयन बजाज के पहले बेटे के लिए राहुल नाम जवाहरलाल नेहरू ने खुद चुना था। इसे लेकर उनकी बेटी इंदिरा नाराज हो गई थी। दरअसल इंदिरा जी की इच्छा थी कि वह अपने बेटे का नाम राहुल रखें। बाद में इंदिरा जी के पोते का नाम राहुल गांधी रखा गया। खास बात यह है कि राहुल बजाज ने अपनी पहली संतान का नाम राजीव रखा। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं जुड़ी इनके साथ में, और फिर आर्थिक और व्यापार के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए राहुल को अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्रदान किया गया, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा अलुमिनी अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको। और 84 साल की उम्र में राहुल बजाज का निधन 12 फरवरी 2022 को हुआ। 5 दशक तक बजाज समूह की जिम्मेवारी संभालने वाले राहुल बजाज ने साल 2021 से ही कारोबार में अपनी सक्रियता कम

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ चैलेंज, जीवन एक सुंदर एक चुनौती है, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, है ना। मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ। उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन में गए, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहा है टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विद योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माय लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत

मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना, परिस्थिति आई लेकिन उस परिस्थिति को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े। आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज आप जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप एक्सेप्ट करो। और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने होता ना तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बीच बीच में अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो और अपनी जो जीवन की जो खुशी, द हैप्पी मोमेंट्स, शेयर इट विद एवरीवन, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? God's beautiful answer was, the thing that surprises me the most about these human beings, they invest their complete health to gain wealth, and after many many years, they have to reinvest their complete wealth to regain health. कहा जाता है जान है तो जहान है, और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें to do some exercise. अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बीन डिवाइस बाई डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर, अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा, कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन, तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो। और जब मैं कहूंगा टू, तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ, चलिए। ओके, हियर वी गो। वन टू, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके, एक और बार करेंगे। वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वी बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है, और वो है जब मैं कहूंगा वन, तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो जब मैं कहूंगा वन, तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू, तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से, बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो, वेरी गुड वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो, या या या। फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, यस, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का

बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ। कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या? जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहे? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे, राइट? भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं। आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना? जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, ओके? यू नीड टू हेल्प एवरीवन। इसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं। एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी। इसे आज भी आप देखो, मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। इसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बनता है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पीने ना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो आवाज

0: में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदारी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए।

0: की नहीं, वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
1: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है, वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
0: फिर तुम शुरू हो गई।
1: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
0: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रगति का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, मैंने 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी पवित्र मल्लिक को। और आज हमें खुशी है, बहुत दूरस्थ जगह जो कि पहाड़ी का गोद में बसा हुआ सुरपगला गांव है, वो ग्राम पंचायत में स्कूल है, आंगनबाड़ी है और पंचायत ऑफिस जो कि सरकार का जो रोजगार गारंटी फैमिली काम चल रहा है, तो हर ग्राम पंचायत का आवाज को आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। तो चाहे प्रशासन गांव के संघ हो, चाहे पोषण को लेकर जो आंगनबाड़ी में कार्यक्रम हो, चाहे स्कूल के टैलेंट बच्चों को एक मंच देते हैं, तो आज माताओं को एक मंच मिलेगा, एक स्टेज मिलेगा, जिस स्टेज का जिस मंच का माध्यम से अपना संस्कृति, अपना लोकगीत, अपना जो आदिवासी में जो मिठास है, जो गीत आज बारी बारी प्रस्तुत होगा। मैं आज पहुंचे नरगा में जो कि सुरपगला स्थित छोटा सा फली है, तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है जो कि मैट जी, तो उनको भी स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। और ग्रामवासियों की तरफ से, सभी प्रशासन वर्ग की तरफ से और खासकर रेडियो मधुबन की तरफ से उनको स्वागत करते हैं। सर जी आपको स्वागत है। श्रीमान जी आप अपना परिचय दीजिए, बचपन पढ़ाई और यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपका प्रेरणा का स्रोत कौन, आपको इतना प्रेरणा दिया जो यहाँ तक माताओं का जो दिल का बात हो, तो उनका एटेंडेंस हो, सब चीज करते हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम सजल खान, मैंने अभी तक एम कॉम किया है। क्या अभी को बच्चे चालू है अपने, क्या बताए इनको, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं।
0: कर्म कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे एम ए करे चाहे बी ए करे, लेकिन अपना जो क्वालिटी है, अपना जो हुनर है, अपना जो प्रतिभा है, जन जन तक देने के लिए ये एक मौका है, क्योंकि गांव का जो सेवा प्रशासन यहाँ से शुरू होता है। तो खान साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इतना सुंदर में अपना पढ़ाई करते हुए भी, कॉम्पिटिशन तैयारी करते हुए भी, आज अपना पैर पर किसको ऊपर डिपेंड नहीं रहकर, आज जो भी मिल जाए नौकरी वो नरगा में जो मेट का काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि इन लोग का जो ग्रास रूट जमीन स्तर पर आप काम दे रहे हैं बहुत अच्छा लगा आपसे। तो आगे बढ़े होकर मैंने जो आपका लक्ष्य रखे, क्या पोस्ट के लिए, चाहे जो कमर्स आप लिए हैं, तो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आजकल तो बैंकिंग में भी नौकरी कर सकते हैं, तो इसका प्रेरणा का धन्यवाद किसको देंगे, जितना पढ़ाई लिखाई किए, आपका प्रेरणा का स्रोत कौन बना है, मैंने आप किसको थैंक्स देंगे।
1: भाई
0: साकिर भाई को धन्यवाद देंगे, क्यों,
1: उन्होंने बड़ा
0: भाई का अवदान ज्यादा है, इसलिए कोई बोलता भाई शत्रु कभी नहीं होता, भाई मित्र ही होता है। शादी करने बाद पहले इधर उधर थोड़ा उल्टा सुलटा होता है, लेकिन जब तक परिवार में दो भाई रहते तो भाई का अवदान रहता ही है और कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं ना, भरत और राम जी का दो भाई इतना सहयोग देते थे। तो आज अचानक मैं आपके पास पहुंचे तो आपको क्या लगा, क्या महसूस कर रहे अभी? कोई डर नहीं है, हम तो डरते, आपको क्या डर है, आपका गांव है और आपका इतना दोस्त, मेरा तो दोस्त तो भगवान ही मेरा दोस्त है ना, चलो तो उनका सहयोग से आज यहाँ तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुनेंगे माताओं का आवाज होगी लोकगीत के माध्यम से, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। अच्छा सभी ताली बजा एक बार जोर से, ताली बजा, ताली का साथ कार्यक्रम को ब्रेक देते हैं, मिलते हैं अगला प्रस्तुति के लिए।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज तो पूरा आकाश का नीचे बैठकर पूरा प्रकृति का आनंद ले रहे क्योंकि शुद्धता देखने को मिलता है, कोई अशुद्ध नहीं है। और जब गांव में जाते इस तरह शुद्धता मिलता है, शहरांचल में इतना शुद्धता नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर शुद्धता और भाषा में भी बहुत शुद्धता, खुशी है क्योंकि लोक भाषा में जो रस है, जो मिठास है, सही में देखने को मिलता है। भले हमें समझ थोड़ा बहुत आता है लेकिन इतना नहीं आता, लेकिन उनका जो आवाज कहाँ पर सीखते नहीं, एक कोई भजन सीखने के लिए कारा क्या लोग कहाँ जाते नहीं, लेकिन एक दूसरे को देखते सुनते सीख जाते हैं, बच्चे भी सीख जाते हैं बड़ों को देखकर। उनके लिए कोई ट्रैक नहीं, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर भी कहाँ पर सीख जाते हैं, कैसे सीख जाते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन चलते हैं अगला प्रस्तुति के लिए, और एक प्रस्तुति होगा वो भी अपना लोक भाषा में, मुंशी फर्स्ट सॉन्ग। चलिए सुनते हैं अगला प्रस्तुति, वो भी आदिवासी गीत।

0: ताली बजा दो से
1: ताली बजा कर खुश कर देते, क्योंकि ताली बजाने में कोई पैसा नहीं लगता है और चेहरा में खुशी छाया होता है, खुशी आता है और गोला फूल जैसे चेहरा आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताए हमारो?
2: गीता।
1: गीता बा आज तो गीता ज्ञान और गीता माध्यम से गीता को ज्ञान कहते हैं, क्योंकि भगवान ने अल्लाह ने दिया था, खुदा ने दिया था गीता ज्ञान, भगवान का ज्ञान आज तो मिलेगा ही। और खासकर हमारा गीता देवी नाम जैसे आज तो उनका कंठ में माँ क्या बोलेंगे, सरस्वती का विराजमान है और इतना सुंदर प्रस्तुति किए, वंश मोर एक के बाद एक गीत प्रस्तुत करने किए, तो नमन करते हैं नाम का साथ गीता को और उनका टीम साथी सभी को धन्यवाद। जितना आई लोग है, बहन लोग है, भाई लोग है, सभी को माताएं लोग भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वंदे मातरम का जहाँ नारियों का सम्मान होगा वो देश महान बनेगा, वो गाँव महान बनेगा और खुद महान बनेंगे, इसलिए नारियों को सम्मान करना चाहिए। भाई लोग पांडव लोग तो है ही है, पांडव तो पीछे पड़ते हैं, लेकिन शक्ति सेना नारियों के पास इतना शक्ति है, शिव शक्तियाँ कहते हैं, शिव जी का शक्तियाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चलेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था सुरपगला स्थित नरगाय में माताओं का आवाज, उनका आवाज ही उनका पहचान आज मिल रहा है।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक अप, और हम खान साहब को सुन रहे थे रेडियो कार्यक्रम में, बहुत सुंदर अपने सजे अपना करियर को लेकर बात किए। इसके बाद धन्यवाद का पात्र किसको देना चाहिए वो भी बताए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए माताओं का एक भजन सुनेंगे, वो भी सामूहिक रूप में, क्योंकि सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। तो आज हमें खुशी है क्योंकि इस तरह दूरस्थ जगह में सब मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे और इस कार्यक्रम को रंगारंग कर रहे, क्योंकि अपना आवाज ही अपना पहचान होगा, सुर पगला का आवाज। तो लीडर कौन हमारा आई में बैठे हैं? आई जी क्या नाम है? समर हूँ नाम
1: कश्मीर।
0: हाँ, ताली बजा भाई उनके लिए, ताली बजा जोर से। आज तो मनोरंजन का साथ गीत भजन होगा। चलिए एक गीत सुनेंगे, सुनेंगे गीत सुना।

बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर प्रस्तुति के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ इतना सुंदर प्रस्तुति के। जब दूरस्थ जगह में आए तो दूर से ही उन लोग का आवाज सुनने को मिल रहा, तो आज आकाशवाणी में आवाज जा रहा है। माताओं का, भाई लोग का, बहनों का और भाई लोग का जो आवाज स्वयं में शुद्धता देखने को मिलता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक गीत होगा, वो भी सामूहिक लोकगीत होगा, क्योंकि हमारा श्रोता मित्र और खासकर जो आस्था विश्वास भक्ति भावना में ओत प्रत होते उनको आज एक प्रेरणा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। आज तो कंपटीशन हो रहा है क्योंकि आदिवासी का साथ और हम लोग भी साथ और हमारा रबारी समाज का भी साथ, एक गुलदस्ता बनेगा, फूल जैसे बनता ना हमेशा, तो आवाज का भी गुलदस्ता बनेगा। सबका आवाज से ही हमारा कार्यक्रम सुंदर रूप में प्रस्तुति होगा। चलिए नाम से नाम बताओ।
3: मगु।
2: मगु।
3: सजना।
2: सजना। अरे वाह।
3: लीलू।
2: लीलू। सबको धन्यवाद और हमारा सभी गीता का साथी सभी को भी धन्यवाद देते हैं। चलिए एक रबारी गीत वो भी हमारा अपना भाषा में सुनाएंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: क्या खूब है, मीरा नाचेगी और राधा तो रुक नहीं पाएगी, मीरा राधा सभी और हमारा गीता अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे, वो भी बोला हम भी काम नहीं है, वो भी आज एक गीत का साथ आज नाचेंगे गाएंगे और हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे, क्योंकि कभी कभी इस तरह मौका मिलता है। घर में रहते माताएं लोग, आए लोग घर में रहते लेकिन सात दीवार में अपना मन को दुखी कर रहते, लेकिन इस तरह काम जो सरकार देता है सब आ जाते हैं और काम का साथ हरि भजन करते हैं, जैसे अपना लोकगीत एक दूसरे को देखकर सीख जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेंगे अगला प्रस्तुति, क्योंकि हम तो जाने के लिए इच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबका आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि इस तरह इतना दूरस्थ जगह में आए और भजन न हो ही नहीं सकता है। तो बोलते हैं और एक गीत गाएंगे, वो भी नृत्य का साथ डांस भी करेंगे, क्योंकि जो दिखाई नहीं देगा क्योंकि रेडियो है। तो सुनते हैं अगला प्रस्तुति के लिए, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
1: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें बहुत खुशी है आज सुरपगला स्थित नरोगा में पहुंचे, क्योंकि नरोगा में जो माताएं बहनें और भाई लोग अपना रोजगार करते हैं उसका साथ साथ गीत गाकर मनोरंजन कराते हैं और खुद को खुशी महसूस देते हैं और सबको खुशी कराते हैं। खुशी बांटना भी बड़ी बात है, खुशी बांटना है और खुशी में रहना है। तो आज खुशी से एक गीत गाएंगे गीता और उनका।

Το νέκαι μου νέκαι.

0: Dale, buenas tardes. बहुत बहुत धन्यवाद भाई मैंने तो सोचा नहीं था इस तरह प्रस्तुति करने का होगा क्योंकि पहला बार आए और माताएं बहुत चढ़कर अपना भाव को भावना को रखें। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सबका नाम तो मुझे मालूम नहीं, खाली गीता को मालूम है क्योंकि गीता अपना नाम बताया है ना। तुम्हारा नाम क्या था? मेरा
1: कैसे
0: आई तुम्हारा
1: सावरी
0: और सभी कितना नाम पूछेंगे तो एक घंटा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा सभी को राम राम, ओम शांति।
2: दिस इज आदित्य राज कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू ब्रह्म कुमारीज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केन हो। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त। इस बुधवार की शाम को कुछ और सुरीला, कुछ और खुशनुमा बनाने के लिए दोस्तों, हफ्ते के ठीक बीच का दिन है आज, यानी वेनसडे, बुधवार। आज हफ्ता, आधा हफ्ता गुजर चुका है, आधा बाकी है। कुछ लोग वीकेंड के इंतजार कर रहे होंगे, तो कुछ आज दिन भर की भाग दौड़ के बाद बस एक कप चाय लेकर सुकून से बैठे होंगे। चाहे आप अपने घर की बालकनी में हो, ऑफिस में घर लौट रहे हो, या बस यूं ही रेडियो ऑन करके बैठे हो, दिल थाम कर बैठे, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा शो खुशी के नगमे, दिल की बातें। जी हाँ, आज की शाम हम बात करेंगे उन छोटी छोटी खुशियों की जो अक्सर हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हम उन्हें महसूस करना भूल जाते हैं। और जब बातें दिल की हो तो बिना नगमों के अधूरी है। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं गोल्डन एरा के एक बेहद ही जादुई और सुकून के नगमे के साथ। लेकिन दोस्तों, आज एक अलग सा ट्विस्ट है, आज एक अलग सा मोड़ है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि दिल की बातें हैं, खुशी के नगमे हैं, तो आज हम बातें ज़्यादा ना ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स नहीं कहेंगे गानों की, लेकिन सिर्फ गाने सुनेंगे। और गाने की डिटेल्स में जैसे किसका गाना है, कौन है, वो आपको बताएंगे। और हम चाहते हैं कि आपकी फरमाइश, लेकिन फरमाइश से पहले हमारे साथ कोई कॉलर जुड़े। चलिए सुनते हैं सबसे पहले हमारे कॉलर को। हेलो,
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, आनंद में हूँ। आपका कार्यक्रम को लगते ही मैंने आपके यहाँ फोन जोड़ा दिया है।
0: बिल्कुल, मुझे लग ही रहा था कि आज आपका सबसे पहला कॉल आएगा, और शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
1: बात करेंगे तो बात करने में मजा आएगा।
0: बिल्कुल,
1: बाद में लंबी बात होने के बाद में लंबी बात करनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल सही बात है, आज हमने थीम भी यही रखा है, आज हमने थीम भी यही रखा है, शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा बातें नहीं।
1: शॉर्ट एंड स्वीट में काम करना है ना?
0: जी बिल्कुल।
1: तो मेरा भी एक गाना दे दो।
0: बिल्कुल दे दीजिए,
1: ये भी आपका आदेश है तो।
0: अरे आदेश नहीं, आप हमें हुकुम दीजिए।
1: यार मेरी बात सुनो, यार मेरी बात सुनो, जिसने पाप ना किया वो पापी ना हो।
0: क्या बात है, क्या बेहतरीन गाना चुना है आज आपने।
1: ये गाने के बोले
0: जी,
1: ये गाना सुना देंगे तो हमारा सारा पाप धुल जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: और सारी गर्मी उतर जाएगी।
0: बिल्कुल, जरूर से कोशिश करेंगे आपका ये गाना सुनाने के लिए।
1: हमेशा मिल करके बात करनी है, फिर कब तो मैं तीन दिन जाते हैं।
0: हाँ
1: जिंदगी का तीन दिन है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए नमस्कार सर, धन्यवाद सर,
0: थैंक यू सो मच। गुरुलाल जी
1: बोलो।
0: हेलो जी। हाँ, तो ये थे हमारे भूरीलाल जी। और मेरे बात कहने से पहले ही शायद मेरे दिल की बात भूरीलाल जी तक पहुंच गई थी। उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि शॉर्ट में बात करना है, स्वीट बात करनी है। तो आज हमारा थीम यही रहेगा कि हम बातें करेंगे बहुत कम, और बस गाने सुनेंगे और एंजॉय करेंगे आज की इवनिंग को। क्योंकि जैसे ही हमने बताया कि बुधवार की शाम है, आधा हफ्ता हो चुका है और वीकेंड की राह है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मुझे दिमाग में आया कि सैटरडे वीकेंड में आने में तो अभी काफ़ी टाइम है, और हम क्यों जैसे ही बुधवार गुरुवार आता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि यार वीकेंड आने लगा, वीकेंड आने लगा। क्या आप सभी के साथ भी ऐसा कुछ होता है कि जैसे ही आधा हफ्ता बीत जाता है तो हम एकदम से सैटरडे संडे की वो छुट्टियों का माहौल सोचने लगते हैं कि हाँ अब सैटरडे संडे आने वाला है, अब मैं आराम करूँगा या मैं सोऊंगा? आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आप हमें बिल्कुल से कॉल करके बता सकते हैं। कॉल के लिए आप याद रखिए 9414151415, यानी कि 9414151415 पे आप हमें कॉल करके बिल्कुल से बता सकते हैं। और हाँ, आज आपको ये भी बता दें कि आज आप अपनी फरमाइशों में दो दो गाने भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आज सिर्फ गाने सुनने की बात है तो आज हमें दो गाने भी आप फरमाइश कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर वो हमारे प्लेलिस्ट में है तो हम आपके लिए वो दोनों गाने प्ले करें। थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर ये अगला नागमा।

मैं हूँ सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूँ। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी जो हमने गाना सुना, साल था 1952, फिल्म थी आन, जो इंडिया की पहली टेक्निकलर फिल्म थी, जैसे कि हमने कल आपको बताया था। और कल भी हमने इस मूवी का गाना लगाया, आज भी इसी मूवी का हमने एक गाना और आपके लिए पेश किया। और जब स्क्रीन पर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब का वो अंदाज, शकील बदायूनी साहब के लिखे ये गहरे बोल और नौशद साहब का संगीत इस गाने को सदियों के लिए अमर कर दिया। हमारे प्यारे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ने इस गाने में जो दुख है, वो तशनगी है, और जो इश्क का गुरूर है, वो आज के गानों में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। यहाँ चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की। और जैसे ही हमने आपको बताया था कि आज बातें होगी कम और सिर्फ हम सुनेंगे गाने, तो बढ़ते हैं अगले नगमे की। और जो कि अगला नगमा था हमारे बुरीलाल जी की तरफ से। बुरीलाल जी ने हमें फरमाइश दी थी, यार हमारी बात सुनो, तो चल रहे सुनते हैं ये गाना और करते फिर अगली बातें।

बात सुनो, एक ऐसा इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने बहुत ही बेहतरीन नगमा सुना भुरीलाल जी के फरमाइश पर। उन्होंने भी सही कहा कि हम भी अपने पाप धोले, और सही बात है कि हमें अपने अंदर ज़रूर से झांकना है कि हमने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया। बिकॉज आज के ज़माने में कई लोग हैं कि दिन भर की मार्ग दौड़ में कई ऐसे लोग हमें रास्ते में मिलते हैं, और हम उनको देख करके टिप्पणियाँ करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, इसने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन क्या हम अपने अंदर भीतर में झांक करके देखते हैं कि मैंने क्या किया है, क्या मैंने सही कर्म किए हैं, क्या मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो खास करके ये गाना हमें यही सिखलाता है कि सबसे पहले किसी और के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें अपने अंदर में झांकना है, और हमें ये देखना है कि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया है। मूवी थी रोटी, सिंगर थे किशोर कुमार साहब, इसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने और इसे म्यूज़िक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। जी यहाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। बहुत ही प्यारा नगमा है, ये भी है पुराने ज़माने का, तो चलिए सुनते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो।
2: हाँ, भूरा राम बोल रहा हूँ ओर से।
1: ओर से भूरा राम जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बस बैठे बैठे आपके प्रोग्राम सुन रहे हो, अच्छे से गाने जुने लगा रहे
1: जी।
2: हमारे हमारे टाइम के गाने सुन रहे, सुनने में बहुत मजा आता।
1: क्या बात है, धन्यवाद। हम यही कोशिश करते हैं कि आप शाम के समय पे अपने पसंदीदा गाने सुने और एंजॉय करें, उसको माहौल बनाए।
2: अच्छा
1: जी,
2: तो मधुबन भाइयों को मेरा राम राम है
1: जी।
2: और मेरी प्रमा से
1: जी
2: एक गाने के जो सुनाएंगे तो अच्छा है
1: जी। गाने के बोल बता दीजिए।
2: गाने के बोल सुनाओ क्या
1: जी?
2: हेलो।
1: हाँ जी, सुनाइए गाने के बोल बताइए।
2: चंदन साबदन संता चितवन, धीरे से तेरा ये मुझे काना, मुझे दोष न देना, जगवान हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन साबदन।
1: बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं हम आपका ये जो फरमाइश है आपको जरूर से सुनाएंगे। और बाकी भूरा राम जी, आपकी तबीयत वगैरह ठीक है?
2: तबीयत ठीक है, अभी बोले तो दवाई चालू है सर
1: जी,
2: और थोड़ा सा मेरे को सांस की भी बीमारी जो चालू हो गई है।
1: अच्छा,
2: ये क्लाइमेट अच्छा नहीं रहता तो कर्कश बैठ के
1: जी
2: तो क्या क्रूसर और आपके पास ऐसे प्रोग्राम सुनता रहता पूरा दिन रेडियो में।
1: चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बिल्कुल, और शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए।
2: ओके सर, ओके सर।
1: जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे भूरा राम जी, हमें कॉल किया था और गाने के बारे में भी हमने बात की, इन्होंने भी हमें एक बड़ी सी फरमाइश दी। लेकिन फिर से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े हैं, चलिए सुनते हैं उनसे पहले। सॉरी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो हम जो बात कर रहे थे इस गाने से पहले की, तो कुछ बात मेरे समझ में आई। चेहरे की मुस्कान से छुपा लो हर गिला, चेहरे की मुस्कान से छुपा लो हर गिला, जिंदगी में हर किसी को सब कुछ नहीं मिला। खुशियां तो हमारे आसपास ही बिखरी है, बस देखने के लिए चाहिए एक छोटा सा हौसला। इससे पहले जो अभी हमने गाना सुना, मैं कहूँगी बीच बाजार, संभालो दिल के पॉकेट को, मेरी नज़रें पॉकेट मार, संभालो संभालो दिल के पॉकेट को। इसमें जो शब्द है पाकट, एक समय में जब पुराने समय की हम बात करते हैं तो हम या तो जेब कहते थे या इंग्लिश में पॉकेट कहते थे, बट इसमें जैसे वर्ड यूज़ हुआ है पाकट को, पाकट को संभालो, बहुत ही प्यारा लगता है जब ये गाया जाता है वर्ड को। और कितनी बेहतरीन तरीके से बताया गया कि मैं आया हूँ, मैं आई हूँ अपने आपके दिलों को चुराने के लिए, संभालिए अपने दिलों को। आज के दौर में तो लोग सीधे दिल चुरा लेते हैं, लेकिन उस दौर में बकायदा अल्टीमेट दिया जाता था कि भाई संभाल कर रहना, हमारी नज़रें हैं पॉकेट मार, कहीं आपके दिल का पॉकेट ना मार ले। यहाँ दोस्तों, ये मूवी थी, फिल्म था शीशम, इसको लिखा था मधुराज जी ने और गायक जो थे हमारे शमशेद बेगम जी, और इसे म्यूज़िक जो डायरेक्ट किया था यानी कि जो संगीतकार थे हमारे रोशन साहब, यानी कि हमारे राकेश रोशन जी के पिताजी, ऋतिक रोशन जी के दादाजी। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। इसके बाद का जो नगमा है वो भी बड़ा बेहतरीन है, महफिल में जल उठी शमा। सुनते ये नगमा रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी जो हमने गाना सुना ये गाना सीधे संगीत के उस दौर से आता है जहाँ दर्द का भी सुरों में पिरो कर अमर कर दिया जाता था। यह गीत साल 1950 में आई फिल्म निराला का है, जिसे संगीत सम्राट सी रामचंद्र साहब ने संगीतबद्ध किया था। बोल पीएल संतोषी के थे और इसे अपनी मखमली आवाज़ से सजाया था लता मंगेशकर जी ने। जी हाँ दोस्तों, इस गाने के बारे में कुछ और भी बातें हैं कि कई बार जैसे हम देखते हैं तो ये जो गाना है किसी और फिल्म में भी बताया जाता है, इसके एक संगीतकार भी कोई और बताया जाता है, लेकिन सही जवाब अगर आप में से किसी को भी पता है, अगर ये जो हमने बताया अगर ये सही है तो आप हमें बिल्कुल से कॉल करके हमें बता सकते हैं कि हाँ ये सी रामचंद्र जी के संगीत सम्राट ने लिखा है या पीएल संतोषी साहब के बोल है या हमारे लता मंगेशकर ने जी ने गाया है, ये आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 9414151415 पे। चलिए वक्त है अगले नगमे की ओर बढ़ने का। जैसे हमने पहले भी बताया कि आज होंगी बातें कम और सिर्फ बजेंगे दिल के नगमे, तो अगला जो नगमा है दिल का वो है हमारे ओर से बुराराम जी की तरफ से जो हमें फरमाइश दी थी। तो बुराराम जी ये आपके लिए है ये गाना चंदन सा बदन। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

तेरी सादगी में ही छुपा कोई गहरा राज है, तेरी सादगी में ही छुपा कोई गहरा राज है, तू महकता चंदन है, तू ही सुर और साज है, ना कोई जेवर ना कोई बनावट है तुझ में, तेरी चंचल चितवन पर तो खुद हुस्न को नाज है। फिल्म सरस्वती चंद्रा का ये अमर गीत चंदन सा बदन चंचल चितवन हिंदी सिनेमा का सबसे खूबसूरत और रोमांटिक गीतों में से एक है। इसे मुकेश जी और लता मंगेशकर ने अलग अलग संस्करणों में गाया, यानी कि इसे दो बार गाया गया था, एक बार लता मंगेशकर जी की आवाज़ में और एक बार मुकेश जी की आवाज़ में, यानी कि एक मेल और एक फीमेल वॉइस में, जिसे कल्याण जी आनंद जी ने इसे लिखा था। म्यूज़िक जो इसे मतलब संगीत संबोध किया था इसे कल्याण जी आनंद जी थे, और इसे इंद्रवर जी ने लिखा था। गायक जैसे मैंने आपको कहा कि मुकेश जी और कल्याण जी ने दोनों ने इसे लिखा हुआ है। तो अभी बहुत ही बेहतरीन गाना सुना। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नगमे की ओर, क्योंकि जो अगला नगमा है ये हमें सिखाता है कि हम कितने हमारे भारतीय हिंदुस्तानी, हमें गर्व है हमारे हिंदुस्तानी होने पर। चलिए सुनते हैं अगला नगमा रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी जो गाना सुना, मेरा जूता है जापानी, साल 1955 में जब फिल्म श्री 420 आई तो राज कपूर साहब के उस सीधे साधे आवारा अंदाज ने ना सिर्फ भारत का बल्कि रूस, चीन और पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। जी हाँ, अभी भी कहते हैं कि राज कपूर साहब सबसे ज़्यादा फेमस रशिया में है, रूस में है। शैलेंद्र साहब ने इन लाइनों में जो दर्शन पिरोया है वो कमाल का है कि हम चाहे दुनिया की कितनी भी चीज़ें अपना ले, हमारा पहनावा भले ही ग्लोबल हो जाए, लेकिन जो हमारी आत्मा, जो हमारा संस्कार है, वो हमेशा शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी ही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो गाना अभी हमने सुना, गीतकार थे शैलेंद्र जी, गायक थे मुकेश जी और संगीतकार थे जय किशन साहब। जैसे कि मैंने बताया, फिल्म 420 का भी हमने, श्री 420 का भी हमने ये गाना सुना। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। मैं बता दूँ आपको कि अभी अभी हमारे सुरेश जी ने हमें कॉल किया था, जब गाना पीछे बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था तो हमें सुरेश जी ने कॉल किया और उनकी भी फरमाइश हमें आई है। उनकी फरमाइश अभी हम सुनते हैं, बहुत ही प्यारा नगमा है, जिन्हें हम भूल ना चाहे। चलिए सुनते हैं, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

जो अगला नगमा है वो है हमारी मोहब्बत हमारी, और हमारे मदनलाल जी से अभी गुजारिश है, मदनलाल जी ने हमें अभी कॉल किया था जब पीछे बैकग्राउंड में गाना चला था, उस वक्त उन्हें भी कॉल किया था, उनकी भी हमारे पास एक फरमाइश थी और उनका गाना प्लेलिस्ट में से मिल नहीं रहा है, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि ये अपना जो नगमा था मदनलाल जी आप फिर से हमें मंडे को दीजिए, क्योंकि मंडे को बिल्कुल से ज़रूर से कोशिश करेंगे कि आपका ये नगमा हम प्ले कर पाए, सॉरी मदनलाल जी, लेकिन मंडे को पक्का, मंडे को ज़रूर से आपको ये सुनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

जब बात मोहब्बत की होती है तो दिल अपने आप गुनगुनाने लगता है। कहते हैं ना कि ज़माना चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन सच्चे प्यार की पाकिजगी और पुराने गानों की कशिश कभी कम नहीं होती। आज हमारी इस महफिल में एक ऐसा ही अनमोल नगमा अभी हमने सुना जिसके बोल सीधे दिल को छू लेते हैं। मूवी थी दुलारी, गायक थे लता मंगेशकर जी, इसे लिखा था शकील बदायूनी जी ने और इसे म्यूज़िक कंपोज किया था नौशद अली साहब जी ने। चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और फिर मिलेंगे हम आपसे अगले हफ्ते यानी कि सोमवार को। तब तक आप बने रहिए रेडियो के साथ इसी तरह और अपना प्यार लुटाते रहिए रेडियो के साथ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य को हासिल करना वास्तविकता में सहज है। लोग आरोग्य को एक साधना समझते हैं। प्रायः तब आरोग्य की कीमत पता चलती है जब व्यक्ति उस स्वास्थ्य को खो देता है। जब किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो तब लगता है कि वो किसी भी हालत में वापस हम अपने आप को स्वस्थ बना लें। क्या ऐसे तरीके हैं कि हम अपने आप को बीमार पड़ने ही न दें? क्या स्वास्थ्य की इस कुंजी को बचाए रखने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, अगर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, अपने आहार पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने आसपास होने वाले प्राकृतिक बदलावों पर अगर ध्यान देते हैं, बहुत सारी चीजें हम सहेज कर रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। और हमारा स्वास्थ्य हमारी ही मुट्ठी में। पिछली बातचीत में दोस्तों हम डॉक्टर राहुल मोदी जी से बातचीत कर रहे थे कि कैसे शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है और भोजन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए और ये प्रोटीन कहाँ से मिलता है। इन सभी विषयों पर भी हमें जानकारी लेनी है। आज हमारे साथ डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रखते हैं, पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, मगर भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में वो प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर अनेकों लोगों को उन्होंने स्वास्थ्य की शिफा दी है। आइए आज उनसे करते हैं बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम कल की बातचीत में आपने ये चीज बताई कि हम क्रेविंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रोटीन की कमी के कारण भी ये क्रेविंग महसूस करते हैं। उनका मन ये कहता है कि हाँ ये खा लो, ये कुछ कर लो, तो इसके बारे में अधिक जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हम ये चीज आजकल देखने को मिलता है कि लोग भोजन होने के बाद भी कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते हैं, सिर्फ मीठे की नहीं। आजकल एक डेजर्ट कल्चर चल पड़ा है, लोग आइसक्रीम्स खाना चाहते हैं या फिर मिठाइयां भी है तो उनको भी ठंडा करके खाने की एक आदत आ गई है। कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेविंग आपने बताई, खाने के बाद भी कई लोग चाय पीने की डिमांड करने लगे हैं जो ऑफन अनहर्ड होता था पहले। तो ये क्रेविंग्स जो आ रही हैं, ये मन में आ रही हैं, ऐसे आप ये चीज कह रहे थे, ये क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे की वजह क्या है?
1: भैया, हमने अपना भोजन डिस्टर्ब कर दिया है और एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि वी आर ईटिंग अ वेरी सैड एंड डेड प्लेट, कि हमारा जो भोजन है वो एकदम मरा हुआ और दुखी भोजन। मरा हुआ और दुखी भोजन का मतलब है कि वो सिर्फ प्रोसेस्ड, जो भी चीज प्रोसेस की जाएगी और जिसको अत्यधिक तल दिया जाएगा और फिर उसको पैक कर दिया जाएगा कि वो उसका स्वाद बना रहे, तो वो भोजन एक मृत भोजन माना जाता है। आप नोटिस करिए कि इस समय हम एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब आटा, चावल, चीनी, मैदा, मतलब आटा का जो भी आप डाउनलाइन, भुट्टे का, आज देखिए मेक्सिकन आजकल नाचोज, ये सब टाकोज, ये सारी जो चीजें सब भुट्टे से बनी चीजें हैं। तो हम आज सिर्फ प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट खाते चले जा रहे हैं और हमारी प्रोटीन की क्वांटिटी उस पूरे भोजन में कम होती चली जा रही है। जैसे पहले हम लोग, आप एक भारतीय थाली को देखिए तो उसमें क्या था, दाल था, चावल था, रोटी थी, सब्जी थी, दही का एक चीज था और सलाद था, उसमें नींबू था, धनिया था, आप देखिए उसमें सब कुछ था। और नमक हमेशा हमारे भारतीय भोजन में कम की तरफ डाला गया, तभी उसको बैलेंस करने के लिए अचार डाला गया और चटनी डाली गई, एक पूरा एक अच्छा देसी भोजन की प्लेट बन। पर हम इस समय इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जैसे चिप्स हुआ, सैंडविचेस हुई, बर्गर्स हुए, पिज्जा हुआ, तो हम अपने भोजन को गड़बड़ करते चले गए और नोइंगली अनोइंगली हमने अपना प्रोटीन इनटेक, हमें जितना होना चाहिए, जैसे एक बड़े वयस्क में 0.83 लिखा जाता है, 0.8 माना जाता है, हम आजकल एक देख रहे हैं कि हम लोग नॉर्मली 0.5 या इवन 0.4 ग्राम्स पर केजी तक हम लोग अपने भोजन में प्रोटीन की क्वांटिटी कम कर चुके हैं। अच्छा, हमको वेजिटेरियन या नॉन वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन से ज्यादा भरोसा वो आपने जो बोला डब्बे वाले प्रोटीन पे हो गया, और हम उस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं कि डब्बा वाला प्रोटीन पी लेंगे तो पूरा शरीर ठीक हो जाए। तो हमको सबसे पहले अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा ठीक करनी चाहिए।
0: जब आप ये बात कहते हैं कि प्रोटीन के लिए आज हम ये जो डब्बा में आ रहा है, पाउडर आ रहा है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के नाम पे हम ये जो चीजें प्रोटीन खा रहे हैं, हम तो यही सोच रहे हैं कि हाँ इसी से प्रोटीन मिलेगा। अगर जब आप कहते हैं प्रोटीन खाने में होना चाहिए तो प्रोटीन का नेचुरल सोर्स कहाँ है, कहाँ से प्रोटीन मिलेंगे?
1: भैया इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज ये समझें कि प्रोटीन कैसा है, ये हम दो तरीके से डिसाइड, एक क्वांटिटी कि कितना है और दूसरा क्वालिटी। तो आप पहले ये देखिए कि आपका जो प्रोटीन है उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि क्वांटिटी, तो उसकी वो भरपूर क्वांटिटी में हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अब हम अगर बात करें भैया तो वेज सोर्स और नॉन वेज सोर्स, और अब तो एक तीसरा आ गया है वीगन सोर्स। तो वीगन को भी वेज में ही बहुत से लोग मान लेते हैं, बट वीगन में सबसे ज्यादा प्रोटीन दो चीजों से मिलता है। एक स्पाइरुलिना करके ब्लू एल्गी है, उसका वो सोर्स है। इस सोर्स को नासा ने ढूंढा था और इसका कैप्सूल बनाया था कि आप इसको खा लीजिए, और ये बना था जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सबसे कम में। तो सोचिए सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स इसको माना गया। और दूसरा भैया टोफू से मिला जो कि सोया मिल्क, और ये टोफू जापानीज और कोरियन फूड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसको हम और आप अपनी भाषा में बोले तो ये सोयाबीन का जो दूध बनता है उससे बना हुआ पनीर, इसका स्वाद अपने पनीर से थोड़ा डिफरेंट होता है या थोड़ा ज्यादा डिफरेंट होता है, बट मुझे पनीर का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वेजिटेरियन सोर्सेज में हम जिनके बारे में बात करते हैं तो वो दो में डिवाइड किया जाता है, एक मिल्क बेस्ड और एक प्लांट बेस्ड। तो मिल्क बेस्ड में तीन सोर्स, दूध, दही, पनीर, और इसमें पनीर मिल्क जो है वो सबसे कम है उसमें प्रोटीन
0: की मात्रा।
1: यस, दही को बेटर माना जाता है भैया क्योंकि प्रोटीन के साथ बहुत सारे गुड बैक्टीरिया आपको मिलते हैं, और सबसे ज्यादा प्रोटीन फिर आता है पनीर में। और ये भी कहा जाता है तुरंत आपने अगर दूध फाड़ा है वो जो छेना है उसको अगर खाइएगा तो वो परफेक्ट है। और हमारे पुराने आपके राजस्थान में भी देखिए भैया जब पनीर की सब्जी बनती तो एकदम तुरंत फाड़े हुए दूध की सब्जी बन जाती है, वो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और फिर प्लांट में हम लोग ये सारे छोला, राजमा, मटर, मूंग, मोठ, चना, जितने भी लेग्यूम्स हैं उसमें हम इसको मानते हैं। नॉन वेज में फिश, एग, मीट, तो नंबर वन फिश, फिर एग और लास्ट में मीट, ये प्रोटीन का सोर्स है। ये भी कहा जाता है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको दही की क्वांटिटी ठीक रखनी चाहिए, दालें ठीक से अपने भोजन में डालनी चाहिए, और जिससे प्रोटीन आपके शरीर को मिलता रहे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो ये कहा जाता है कि आप मछली या अंडे का प्रयोग करें जिससे आपको प्रोटीन अच्छा हो, और अगर आप वीगन हैं तो आप टोफू का इस्तेमाल करें और स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करें जिससे आपके शरीर में प्रोटीन आपको मिले।
0: भारतीय भोजन की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब तो अक्सर थाली में हम हमेशा दाल का इस्तेमाल देखते आए हैं। जैसे अगर दिन में दो बार भी हम भोजन करते हैं, अगर सुबह का नाश्ता छोड़ दें, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन में, हम देखते हैं कि दोनों वक्त पे दालों का इस्तेमाल किया जाता है। दालों को सब्जियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे मूंग की बात करें, मसूर की बात करें, तुअर, राजमा इत्यादि, तो अलग अलग दालें बदलकर हर दिन दाल खाने की परंपरा तो भारत में है ही। तो उसके चलते तो प्रोटीन की डिमांड वैसे ही पूरी हो जानी चाहिए।
1: भैया इसमें दो चीजें, एक जो हम लोग ने पहले कहा क्वालिटी और क्वांटिटी। अब आप रोज एक कटोरी दाल खा रहे हैं कि दो चम्मच दाल खा रहे हैं? अब तो ऐसे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो दाल ही नहीं खा रहे हैं। या आप तो बहुत सटल वे में या शांत आपने एक सिंपल तरीके से बोल दिया तुअर खाइए मसूर खाइए, आपने दाल मखनी की तो बात ही नहीं करी कि बच्चों को पूरा उसको फ्राई करके, मतलब आपको फ्राई कर देना है, उसमें मक्खन डाल देना है और रात भर सेम आंच में उसको पकाना है। देखिए जो चीज जितनी ज्यादा पकाई जाएगी उसके उतनी अंदर की जो ताकत है वो कम होती चली जाएगी। आप मूंग जो है, मूंग की दाल खाइए और आप अंकुरित मूंग खाइए, आपको अंकुरित मूंग में ज्यादा प्रोटीन मिलेगा वनस्पत मूंग की दाल में। आप चने को, चने की दाल या छोले खाइए और उसके बाद भैया चने को अंकुरित करके खाइए, जो काला चना आता है अपना, आप देखिए उसका कितना बेटर, जो अंकुरित हुआ है उसमें एक जीवन नया आया है, तो उसने अपने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर सिंपल कर लिया और आपने उसको खा लिया। तो आपके लिए जो हमने बोला भैया क्वांटिटी एंड क्वालिटी, आप रोज खाइए, दाल को खाइए, आप दूध लीजिए, दही लीजिए अपने भोजन में, पनीर लीजिए। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो दूध से एलर्जिक, एलर्जी है उनको, वो अदर प्रोटीन जैसे वो सोया मिल्क ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। प्रकृति चिकित्सा में अगर कोई आदमी इलाज करने आता है तो उसके भोजन में से जो है उसको और सिंपल बनाया जाता है और उसमें प्रोटीन और फैट की मात्रा कम की जाती है, क्योंकि इन दोनों को पचाना थोड़ा मुश्किल होता। आप खुद ही अभी प्राकृतिक चिकित्सालय से होकर आए हैं और आपने अपना अनुभव जो मुझे बताया कि सबसे पहले तो आपका भोजन ही बंद कर दिया गया, तो उन्होंने ना तो कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान दिया, ना प्रोटीन पे, ना फैट पे, ना मिनरल पे, ना विटामिन पे, उन्होंने सीधे सब कुछ बंद कर दिया। और हम प्रकृति चिकित्सा में क्यों बंद करते हैं सब कुछ, कि आपकी जो आते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आराम मिले, और जहां उसको आराम मिलेगा वो जो एनर्जी खर्च हो रही है उसको चलाने में वो बचेगी, तो वो शरीर शोधन कार्य करेगी, वो शरीर में ताकत प्रदान करने का काम करेगी। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है, पर क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी।
0: डॉक्टर साहब, इसको आसानी से समझने के हिसाब से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसे आपने प्रोटीन के सोर्सेस तो बता दिए, जैसे भोजन में हर वक्त दाल बनती है, सुबह शाम दाल बन रही है, अब जैसे आपने कहा कि 0.8 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए, तो सिंपल सा प्रश्न ये होगा कि क्या घर में जो दो वक्त भोजन बन रहा है तो दोनों वक्त एक एक कटोरी दाल खाना आवश्यक है, उससे काम हो जाता है?
1: अगर आप बढ़ते बच्चे हैं तो आपको थोड़ा अदर सोर्सेस के तरफ भी जाना चाहिए, जैसे दही हुआ, दूध हुआ, पनीर हुआ। अगर आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, घर पे हैं, तो वो आपके लिए इनफ है। और आप दो टाइम दाल की बात नहीं हो रही है, आप इसमें पक्का थोड़ा बहुत हफ्ते में 2-3 दिन दही जरूर खाएंगे, आप हफ्ते में 1-2 दिन पनीर की सब्जी जरूर खाएंगे। जो हमारे भाई लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ हफ्ते में 1-2 दिन नॉनवेज जरूर खा रहे होंगे। तो प्रोटीन भैया सबको मिल जा रहा है। हाँ, हम अगर बहुत कम प्रोटीन खाएंगे तो हमारा शरीर कोशिश करेगा कि इसको कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन में कन्वर्ट करने की, फैट को प्रोटीन में कन्वर्ट करने की, पर वो एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, उस वो पूरा हो नहीं पाता है। तो प्रोटीन जरूरी है और बहुत सारे सोर्सेस हैं भैया। थोड़ा प्रोटीन आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे मिलेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट मतलब आप जो फल खा रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा, और आपको सब कुछ मिलेगा, पर उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। असली सोर्स आपको दाल से मिलेगा
0: जी। जैसे आपने कहा असली सोर्स दाल है, और जैसे आपने अंकुरित दाल और दूध की बात आपने कही, जैसे अंकुरित चीजों की आपने बात कही, प्रायः हम देखते हैं कि पका हुआ भोजन खाने के मामले में हम अपने आप को भारत जैसे देश में थाली की जब बात कही जाती है तो अंकुरित चीजें कच्चा खाने के बारे में बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता, पके हुए भोजन के रूप में ही हम प्रोटीन को लेने की बात करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि अंकुरित जो दालें हैं, अंकुरित मूंग है, चना है इत्यादि के बारे में आप कह रहे थे, क्या उसको जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए कि भाई हाँ अभी ये बात समझ में आई है तो इसको खाना ही है, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए?
1: अंकुरित कोई भी कोशिश करना चाहिए कि आप उसको सुबेरे के नाश्ते में खाएं, तो आपके शरीर में वो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होगा। आप प्लीज उसको 3-4 दिन अपने नाश्ते में जरूर डालें, और अगर आपके दांत मजबूत हैं और पाचन तंत्र ठीक है तो आपको उसको कच्चा खाना चाहिए। आप स्वाद के लिए उसमें थोड़ा प्याज, थोड़ा टमाटर और हल्का सा नींबू निचोड़ के हल्का नमक डाल के आप खा सकते हैं, और आप कच्चा भी खाइएगा तो आपके लिए बिना ये सब डाले भी आपके लिए बहुत अच्छा। अगर आपका थोड़ा सा दांत कमजोर है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो आप उसको हल्का सा भाप दे सकते हैं, प्रेशर कुकर में डाल के 1 सीटी दे सकते हैं, उससे वो थोड़ा मुलायम हो जाएगा तो आप उसको खा सकते हैं। और अगर आप इसको अपने नाश्ते में लें तो आपको बहुत अच्छा इससे फायदा होगा। आप देखिए हमारे इतने भी मेहनत करने वाले लोग हैं, उस चने का सत्तू या अंकुरित चना, अंकुरित मूंग जरूर खाते हैं अपने भोजन में।
0: अब एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये है कि जैसे आपने बीच में बातचीत में ये भी बात कही कि आजकल के बच्चे प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, अब बच्चों को प्रोटीन की कमी, खैर दूध पी रहे हैं तो चलो ठीक बात है, मगर दालों के ऊपर बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। अक्सर घर में जो माएं हैं या दादी हैं या नानी हैं, वो लोग जो भोजन बच्चों को खिला रही हैं वो बहुत मशक्कत करती हैं कि कैसे न कैसे इनको ये प्रोटीन की मात्रा दी जाए। कोई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम प्रोटीन को आसानी से बच्चों को खिला सकें, किसी चीज में मिक्स करके या कोई ऐसी चीज?
1: भैया आपको बच्चा अगर छोटा है तो आप उस दाल को पीस के उसको खिला सकते हैं, उसको पेस्ट बना के खिला सकते हैं, बट मैं ये सबको बोलता हूं कि थोड़ा मन कड़ा करके अपने बच्चे को जरूर खिलाइए। लॉट ऑफ थिंग्स हैव एक्वायर्ड टेस्ट। जो चीज, एक बात इसको आप जरूर मानेंगे, जो चीज शरीर के लिए अच्छी है उसमें स्वाद नहीं है, और जिस चीज से शरीर को नुकसान होता है वो बेहद स्वादिष्ट। तो आपको किसी न किसी रूप में बच्चे को इसको खिलाना पड़ेगा, और खिलाना पड़ेगा नहीं, खिलाना चाहिए इसको, और उसको अगर आप खिलाएंगे तो उसके ही भविष्य के लिए अच्छा।
0: आजकल ये एक प्रचलन देखने को मिलता है, जैसे आपने सोयाबीन की बात कही, लोग अक्सर आटे में सोया का आटा मिला देते हैं, आटा पिसवाते समय उसमें सोयाबीन डाल देते हैं, और ये क्या ये सही चीज है कि भाई इस बहाने जो प्रोटीन की मात्रा में हम ऐसे सीधे नहीं खा रहे हैं तो भी कम से कम सोया के जरिए आटे में वो चीज मिल रही है, तो क्या वो चीज सही?
1: इसको रोज के आटे में इसको नहीं लेना चाहिए भैया, क्योंकि अगर आपको गलती से भी किसी को थोड़ा सा प्रोटीन से एलर्जी है या ग्लूटेन से एलर्जी है तो ये उसको मल्टीफोल्ड बढ़ा देगा। सेकेंडली मैं हमेशा इस पक्ष में हूं कि जो चीज जैसी है उसको वैसे लेना चाहिए। अब बहुत सी चीजों का मिक्सिंग और मैचिंग लोग करने लगे हैं, जिसका मैं पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि आप जितना मिक्स एंड मैच चीजों को करेंगे वो उतना ज्यादा आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा के रखेगा। मैंने इस एग्जाम्पल को बहुत सारे लोगों को देता हूं कि अगर आप कहीं आग जला रहे हैं, वहां आपने लकड़ी रखी है, पेपर रखा है, कोयला रखा है, मिट्टी का तेल डाला है, पेपर है, तो हर चीज अलग अलग स्पीड से जलेगी और वो बहुत देर जलेगी। तो इसी तरह जब आप बहुत मिक्स एंड मैच ये बहुत सारे दाल मिलाकर खाएं या बहुत सारे आटों में बहुत सारी चीजें मिला के खाएं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत देर तक ऊपर रहे। मैं पर्सनली एक पक्षधर हूँ सिंगल ग्रेन और सिंगल पल्स के, आप उसको बदल बदल के खाइए, और उसको रोज चेंज करके खाइए, वो ज्यादा बेटर है भैया मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ लोगों को इसका स्वाद जच गया है, कुछ लोग चाहते हैं कि जो वो खा लें, तो अगर आप उसमें आप संतुष्ट हैं और आप उसको अच्छा मान रहे हैं तो जरूर इसका प्रयोग करें।
0: डॉक्टर साहब, बातों बातों में प्रोटीन से संबंधित ऐसी अनेकों चीजें आज समझ में आई हैं और प्रोटीन को अपने शरीर के निर्माण के लिए कितनी महत्ता है ये भी समझ में आया है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या क्या प्रोटीन के स्रोत हैं, कहाँ से हम प्रोटीन अपने भोजन में ला सकते हैं, ये भी बात समझ में आई है। दोस्तों, प्रोटीन का हर दिन भोजन में होना आवश्यक है। अगर आप दालें खाते हैं, दूध खाते हैं, तो आप प्रोटीन की मात्रा को संतुलित करते हुए खा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप दालों को अंकुरित करके खाते हैं, अंकुरित मूंग, अंकुरित चना इत्यादि चीजें जो अंकुरित करके खाते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। और ये सुबह के नाश्ते में अगर आप ये खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और भी विषय हैं जिस पर चर्चा हम कल की बातचीत में जारी रखेंगे, आज समय इशारा करता है कि यहाँ विदाई लेनी होगी। आप सभी दोस्तों की तरफ से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर हमें आज जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज सहज स्वास्थ्य में जो चीजें सीखी हैं वो सब कुछ आप इस्तेमाल करेंगे, अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो उनके खिलाने की थोड़ी मशक्कत करें ताकि हम अपने स्वास्थ्य को, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें। आज की बातचीत में इतना ही। रेडियो मधुबन पे कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो बच्चों, देखो देखो परी और मनी दीदी आ गए आपका फेवरेट शो लेकर के सपनों की सैर कार्यक्रम को।
1: हाँ बच्चों, और पता है ना, अभी हमने बच्चों के प्रश्नों का जवाब देने का नया सिलसिला चालू किया है, जिसमें बच्चे अपने प्रश्न हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजते हैं और हम उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो देखते हैं परी, आज किस बच्चे ने अपनी आवाज में, प्यारी प्यारी आवाज में प्रश्न पूछा है।
0: बच्चों, कांता ने भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो चलो कांता की आवाज में सुनते हैं।
2: मुझे स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता है, डर के मारे में आवाज भी नहीं निकलती।
0: तो बच्चों, मुझे लगता है ये केवल एक का नहीं लेकिन सभी बच्चों का होगा ये सवाल, है ना मनी दीदी।
1: हाँ परी, बहुत सही बात है। मैं भी जब छोटी थी तो मुझे भी स्टेज पर बोलने पर बहुत डर लगता था और स्टेज पर जाते ही मैं सब भूल जाती थी।
0: हाँ, जब बच्चों का ओरल टेस्ट होता है ना, तब ऐसा होता है। कभी पोयम भूल जाती है तो कभी स्पीच भूल जाती है। तो बच्चों, इसका तो बहुत ही सरल उपाय है। ये डर भी तुम्हारे जैसे कितने बच्चों को होता तो है, तो इसका इलाज है अभ्यास,
1: यानी प्रैक्टिस। घर में आईने के सामने खड़े होकर बोलो, एक एक लाइन बोलने की कोशिश करो। शुरुआत छोटी कविता या कहानी से करो।
0: और जब पहली बार बोलोगे तो ताली तो जरूर मिलेगी, वही ताली अगली बार तुम्हें ताकत देगी। डर भाग जाएगा जब विश्वास पास आएगा।
1: हाँ, तो समझ गए ना कि डर से भी डरना नहीं है। तो हमें तो प्रैक्टिस करते रहनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे तो डर भी दूर डर कर भाग जाएगा।
0: बिल्कुल मनी दीदी, तो मुझे लगता है सभी बच्चों को ये युक्ति बहुत अच्छी लगी होगी, ट्राई करके देखना।
1: हाँ तो चलो, अब समय हो गया है ये प्यारा सा गाना सुनने का।
0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

बच्चों चलो चलो फिर से बैठो रेडियो के पास। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने समझी। अब बारी है कहानी की। आज दो मेंढकों की कहानी सुनेंगे। बच्चों एक बार दो मेंढक क्या हुआ पता है, दूध से भरे एक मटके में गिर गए। मटके से बाहर आने के लिए वे दूध में गोल गोल तैरने लगे। बच्चों मगर क्या हुआ, पैरों को कोई ठोस आधार नहीं मिल रहा था ना, इसीलिए छलांग लगाकर बाहर आना उनके लिए तो बड़ा मुश्किल था। कुछ देर के बाद क्या हुआ, एक मेंढक ने दूसरे से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं ज्यादा तैर नहीं सकता। बच्चों वो मेंढक तो हार मान गया, उसने मटके से बाहर निकलने की कोशिश छोड़ दी, इसलिए वो मटके के दूध में डूबकर मर गया। बच्चों दूसरे मेंढक का क्या हुआ सोचो। दूसरा मेंढक बहुत ताकत वाला था, उसने सोचा मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा, मैं तब तक तैरता रहूंगा जब तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिलाता। वो तैरता ही रहा। इस प्रकार उसके लगातार तैरने से क्या हुआ, दूध तो मठ उठा और उसके ऊपर माखन जम गया। है ना बच्चों, दूध को मंथन करते हैं तो माखन आ जाता है ना। तो कुछ देर बाद मेंढक ने मक्खन के गोल पर चढ़कर जोर से छलांग लगाई और वो मटके से बाहर आ गया। तो देखा बच्चों कितनी मजेदार कहानी थी। लेकिन ये तो बताओ कि कहानी हमें क्या सिखाती है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। है ना बच्चों, इसीलिए कभी भी हार नहीं मानना, कोशिश करते रहना, क्योंकि जो कोशिश करते हैं उसी को विजय प्राप्त होती है। तो चलो बच्चों अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मन्नी दीदी आ गई है लेकर तेनालीरामा की किताब, जिसमें महाराज के मन में तेनालीराम के लिए आशंका घर कर गई है और उनका हृदय अभी भी आशंकित था कि कहीं तेनालीराम महामंत्री के साथ मिलकर कोई कारनामा तो नहीं करने वाला। तो उन्हें ये बात अभी भी अंदर चुभ रही थी कि तेनालीराम ने जो बात कही थी महामंत्री को खुश करने के लिए कही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इस घटना के भी कई दिन गुजर गए, तेनालीराम के मन में कोई बात थी ही नहीं। वह अपनी सहज स्वाभाविक शैली में सभा में आता, सभा की कार्यवाही में भाग लेता और लौट जाता। एक दिन महाराज कृष्ण देव राय की सभा में एक व्यक्ति आया और महाराज के सामने एक बक्सा रखकर बोला, महाराज मैं चंद्रावती नगर का एक व्यापारी हूँ, मेरा नाम सोमदत्त है, मुझे व्यापार में घाटा लगा है, मेरा सारा धन समाप्त हो चुका है, बस मेरे पास स्वर्ण निर्मित दो गोले शेष हैं। इतना कहकर उस व्यापारी ने वह बक्सा खोल दिया। सभासदों की आंखें यह देखकर विस्मय से फैल गई कि बक्से में गेंद की आकृति के दो स्वर्ण पिंड रखे हुए हैं। उस व्यापारी ने अपनी बात जारी रखी, महाराज इन दो स्वर्ण पिंडों में से एक स्वर्ण पिंड ठोस है और दूसरा खोखला है। आपके दरबार में मैं इन स्वर्ण पिंडों को एक स्थान पर लटका दूंगा जहां इसे आपके सभी सभासद देख सके। यदि आपके दरबार का कोई सभासद बिना इन पिंडों के निकट आए, बिना इन पिंडों को छुए यह बता देगा कि इनमें से कौन सा पिंड ठोस है अथवा कौन सा पिंड खोखला है, तो मैं उसे ये दोनों पिंड मुफ्त में देकर चला जाऊंगा। और यहाँ उपस्थित यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकेगा, तब आपको मुझे इन दोनों स्वर्ण पिंडों के वजन के बराबर स्वर्ण दान करना होगा। महाराज ने इस विचित्र प्रस्ताव को सुनने के बाद सभासदों की ओर उनका मंतव्य जानने के उद्देश्य से देखा। तो बच्चों क्या होगा, आखिर फिर से तेनालीराम के सामने आ गई एक चुनौती। अब कैसे करेगा सामना तेनालीराम, तो वो जानेंगे हम अगली कड़ी में। चलिए तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: बचाओ देश बनाओ।
1: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
2: रेडियो मधुबन।
3: बच्चों चलो मेट्रो रेडियो के पास, कार्यक्रम के अंतिम मोड पर हम आ गए हैं। और याद है ना, पिछली कड़ी में परी

0: हीरो में दुनिया दिखाऊं, सबको ज्ञान सिखाऊं, बोलो मैं कौन हूँ।
1: अब बच्चों इसका तो हिंट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो प्रश्न सुनते ही समझ गए होंगे इसका सही जवाब। तो चलो जल्दी से 94-14-15-14-15 पर हमें वॉइस नोट या मैसेज भेज दो।
0: हाँ बच्चों, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और याद है ना, भगवान जी को गुड नाइट करना मत भूलना।
1: हाँ, और उनकी गोदी में सो जाना। तो चलो हम भी करते हैं गुड नाइट,
0: स्लीप टाइट,
1: गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।
2: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
3: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
2: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। त्रिझटा का नाम त्रिझटा क्यों पड़ा जरा विचार करिए। और जी हाँ, अखरोट हमारी हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है, जरूर जानेंगे आप। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मीठा अचार, लेकिन किसका वो आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और आज का प्रश्न वाव बहुत सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को डायल कीजिए 100 अपने फोन से सजग रहिए

गुड मॉर्निंग आशियाना में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है त्रिजटा का नाम, त्रिजटा कैसे पड़ा। आइए आज के विचार का विस्तार जानने के लिए हमें लौटना पड़ेगा रामायण की तरफ। ठीक है, तो कैसे नाम पड़ा जानेंगे। श्री रामचरितमानस के छोटे से छोटे पात्र भी विशेषता संपन्न है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। इसके स्त्री पात्रों में त्रिजटा एक लघु स्त्री पात्र है। ये पात्र आकार में जितना ही छोटा है, महिमा में उतना ही गौरवान्वित है। संपूर्ण मानस में केवल सुंदरकांड और लंका कांड में सीता त्रिजटा संवाद के रूप में त्रिजटा का वर्णन आया है, परंतु इन लघु संवादों में ही त्रिजटा के चरित्र की भारी विशेषताएं निखर उठी है। छोटे से वार्ता प्रसंग में भी संपूर्ण चरित्र को समास रूप से उद्घाटित करने की क्षमता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता है। मानस के सुंदरकांड की एक चौपाई में त्रिजटा का स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है, जो जानेंगे। प्रस्तुति पंक्ति त्रिजटा के चार गुणों को स्पष्ट करेगी। त्रिजटा जाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। वह राक्षसी है, दूसरा श्री रामचरण में उसकी रति है, तीसरा वह व्यवहार निपुण है, और चौथा है विवेकशील है वह। राक्षसी होते हुए भी श्री रामचरणानुराग व्यवहार कुशलता एवं विवेकशीलता जैसे दिव्य देवोपम गुणों की अवतरणा चरित्र में अलौकिकता को समाविष्ट करती है। संभवतः इन्हीं तीन गुणों के समाहार के कारण उसका नाम त्रिजटा रखा गया हो। संत कहते हैं उनके सिर पर ज्ञान भक्ति और वैराग्य रूपी तीन जटाएं हैं, अतः इनका नाम त्रिजटा है। त्रिजटा राम भक्त विभीषण जी की पुत्री है। उनकी माता का नाम शर्मा है, वह रावण की भातृजा है। राक्षसी उसका वंश गुण है और राम भक्त उसका पैतृक गुण। लंका के अशोक वाटिका में सीता जी के पहले पर अथवा सहचरी के रूप में रावण द्वारा जिस स्त्री दल की नियुक्ति होती है, त्रिजटा उसमें से एक है। अपने संपूर्ण चरित्र में सीता जी के लिए इसने परामर्शदात्री एवं प्राण रक्षिका का काम किया है। यही कारण है कि विरहकुला और त्रासिता सीता जी ने त्रिजटा के संबोधन में माता शब्द का प्रयोग किया है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी में मोरी, माते विपति संगिनी ते मोरी। ऐसी शुभेच्छुका के लिए मां शब्द कितना समीचीन है। त्रिजटा की रति रामचरण में है। राम भक्त पिता की पुत्री होने के कारण इसका यह अनुराग पैतृक संपत्ति है और स्वाभाविक है। त्रिजटा के घर में निरंतर राम कथा होती है। अभी माता सीता से मिलने के थोड़ी देर पहले वह घर से आई थी जहां हनुमान जी जैसे परम संत श्री विभीषण जी से राम कथा कर रहे थे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। राक्षसी होते हुए भी त्रिजटा को मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान है। वह सीता जी के स्वभाव और मनोभाव को अच्छी तरह समझती है। वह ये भलीभांति जानती है कि सीता जी को सांत्वना के लिए और उसके मतलब उनके दुखों को दूर करने के लिए राम कथा से बढ़कर के दूसरा कोई उपाय नहीं है। सीता जी का विरह जब असह्य हो चला, तब मरणातुर सीता जी आत्म त्याग के लिए जब त्रिजटा से अग्नि की याचना करती है, सीता जी त्रिजटा से कहती है कि चित्ता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे, तो इस अनुरोध को वे बुद्धिमान राम भक्ता यह कहकर टाल देती है कि रात्रि के समय अग्नि नहीं मिलेगी, और सीता जी के प्रबोध के लिए वह राम यश गुणगान का सहारा लेती है। ज्ञान गुण सागर हनुमान जी ने भी जब अशोक वाटिका में सीता जी की विपत्ति देखी, तो उनके प्रबोध के लिए उन्हें कोई उपाय सूझा ही नहीं। वे सीता जी के रूप और स्वभाव दोनों ही से अपरिचित है। उन्होंने त्रिजटा प्रयुक्त विधि का ही अनुसरण किया। रावण त्रासिता सीता जी को राम सुयस सुनने से ही सांत्वना मिली थी। यह हनुमान जी ऊपर पल्लवों माने पत्तों में छुपे बैठे देख रहे थे। त्रिजटा के चले जाने के बाद सीता जी और भी व्याकुल हो गई।
तब उनकी परिशांति के लिए हनुमान जी ने भी श्री राम गुणगान सुनाए। दानवी होने के कारण त्रिजटा में दानव मनोविज्ञान का ज्ञान तो था ही, दानवों का अधिक विश्वास दैहिक शक्ति में है और इसीलिए इन्हें कार्यवृत करने में भाई अधिक कारगर होता है। सीता जी को वशीभूत करने के लिए रावण ने भाई और त्रास का सहारा लिया था और तदनुसार राक्षसियों को ऐसा ही अनुदेश करके ये चला गया था। सीता जी का दुख दुना हो गया क्योंकि राक्षसियां नाना भांति भयंकर रूप बनाकर उन्हें डराने धमकाने लगी थी। व्यवहार विचारत त्रिजटा के लिए यह असह्य हो गया था। वर्जन के लिए उस पंडिता ने विवेकपूर्ण एक युक्ति निकाली। उसने राक्षस मनोविज्ञान का सहारा लिया और एक भयानक स्वप्न कथा की सृष्टि की। उसने सब राक्षसों को बुलवा करके कहा, सब सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। त्रिजटा ने उन राक्षसियों से कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 200 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। लंका में श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा, पुकार करके निश्चय के साथ कहती हूँ, ये स्वप्न 4 मैंने कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर घिर पड़ी। तो इस तरह ये राक्षसियां भी जानकी जी की सेवा करने लगी। तो जानकी माता ने भी ये सब देखा तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो प्यारे श्रोता बंधु, संत कहते हैं भगवान के पास देने के लिए सबसे छोटी वस्तु कोई है तो वह है मोक्ष, और भगवान के पास देने के लिए सबसे बड़ी वस्तु कोई है तो वह है भक्ति। भगवान संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु और भोग प्रदान कर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, परंतु अपने चरणों की अविचल भक्ति नहीं देते। नारी भक्ताओं का चरित्र हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। लंका में सर्वश्रेष्ठ भक्ता त्रिजटा है, ऐसा संतों का मत है। तो इस प्रकार त्रिजटा चरित्र भक्ति विवेक और व्यवहार कुशलता का एक माणिक जन योग है। और इस तरह त्रिजटा ने विपत्त के समय में सीता माता की इस तरह सेवा की और आप अपने नाम से सार्थक हुई, इसलिए आपको त्रिजटा कहा जाता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए फिर से सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। अखरोट खाने के क्या फायदे हैं, अखरोट हमारी हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करता है वो आप जानेंगे। तो देखिए, अगर जी मिचलाता हो तो आप अखरोट खाइए, जी मिचलाता हो तो अखरोट खाइएगा। दाद पर अखरोट का तेल लगाने से ठीक हो जाता है दाद, ठीक है, दाद होता है बहुत, खुजली चलती है तो आप तेल लगाइएगा अखरोट का, इससे दांत ठीक हो जाएगा। जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं उन्हें अखरोट और 15 दाने किशमिश 15-20 दिनों तक खिलाइएगा, इससे बच्चों को बिस्तर पर पेशाब की आदत छूट जाएगी। जो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं उन्हें अखरोट और 15 दाने किशमिश के खिलाइएगा, 15-20 दिन तक लगातार खिलाना है, इससे बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करने की आदत छूट जाएगी। अगर पथरी की समस्या है तो छिलके में घिरी सहित पूरा अखरोट बारीक कूट कर और छान कर एक एक चम्मच सुबह शाम ठंडे पानी के साथ कुछ दिनों तक लीजिएगा, पथरी गल करके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगी। जिसको भी पथरी की समस्या है, ठीक है, तो अखरोट के छिलके और घिरी सहित पूरा अखरोट बारीक कूट करके छानिएगा, फिर एक एक चम्मच सुबह शाम ठंडे पानी के साथ कुछ दिनों तक लगातार लीजिएगा तो पथरी गल करके बाहर निकल जाएगी। और जी हाँ, कृमि है तो बच्चों के पेट में कीड़े होने पर एक अखरोट की गिरी रोज खिलाइए, सारे कीड़े मल के साथ बाहर निकल जाएंगे। बच्चे क्या है, मीठा थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, कंट्रोल करो तो करते ही नहीं है, फिर इस तरह कीड़े पड़ जाते हैं, खुजली चलती है और सहायक खुजली चलती है कि सहन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में माताएं परेशान हो जाती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, एक अखरोट की गिरी बच्चों को खिलाइएगा तो सारे कीड़े मल के साथ बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सफ़ेद दाग है तो अखरोट का नियमित सेवन करिए, इससे सफ़ेद दाग में भी राहत मिलेगी। शरीर पर सफ़ेद दाग है तो अखरोट नियमित रूप से खाइएगा, सफ़ेद दाग से छुटकारा मिल जाएगा। फुंसियाँ है, फुंसियाँ निकलने पर रोज आप 5-6 अखरोट की गिरिया खाइए, काफ़ी राहत मिलेगी। भाई गर्मी में तो ये समस्या ज़्यादा ही हो जाती है, फुंसियाँ निकल आती है, तो 5-6 दिन तक मतलब 5-6 अखरोट की गिरिया खाइएगा लगातार एक सप्ताह, तो फुंसियों से राहत मिलेगी। अगर टीबी है, टीबी को तपेदिक भी कहते हैं, तो अखरोट की गिरिया दूध में मिलाइएगा, ठीक है, पहले तो घी में भूनना है, फिर पीस करके दूध में मिक्स करके इसका सेवन करना है। टीबी जिसको तपेदिक कहते हैं इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। और लास्ट नुस्खा भी बहुत अच्छा है, अखरोट खाने से मानसिक शक्ति बढ़ती है, अखरोट खाने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है जिसको आप आजमा सकते हैं और इस तरह की समस्या है तो उनको ठीक कर सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है जो मैं दोहराने जा रही हूँ। देखिए, हमारे हाथों की जो पांचों उंगलियां है, ठीक है, ये पांचों तत्व से जुड़ी हुई है, तो कौन सी उंगली कौन से तत्व के साथ जुड़ी हुई है इसका नाम आपको बताना है। कि जैसे अंगुष्ठ है, अंगूठा है, तो कौन से तत्व से जुड़ा हुआ है, तर्जनी उंगली है तो कौन से तत्व से जुड़ी हुई है, ये पांचों ही तत्व कौन सी उंगली के साथ जुड़े हैं नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और यही पर एक अल्फी विराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: बस हम भी अच्छे हैं। एक दूसरे का हाल चाल पूछने का एक मौका रेडियो माध्यम से मिल जाता है। हमारे मित्र कैसे है, कैसे नहीं, वो जब बात करते हैं तो पता ही चल जाता है दीदी। लेकिन बात करे तो पता चले, नहीं करे तो कैसे पता चले।
0: जी जी जी,
1: कई जैसे मित्र कभी कई दिनों से नहीं जुड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: जरूरी जुड़ना है, जुड़ेंगे तो एक दूसरे का हम जान भी पाएंगे। इस तरह भी हमारे मित्र
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल जी, आपने सही कहा है।
1: आज क्या?
0: हाँ जी, आज का विषय है अपना सफर खुद तय कीजिए, सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। क्या कहेंगे आप?
1: वो तो सही है दीदी, क्या कहें कि हम दूसरे के सहारे चलेंगे तो दीदी कितने दिन चलेंगे और कैसे हम कुछ आगे जा पाएंगे? क्योंकि हम देखो, आज घर में दो भाई रहते हैं और दो भाई एक भाई के कहने को चलते हैं, इसके जो साथ में साथ करते रहते हैं और एक एक बिजनेस में दोनों साथ में रहते हैं और ऐसे बैठ रहते तो क्या करेगा? तो अलग अलग आप सीखिए, आगे जाइए। एक दूसरे का सहारा तो मिलता, सहारा की जरूरत है लेकिन साथ की जरूरत है। फिर भी एक दूसरे को साथ साथ चलना नहीं है, अलग अलग कहिए कुछ आगे जाइए तो ही तो आप वो कुछ आगे कर पाएंगे। लेकिन सहारा तो जरूरी है कि सहारा मिलेगा तो हम आगे जाएंगे, लेकिन सब तो एक आगे जाने का मौका तो जरूर होना चाहिए। लेकिन भाई चलो, हम इतने साथ हम कैसे लेंगे? हम भी कुछ करेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन सहारे रहेंगे तो कैसे चल पाएंगे? तो जैसे बताऊं मैं कि मैं भी दीदी छोटा था तो मैं मेरे हिसाब से मैं आगे आए हूँ और मैं आज बहुत अच्छा हूँ और अच्छी तरह से मैं काम कर रहा हूँ और सभी मुझे नॉलेज भी मिल जाता है। लेकिन हमने दूसरे ने कुछ कहा तो ही हम समझ पाएंगे, ऐसा तो थोड़ा होता है। तो सेम आगे कोई हम बिजनेस करते हैं तो कोई बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन कुछ करो सही है लेकिन आप ही खुद के विचार करो, आप खुद आगे जाओ
0: जी।
1: आप कुछ करेंगे तो ही तो आगे जा पाएंगे। आप कोई खरीदी करने जाएंगे, आप जाएंगे और जाएंगे तो ही पता चलेगा ना। हम दूसरों को आपको लाके आएंगे लेके, तो अगर कोई किराने की दुकान है और दूसरे भाई माल लेके आए आपको देंगे और आप खुद खरीदा करोगे, लेकिन आप जाएंगे तो आपको भी कुछ नॉलेज पड़ेगा कि भाई कितने के भाव पे आता है, कैसा आता है, तो ही तो हम कुछ सीख पाएंगे नहीं
0: जी।
1: कैसे तो हम कैसे आगे जाएंगे सीख पाएंगे
0: जी? बिल्कुल,
1: सहारे पर नहीं रहना है, हमको खुद को आगे जाना है तो ही तो हम कुछ कर पाएंगे, वरना तो जैसे तैसे ही रह जाएंगे जैसे है ऐसे।
0: जी जी जी जी,
1: तो बस दीदी हम तो ऐसा कहेंगे, दूसरा तो सहारा जरूरी है लेकिन आपको भी नॉलेज तो होना चाहिए ना। कुछ
0: नॉलेज भी और पूरा डिपेंड किसी पर थोड़े ना होना है, अपने विवेक शक्ति से भी काम करना है।
1: हाँ, विवेक शक्ति से भी काम करना है, हमारी बुद्धि से काम करना है
0: जी,
1: वही तो हम आगे जाएंगे
0: जी। तो
1: ठीक है,
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। ये थे सुरेश भाई छोटाना से, आपने विषय को भी स्पष्ट किया है, प्रश्न का जवाब देने की भी अच्छी कोशिश की है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं आज के विषय में। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। हमारे हाथों की जो ये पांच उंगलियां है, ये पांचों उंगलियां पांचों तत्वों से जुड़ी हुई है, तो कौन सी उंगली कौन से तत्व से जुड़ी हुई है आपको नाम बताना है। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: नमस्कार,
0: हाँ जी,
2: बस दुकान पे है कपड़े।
0: जी जी जी,
2: कॉल आ रहे हैं कि भाई अभी लेने के लिए आ रहे हैं, तभी तैयार कर देगा।
0: अच्छा जी जी, अब देखिए जिनको जल्दी होगी वो तो आएंगे ही।
2: हाँ, ईयरफोन लगाया है इसलिए तो काम भी कर रहा हूँ।
0: अच्छा,
2: बात भी कर रहा
0: हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। तो कंचन भाई, आज का विषय है अपना सफर खुद तय कीजिएगा, सहारे इंसान को अक्सर कमजोर बना देते हैं। क्या कहेंगे आप?
2: सफर तो खुद को ही सही करना है। हेलो।
0: हाँ जी मैं सुन रही हूँ।
2: मैं थोड़ा ईयरफोन करता हूँ, आवाज आ रही है?
0: हाँ हाँ आ रही है, आ रही है।
2: सफर तो खुद को तय करना है देवी, दूसरों का सहारा लेना है, लेकिन अनुभवी कोई है नहीं। हमें विश्वास है कि ये हमें सच्चे मार्ग बताएगा, तो इसका थोड़ा ये लेना है। हम उम्र में हमारी बात करें तो हम छोटे थे, उम्र कम थी, तो हमने हमारा मामा का लड़का था, इसका सहारा हम लेते थे और ये सच्चा मार्ग बताते कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन कई लोग क्या है कि ये अपने अपना सोचते हैं, ये ऐसे और घाटे में आ जाए, ये और ये हो जाए तो ही मिले हमें, ऐसा तो अपने को ही आगे चलना।
0: हाँ जी हाँ जी जी।
2: और थोड़ा ग्राहक आ गए, इसका बात सवाल का जवाब आ गया।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाद में भी आप जुड़ सकते हो फिर भी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है कि हमारे हाथों की जो हथेली मतलब पांचों उंगलियां हैं वे पांचों तत्व से जुड़ी हुई है, तो कौन से तत्व से कौन सी उंगली जुड़ी हुई है ये आपको बताना है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, पहले भी प्रश्न पूछा था कि पाँचों उंगलियों का नाम बताना, आप सभी ने नाम बताया है, अब यही पांचों उंगलियां पांचों तत्वों से जुड़ी हुई है, तो कौन सी उंगली कौन से तत्व से जुड़ी हुई है यह आपको बताना है। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है, अपना सफर खुद तय कीजिएगा, सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं, क्या कहेंगे आप? तो बहुत ही सुंदर आज का विषय है, प्रैक्टिकल विषय है, आप जुड़ सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो देखिए सफर तो खुद को ही तय करना है ना। वो कहते हैं ना कि बीमार हो जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग, अरे भाई हम तो आएंगे सिर्फ आश्वासन देने, लेकिन सहना तो आपको ही है। ऐसे ही सफर भी ऐसा ही है। चलिए हमारे श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
3: जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
3: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मेरे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
0: जी।
3: हेलो।
0: हाँ जी मैं सुन रही हूँ।
3: हाँ, आज के दिन की ढेरों शुभकामना मंगल कामना
0: है जी आपको भी।
3: क्या है
0: टॉपिक है? अपना सफर खुद तय करिएगा, सहारे इंसान को अक्सर कमजोर बना देते हैं।
3: बिल्कुल सही बात है ना, अपना सफर अपन जिंदगी में आए हैं, ठीक है, तो अपना सफर तो अपन को ही तय करना पड़ेगा ना। आप किसी का सहारा लोगे तो कमजोरी बनोगे ना, सही है
0: जी। लेकिन वो कहते हैं ना, लेकिन एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि देखिए इंसान सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, लोगों के बीच रहता है, शहर में रहता है, अगर इंसान को इंसान की जरूरत नहीं होती तो वो जंगल में रहता, तो सहारा ढूंढने की कोशिश करते, क्या कहेंगे आप?
3: नहीं देखिए, इंसान इंसान का सहारा भी है, मगर जब जब तक अपन अपने मतलब सहारा मतलब यूं है कि देखिए खुद की हैसियत पे खड़े हो सकते हैं जितना खुद की हैसियत पे खड़ा होना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहे तो फिर सहारा भी जरूरी है। क्योंकि देखिए मतलब कोई भी छोटा बच्चा ही समझ लो, ठीक है
0: जी,
3: उसको चलना सीखने के लिए सहारे की जरूरत होती है, अंगुली पकड़ के सिर्फ चलाना सिखाते हैं अपन,
0: ठीक है जी,
3: मगर बड़े होने के बाद खुद के सहारे वो चल सकता है
0: जी।
3: तो उसी तरह इंसान को मतलब सबसे पहले खुद का सोचना है कि अपन अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं कि नहीं
0: जी।
3: उसके बावजूद अगर आपको जरूरत है तो आप सहारा ले सकते हो, मगर आप औरों का सहारा लोगे ना तो सारे में ताने ही सुनने को मिलेंगे, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है। तो बनती कोशिश आपको खुद को खड़ा होना है।
0: जी बिल्कुल,
3: क्योंकि मतलब देखिए ये आजकल सारा तो आप ढूंढोगे मगर उसमें ताने बहुत मिलेंगे
0: जी,
3: जब तो कुछ नहीं, बाद में बोलेंगे इसको देखिए इसकी सहायता हमने की थी। तो इससे बेहतर आपको यही करना है कि बनती कोशिश किसी का सहारा ना लेने की कोशिश करें, और अगर फिर भी जरूरती है तो फिर आपको सहारा ले लीजिए, कोई वादा नहीं
0: जी।
3: मगर उसको जिसने आपका आपको सहारा दिया है कभी कभार आप भी उसको उसको दे दीजिए या औरों को उसको दीजिए
0: जी,
3: ठीक है ना। उसको तो ये इंसान कर सकता है, बाकी तो सहारा तो लेते ही है। मगर अब देखिए बुजुर्ग माँ बापों को वृद्धाश्रम भेज देते हैं तो फिर वहाँ उनका तो सारा, जब बेटा छोटा होता है तो पाल पोस के बड़ा माता पिता सारा बनते हैं
0: जी,
3: और
0: जी।
3: जब माता पिता को सारा चाहिए तब उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं।
0: सही बात है,
3: ये कलयुग की हकीकत है
0: जी। जी जी बिल्कुल,
3: बस ये मैंने जो बोला इसमें इंसान समझ जाए तो बेहतर है
0: जी।
3: खुद के बलबूते पे खड़ा होना चाहिए। और प्रश्न क्या है
0: जी? आज का प्रश्न है, हमारे हाथ की जो पांचों उंगलियां है वो पांचों तत्वों से जुड़ी हुई है, तो कौन सी उंगली कौन से तत्व से जुड़ी हुई है, उनका नाम आपको बताना है।
3: ठीक है, मैं सोच के ऑफलाइन देने की कोशिश कर।
0: ठीक है,
3: चलो जय माता दी, जय।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। आइए अब यहाँ पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो नमस्कार, क्या बात है? जो भी जुड़े हैं आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हमारे तक। हेलो, जो भी जुड़ते हैं आप थोड़ा सा जहां से नेटवर्क आता है वहां से जुड़िएगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही हैं और आपको आज हम बहुत बड़ी सरप्राइज भी देने वाले हैं। हेलो
1: हेलो नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई दानेरा से आपको सभी दोस्तों को प्रणाम नमस्कार ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: बस दीदी बहुत अच्छे हैं, काम काज चालू है, आपका प्रोग्राम आप और दोस्तों की बातें सुन रहे हैं दीदी, और बहुत बहुत अच्छा विषय लेके आए हैं, एकदम प्रैक्टिकल दीदी विषय लेके आए हैं आप। और
0: जी जी।
1: जो दीदी मैं कहूँगा,
0: हाँ जी,
1: कि बिल्कुल हमारे दोस्तों ने भी सही बात की थी कि किसी पर निर्भर, ज्यादा निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि अगर मैं एक जो बताऊं कि जो एक लव्य था ना, वो उनका प्रशिक्षण नहीं किया था कौन से गुरु ने, वो तो उनको खुद ने
0: गुरु द्रोणाचार्य।

0: चलाना सीखा था। खुद ने धनुष बाण चलाना सीखा था। तो अगर एकलव्य ने ऐसा सोच लिया होता कि चलो ये तो विद्या सिर्फ गुरु के अलावा नहीं मिल पाती, तो ये कहावत भी नहीं रहती और ये भी नहीं कर पाता। तो बस मैं यही कहूंगा कि हमेशा अपने आप पर बहुत सारा भरोसा रखकर रखे, और क्योंकि वो दूसरे तो कर सकते वैसा हम भी कर सकते हैं। अकेले ही दूसरों से ज्यादा निर्भर रहे ना, तो फिर अभी हमारे दोस्तों ने भी बात बताई थी कि ताना भी देते हैं कि चल चल तुम इतना उछलो मत, ये नहीं तो मैंने तुम्हें ये काम सिखाया था या मेरी वजह से तुम ये है और तुम इतना उछलते हो, ये है वो, ऐसा भी ताना भी लोग करते हैं। तो अपने आप पर बहुत हौसला रखना जरूरी है और मेहनत लगन बहुत जरूरी है जीवन में। हर कोई काम कर सकती है जो अपनी मेहनत और अपने आप पर भरोसा, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूंगा दीदी कि दूसरे पर भरोसे से ज्यादा न रहे और खुद पर भरोसा रखे।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर सुरेश भाई, बहुत ही अच्छी आपने बात कही है कि डिपेंड तो रहना नहीं है, आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, इंसान समाज में रहता है तो एक दूसरे की जरूरत रहती, वो बात अलग है, लेकिन पूरे डिपेंड हो जाए वो भी नहीं होना चाहिए।
0: हाँ, वो तो रहती है, लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है, हमारे लोगों की भी जरूरत पड़ती है, वो जरूरत है तो अलग है दीदी
1: जी।
0: लेकिन अपने आप पर भरोसा रखकर चले और परमात्मा पर भरोसा रखकर चले तो दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं रहती है
1: जी। जी जी,
0: अपने आप सब कुछ जो करना चाहते हैं, अपने सपने, अपने समाज कुटुंब के लिए, देश के लिए, वो कर सकते हैं।
1: जी जी जी
0: जी दीदी, नमस्ते।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आज हम आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। आप याद करिए शनिवार को कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं, घावरी बातें। घावरी बातें में आप सभी को पता है कंचन और रतन आती है। तो रतन को तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, कंचन को भी जानते होंगे, लेकिन चलिए कभी कंचन ऑन एयर स्टूडियो में कभी आए नहीं, पहली बार आपसे मिलने आए हैं, तो आप सभी मिलना चाहेंगे ना, जरूर मिलाएंगे। पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
2: हेलो हेलो दीदी, नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते सगुना बहन, कहाँ खो गए थे, बहुत समय के बाद जुड़े हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: आप भी खो गए थे ना।
1: हम भी खो गए तो आ गए, अब आप भी आ गए, चलिए लौट आए फिर से,
2: मैं बोला दीदी से बात कर लेते हैं, चलो
1: जी। लेकिन हमको आए हुए 10-12 दिन हो गए, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
2: लेकिन मेरे ना बैलेंस नहीं खाना
1: है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो।
2: हाँ, बहुत अच्छे है, अभी तो मौसम की वजह से थोड़ा सर्दी जैसा हो गया है।
1: अच्छा जी जी जी, मौसम क्या है, बहुत ही अभी गर्मी है, और गर्मी से अगर आप एकदम एसी या कूलर में से गर्मी में निकलते हो तो शरद गर्म हो ही जाता है। तो सगुना बहन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और आप घावरी बातें कार्यक्रम के हमारे कलाकार है कंचन जी, उनसे मिलना चाहेंगे, आरजे नाम नहीं बताऊंगी, नाम आपको ही बताना है। हाँ जी, तो चलिए स्वागत है सुनीता जी आपका आशियाना कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और तहे दिल से श्रोता बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन कि आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं।
2: अरे हमें तो बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम। आप जा देखने जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो कंचन और क्या
1: रतन
2: जन घूमने जाते हैं तो राजस्थानी भाषा में बोलते तो हमें इतना अच्छा लगता है। राजस्थानी भाषा तो हमें पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी, और आप भी ऐसे चलो समय हो गया है खाने का और खा ले थोड़ा, फिर घर चले और चले, ये सब बातें होती तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि चलो हम भी उनके साथ घूमने ही गए हैं, ऐसा लगता है हमको।
3: बिल्कुल, आप जुड़े रहे और हमें भी ऐसा ही लगता है कि भाई हाँ, हम लोग केवल दो जने नहीं घूमे बल्कि जो अपना एक समुदाय है वो पूरा घूम ले।
2: और दीदी कभी कभी तो मैं फोन लगा लेती हूँ लेकिन लगता नहीं खाली।
1: अच्छा
2: मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, ये बोला चलो ये कार्यक्रम चालू हो गया तो मैं बात करूँ, लेकिन कभी नहीं लगती बात नहीं होती।
1: अच्छा अच्छा
2: बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे आप,
3: बहुत धन्यवाद
2: कार्यक्रम
1: जी। तो अच्छी बात है कि देखे एक पंथ दो काज हो गए हैं, आशियाना में भी जुड़ गए और गांवरी बातों के आरजे से भी मिल लिया आप जी जी। तो बहुत अच्छी बात है सगुना बहन। और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? आज का विषय है कि अपना सफर खुद को तय करना है, न कि दूसरों पर हमें आश्रित रहना है, क्या कहेंगे आप?
2: हाँ तो वो तो सही बात है दीदी, अपना सफर खुद को तय करना है और ऐसे नहीं है कि दूसरे पर डिपेंड नहीं होना, कभी किसी की जरूरत पड़ जाती है हमको
1: जी
2: तो सहारा लेना भी पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो सहारा लो फिर तो ऐसे आदत पड़ जाएगी ना।
1: जी जी बिल्कुल,
2: सहारा लेने की आदत पड़ जाएगी तो वो हमारा काम कर लेगा, वो हमारा काम कर लेगा, ऐसे तो हम आदत पड़ जाएगी तो हम आलसी बन जाएंगे, हमारी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अपने खुद के पैरों पर हम खड़े होके खुद के परमात्मा के सहारे हम चलेंगे तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे हम।
1: बिल्कुल, सहारा एक दूसरे के आवश्यकता सबको पड़ती है, लेकिन कितना लेना है वो स्वयं को सोचना है, पूरा ही डिपेंड रहेंगे तो फिर तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिल्कुल, और दूसरों का भी समय वेस्ट करेंगे।
2: हाँ और बाबा हमको बोलते है ना खुद के सहारे जियो, दूसरे का सहारा ऐसे नहीं लेने का, कोई भी काम हो तो अपने खुद कर देने का और दूसरों की सेवा करने की, दूसरे से सेवा लेने की नहीं।
1: जी बहुत अच्छी बात है। आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
2: प्रश्न का जवाब है सबसे छोटी उंगली है जल, दूसरी है पृथ्वी, तीसरी आकाश, चौथी वायु और अंगूठी का नाम है अग्नि।
1: चलिए तो सगुना बहन आप कार्यक्रम सुनिए, आपके प्रश्न का जवाब हम कार्यक्रम के अंत में जरूर सुनाएंगे, सही है गलत है जरूर आप सुनेंगे, ठीक है? हाँ जी, और समय मिले तो जुड़ते रहिए। थैंक यू। तो सुनीता जी, जिनका नाम है गांवरी बातें कार्यक्रम में कंचन, तो आप जुड़ सकते हैं और आप भी कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो सुनीता जी हमारे साथ है। और सुनीता जी, आपने अपना सफर कैसे तय किया? आप सरकारी शिक्षिका है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूंगथला में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है, इस मंजिल तक पहुंचने तक आप समझ सकते हैं काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो इस बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो
4: हेलो नमस्कार, ओम शांति। हमारी प्यारी बहन उषा जी और हमारी दो बहनी और आई है, उनका रेडियो मधुबन स्टूडियो में तहे दिल से उनका अभिनंदन, शुक्रिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत और हमें भी आपसे मिलने का अवसर मिला।
4: मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ और नियमित रेडियो मधुबन का श्रोता हूँ, और हमारी सारी बहन कंचन बहन और रतन की मैंने बहुत सारे जो मारवाड़ी में हमारे राजस्थानी भाषा सुनी है, और तीसरी बहन हमारी उषा बहन की मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और आपकी बातें हमारे प्रेरणा रूप बनती है।
3: बहुत सुंदर, और आप लोग श्रोता बंधु इस प्रकार से हमें प्रेरणा देते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। राजस्थानी मारी और उषा जी की भाषा को नहीं, ना ही खाली आपनी भाषा है बल्कि समूचे आपने राजस्थान की भाषा है, माया माँ की भाषा।
4: राजस्थानी तो हमारी मातृभाषा है, तो मोहने घनी अच्छी लागे, बढ़िया लागे, और मोहरे घर वाला सब सुने है तो यहाँ ने पण घनी अच्छी लागे, बढ़िया
3: लागे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर।
4: हमारी कंचन बहन
3: और अबे तो कही है कि स्कूल में भी पढ़ाई जासी राजस्थानी भाषा, वो जब से आदेश हुए है कोर्ट को तो मने तो घनी खुशी हो रही है कि मारी अपनी भाषा एक छोटे से समुदाय की भाषा नहीं बल्कि समूचे राजस्थान की भाषा हो जासी।
4: मने राजस्थानी भाषा वालों ने घनी खुशी की बात हुई है मारे लिए के यो के मारे टाबर है बीजा है सब तो मातृभाषा में वो ने पढ़न मिले तो वो घना वो ने सीखे पण वो पण घना धके आई वो ने छा पड़ी भाषा में की है की नहीं, जो हिंदी भाषा अमुक होया करे तो वो छोटा बच्चों ने कम पतो चला करे हमारे जो राजस्थान में जो हिंदी और हमारी मातृभाषा में जो पढ़ने के लिए जो किताब दी है तो बहुत खुशी की बात है।
3: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा।
4: और हम रेडियो सुनने वाले सभी मेरे प्यारे मित्र हमारे सुरेश भाई जोटाना, सुरेश भाई पिंडवाड़ा, सुरेश भाई धानेरा, कंचन भाई और भी हमारे रेडियो परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार है।
1: दयाराम जी आज ये बताइए कि आपको घावरी बातें कार्यक्रम कैसा लगता है, क्योंकि अक्सर हमारे कंचन बहन पूछते हैं कि भाई हमारे श्रोता बंधु सुनते हैं कि नहीं सुनते, उनको कैसा लगता है, तो आप बताइए घावरी बातें कार्यक्रम कैसा लगता है आपको।
4: घावरी बातें कार्यक्रम तो मन घनो घनो अच्छो लागे, बढ़िया लागे, मन खुशी हो, घावरी बात इतनी मन मस्त लागे, इतनी बात हमारे दिल रे अंदर जो छू कर जावे तो बहुत ही अच्छी लागे, बढ़िया लागे। और वास्तव में हमारे जो घर में परिवार में जो हमारी बहनी है और हमारे जो घर वाले सभी सुनते हैं तो उनको बहुत ही अच्छी लगती है आपकी जो मारवाड़ी भाषा है, जो गांव की बातें, गांव की बातें जैसे महिलाएं होती है तो एक दूसरे के पास जाती है तो अपनी बात करती है और कोई भी काम होता है तो बात करती है तो अपनी भाषा में करती है तो बहुत अच्छी लागे, सीखवा घणो बधो मिले।
1: जी बिल्कुल सही क्यों, आप अपनी भाषा के कई शरम घना जना शरम राखे करे राजस्थानी क्या बोला आपा, पर क्यों नहीं बोला, अपनी खुद की मातृभाषा बोलनी चाहिए।
3: और देखो दिल के जो उद्गार हुए ना,
4: मातृभाषा से जुड़े हुए हैं तो हम मातृभाषा तो हम बोलते हैं अपने आपस में अपने परिवार में तो मातृभाषा ही हम बोलते हैं।
1: जी जी बहुत अच्छी बात है।
4: अलावा हम कई भाषाएं सीख गए हैं जैसे मधुबन से जुड़ा हो तब से लेकर हिंदी भी बहुत अच्छी मुझे भी आती है और सीखा हूँ।
1: जी जी
4: और सभी को नमस्कार है, ओम शांति। मैंने समय ज्यादा ले लिया
1: नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज भाई कंचन बहन आए हैं तो समय तो लेना ही था तो
4: जी। और कंचन और हमारी एक बहन तो उषा बहन तो हमेशा के लिए हमारे आशियाना में थी, लेकिन आज हमारी कंचन बहन बड़ी आई है और रतन बहन आए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारी बहन आज रूबरू उससे भी बात हो रही है, उसको भी हमारी बात को पता चलता है कि हम जो कार्यक्रम करते हैं वो हमारे श्रोता सुनते हैं कि हम दूध दो रहे हैं तो बर्तन में जा रहा है कहीं और जा रहा है।
3: वाह वाह क्या बात कहिए भाई जी आपने, लगता है कि मेरे दिल की धड़कन को बहुत करीब से समझाए, क्योंकि जब जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है भाई हाँ ये प्रोग्राम सही जगह पहुंच भी रहा है, यानी वैसे तो इतना बड़ा मैनेजमेंट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने जनों के प्रयास है।
1: हाँ जी
4: जी, हमारी प्यारी बहनों को एक बताना चाहता हूँ दीदी, मैं रेडियो मधुबन के जन्म दिवस पर वहाँ आता हूँ तो मैंने आपको करीब से देखा है।
1: अच्छा।
4: और जो हमारे कई भूमिकाएं आपकी हमने देखी सुनी है तो जैसे उसी कार्यक्रम में आते हैं कोई हमारे महिलाओं नहीं सुनती है तो उसको हिस्सा को न कार्यक्रम में भी आपकी कोई बातें है मुझे भी सुनने मिलती है, बहुत ही खुशी की बात है, धन्यवाद
1: जी। चलिए दयाराम जी आज के प्रश्न का जवाब देंगे,
4: सवाल का जवाब तो सीधी मैं ऑनलाइन दे दूंगा।
1: अच्छा ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से, पहले गुजरात लाखनी में रहते थे अभी राजस्थान में ही रहते हैं, रामपुरा गांव, और आप खेती का काम करते हैं, आप जैसलमेर के पास है।
3: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अच्छी प्रतिभा रखते हैं आप, अच्छी जानकारी रखते हैं।
1: जी जी जी, और ऐसे रेडियो मधुबन का पूरा परिवार हमारा जो हमारे श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं सभी बहुत अच्छे हैं, रेगुलर लिसनर है हमारे।
3: और मुझे तो आज बात करके ऐसा लगा जैसे कि हम एक परिवार के बीच में बैठे,
1: तो एक परिवार ही है रेडियो मधुबन, पूरा परिवार,
3: कम्युनिटी का रेडियो नहीं बल्कि एक परिवार का रेडियो जैसा।
1: जी जी जी, तो हमारे अभी तो बहुत सारे श्रोता बंधु हैं, उनसे बात होना वो कहते हैं ना कि मुश्किल है, कुछ जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ना चाहेंगे तो फिर से जुड़ सकते हैं आपसे बात करने के लिए, हम तो चाहते हैं कि आपसे बात करें। और विषय तो हम रोज ही स्पष्ट करते रहते हैं और रोज ही खुशनुमा जीवन की बातें होती है, लेकिन अगर आप कोई जुड़ना चाहते हैं और घावरी बातें कार्यक्रम में जो कंचन का रोल करते हैं, इनका असली नाम है सुनीता, तो सुनीता जी से आप मिलना चाहते कुछ बात करना चाहते तो जुड़ सकते हैं रेडियो मधुबन से, नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415, ठीक है। बाकी चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो, हाँ जी गणी खम्मा सा, कैसे हैं आप? उमेश सिंह जी,
5: उमेश सिंह से अभिनंदन कर रहा हूँ दीदी।
1: हाँ जी हाँ जी, तो आप घावरी बातें कार्यक्रम सुनते हैं?
5: यदा कदा समय मिल जाता है तो उसके उपरांत तो सुन लेते हैं, बाकी थोड़ा भी संभव नहीं है।
1: जी जी, राजस्थानी भाषा में आता है शनिवार को 12 बजे आता है, रविवार को 12:30 आता है, ऐसा कुछ है टाइम।
5: अच्छा अच्छा, बिल्कुल प्रयास करेंगे दीदी।
1: हाँ जी हाँ जी। तो जो सुनीता जी हमारे साथ बैठे हैं, आरजे सुनीता जी, वो घावरी बातें कार्यक्रम में कंचन का रोल अदा करते हैं।
5: जी जी जी
1: जी।
5: तो प्रश्न का समय समाप्त हो गया क्या?
1: नहीं नहीं, आप प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं, आज के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।
5: अभी ऑन एयर है।
1: हाँ जी।
5: एक्चुअली प्रयास तो किया था दीदी, परंतु फोन लाइन था, लाइनें व्यस्त थी।
1: जी जी, काफी लोग जुड़ रहे थे ना।
5: प्रयास कर रहा
1: हूँ। जी जी।
5: तो प्रश्न का उत्तर है कि जो पंच तत्वों का प्रतीक है हमारा हाथ है।
1: जी, हाथों की जो हमारी पांचों उंगलियां हैं, तो कौन से तत्व से कौन सी उंगली जुड़ी हुई है?
5: जी जी, और इसका प्रत्युत्तर है अंगूठा है, वो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है।
1: जी।
5: और चर्दनी है, वो वायु तत्व से है। मध्यमा है, वो आकाश तत्व से है। और अनामिका है, वो पृथ्वी तत्व से है। और कनिष्ठा है, वो जल तत्व से जुड़ी हुई है।
1: अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं सही है गलत है। कार्यक्रम के अंत में हम जरूर आपका जवाब देंगे, आप जरूर जुड़िएगा। और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना कि सफर तय करने के लिए किसी का सहारा मत लीजिए, किसी का सहारा लेकर के कमजोर मत बनिए, स्वयं का सफर स्वयं तय करिए।
5: बिल्कुल बात सही फरमाई आपने। सहारा लेने से व्यक्ति जो उसकी मंजिल है वो थोड़ी ओझल हो जाती है, फिर उसमें थोड़ा निडालपना आ जाता है, और कई बार है वो उस सारे के कारण भटक भी जाता है। और राही अगर अकेला मंजिल तय करता है बिना सारे के, तो जरूर उसको बाधाएं आएगी, परंतु वो एक दिन लक्ष्य पर जरूर पहुंच पाएगा। तो प्रयास यही करना। जैसे मैं एक छोटा अभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, अब जो नोटबुक है या जो पाठ्यक्रम की पुस्तक है वो बिल्कुल सटीक है, परंतु वो सारा लेता पासबुक का, कुंजी का, ठीक है, वो सारे के बदौलत उस मंजिल जो टारगेट था, लक्ष्य था, वहां तक नहीं पहुंच पाता।
1: जी
5: जी जी जी,
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया है, और बहुत बहुत आभार आपका। जी
5: धन्यवाद दीदी
1: जी। हाँ जी, तो ये थे उमेद सिंह जी ग्राम ओसिया जो जोधपुर के पास आया है। तो बहुत ही सुंदर आपने विषय को स्पष्ट किया है। सुनीता जी कुछ कहना चाहेंगे?
3: हाँ, तो उमेद सिंह जी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल मुझे लगा। मैं भी स्कूल में टीचर हूँ, और मैं ये एक जो अंतराल अभी बीच में बच्चों की अभिव्यक्ति के दरमियान आया है, उसके अंदर जैसे कि आपने एग्जांपल में बताया कि पासबुक और कुंजी जैसी चीजें हैं
1: जी,
3: ये जिम्मेदार हो गई है। क्योंकि आप और हम लोग अपने समय को देखें तो बच्चों की अपनी एक अभिव्यक्ति होती थी, बच्चों की एक अपनी शैली होती थी
1: जी,
3: जिसमें वो अपने विचार बिना किसी सहारे के अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता था,
1: उससे बुद्धि भी चलती थी,
3: बुद्धि का विकास होता था,
1: होता था जी,
3: चहुआयामी विकास होता था, चहुमुखी विकास होता था, वो सोच सकता था अलग अलग डायमेंशन में। लेकिन जब से ये पासबुक वगैरह चले हैं, बच्चे के अंदर रटन शक्ति बढ़ गई है, बच्चे रटता है,
1: बिल्कुल
3: उसकी अपनी अभिव्यक्ति जैसी कौशल जो एक महत्वपूर्ण है वो
1: जी,
3: खत्म हो रहा है।
1: सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, फिर क्यों मेहनत करें?
3: बस बस।
1: चले, हमारे और भी श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
6: हेलो, ओम शांति जी।
1: हाँ जी नमस्ते मंजू जी, ओम शांति, कैसे हैं आप?
3: नमस्कार मंजू जी, आपका भी तहे दिल से नमस्कार,
6: आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मधुबन रेडियो परिवार के साथ है। आप तो आते नहीं होंगे, आपको सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे हम सब घूमने निकले हैं।
3: वाह वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं। मैं और कंचन जी अकेले नहीं घूमते हम लोग रतन जी, बल्कि हम लोग साथ साथ घूमते
6: हैं। साथ साथ बहुत ही मतलब जानकारियां इतनी घर बैठे मिल जाती है हमारे सामने, आप बोलते हो लगता आ जाता है कि ये चीजें बता रहे हैं।
3: मुझे भी आज अपने परिवार को देख करके, परिवार को सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है, और आप इसी प्रकार से सुनते रहिए। वास्तव में जो घर में बैठे महिलाएं या कामकाज भी कर रही हैं, सभी के लिए महिला भाइयों के लिए सभी के लिए बहुत अच्छा रेडियो, क्योंकि एक शुद्ध मनोरंजन की दृष्टि से आज केवल यही साधन बच गए हैं जो एक शुद्धता परोस रहे हैं आपके सामने।
1: मंजू जी, अक्सर सुनीता जी कहते हैं कहीं मेरा समय तो वेस्ट नहीं जा रहा है, हमारे श्रोता बंधु सुन रहे नहीं सुन रहे हैं, मैंने कहा आप चिंता मत करिए, कभी आइए हम मिलवाते हैं।
6: बहुत सारे श्रोता कहीं कहीं से जुड़ते हैं, हमें खुद को पता नहीं कि इतना रेडियो सुनते हैं मधुबन को लोग जुड़ नहीं पाते। आज मैंने कितनी कोशिश की है सब जाके जुड़ी है, वो नंबर ही नहीं आया आपकी वजह
3: से। तो बहुत खुशी हुई मुझे भी आप लोगों से सभी से मिल करके।
1: तो मंजू जी आपने जवाब तो दे दिया जी,
6: बहुत ही अच्छा प्रयास कि जो आवाज है ना और हंसी का क्या कहना, बस बहुत ही खुश हो जाते हैं।
3: चलिए बहुत धन्यवाद, आप लोग इसी प्रकार से पसंद करते रहे कार्यक्रम को, हम लोग मोटिवेट होते रहे और समय निकाल करके समय समय पे आपसे मिल रहे हैं,
6: आपकी आवाज से, आपकी बातों से, आपके प्रयासों से बिल्कुल घर बैठे बैठे हमें तो बहुत फायदा मिल रहा है। लेकिन कोई नई सुने तो वो अलग बात है, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है मैं तो कभी कभी 5 घंटों में घूम जाती हूँ, बाकी तो सुनने
1: वगैरह
6: नहीं देते।
1: क्या बात है, हमारी मंजू जी बाड़मेर से है
3: जी।
1: और बहुत ही पुराने श्रोता है, रेडियो मधुबन परिवार के सदस्य है।
3: बहुत सुंदर।
1: और इस बार थोड़े
6: रेडियो तो मैं बहुत ही पुराने श्रोता हूँ, जैसे मेरे को समझ पड़ी तब से मैं रेडियो की शौकीन रही हूँ। रेडियो मेरे को बहुत ही अच्छा प्रेरणा रेडियो लगा, क्योंकि ना थोड़े इसमें टाइम वेस्ट होता है।
3: हाँ, काम करते रहो और रेडियो सुनते रहो
1: जी।
6: करते रहो,
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो समय मिले ऐसे, ठीक है?
6: बिल्कुल, कल मैं कही दिया था, कॉल लगा नहीं।
1: जी जी जी, चलिए फिर भी आज जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आपका मंजू जी। और अब यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो देखिए, हम तो सिखाते ही रहते हैं। आज हम चाहते हैं कि आज का व्यंजन आप सुनीता जी से सीखें, ठीक है? तो तैयार हो आप सभी सीखने के लिए? चलिए, सुनीता जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सुनीता जी, आज आप अपने मन पसंद की रेसिपी सिखा सकते हैं, और आज आप बड़ा सा बैग लेकर के आए, तो कुछ लेकर के आए लगता है, ऐसा लग रहा है।
2: जैसे ही आपने मुझसे रेसिपी की बात कही तो मेरे मन में भी यही था कि क्यों नहीं मैं जो कुछ लेकर के आई हूँ उसी की रेसिपी आपसे शेयर कर दूं।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो क्या लेकर के आए?
2: मैं आज लेकर के हूँ नींबू के छिलकों का अचार।
1: नींबू के छिलकों का अचार? देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, नींबू तो वैसे ही हम यूज करते हैं ना, अभी तो गर्मी का मौसम है, शरबत बना बना करके पीते हैं, लेकिन छिलकों को अक्सर क्या करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन छिलके भी यूजफुल है, तो जरूर हम सीखना चाहेंगे।
2: छिलके यूजफुल नहीं बल्कि नींबू से कई गुना यूजफुल।
1: जी जी, विटामिन सी छिलकों में ज्यादा होता है।
2: हाँ, विटामिन सी होता है, रफीज होता है, और आम तो आम गुठलियों के दाम वाली बात ही अलग हो जाती है। और जब हम हो हिंदुस्तानी गृहणिया तो हम कोई भी चीज को
1: वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारे श्रोता बंधु शायद आपसे बात करना चाहेंगे। हेलो
3: जी, नमस्ते। पहले तो हमारे कंचनबेन जी को नमस्ते।
2: आपको भी नमस्कार भाई, नमस्कार।
3: जी सर, जटाना से आपका फेवरेट मैं कार्यक्रम सुनता हूँ। मेरा तो गांव की बातें फेवरेट है, क्योंकि मैं भी छोटे से गांव में रहता था। सभी गांव की जो मुझे परंपरा याद है, और सभी मुझे परंपरा हमने सीखी हुई है। जैसे आप हर दम गांव की बातें में बता रहते हैं, और आपकी आवाज से आपके जो बोल रहे हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। आपका जो फेवरेट शब्द है, मैं बहुत अच्छा एक फेवरेट शब्द था आपका, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस ये आप जो शब्द है आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी ऐसी आप जो हंसते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है।
2: तो भाई जी, आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, ये हमें अच्छा लगता है, सुनते हैं।
3: अगले हफ्ते भी आपने बहुत अच्छा गाँव की बातें में सुनाया था, परसोत्तम मास की जो बातें बताई थी। मैं एक भी शब्द, एक भी मैं एपिसोड चुकता नहीं हूँ, मैं हर एपिसोड आपका सुनता हूँ गाँव की बातें।
2: और आज तो मेरा भी मन गदगद हो गया, काफी प्रेरणा मिली मुझे भी, काफी मोटिवेशनल हाँ। मिला कि आप लोग सुनते ही इतना पसंद करते।
3: कई सारी बातें गांव की जो आप बताते, गांव में कैसे चले रहते थे, छोटा सा मकान था, कच्चा मकान था, लेकिन लोग अच्छे रहते थे, रहते थे, खेत में जाना, पानी में जाना, तालाब में जाना, कई सही सारी बातें आप बता रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा चार्जिंग किया है और अच्छा लगा। आपका ज्यादा वक्त मालूम है कि, लेकिन बस मैं आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा सुनता हूँ आपका, और आपको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कंचन जी और रतन जी की जो जोड़ी है उसके लिए सलामत रहे।
1: थैंक यू।
3: हर समय से गावरी बातें में अच्छी बातें लेके आए, ऐसी हम शुभकामना देते हैं आपको। नमस्ते, ओम शांति।
2: नमस्ते, नमस्ते, ओम शांति।
1: थैंक यू भैया। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, ये भी हमारे रेडियो मधुबन परिवार के बहुत ही पुराने सदस्य है।
2: बहुत अच्छा,
1: और रेगुलर आप लिसनर है, रेगुलर फोन कॉल्स करते हैं। तो अच्छा, चलिए अब आप है ना, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आप रेसिपी सिखा दीजिए।
2: चलिए, तो मुझे अभी बड़ा फास्ट काम करना
1: था। हाँ जी, हाँ
2: तो
1: जी।
2: सबसे पहले हुआ क्या था कि कई बार हम लोग नींबू का रस निकाल करके रख लेते हैं, फ्रिज कर लेते हैं उसको।
1: हाँ जी।
2: तो मेरे पास में हो गए बहुत सारे छिलके इकट्ठे।
1: जी,
2: छिलके इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ कि कांच की बरनी के अंदर आप उसको लीजिए, प्लास्टिक की बरनी के अंदर नहीं, कांच होना चाहिए।
1: हाँ, जी,
2: नहीं तो वो प्रतिक्रिया होकर के, और
1: बिल्कुल प्लास्टिक तो क्या, नींबू एसिड हाँ, है, प्लास्टिक
2: तो इस
1: को
2: प्रकार
1: करता
2: से
1: है।
2: उसके अंदर आप जितने भी हो आपके पास में नींबू स्टोर करते जाइए,
1: जी,
2: और उसको एयर टाइट रखना है, खुला सा नहीं रखना है,
1: मतलब नींबू निचोड़ने के बाद वो छिलके स्टोर करना है, और एकदम ढक्कन फिट लगाना है।
2: उसमें बस काला नमक डाल दीजिए, काली मिर्ची डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, सिंपल नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक, यानी तीनों तरह के नमक डाल दीजिए।
1: जी,
2: और हींग डाल दीजिए।
1: जी,
2: लास्ट के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी शक्कर, सभी चीजें मिला करके उसको हिला लीजिए, और इसको 5-7 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। आपका इतना खट्टा मीठा ऐसा टेस्टी अचार बनकर के तैयार हो जाएगा कि एक बार कहते ना मुंह में पानी आना, चटकारी ले लेकर के खाना, वो आपका सार्थक हो जाएगा
1: क्या बात है ना तो इसमें तेल की आवश्यकता है नहीं गैस की आवश्यकता है
2: बस खास बात तो यही है कि पूरा तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा इससे क्योंकि गैस पर हमने उसे चढ़ाया ही नहीं
1: जी
2: हां बर्नी को हर बार हिलाना है और थोड़ा टाइट रखना है धूप में रखना है
1: जी जी
2: ये बातें ध्यान रखेंगे
1: तो बस क्या करना है आप शरबत बनाओ ना तो छिलके को फेंकिएगा मत
2: हाँ।
1: छिलके को संभाल करके रखिएगा और कांच की बर्नी में डालिएगा कांच की बोतल में ठीक है इकट्ठे हो जाए कि भाई हाँ आपके पाव भर 300 ग्राम ऐसे 500 ग्राम जैसे
2: हाँ।
1: छिलके इकट्ठे हो जाए तो इसमें क्या क्या डालना है आपको काला नमक सेंधा नमक और समुद्री नमक तीनों ही नमक डालना है काली मिर्च डालनी है काली मिर्च का पाउडर डालना है
2: पाउडर
1: हाँ जी लौंग का पाउडर डालना है और आपको थोड़ा गुड़ थोड़ा शक्कर डालना है और ये सब डाल करके एक बार हिला दीजिए हिलाने के बाद धूप में रखिएगा
2: थोड़ी लाल मिर्ची भी डालनी है
1: हाँ लाल मिर्च भी डालिएगा टेस्टी लगेगा और फिर आप धूप में रख दीजिए चार पांच दिन तक धूप में रखना है उसके बाद ये अचार तैयार
2: बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाएगा
1: तो कितना मतलब वेस्ट में से बेस्ट आपने सिखाया है
2: हींग लगे ने फिटकरी रंग भी चोखो आए
1: क्या बात है तो सुनीता जी बहुत सुंदर आपने रेसिपी सिखाई है इस तरह हम तो चाहते कि कभी कभी समय निकाल करके आ जाइएगा
2: बिल्कुल
1: तो बहुत बहुत आभार आपका
2: आपने मुझे एक अवसर दिया इसके लिए भी शुक्रिया आपका
1: साथ ही साथ अब समय भी पूरा होने को आया है तो अब यहीं पर हम इस कार्यक्रम को समाप्त भी करेंगे आज के विचार तो आपने सुना ही है बहुत ही सुंदर रहा है सुंदर से जो नुस्खे दिए हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा अखरोट खाने के क्या क्या फायदे हैं कौन सी बीमारियां ठीक करते हैं वो आप सभी ने जाना है और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी हुई और जो रेसिपी में आपको वेस्ट में से बेस्ट सिखाया है नींबू के छिलकों का अचार बनाना मत भूलिएगा अगर बिगड़ भी जाएगा तो क्या चला जाएगा वैसे ही छिलके तो आप फेंकने वाले थे
2: और डाइजेशन के लिए तो बहुत ही लाभदायक
1: जी बिल्कुल डाइजेस्ट मतलब डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है तो जरूर आप बना करके खाइएगा और बिगड़ जाए तो इधर भेज दीजिएगा हम वापस सुधार करके भेज देंगे आपका ठीक है और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था हमारे हाथ की हथेली के जो पांचों उंगलियां है वो कौन सी उंगली कौन से तत्व से जुड़ी हुई है तो पहले तो मैं आपको जवाब दे देना चाहूंगी फिर कौन कौन जुड़े हैं नाम भी जरूर बताना चाहूंगी तो देखिए अंगूठा है अग्नि तत्व से जुड़ा है ये ऊर्जा पाचन शक्ति और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है ठीक है अब तर्जनी उंगली ये वायु तत्व से जुड़ी हुई है तो ये गति विचार और मानसिक सक्रियता से जुड़ी हुई मानी जाती है फिर मध्यमिका है सबसे लंबी उंगली जो आकाश तत्व के प्रतीक है तो ये विशालता संतुलन और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है अब है जिससे हम तिलक लगाते हैं अनामिका ठीक है ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है ये स्थिरता शक्ति धैर्य और शारीरिक मजबूती से जुड़ी मानी जाती है लास्ट है चिट्टी उंगली जिसको हम कनिष्का कहते हैं ये जल तत्व से जुड़ी हुई है और ये भावनाओं कोमलता सौंदर्य और शरीर में तरल संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है तो हमारे हाथ की पांचों उंगलियां हमें हर पल याद दिलाती है कि हमारा शरीर भी प्रकृति के पांच तत्वों अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल से बना है जब ये तत्व संतुलन मतलब संतुलित रहते हैं तब जीवन में स्वास्थ्य शांति और खुशहाली बनी रहती है तो जरूर आप ध्यान रखिएगा ठीक है और हमारे श्रोता बंधुओं का नाम बताना चाहूंगी सुरेश भाई जोटाना से आपका सही जवाब है कंचन भाई मंडाली से आपका भी सही जवाब है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आप विषय में जुड़े हैं जवाब नहीं दिया है उमेश सिंह जी ग्राम ओसिया से आपका जवाब भी सही है सुरेश भाई धानेराव से मंजू जी बाड़मेर से सगुना बहन जोटाना से दयाराम जी लाखनी से आप सभी का जवाब सही है आप सभी के लिए हम ढेर सारी तालियां बजाना और लास्ट में आज का मीठा मोती भी आपको सुनाना चाहेंगे जो बहुत ही सुंदर है मनुष्य को नकारात्मकता तब घेरती है जब वो अपने को श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित रखता है अब आप सभी से इजाजत चाहेंगे कल फिर मिलेंगे एक कल क्या है सद्गुरुवार और कल पूछने वाली हूँ पहेली तो एक सुंदर सी पहेली के साथ तब तक के लिए राम राम सा जय श्री कृष्ण सा गणी खम्मा सा सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 107.8 FM द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक महिला अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था के बीच किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार बनती है। साथियों, महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि बेटे की चाहत में गर्भपात करवा देते हैं, बेटी के स्कूल जाते वक्त लड़के ने सीटी बजाई तो लड़की का स्कूल छूट गया, तुम पराए घर से आई हो तो जायदाद में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, घूंघट निकालना ही छोड़ दिया। तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। आज के इस नाटक के द्वारा हम जानेंगे कि महिलाएं किन किन कारणों से हिंसा का शिकार बनती है।
4: आज आपको ले चलते हैं राजस्थान सिरोही जिले के एक ऐसे गांव में जहां रहता है जगदीश। जगदीश के परिवार में उनकी माँ रमा, पिता सीताराम के साथ कुल 10 सदस्य रहते हैं। जगदीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसका विवाह पड़ोस के जिले की पुष्पा से हुआ है। बहू पुष्पा पहली बार गर्भवती हुई है और उसका 9वां महीना चल रहा है। पुष्पा की माँ बीमार होने के कारण पुष्पा को डिलीवरी के लिए पियर लेकर नहीं जा पाती है। इस वजह से सास रमा बहू को ताने कसती है और साथ साथ बार बार पुष्पा को पोता चाहिए कहकर परेशान करती रहती है। चलिए चलते हैं पुष्पा के घर और देखते हैं अभी वहाँ क्या चल रहा है।
5: बीनणी, ए बीनणी, कटे परी की मारा पगड़ा दुख है, थोड़ा दबा तो।
6: माजी, मने घना चक्कर आ रहा है माजी, मारी तबीयत ठीक कोनी, सुबह 4 बजा की उठोड़ी हूँ, रात की 10 बजा तक काम कर रही हूँ, अबे मारी ताकत कोनी, मैं सोवा जा रही हूँ।
5: चक्कर आ रहा तो काई करूँ मैं, आणि दुनिया में तू ही एकली महिला कोनी जो माँ बनवा जा रही। अरे मैं तो 7 टाबरा ने जन्म दी दो पर घर रो सारो काम करती, समझी।
6: माँ जी, आपको समय अलग हो।
5: सामने बोल रही थू, ए जग्या थारी लुगाई ने समझा दे, गणिया में बोल रहे।
7: थारी ही हिम्मत क्या न हुई मारी माँ के सामने बोलवा की।
6: थाने खबर है मैं गर्भवती हूँ, पूरा टाइम चल रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा मैं हाथ उठा ही रहा हूँ।
7: देख पुष्पा, तू मने मारवा पे मजबूर मत करया कर, घर का काम तो थाने ही करना पड़ी।
6: थाने खबर है कि मारा पूरा टाइम चल रहा हूँ, मारा सो काम कोनी हो रहे हो, क्या समझाऊ थाने, आ आ मारो पेट दुख रहे हो। आ
7: पुष्पा, पुष्पा कई हो थारे, माँ माँ जल्दी आ, थारी बिंदड़ी ने कई हो।
5: अरे कई नहीं हो, जा दाईमा ने बुला ला, बालक ने जन्म दिवाली पीड़ा है। बिंदड़ी सुन, मारे तो पोतो ही चाहिए।
8: बधाई हो काकी सा, जलेबी खावा वो लक्ष्मी जी आया है।
5: बाटो आयो, मारे तो छोरा रो खर्चो बढ़ गयो।
8: काकी सा, छोरा छोरी अपना हाथ में कोनी, बीनणी और बालक दोई घना कमजोर है, या को ध्यान राख जो, मैं जाऊं, राम राम।
5: पोतो तो दीदो कोनी और ध्यान राखो।
6: सुनो पिंकी रा पापा, अपनी पिंकी रा मालिश करानी है, घनी कमजोर है, ताकि माँ ने कौन
5: काई जरूरत कोनी मालिश वालिश करवा की, वेजा ही पड़ता दड़ता मूर्ति, छोरिया ने घने माथा पर नहीं बिठानी।
6: सो जाए।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग उपस्थित हैं। और हमारे साथ आज स्पेशल मेहमान मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निखिल जी हमारे साथ हैं, निखिल कोठारे। निखिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप मुंबई से हैं और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है रन कर रहे हैं काफी टाइम से, और एक लंबा समय हुआ है, तो मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी कैसे रन होता है और उसमें किस तरह की मशक्कत करनी पड़ती है और अपॉर्चुनिटीज क्या है, और इसमें बहुत सारे क्रिएटिव करने के ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएटिव आइडियाज को फॉलो अप कर सकते हैं, लोगों को बीच में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यूनिक बिजनेस है मेरे ख्याल से। जो भी लोग आते हैं थोड़े क्रिएटिव माइंड वाले इसमें आते हैं, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या क्या क्रिएटिविटी अपने फील्ड में किया है थोड़ी देर में। थैंक यू निखिल। यस, इसके बाद हमारे साथ हैं विदुला कोटारे। विदुला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी इसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में हैं और आप दोनों मिलके इसको रन कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक जिज्ञासा भी रहती है कि क्या एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी भी होती है क्या? बहुत सारे लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं चीजें ऐसे समझते हैं, लेकिन ये स्पेशली कुछ चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं अलग से, इसमें वो चीजें आज हम लोग आपसे जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में।
1: थैंक यू रमेश जी, थैंक यू।
0: यस यस, और इसके साथ में हमारे साथ आनंद जी आज एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं, वेलकम सॉन्ग, तो आनंद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्वागत में मैं चाहूंगा आनंद जी हमारे विदुला जी एंड निखिल जी अर्चना जी के लिए बहुत ही प्यारा से गीत सुनाइए, उसके बाद हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करेंगे।
2: मैं आपको सुनाना चाहूंगा आज आनंद फिल्म का जिंदगी कैसी है पहली हाय।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी कैसी है पहली।
2: मैंने गायन सीखा नहीं है तो थोड़ा सा मुझे समझ के चलिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: थैंक यू। जिंदगी कैसी है पहली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंस

कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए।

0: कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। धन्यवाद।
1: चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आनंद जी, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छी तरह से आपने गुनगुनाया उसे, और कहीं भी कोई गलती नहीं की, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ कुछ विशेष मित्र जुड़े हैं। सुभाष जी ने याद किया है निखिल सर को, विदला जी को, और जय रमेश हैं, अर्चना दीदी को, और सिंगर आनंद जी को भी याद भेजा है, और बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें। और एक नए टॉपिक पे बात करने वाले, इसलिए उनकी जिज्ञासा बड़ी है और वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। मीनल जी ने भी याद भेजा है, आप सभी को ओम शांति लिख के भेजा है, और सलमान जी ने भी लिख के भेजा है, याद कर रहे हैं हमें भी, और नीता जी ने भी याद भेजा है, ओम शांति। और आनंद जी आपके लिए वेरी नाइस, आनंद जी करके लिख के भेजा है, नाइस सिंगिंग। सुभाष जी आपके लिए, आनंद जी सुन, सुभाष जी ने भी भेजा है, आनंद जी बहुत ही अच्छा आपने आनंद फिल्म का गाना सुनाया करते। मिनल जी ने वेरी वेल गाना आपने बहुत अच्छा गाया करके भेजा है आपके लिए, थैंक यू सो मच आप सभी को। और आइए मैं निखिल सर से आपको जोड़ना चाहूंगा। निखिल जी, जैसे कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है कि वो एक ब्रांड होती है एडवर्टाइजमेंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट होना शुरू हो जाता है, वो एक ब्रांडिंग करना शुरू कर देते, तो एक अच्छे ब्रांड और प्रोडक्ट को सेल करने का जो सिस्टम है या तरीका क्या है, मार्केट में अच्छी तरह से वो अपना जो है काम कर जाए, इफेक्टिवली वो प्रोडक्ट सेल हो जाए, सिंपली बातों में अगर हम लोग कहें, तो इसके बारे में आपके विचार हम सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका निखिल।
2: थैंक यू रमेश जी। सो एडवर्टाइजिंग जो सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट है, लेकिन इफ वी हैव टू जस्ट टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग, तो उसमें सो एक कंपनी ले लीजिए फॉर एग्जांपल। तो
1: जी जी
2: रमेश जी, आपके घर पे कौन सा डिटर्जेंट आता है?
1: हाँ जी,
2: आपके घर पे कौन सा डिटर्जेंट आता है? विच डिटर्जेंट डू यू यूज?
1: मैं तो यहाँ वो पियर्स देते हैं हम लोगों को पियर्स साबुन देते हैं।
2: राइट, सो पियर्स साबुन आप यूज करते हैं, दैट्स द सोप दैट यू यूज। सो अगर हम बोलेंगे घर पे, अगर आपको ऑर्डर करना है, तो आप बोलते हैं कि सोप भेजिए या फिर आप बोलते हैं पेयर्स भेजिए?
1: हाँ, वो बात सही है, हम नाम बोल देते हैं
2: नाम बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट ब्रांडिंग इज, कि वो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो ब्रांड का नाम लेते हैं, ना कि वो प्रोडक्ट। तो ये जो जर्नी है वो एक साथ मतलब एक घंटे में या फिर एक दिन में या एक साल में नहीं होती, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। उसको बनाने में टाइम लगता है और पैसा भी लगता है,
1: बिल्कुल
2: राइट। तो जब भी हम जर्नी चालू करते हैं एडवर्टाइजिंग जो बात करते हैं, तो उसकी जर्नी बहुत लंबी होती है। उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि हमारा बायर कौन है, कौन हमारा प्रोडक्ट लेने वाला है, उसको यूज क्यों करने वाला है, ना कि यूज करने वाला है कि नहीं वो तो एक बात हो गई, लेकिन क्यों कर रहा है वो और एक बात हो जाती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, कि व्हाई आर प्रोडक्ट ओनली। आपका जैसे चैनल है एफएम का, तो व्हाई डू पीपल लिसन टू दैट पर्टिकुलर चैनल एंड नॉट कोई और, क्यों नहीं? सो ये जो क्यों है क्वेश्चन, वहीं से हमारे एडवर्टाइजिंग का सारा क्वेश्चंस जो आंसर्स मिलते हैं वो वहीं से मिलते हैं। सो आई थिंक एडवर्टाइजिंग का जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, तो पहले पूछना चाहिए कि व्हाई इज एडवर्टाइजिंग, उसको क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाई इज एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो आपको अगर सो यू नो जस्ट टू एक्सपैंड, कि कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं और जो बोलते हैं कि हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, तो बोले सो क्वेश्चन ये आता है कि आपने ब्रांड कब लॉन्च किया, हाउ मेनी पीपल नो योर ब्रांड। आपने कंपनी लॉन्च की ना कि ब्रांड लॉन्च किया है, तो वो एक फर्क होता है जो समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। आई मीन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, कि यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी नॉट अ ब्रांड। ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग एक मुख्य किरदार प्ले करता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फैक्टर इन क्रिएटिंग अ ब्रांड, और एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए एडवर्टाइजिंग की बहुत जरूरत होती है, ना कि मार्केटिंग या फिर सेल्स की। सो वो फर्क जानना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ब्रांडिंग के लिए कुछ टाइम जरूर लगता है, ऑन द स्पॉट वो चीजें नहीं होती है, मार्केट में जाएगा बहुत लोगों के पास वो चीजें घूमती रहेगी, तब जाके वो चीजें और उसके साथ में लोग खरीदते जाएंगे और उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें बेनिफिट मिलेगा, और फिर वो चीजें ब्रांडिंग की तरफ आगे बढ़े। लेकिन साइमल्टेनियसली मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट साथ साथ में चलेगा, तो कुछ समय के बाद वो ब्रांडिंग बन जाती है एक अच्छा। तो निखिल बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने बताया। और अब आइए विदला जी से भी एक सवाल कर लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग ब्रांडिंग की बात कर रहे थे, उसके साथ में एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग यानी बिजनेस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है ऐसा मुझे लगता है, कि कभी कभी दोनों साइमल्टेनियसली भी चलते हैं, लेकिन समय के साथ साथ आज ऐसा लग रहा है कि बिजनेस करना है तो एडवर्टाइजमेंट करना ही है, ऐसा लगता है आज। तो मैं चाहूंगा कि वो ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा अपने विचार जरूर शेयर।
3: यस, थैंक यू रमेश जी। बेसिकली एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस है एक ओवरऑल, अगर हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था 2002 में, सो हमें अभी 20 साल हुए हैं ये बिजनेस में। तो वो टाइम पे जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी, वहां पे ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग ज्यादा हुआ करता था। जैसे हम न्यूज़पेपर में एड्स देखते थे, टीवी पे एड्स देखते थे, या होर्डिंग्स कैंपेन्स बनते हैं, वो टाइप का जो टारगेट ऑडियंस, वो जो कस्टमर था वो टाइम पे 20 साल पहले जो कस्टमर हुआ करता था और अभी का जो कस्टमर है उसमें बहुत फर्क है। पहले अगर आपको एक एग्जांपल दे तो ब्रांड के साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्ट लोग करते थे। जब भी हम सुनते थे हमारा बजाज, वो जो ट्यून अभी भी आपको किसी को भी याद रहेगी कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, राइट? सो एक इमोशनल कनेक्ट हुआ करता था, वो प्रोडक्ट देख के लोग जाके बाय कर। अभी जो एडवर्टाइजिंग जैसे ट्रेंडिंग चल रहा है, इट इज मोर टुवर्ड्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, आई वुड से, ऑफ एडवर्टाइजिंग। What I want, I get that in front of me on my phone in a second. तो अभी वो टारगेट ऑडियंस, वो कस्टमर ही चेंज हो गया है, उसे सब कुछ अभी तुरंत चाहिए। एक चीज मैंने गूगल पे टाइप की चश्मा, तो मुझे 1000 एड्स दिखाता है गूगल की ये टाइप का चश्मा है, ये टाइप के फ्रेम्स अवेलेबल है, मैं ऑनलाइन जाके फ्रेम अपने आप को देख सकती हूँ। सो इट्स, आई वुड से इट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट ओवर द इयर्स। एंड ऑब्वियसली उसके साथ ये सारे, जैसे एडवर्टाइजिंग इवॉल्व हुआ है, उसके साथ ऑब्वियसली सारे मीडियम्स भी इवॉल्व हुए हैं। ट्रेडिशनल मीडियम्स ऑब्वियसली आर देयर, वो भी उतने ही इफेक्टिव है आज भी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एंटायर चेंज दैट हैज हैपेंड, वी ऑल हैव टू इवॉल्व टू दिस न्यू टाइम ऑफ एडवर्टाइजिंग। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू एवरी सिंगल डे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। विद्या जी, अच्छी तरह से आपने बताया कैसे बिजनेस और जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है दोनों एक साथ एक दूसरे के पूरक हैं। पहले के जमाने में और अभी में काफी अंतर आ गया है। आप गूगल में टाइप करके बहुत सारी वैरायटीज जो है उसके देख सकते हैं और पहन के भी देख सकते हैं, फ्रेम्स हो या फिर जो भी चीजें आपको देखना है, यू गेट मल्टीपल, मना बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक और बात पूछने में आता है कि भाई इतने सारे ब्रांड्स हैं और इतने सारे कंपनीज हैं, इतने सारे लोग हैं, फिर भी कुछ लोगों को कुछ पसंद आता है, तो वो कैसे हम लोग, उसके लिए क्या होता है, क्या आप बताना चाहेंगे? तो पर्टिकुलर जैसे कि नाम बता के वो चीजें लेते हैं, जैसे निखिल जी ने उसको बताया, तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे कंपटीशन अभी हैं, उस बीच में हमारा एडवर्टाइजमेंट काम करेगा या प्रोडक्ट क्वालिटी इम्पोर्टेंट काम करेगा?
3: आई थिंक बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज प्रोडक्ट किसके वजह से चलता है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो प्रोडक्ट चलना ही है। बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर वो प्रोडक्ट को अच्छे कपड़े नहीं पहनाए तो वो प्रोडक्ट अपील नहीं करेगा, और अगर मैंने वो सही मीडियम के सामने वो प्रोडक्ट को राइट टारगेट ऑडियंस के सामने राइट टाइम पे अगर नहीं दिखाया तो अगेन वो प्रोडक्ट फेल जाएगा। सो ऑल दिस आई वुड से गो हैंड इन हैंड। ऐसा कुछ एक फॉर्मूला नहीं है कि इसके लिए, जो अभी निखिल जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसके पीछे बहुत सोच होती है, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी जब भी हम लोग बनाते हैं तो ये सारी चीजें हमको, मतलब जो एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस है वो क्या कपड़े पहनता है, वो कौन सी गाड़ी में ट्रेवल करता है, वो कहाँ काम कर रहा है, तो इसका पूरा स्टडी करके फिर उसकी स्ट्रैटेजी है, फिर उसका हम लोग क्रिएटिव्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं इन डिफरेंट मीडियम्स। सो इट्स अ जर्नी, आई वुड से। ब्रांडिंग इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इन वन डे, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। इट टेक्स इयर्स, इट इज एन एक्सपीरियंस, इट इज अ जर्नी दैट अ ब्रांड गोस थ्रू।
1: बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि कोई चीज का ब्रांडिंग करना इतना आसान भी नहीं है और टाइम टेकन है, लेकिन एक बार वो चीजें बनती हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम भी होता है। चलिए, एक सवाल आया है, मैं चाहूंगा कि निखिल जी, मैं ये सवाल सुरेश जी का है, लिखते हैं, आजकल कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करने से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं, आपका क्या विचार? अच्छा, इनका पूछने का तरीका यह है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें कंपनी प्रोडक्ट का क्वालिटी पे कम ध्यान देती है लेकिन मार्केटिंग में ज्यादा पैसा यूज करती है, ऐसा उनका कहना है, तो क्या आपके विचार है?
2: सो वेरी गुड क्वेश्चन सुभाष जी, बट इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। Who is putting in a lot of money, ये क्यों डाल रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। They want to capture the market fast. सेल्स बढ़ाना है, ब्रांडिंग डज नॉट वर्क ओवर, ये ब्रांडिंग कर ही नहीं रहे और ये मार्केटिंग भी नहीं कर रहे, ये एक्चुअली सिर्फ सेल्स स्ट्रेटेजी है, पैसा जितना डालो लोगों के सामने खड़ा करो प्रोडक्ट को, बट दे डोंट, सो दिस इज नॉट मार्केटिंग एक्चुअली, ये मार्केटिंग ना है ना ब्रांडिंग है, ये सेल्स स्ट्रेटजी
1: का लोगों का सोच है और वो सोचते हैं कि पैसा मार्केट में डालो, पैसा नहीं।
2: यस, एंड दिस इज फ्लाई बाय, लाइक आज है कल नहीं है, इनको पड़ी नहीं है कि 10 साल के बाद मेरे बारे में क्या लोग सोचते हैं, मेरा ब्रांड है भी या नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऐसी कंपनीज ज्यादा देर नहीं टिकती हैं, ये आती हैं जाती है, देर आर पीपल हु कम अप विद बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लाइक विदुल ऑल्सो सेड, लाइक यू नो, नो मैटर हाउ मच आई शाउट, मैं कितना भी जोर से चिल्लाऊं, जब तक मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तब तक वो वापस रीसेल नहीं होगा, इट विल नॉट गेट बॉट अगेन। And ऐसे this is like Subhash was asking, like lot of people are pumping in a lot of money in advertising, लेकिन ये नहीं टिकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं टिकेंगे, एक हाथ दो साल आपको दिखेंगे, because जब तक उनके पास पैसा है तब तक करेंगे। पीछे किसने देखा है कि उनका figures क्या है, we know so many online companies who जो अभी दिखाते हैं कि you know they are advertising left right and center, लेकिन अगर आप उनके books देखेंगे तो they are in losses, सिर्फ नाम बड़ा कर दिख के रख दिया है, एंड दे विल डाई, एंड वी आर द पीपल, वी आर द जनता जो चूज करेगी कि ये प्रोडक्ट चलना है या नहीं चलना है, आगे जाके हम ही खरीदने वाले हैं इनको। आई थिंक दीज आर, दिस इज नॉट एडवर्टाइजिंग, दिस इज नॉट मार्केटिंग और नॉट ब्रांडिंग, दिस इज जस्ट सेल्स, बस मुझे बेचना है।
1: निखिल जी बहुत अच्छी बात आपने बताया, आशा करता हूँ सुभाष जी को आपका जवाब सुन के समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है, और पूजा जी ने याद भेजा है, फिर बाद में मिनल जी ने भी याद भेजा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा निखिल जी एक और बात आती है कि जैसे हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं आज, एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था कि हम लोग चलो न्यूज़पेपर में टीवी में ऐड देने का सोचते थे या फिर उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में डिजिटल एक माध्यम बन गया है और मोबाइल फोन से भी डिजिटली हम लोग जो है अपना प्रोडक्ट भेज सेंड कर सकते हैं, तो ये कितना कारगर है वो थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आज के समय में समझो होममेड वर्क है, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट जो भी घर से भेजना चाहते हैं वो, तो शायद उनके लिए अच्छा रहेगा, दे कैन पुट उनका प्रोडक्ट ऐसे डिजिटली और लोगों को बेच सके ऐसा।
2: करेक्ट करेक्ट, सो डिजिटल मीडियम, अगर इफ आई लुक एट इट ओनली एज अ डिजिटल मीडियम देन इट्स अ वेरी ग्रेट टूल, बट अनफॉर्चुनेटली करंट मार्केट, एटलीस्ट इंडियन मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग इज लुक्ड एट एज अ ब्रेन नॉट एज अ टूल। सो फर्क ये है कि जैसे प्रेस है या रेडियो है या टेलीविजन है या फिर मैगजीन्स है, होर्डिंग्स है, ये सारे टूल्स हो गए, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडियम इज सपोज टू बी अ टूल टू बी यूज्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के मार्केट सिनेरियो में डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम अ बिग बबल, इट्स अ बबल, वो बस्ट होने वाला है, बट इट इज जस्ट अ बबल। सोचना ये है कि सो आई टेल यू वेयर वी कम फ्रॉम, लाइक यू नो वी आर वेरी ओल्ड स्कूल, सो अभी कंप्यूटर्स नहीं थे तभी हम एडवर्टाइजिंग्स में आए थे, सो वी आर ओल्ड स्कूल, वी हैव सीन ट्रांजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी कमिंग इन टू द पिक्चर, एडवर्टाइजिंग में टेक्नोलॉजी का एडवेंट देखा है, कैसे वो इन्वॉल्व हुआ है, तो वेन वी talk about digital medium, so are we using it as a tool to sell our idea, or is it something that we are using to think ki acha abhi ye market hai to isko kahan pe pakde, ye ye banda hai to ye kahan pe milega, social media pe milega ya google pe milega ya kahan pe milega, pakdo isko, that is how people are using it। aajkal trend kya ho gaya hai ki you know aapko kya, aapka kya product hai wo baaju pe rakho, aapko kitna likes chahiye wo pehle poochte hai, aapko kahan pe sell karna hai ye pehle poochte hai, kyun सेल करना है, डिजिटल पे क्यों यूज करना है वो नहीं पूछते। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन इंडिया, इंडियन मार्केट में ये एक पूरा मार्केट बन गया है, सेल्स मार्केट, जहाँ पे डिजिटल इज जस्ट सोल्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, इट इज अ ग्रेट टूल अगर आपके प्रोडक्ट को या आपके कंपनी को उसका फायदा होने वाला है। क्या आपको सोशल मीडिया पे होना जरूरी है, क्या आपका ऑडियंस वहां पे है या फिर वो गूगल पे ज्यादा रहता है, या सोशल मीडिया पे भी इज योर टारगेट ऑडियंस ऑन फेसबुक मोर और इज ऑन ट्विटर मोर या लिंक्डइन पे हो है, ये जब तक आप पूछेंगे नहीं, ये आपके आपको जब तक ये इन चीजों का जवाब नहीं मिलेगा या नहीं मालूम होगा, तब तक आप सोशल मीडिया या डिजिटल को वेस्ट कर रहे हो, वो स्पैमिंग हो जाता है। एक मैंने लाइक डाला कि मुझे आई एम लुकिंग फॉर समथिंग विच इज लाइक अ जैकेट एंड आई गेट बम्बार्डेड विथ 10 डिफरेंट कंपनीज. न्यूसेंस वैल्यू हो गया ये. इट इज अ न्यूसेंस वैल्यू नाउ. इट इज गुड एंड इट इज बैड. आपको जिस तरीके से इफ इट इज यूज्ड वाइजली एंड इन मेजर्ड वे देन इट इज अ गुड टू. अदरवाइज इट बिकम्स अ स्पैम. सो मेरे हिसाब से अगर ओल्ड स्कूल के बारे में बात करें तो पुराने जमाने में यू नो वी यूज टू हैव दोज लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स न्यूज पेपर में यू नो एंड द एंड ऑफ द डे वो रस्ते पे मिलते थे. यू नो डिजिटल मार्केटिंग इज रिप्लेसिंग फ्लायर्स. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूल. लेकिन एनी एंटरप्रेन्योर या एनी होम एंटरप्रेन्योर ऑल्सो जो घर से ऑपरेट कर रहे हैं उनको सही में सोचना चाहिए कि ये कहां तक किस हद तक मुझे फायदा इस मीडियम का होने वाला है, इस टूल का होने वाला है. मेरा बायर क्या उस मीडियम पे है या नहीं है. किसी को चल जाता है, किसी के लिए वो अच्छा है टूल, लेकिन इट इज नॉट सो ट्रू फॉर एवरी कंपनी और एवरी एंटरप्रेन्योर.
1: बिल्कुल बिल्कुल. निखिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो आज हम लोग अच्छा माध्यम है लेकिन वो उपयोग कितना है, क्या मेरे लिए कितना उपयोग है, क्या मैं उसका सही इस्तेमाल कर पाऊं या नहीं कर. ये इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और कैसे आप सेल करेंगे. अगर आपका प्रोडक्ट रेगुलर रूटीन में यूज करने वाला है, खाने पीने का आइटम है, तो आप दूर तक उसको सेल नहीं कर सकते या पोस्ट नहीं कर सकते हैं. क्योंकि तो खाने पीने वाला आइटम तो लोग तो आज का मतलब एक घंटे के पहले आपको मैसेज कर सकते, तो वो एक घंटे में आपका डिलीवर होगा क्या प्रोडक्ट, वो भी इम्पोर्टेंट. तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे ख्याल. और इन सारी चीजों को देखकर आपको शायद डिजिटल माध्यम उतना फ्रूटफुल जो चीजें देनी चाहिए. और डिजिटल में भी आप जो ग्रुप बनाए हैं वो कितने आपको जानते हैं चाप, तो वो आपके साथ कैसे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है. तो काफी अच्छा माध्यम है लेकिन माध्यम को यूज करना मेरे ख्याल से इट विल टेक टाइम. आपको सर्वे करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा. सेम चीजें जैसे हम लोग लोगों को बताते रहना चाहिए और बताते फिर वो चीजें आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आप उन चीजों पे काम कर सकते हैं. तो कोई भी चीज हो इट इज अ टूल, लेकिन टूल को आपने कैसे यूज करना है, आप कितना टाइम उसके ऊपर काम करते हैं, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे लिए वर्क करता है या नहीं करता.
2: कर
1: जैसा वर्क करेगा तो उस हिसाब से फिर आप जो है उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं आगे बढ़ा. निखिल थैंक यू.
2: और एक चीज है और एक चीज मुझे क्लैरिफाई करनी थी अबाउट डिजिटल मीडियम. इट इज अ ग्रेट टूल अगेन, लेकिन उसमें इमोशनल कनेक्ट नहीं होता. देयर इज नो इमोशनल कनेक्ट. जो ट्रेडिशनल मीडियम्स में जो इमोशनल कनेक्ट हुआ करता था, लाइक यू नो हैंड फील टच जो बोलते हैं, वो सब नहीं होता. सो इट इज अगेन फॉर अ स्पेसिफिक मार्केट, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए वो परफेक्टली फिट होता है एज अ डिजिटल टूल.
1: बिल्कुल. और एक्चुअली में क्या है, वो लोग जब मार्केट में जाके या शॉप में जाके जो चीजें खरीदते हैं या जो एक कनेक्शन है एक्चुअली में ना, हम लोग मुझे याद है वो केमिस्ट शॉप में हम लोग थे एंड वो व्यक्ति दूर से ही हमको दिखाई देता है ना, उसकी मेडिसिन हम लोग निकाल के रखते थे तो उससे उनकी इतनी खुशी. वो मैटर नहीं कि वो कौन सा मेडिसिन खा रहे, क्यों खा रहे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. लेकिन उसके चेहरे पे जो स्माइल उस चीज को देखकर आती थी, दैट वन मना विदाउट एनी थिंग फन रिलीज हो जाता था कि अरे ये तो आ भी गया काउंटर. तो शायद वो जो स्माइल ही है वो शायद इस डिजिटल मार्केट में नहीं हो सकती. यू कैन नॉट रिप्लेस दैट थिंग. वो चीज तो वो एक अच्छी चीज है. तो शायद वो चीजें हम लोग मिस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में. और तो आइए मैं फिर से अभी विदुला को जोड़ना चाहूंगा. विदुला जी एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग चलो बिजनेस करना है, हमें ब्रांडिंग करना है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या तरीका है? क्योंकि काफी टाइम से आप इस बिजनेस में, एडवर्टाइजिंग बिजनेस में है, आपने बहुत सारे कंपनी को टेक आउट किया होगा, उनके ग्रोथ को देखा होगा, उनका कंटिन्यू ब्रांडिंग को देखा होगा, तो वो चीजें आपके सामने से हुई है. तो मैं चाहूंगा कि नए एंटरप्रेनर को आप अच्छा गाइड भी कर सकते हैं कि हाउ द थिंग शुड बी गो.
3: यस डेफिनेटली रमेश जी, आई टोटली बिलीव कि एनी आइडिया एक कहीं से ड्रीम से स्टार्ट होता है और वो ड्रीम अगर हमें हासिल करना है तो उसको एक गोल की तरह अगर हम लोग देखें एंड उसकी तरफ राइट एक्शंस भी ले तो वी डेफिनेटली आर आई वुड से सक्सेसफुल. अनदर थिंग आई लाइक से इज वॉट एवर यू डू, एनीवन हु वांट्स टू से, अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए आइडियाज लेके लोग आ रहे हैं एंड अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स है, अमेजिंग आइडियाज है. लेकिन एक चीज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वेदर यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग इज लाइक आई सेड, पैशन इज वन थिंग बट वॉट यू डू कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे इज वॉट मैटर्स. कि अगर आप एक चीज कर रहे हो, अगर एक बिजनेस रन कर रहे हो, तो आप क्या कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो? एक दिन उठ के एक चीज की तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है. यू विल हैव टू कीप डूइंग योर रिसर्च, यू नीड टू बी अपडेटेड विथ योर मार्केट ट्रेंड्स, जो चल रहा है अभी, एवरीथिंग यू विल हैव टू बी अपडेटेड, एंड एट द सेम टाइम कीप योर गोल फिक्स्ड कि मुझे ये अचीव करना है. सेकेंडली, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू एड हियर इज बिकम योर डोमेन एक्सपर्ट. अगर कुछ भी कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट डोमेन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लोग आपकी पहचान आपके बिजनेस से या आप जो भी कर रहे हो उससे एसोसिएट करें लोग उसको. तो दैट इज वॉट matters. And I think leadership quality, though obviously if you're running a business, if you are an entrepreneur, if you are running a team, then leadership ki quality bhi utni hi important hai. But at the same time staying grounded. So hum jaise bolte hai na ki any entrepreneur actually needs to create more leaders under him. So that is, I say, a true leader jo apne niche leaders create kar sakega, wo in the true sense leadership role mein fit hota hai. So ye sari thodi thodi qualities I feel are very important for any entrepreneur who's wanting to start or wanting to get into any business or any anything that he's starting new. So I think I've covered a lot of things that I personally practice, me and Nikhil personally practice in our day to day lives, which are important, and that is what everyone needs to do in some way or the other.
1: जी जी विदुला, काफी अच्छी बात आपने बताया. एक आइडिया जो आपके जहन में आती है वो आप जितना अच्छी तरह से उसके बारे में फुल्ली सोच लेते हैं और समझ लेते हैं, मेरे ख्याल से वो आइडिया अगर आपको खुशी देता है तो दूसरों को भी देगा, आपको अगर उससे बेनिफिट मिलता है तो दूसरे को भी देगा. लेकिन बात आती है कि सिर्फ आइडिया आने से और उसको प्रैक्टिकल में लाने में जो चीजें लगती हैं, जो टूल्स लगते हैं, वो प्रॉपरली आप अगर यूज करते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो चीजें आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी व्हेन यू डू मार्केटिंग. विदुला जी है, निखिल सर है, इन सभी लोगों को थोड़ा अगर आप इनके संपर्क में आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इजी होगा, थोड़ा सा आपको जैसे कि प्रोडक्ट का एक इन्वेस्टमेंट अलग होगा और एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट अलग होगा. दोनों चीजों को अगर आप साइमल्टेनियसली लेके और फिर उस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से फास्ट एक रन अप आप कर पाएंगे, वो एक बिजनेस अच्छा आपको करने को आएगा या कर पाएंगे आप, ऐसा मुझे लगता है. तो विन विन सिचुएशन होती है को प्रोडक्ट आइडिया, एंड फिर एक बार आपको दो चार मार्केटर से आपको अगर बात करेंगे तो उनके आइडियाज को कैसे वो चीजों को, कैसे वो प्रोडक्ट जाएगा, कैसे वो चीजें स्मूथली पहुंचेगा लोगों तक, वो और उसके लिए किस किस माध्यम से हम लोगों को ये चीज पहुंचा सकते हैं और कौन खरीदार है, ये सारी चीजें आपको एक बार पता चल जाएगा. तो मुझे लगता है विदुला जी इन चीजों के लिए आपको हेल्प कर सकती हैं और एक आइडिया आपके पास हो जो आपको खुशी दे. यार आपको खुशी नहीं देगा, आपने सोच लिया कि भाई ऐसा करने से बिजनेस होगा, बिजनेस नहीं, आपको बिजनेस करना है लेकिन बिजनेस का आइडिया नहीं चाहिए, बिजनेस के बारे में नहीं सोचना, आपको आइडिया वो होना चाहिए जो आपको खुशी दे. प्रोडक्ट के बारे में अभी नहीं सोचो, आपको जो आइडिया खुशी देगा फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो मार्केटिंग हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से नेचुरली वो आपका एक बहुत सुंदर तरीके से जो है आप काम कर पाएंगे और वो खुशी देगा तो चीजें अपने आप लोगों के पास पहुंचेगी. अल्टीमेटली जो चीज हम लोग बनाएंगे उससे लोगों को खुशी मिले या उसको यूज करने में आसानी हो, आनंद मिले उनको, है ना, तो वो आपको टच होना चाहिए. इट इज नॉट जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट अच्छा वाला सोचता हूँ, ऐसा नहीं होता है. मेरे ख्याल से ये चीजें, मेरे ख्याल से वो शायद उसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा आपको और बहुत ही फिर उसके पीछे बहुत काम भी करना पड़ेगा. यस अर्चना जी, मैं चाहूंगा कि निखिल सर से कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिए, या तो बताइए मुझे कि कैसे कनेक्शन बना दिया आपने.
4: थैंक यू, वेलकम विदुला एंड निखिल. रमेश जी, निखिल और विदुला को तो मैं 3-4 साल से जानती हूँ एक्चुअली.
1: अच्छा, अच्छा.
4: मेरे बुक लॉन्च के समय मुझे मेरा क्रिएटिव आर्टवर्क बनाना था और मैंने एक एजेंसी को बनाने दिया था और उन्होंने उसको पूरी तरह से मैसअप कर दिया था और मैं ढूंढी रही थी अभी कौन बनाएगा मुझे, मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन बाकी थे. तो हमारी रिलेटिव है संजना कोठारे, निखिल कोठारे सिस्टर, तो उन्होंने बताया कि माय ब्रदर डज दिस, कि निखिल करते हैं. सो ऐसे ठीक है, तो उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने उनका मैंने दिमाग खराब कर दिया 3 दिन. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो भी चाहिए थे, बट इतना पेशेंटली उन्होंने मेरा सारा काम करके दिया. इतना फ्लॉलेस एंड सुपर, मतलब मेरे बुक लॉन्च का जो क्रिएटिव आर्टवर्क था इट वॉज एक्सीलेंट. मतलब जैसे मेरी इच्छा थी एकदम यू नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड परफेक्ट क्वालिटी. इट वॉज जस्ट सो नाइस और मेरे हर एक रिक्वायरमेंट को वो इतनी पेशेंस के साथ यू नो कर रहे थे. सो आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट निखिल. सो ऐसे उनसे पहचान हुई. एंड अभी रोनिका जी जो हमारे साथ शो पे गाती हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था जब मैं उनसे बोल रही थी कि यू नो कौन ऐसे अच्छे लोग हैं जिनको हम इंटरव्यू कर सकते हैं हमारे शो पे. तो उन्होंने मुझे विदुला एंड निखिल का नाम बताया. एंड आई सेड उनको तो मैं जानती हूँ बट मेरे ख्याल में नहीं आया था. सो थैंक्स रोनिका. एंड वो तुरंत ही रेडी हो गए और मैं जानती हूँ इनके कंपनी का कैलिबर और वो इतने अच्छे हैं उनके यू नो जो भी करते हैं उसमें. तो उनको शो पे लाना तो बनता ही था. सो आई एम सो हैप्पी निखिल एंड विदुला टू हैव यू ऑन द शो. एंड
1: शो पे लाना माने आपका बुक का मार्केटिंग तो नहीं ना इनडायरेक्टली?
4: नहीं नहीं मैंने बुक का नाम भी नहीं लिया अभी तक. तो मैं एक सवाल पूछना चाहती थी दोनों को. मुझे आपके शो का टॉपिक बहुत अच्छा लगा, वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग. तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं. एंड आप थिंक क्रिएटिव एज अ कंपनी में कौन से यू नो एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं? सो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे या उनके कंपनी में आपकी सेवा लेने चाहे तो उन्हें ज्यादा जानकारी मिलेगी. सो इफ यू कैन जस्ट शेयर.
2: श्योर श्योर श्योर. थैंक यू अर्चना. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज वंडरफुल वर्ड्स अबाउट अस. थैंक यू. सो द क्वेश्चन इज हाउ टू सेल स्मार्टर विदाउट सेलिंग, एक्चुअली सेलिंग. फर्स्ट सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर. सो यू हैव अ कंपनी, आपका एक प्रोडक्ट है, आपकी एक कंपनी है. व्हेन यू स्टार्ट ऑफ, ओके, फॉर एग्जाम्पल इवन फॉर यू अर्चना, इट्स लाइक योर बुक दैट यू रोट विद अ पैशन. यू स्टार्टेड समथिंग विद अ लॉट ऑफ पैशन, एनर्जी के साथ लेके हो, वाओ मुझे कुछ करना है, मुझे कोई नाम बनाना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ नेम इन द मार्केट, यू नो पीपल शुड रिमेंबर मी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट विद दिस, 90% ऑफ देम स्टार्ट विद दिस. हार्डली 10% विल से नहीं मुझे पैसा बनाना है, यू नो बाकी गया सब बाजू पे, यू नो let leave everything aside. So but 90% of the times entrepreneurs start with this passion ki mujhe kuch acha product ya company market mein launch karna hai. And then what happens, they start register and they start with like you know logo banaya, visiting card banaya, brochure banaya, ye sab kiya, and then they start selling, and then suddenly they start realizing ki sales nahi ho raha. So they start getting into sales. Okay, full time sales, sales, sales. Kya kaise bikega, kaise bikega, what is the next thing that I can do to galle mein paisa aana chahiye, you know, that is a typical thing. And then suddenly they realize ki wo passion reh gaya piche, when we started it was with a passion and then it is gone. This is what happens when you get into sales. Sales is very important, by the way. Sales strategy hona bahut zaruri hai, lekin we forget the passion that we launched the company with, we launched the product with, you know. And then we start selling harder, not smart. We start working hard to create those sales. This is where if you just step aside, aapka sales strategy rehne do baju pe, let you know, it should run on auto mode. The moment you start thinking about marketing and creating the name again, aapka jo passion tha, the reason why you started the company in the first place, if you get back to that and if you think how do I make my name bigger than my product, bigger than my company, that is the time that you will start thinking, acha mujhe to I need to create a brand, I need to create something which is an identity in the market. Wo dekh ke, wo naam dekh ke, wo logo dekh ke, it people should just automatically sell. Like for example, right now I asked Ramesh ji, what soap does he use, and he said Pears.
4: Yes,
2: he didn't say I buy soap, I buy Pears, right? Similarly, what about your company, what about your product? The moment people start buying into the name, aapka jo philosophy hai, aapka jo passion hai, they start buying into that, the sales starts happening automatically. You don't need to create, you know, extra, you don't need to take extra efforts, or you don't need to create extra, put in more money. Initially you might need to put in money, but this moment it becomes a brand, then the expense starts coming lower, the investment starts coming lower on marketing and advertising. Then you just have to make a presence. How many times have you seen a Fevicol ad and seen no dabba? Kabhi unko Fevicol use karte hue dekha? Kabhi nahi. It's just Fevicol. And if you want to reach that level, yes, it takes time and money. Time and money, either you go aggressive, you need time and money. Or if you go if you don't want to do that, don't want to go aggressive, then the second option is to go slow. And you, the only thing, two things you will need is time and money. The difference is that if you go aggressive, you need more money, less time. And if you go aramse, then it is more time, less money. But either ways, these are the two things that we will need anyways. But if you want to sell smarter, you want to start selling smarter, you need to start building a name in the market rather than putting your product out there and expecting great results. You know what insanity ka definition hai na, Einstein ne bola tha, repeating the same action over and over again. So it's like that, you know, you keep selling, you keep selling, you keep selling, and you keep selling, people will just buy the product, say great product. But if you keep selling your name rather than your product, people will say wah kya product banaya, and who made it? Oh, this company made it. So that's the difference. You can sell smarter or you can sell harder. That's your option. And right now the situation is 90% of the companies are selling harder. They hard sell. Ye lo, ye lo, ye lo, ye lo, ye lo. Nobody is going to remember which product, kya kaun si company aayi thi, kya product leke aayi thi. Bas product acha tha. Use karke throw kar diya. So that is where smarter selling comes in play, where you know, the older companies, the companies which were born 20 years back, they thought of creating a value in the market 20 years later also, and it is still alive. So selling smarter is about creating a name in the market. So that's a simple formula: sell smart, create a name, and everything else falls into play.
4: Thanks, Nikhil.
2: Yeah, thank you. Okay. Thank you for asking.
1: Nikhil ji, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि कैसे smarter selling कर सकते हैं हम लोग. तो चलिए, जाते जाते मैं विदुला जी से कहना चाहूंगा कि आप इस advertising field में कैसे आपका enter होना हुआ, आप बहुत कुछ और कर सकते थे.
3: I think starting से I was pretty much focused कि मुझे ये line लेनी है. Of course मेरा drawing अच्छा था, जो अभी I don't know how true that is in the current situation, but yes, you know, I come from that time जब ही you know, parents used to say कि अरे commerce, science, इंजीनियर बनो, डॉक्टर्स बनो, यही सब हुआ करता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड टू चूज अ प्रोफेशन लाइक दिस वॉज अ लिटिल चैलेंजिंग बिकॉज नोबडी फ्रॉम माई फैमिली हैड दैट काइंड ऑफ अ करियर चॉइस मेड अर्लियर. बट यस, आई वॉज प्रीटी फोकस्ड एंड आई हैड डन ऑल माई रिसर्च कि मुझे ये करना है. एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर कि मुझे खुद की कंपनी स्टार्ट करनी. आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर एट द एज ऑफ 21. निखिल एंड आई स्टार्टेड दिस कंपनी टुगेदर. You know, we used to actually, I would like to share that जब हम लोग ने start किया था तभी हम लोग इतने young लगते थे कि हमें Nikhil used to wear a specs and go for a meeting so that we look a little older. Because लोगों को अरे ये तो just अभी college से निकले हुए बच्चे हैं, ऐसे ऐसे treat करते थे हम लोग को at that point of time. So
2: अभी भी बोलते हैं.
3: अभी भी बोलते हैं. Yes, we don't look that old still. But so that was where we started. And but वो clarity in thought बहुत important है, and वो था मेरे दिमाग में right from the beginning कि I chose that line and you know, then started my own company immediately. So that was how I started.
1: थैंक यू विजय, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. निखिल जी, मैं चाहूंगा कि जाते जाते, जैसे आजकल हम लोग बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीजें आ गया जिसके बारे में डिस्कशन, तो आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट का भी एक अलग रोल है, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रोडक्ट को कैसे हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए, कौन सा माध्यम अच्छा है?
2: एक ही माध्यम अच्छा है, दिमाग. दिमाग लगाना. कोई भी माध्यम पिक करने से पहले दिमाग पे, अकल पे जोर लगाना चाहिए कि इज दिस द राइट मीडियम फॉर माय प्रोडक्ट और माय कंपनी. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स लाइक वी वर डिस्कसिंग, यू नो, काफी बार ऐसे भी हो जाता है कि अरे कोई आके बोलता है अरे डिजिटल मार्केटिंग में डाल दो पैसा, बहुत इट विल वर्क वेरी वेल, या फिर फ्लायर डाल दो, अरे तुम्हारा ऑडियंस तो सबको नाम दिखना चाहिए तो होर्डिंग डाल दो. ऐसा नहीं होता. आपको बहुत सोच समझ के यू नीड टू थिंक अबाउट द राइट मीडियम, कौन सा माध्यम सबसे बेस्ट है हमारे प्रोडक्ट के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कहना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट टू द पीपल. उस हिसाब से आप अगर माध्यम चूज करें तो वो फर्क पड़ता है, या फिर उसका इफेक्ट ज्यादा मिलता है. आफ्टर ऑल आपने बिजनेस कर रहे हो, आपको ROI चाहिए, आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसका ROI चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो सेल्स के लिए शायद एक पर्टिकुलर मीडियम एप्ट हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आपका प्रोडक्ट है, आपका FMCG प्रोडक्ट है, तो शायद डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट हो सके. लेकिन अगर आपको मार्केटिंग करनी है या फिर आपको नाम बनाना है तो प्रोबेबली इट माइट नॉट बी द बेस्ट मीडियम. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हो, तो उस बेसिस के ऊपर आपको मीडियम चूज करना है, ना कि एक अच्छा डील मिल गया तो ले लिया. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज नॉट गुड फॉर एवरीबडी. लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर का इतना बड़ा हो गया कि पूछो मत. लेकिन एवरीबडी, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, 18 साल का बच्चा, लाइक 16 साल के बच्चे, यू नो दे कीप प्रमोटिंग समथिंग विच इज आउट ऑफ देयर लीग. यू कैन नॉट बिलीव दैट अ 16-year-old विल प्रोबेबली बी यूजिंग समथिंग विच इज मेंट फॉर अ 40-year-old. लेकिन उसके फॉलोअर ज्यादा है तो फिर उसको ले लिया इन्फ्लुएंसर करने. सो उसमें भी कोई सेंस होना चाहिए. इन्फ्लुएंसर पिक करने में भी कोई सेंस होता है, कोई लॉजिक होता है. सो माध्यम अगर चूज करना है तो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच होना चाहिए, आपके आपके यूजर के साथ मैच होना चाहिए, ना कि आपके विचारों के साथ. लेकिन just because you feel like it you shouldn't be doing. So I think माध्यम सबसे best है. अपना दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए.
3: I would just like to add a little more to what Nikhil said, Ramesh. Whatever is as in to simply explain any medium. So what we do actually is say if it is a company. So right from giving the name to the company to jiska brand identity hum log bolte hain, logo design karna, uska station. एक छोटा सा बिजनेस कार्ड जो होता है वो भी आपका सेलिंग पॉइंट है, वो भी आपको सेल से दिला सकता है इफ इट इज डन इन द राइट वे, इन द करेक्ट वे. सो राइट फ्रॉम योर ब्रांड लोगो टू इट्स स्टेशनरी टू एक ब्रोशर जो आपका प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करता हुआ, एक सिंपल सा ब्रोशर हो, आपका कॉर्पोरेट प्रोफाइल हो, आपकी एड हो जो न्यूज़पेपर में आती हो, या फिर एक होर्डिंग है जो एक स्पेसिफिक अच्छे लोकेशन में जहां पे आपका टारगेट ऑडियंस आने वाला है वहां पे एक स्पेसिफिक होर्डिंग हो, या फिर लाइक निखिल एक्सप्लेन्ड वेरी वेल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी, इट कुड बी दैट ऑल्सो. सो दीज आर वेरियस मीन्स एंड मीडियम्स जिसके एडवर्टाइजिंग या प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं. इन सिंपल लेमैन टर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारे मीडियम्स मालूम होते हैं लेकिन हाउ टू यूज देम दे डोंट नो दैट. सो दीज आर सिंपल टूल्स जो हम लोग क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस. वी इंटरेक्ट विद देम एंड we work with them on all these mediums. So that is little bit about what and how the mediums work.
1: Adding to what Nikhil said. जी जी जी विद्रा जी, थैंक यू सो मच अपने आइडियाज को ऐड करने के लिए. और मुझे लगता है कि हम लोग आज विशेष इस विषय को लेकर बातें किया जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट और उसका से कैसे ये सारी चीजें होती हैं इसके बारे में हमने जानकारी हासिल किया. थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए. ये चंद तालियां मेरी और.
2: थैंक यू, आप प्लेजर.
1: और विदिला आपके लिए भी ये चंद तालियां मेरी ओर से. थैंक यू सो मच. आप
3: दोनों थैंक सो मच रमेश जी फॉर मेकिंग अस सो कंफर्टेबल इन दिस इंटरव्यू एंड बिग थैंक यू टू अर्चना जी. इट रियली मींस अ लॉट. थैंक यू सो मच.

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती व्हाट? लाइक यस। तो मम्मा को बिल देता है तो मम्मा उसको देखती है, मालूम बेटा?

जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते जीरो रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इनडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता बनाए।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबके लिए अपना और आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हम राही। जी हाँ, हम राही, वही प्रोग्राम जिसमें कहानियां होती हैं दिव्यांग साथियों की, जिसमें कहानियां होती हैं जीवन साथी की तलाश में आने वाली चुनौतियों की, और जीवन साथी मिलने के बाद किस प्रकार जीवन आगे बढ़ाया जाता है, कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है। और ऐसे में अगर जब पति पत्नी दोनों ही बेरोजगार हों तो उसके बाद परिस्थितियां कैसी होती हैं, आज का कार्यक्रम कुल मिलाकर के इन्हीं सब बिंदुओं पर आधारित है। और पिछले कुछ कार्यक्रमों से आप देख रहे हैं लगातार इस तरह की कहानियां आ रही हैं। हम क्या करें साथियों, संयोग ही कुछ ऐसा बन रहा है कि पहले आपने पंडित रामशरण पाराशर जी और उषा जी को सुना, फिर आलोक शर्मा जी और नीतू जी को सुना, और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो एक छोटा सा गुजराती परिवार है, राजकोट गुजरात से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। कल्पेश करेलिया सर एवं अक्षिका करेलिया मैडम। तो कल्पेश जी और अक्षिका जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू संदीप जी, और रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब के सभी साथियों को हमारी ओर से नमस्कार।
2: थैंक यू मधुबन रेडियो और संदीप जी, और हमारी ओर से भी नमस्कार
0: जी। तो श्रोताओं, आपने सुना हमारे दोनों मेहमानों को, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, और हर किसी के चेहरे पर खुशियां लाते रहो, यही हम सब का मूल मंत्र होना चाहिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अक्षिका जी, सबसे पहले हमारे सुनने वालों को आप अपने बारे में कुछ बताइए जरा।
1: जी सर, मेरा बर्थ गुजरात के द्वारिका में हुआ है, सभी ने नाम सुना ही होगा आप लोगों ने
0: जी।
1: और मैं बाय बर्थ ही ब्लाइंड हूँ, टोटली ब्लाइंड हूँ। और मेरी पढ़ाई 9th तक बहरीन में हुई है, जो कि गल्फ कंट्रीज में आता है।
0: क्या बात
1: है जी। तो 9th तक मेरी पढ़ाई अरेबिक लैंग्वेज में हुई है।
0: वाह
1: जी, थैंक यू। और उसके बाद गुजरात में आकर मैंने 10th यहाँ पे भावनगर में एक ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पे किया। और उसके बाद मैं सुरेंद्रनगर जो है पंकज जी और मुक्ता जी, उनके वहाँ पे मैंने म्यूजिक में विशारद और थोड़ा बहुत होम साइंस और 12th तक पढ़ाई, वो सब मैंने वहाँ से किया। और ये जो इंस्टीट्यूट है, आप कई लोग जानते होंगे कि शादी भी कराते हैं ब्लाइंड कपल की, तो वहाँ से ही हमारी शादी।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो मतलब आज का कार्यक्रम तो एक तरह से कई भाषाओं के इर्द गिर्द है, मतलब हालांकि मुझे तो ना तो गुजराती ही आती है ना मुझे अरबी आती है, लेकिन आपने तो अरबी भी सीखी है।
1: जी सर जी।
0: क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूब। इसके अलावा मतलब एजुकेशन में क्या रहा है आपका?
1: एजुकेशन में 12th तक मैंने किया है, और म्यूजिक में हारमोनियम और वोकल में विशारद किया है।
0: अच्छा, 12th के बाद फिर पढ़ाई नहीं कर पाए आप?
1: नहीं कर पाई मैं।
0: ओके, चलिए कोई बात नहीं, बहुत खूब। लेकिन जबरदस्त अनुभव बताया आपने बहरीन वाला, आगे जानेंगे आपसे इसके बारे में भी। कल्पेश जी।
2: हाँ जी।
0: अक्षिका जी ने तो बताया अपने बारे में, आप भी बताइए जरा।
2: मैंने सुरेंद्र नगर में प्राथमिक शाला जो एमटी दोषी अंध विद्यालय है, वहाँ मैंने 1 से 7 तक पढ़ाई की है प्राथमिक स्कूल में। बाद में मैं अहमदाबाद नवरंगपुरा में आया, वहाँ मैंने 8वीं में एंट्री ली, लेकिन वहाँ गर्मी ज्यादा रहती थी, वो मुझे नहीं यहाँ
1: सेटल नहीं हो पाए वहाँ पे मैं।
2: तो वहाँ 6 महीने निकाला। बाद में फिर अमरेली एक स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल अमरेली में गुजरात में है, वहाँ मैंने 8 से 10 तक पढ़ाई की, और बाद में संगीत भी वहाँ मैंने किया है, मतलब।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो आजकल क्या कर रहे हैं कल्पेश जी फिर आप?
2: आजकल तो बस यहाँ मैं राजकोट में ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सभी ऑर्केस्ट्रा में जो मैरिज फंक्शन होते हैं उसमें कीबोर्ड बजाने का काम भी कर रहा हूँ, और साथ में जो सप्ताहें होती हैं, भगवत सप्ताह,

0: होती है या रामकथा होती है, उसमें भी मैं कीबोर्ड बजाने के लिए शास्त्री जो लोग होते हैं, पंडित लोग, उनके साथ मैं जाता हूँ।
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो आप दोनों ही दृष्टिबाधित हैं?
0: जी
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल, दोनों ही
1: तो
0: टोटल ब्लाइंड है। हाँ
1: शिका जी, जो आपकी जो बीमारी है उसका क्या नाम है, डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं इसको?
0: सर, इसका नाम तो मुझे खैर नहीं पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नर्व्स है वही सूखी हुई है, जो मतलब आईज का प्रॉब्लम नहीं है।
1: तो कभी जांच वगैरह हुई डॉक्टरों के पास जा करके?
0: बिल्कुल, बहुत, जब मैं छोटी थी तब द्वारिका में मेरे दादाजी ने और फैमिली वालों ने बहुत ही कोशिश की, अहमदाबाद और नवसारी और बॉम्बे पे मतलब बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता।
1: अच्छा अक्षिका जी, ये द्वारिका तो धार्मिक नगरी है,
0: जी सर,
1: तो मतलब ये धर्म के हिसाब से भी कई जगह प्रयास हुए होंगे आपकी आंखों की रोशनी आ जाए, ऐसा भी कुछ रहा या नहीं? चलिए,
0: नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं रहा है।
1: ये बहुत अच्छी बात है, वरना तो मतलब ऐसा होता है ना कि वो उसके पास जाना है, उसके पास जाना है,
0: नहीं
1: यहाँ
0: नहीं नहीं
1: ये
0: ऐसा
1: चढ़ाना
0: तो
1: है, वहां वो चढ़ाना है, तो
0: सही बात है, नहीं,
1: चलिए
0: लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ।
1: ये बहुत अच्छी बात है कुल मिला करके। और
0: जी
1: कल्पेश जी, आप भी जन्मजात दृष्टिबाधित हैं?
0: हाँ जी, मेरे इसे ऐसा हुआ है कि जन्म से मैं दृष्टिबाधित नहीं था। पहला जब मेरा जन्म हुआ तब मैं 2 महीने तक दिखाई दिया था मुझे,
1: अच्छा
0: 1.25 महीना जो कहते हैं उसको। तो
1: जी,
0: उसके बाद ये हुआ कि एक अंधश्रद्धा से जुड़ा हुआ भी इसमें मामला है
1: जी
0: कि हम लोग राजकोट आ रहे थे, ये मुझे मेरी मदर ने बताया था मुझे कि भाई हम लोग राजकोट आ रहे थे, तब एक बस में कोई दो बहन, दो लेडी थी, उन्होंने एक पानी मुझे, क्योंकि बालक जब, बच्चा जब नाना छोटा सा होता है तब ये रोता है, तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे बहुत रोता है, तो हमको दीजिए। और ये दो लेडी थी वो अनुभवी थी, वो मतलब
1: अच्छा,
0: थोड़ी उम्र से बड़ी
1: थी मतलब थोड़ी सी।
0: थी। हाँ बुजुर्ग थी, तो उन्होंने मुझे गोद में लिया, पानी वानी पिलाया, तब मैं बंद भी हो गया रोना मेरा, क्योंकि
1: आपका रोना बंद हो गया और घर वालों का रोना चालू हो गया, ऐसा तो नहीं कहीं?
0: म्यूजिक वो तो है। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने पानी बानी पिलाया, और जब हम लोग राजकोट आए तो राजकोट में फिर मेरा रोना शुरू हो गया, और जब बाहर हम निकले तो मेरे पापा ने और मेरे जो बड़ी मम्मी है उनको आँख में से कुछ सफेद दाना जैसा कुछ दिखाई दिया। तब यहाँ राजकोट में एक केशु भाई करके एक डॉक्टर है, यहाँ उनको बताया, तो उन्होंने ये बताया कि भाई देखो, उनको एक बड़ी हॉस्पिटल है डॉक्टर ध्रुव, उनके पास ले जाइए। तो वहां मुझे डॉक्टर ध्रुव के पास ले गए, और वहां मेरे आंखों को मशीन के द्वारा तलाश किया गया, तो बताया गया कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो आंखों से उनकी रोशनी चली गई है। तो मेरे दादाजी है वो बहुत चिंता में पड़ गए, बहुत टेंशन हो गया उनको कि हमारे तो ये परिवार में पहला ये ऐसा मामला हुआ है।
1: जी, तो
0: और बस वहां से मेरी कहानी शुरू हो जाती है जो दृष्टिहीन की बातें हैं। हाँ
1: वहां से जो है संघर्ष शुरू हुआ जो अब तक जारी है, क्यों?
0: जी, बस वही।
1: तो जैसा कि हमने जाना आप दोनों के अनुभवों से, कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही संगीत से जुड़े हुए हैं,
0: हाँ जी
1: तो ऐसे में आप दोनों की परिस्थितियों से मिलता जुलता कोई गीत याद आ रहा है इस वक्त, जो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा सकें आप दोनों की ही आवाज में, और उसके बाद में फिर जो है आपके मिलने की कहानी पर आते हैं।
0: जी
1: जी, चाहे तो आप द्वारिकाधीश की नगरी से हैं तो कोई कृष्ण भजन भी सुना सकते हैं।
2: जी।
1: और नहीं तो कोई भी गुन धुन जो अभी दिमाग में आ रही हो उसको गुनगुना दीजिए। चलिए तो कोई बात नहीं, आगे सुनेंगे फिर आपसे। इसका मतलब ये है
2: जी, अभी कुछ याद नहीं आ रहा।
1: अभी ऐसा होता है कई बार, जब मौका आता है तो याद नहीं आता है। तो चलिए अक्षिका जी, अब आप दोनों के मिलने की कहानी पर आते हैं। उसकी शुरुआत कैसे हुई?
2: शुरुआत में ऐसा है सर कि मैं जहाँ पे थी सुरेंद्र नगर स्कूल में, तो वहाँ पे मेरे जो गुरु थे जिनसे मैंने संगीत सीखा, विपुल व्यास जी करके
1: जी,
2: तो वो वहाँ पे टीचर थे। और अमरेली के बारे में इन्होंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे एड्स से बाद इन्होंने पढ़ाई की, तो वहाँ पे ये विपुल जी और ये इनके दोनों साथ में पढ़ते थे पहले। तो ये विपुल जी है वो इनको भी जानते थे और मुझे भी अच्छी तरह से जानते थे
1: जी।
2: तो इन्होंने हमारा मतलब कांटेक्ट करवाया।
1: अच्छा।
2: क्योंकि मैं जब सुरेंद्रनगर छोड़कर यहाँ राजकोट सेटल होने के लिए आ रही थी, तो विपुल जी ने इनको फोन किया कि ये मेरी, क्योंकि मैंने वहाँ पे एज एन असिस्टेंट भी काम किया था थोड़े 2-3 साल
1: जी।
2: तो उन्होंने इनको बताया कि ये मेरी ये असिस्टेंट टीचर है, मैं इनको भेज रहा हूँ राजकोट में
1: जी।
2: और मुझे उस टाइम गाइडेंस चाहिए था कि राजकोट में म्यूजिक के फील्ड में क्या किया जा सकता है मतलब। तो ये पहले से ही राजकोट में सेटल्ड थे, तो इनके पास विपुल जी ने मुझे गाइडेंस के लिए भेजा था।
1: कब की बात है ये?
2: ये 2011 की बात है।
1: अच्छा, और आपका विवाह कब हुआ?
2: 2012 29 जनवरी।
1: चलिए अच्छी बात है। तो मतलब अक्षिका जी या कल्पेश जी के बारे में बात होने से पहले भी क्या कहीं चर्चाएं हो रही थी, या शादी के बारे में आप या आपका फैमिली में से कोई सोच रहा था?
2: जी सर, सोच रहे थे पहले भी और ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं हो नहीं सका मतलब ढूंढ नहीं पाए। लेकिन मेरा विचार तो ये था पहले जब मैं सुरेंद्रनगर में थी तब, कि मुझे अगर जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मैं उस टाइम में म्यूजिक कर रही थी और मेरा विचार तो ऐसा था कि इसी में मुझे जॉब लेना है। तो मेरा विचार ऐसा था कि अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं मतलब अपने पेरेंट्स का ख्याल रखूंगी और बस ऐसे ही मतलब रहना चाहती थी। मैं शादी करना नहीं चाहती थी, ऐसा पहले मेरा विचार था।
1: अच्छा,
2: ये है सर।
1: नहीं तो जब विचार चल रहा था तो कहीं पे चर्चाएं भी हुई थी क्या?
2: चर्चाएं तो हुई थी, एक दो रिश्ते भी देखे, लेकिन वो नहीं ठीक थे मतलब।
1: वो टाइटेड थे या ब्लाइंड ही थे?
2: ब्लाइंड ही एक ही रिश्ता था,
1: ब्लाइंड थे। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया किसी के भी मन में, फैमिली में आपके, कि भाई मतलब लड़की तो ब्लाइंड है, जो पति हो वो साइटेड होना चाहिए, या थोड़ा सा मतलब?
2: नहीं नहीं, ऐसा है इसमें कि मेरी मदर जो है वो मतलब मुझे बहुत सपोर्टेड है पहले से।
1: जी जी जी।
2: तो उनको ये पता था कि हमारी बच्ची ब्लाइंड है, तो उसको इसके जैसा ही मिलेगा तो वो ठीक से रह पाएगी, हम उनका ये विचार था। और पढ़ाई में भी ऐसा हुआ था संदीप जी, बहरीन में जब मुझे एक स्कूल में भेजने की बात आई थी, तब मेरे बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं मेरे यहाँ के, मेरे यहाँ तक के मेरे फादर भी और उनके बड़े भाई और वो सब, वो ऐसा मानते थे कि ये तो ब्लाइंड है, ये क्या करेगी, क्या पढ़ेगी, ये इसको घर में रहने दो, एक कोने में बैठेगी खेलेगी। तो ये विचार था, लेकिन मेरी मदर ने संघर्ष करके सबके साथ और कुछ भी करके मतलब मुझे पढ़ाया। इस हिसाब से उसकी वजह से मैं यहाँ पर मतलब जो भी पहुंच पाई हूँ मैं आज, उनकी वजह से।
1: कभी आपके दिमाग में आया अक्षिका मैम कि मैं मम्मी से ये प्रश्न पूछूं, जैसे आपने कहा कि माताजी का यही मानना था
2: जी,
1: कि आपका जीवन किसी दृष्टिबाधित के साथ ज्यादा अच्छा हो सकता है
2: जी,
1: तो कभी मन में आया आपका ये प्रश्न पूछने का कि मैं पूछूं मम्मी ऐसा क्यों है, मतलब साइटेड के साथ क्यों नहीं हो सकता या किसी और के साथ क्यों नहीं हो सकता है?
2: उनका मानना ये था, मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन हम जब कभी बातें करते थे तो वो मुझे बताती थी कि मैं देखती हूँ कि मतलब जो साइटेड लोग होते हैं वो अगर मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन तो उनका मानना था कि वो कभी क्या कर देंगे, कभी क्या कर देंगे, तुम थोड़ी देख पाओगी, तुमको कैसे पता चल सकेगा, और थोड़ी 24 कलाक उनके पीछे घूम
1: सकते, असुरक्षा की कहीं ना कहीं भावना मतलब उनके हिसाब से थी।
2: जी सर।

0: गाइडेंस के बारे में।
1: जी
0: तो विपुल जी ने सीधा इनको फोन लगाया और इनको बोला, और उन्होंने फोन उस टाइम स्पीकर रखा था इसलिए हम सुन पाए ये सब। उन्होंने बताया कि भाई मैं ऐसे अपनी एक असिस्टेंट है उसको वहाँ भेज रहा हूँ, आप उनको गाइडेंस कीजिएगा। तो उन्होंने बताया कि वो तो सब ठीक है सर, लेकिन हमें हमारी लाइफ के बारे में भी कुछ अब सोचना पड़ेगा ना इसका।
1: गाइडेंस वाइडेंस तो होती रहेगी, या तो शादी की उम्र हो गई है
0: जी।
1: मतलब पता चला कि गाइडेंस भी दे दी और हुआ कुछ नहीं।
0: तो विपुल जी ने फिर उनको बताया कि पहले आप इतना तो कीजिए, उसके बारे में हम बाद में उनके मदर फादर से बात करके कुछ देखते हैं।
1: बाप रे बाप, मतलब विपुल जी तो सोच रहे थे कि बस जो है आ गया लड्डू हाथ में खा लो अब तो। हैं कल्पेश जी,
2: वो क्या हुआ कि भाई जब ये विपुल जी बातें ला रहे थे, ये मुझे फोन पर ये बातें सब बताई, मैंने यार ये क्या हुआ कि जरा मेरे पूरे बम फूट गए यार। मैंने पिस्तौल फोड़ ही दिया कि भाई हमारे लाइफ के बारे में तो कुछ सोचो, बाकी तो सब ये मार्गदर्शन ये तो सब होता रहता है, यहाँ सब मार्गदर्शन लेने के लिए आते
1: हैं। लेने का मार्गदर्शन तो है। अरे बाप रे बाप। आपने हाँ कहीं इसीलिए तो नहीं की थी कल्पेश जी कि भाई मार्गदर्शन तो देना ही है, हो सकता है कि मतलब अपना काम भी हो जाए, ऐसा तो नहीं था?
2: नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था, क्योंकि संदीप जी पहला तो ये तो सब विपुल जी के साथ मेरा हम लोग मित्र में है, फ्रेंड्स है, तो ये तो सब ये तो होता था, मजाक की बातें तो होती थी हमारी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये मेरी यहाँ असिस्टेंट है और उनको स्कूल के या ऑर्केस्ट्रा जो भी कोई प्रोग्राम है
0: तो क्या करना चाहिए राजकोट में म्यूजिक के फील्ड में।
2: हाँ, तो मैं मुझे इस समय बताया गया था कि उनको स्कूल में जॉब ढूंढनी है, तब मेरे पास एक स्कूल भी आया था कि वहाँ एक लेडीज की जरूरत थी, म्यूजिक लेडी की।
1: जी जी जी जी।
2: तो उनकी जरूरत थी वहाँ, तो मैंने ये बताया कि भाई देखो ये यहाँ तो कैसा होता है संदीप जी की प्राइवेट स्कूल जो ज्यादा देता नहीं है,
0: सैलरी
2: नहीं देती, या 5,000 या 10,000, 10,000 में भी आपको बहुत कम ये स्कूल मिलेगी यहाँ। तो एक स्कूल आया तो वो सिर्फ यही बातें कर रहे थे कि देखो हम 2,500 से ज्यादा हम नहीं दे सकते, तो हम भी जानते हैं आजकल के 2,500 में तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता।
1: बिल्कुल सही है।
2: तो मैंने उनको ये मतलब हमारी जो व्यास जी है मेरे मित्र, उनको मैंने बताया कि देखो ये स्कूल में तो जॉब नहीं करेगी, उनको हमारे एक बार हमारे पास भेजो और उनको मैं बताऊंगा कि आप ऑर्केस्ट्रा में अगर काम करेंगी या म्यूजिक क्लास घर में अब आप शुरू कर देंगे तो स्कूल पे प्राइवेट जॉब है उनसे ज्यादा ये हो सकता है,
0: हो सकता है।
2: तो मैंने ये बताया और बस उन्होंने बताया कि देखो, फिर मुझे यहाँ भेजा और मेरी साड़ी भी आई थी, मेरी साली उनके साथ आई थी। तो उन्होंने ये बात की कि देखो मुझे म्यूजिक में शास्त्रीय, उनका म्यूजिक शास्त्रीय संगीत का इंटरेस्ट में ज्यादा,
0: क्लासिकल में ज्यादा मुझे, मैं रुचि रखती हूँ।
2: तो मुझे लगा कि देखो ये ऑर्केस्ट्रा में तो काम नहीं करेंगी,
1: मुश्किल है,
2: क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में क्लासिकल की जगह बस कम होती है,
1: ऑर्केस्ट्रा में तो थोड़ा धूम धड़ाका चाहिए होता ना।
0: हाँ वही वही।
2: तो मुझे मुझे ये आ गया था कि भाई चलो उनको शास्त्रीय संगीत के बारे में ही है, तो क्लास शुरू करने का ये मुझे आइडिया आया था तब। और बस ये बाद में जब शादी हुई तब एक दो लड़के भी आए थे और थोड़ा क्लास भी शुरू किया था, लेकिन देखो वो क्या है कि हम क्लास भी शुरू करते हैं लेकिन मकान को भी बदलना पड़ता है ना जो।
1: अच्छा, घर घर अभी आपका अपना नहीं है, आप किराए पे रह रहे हैं, मतलब
0: किराए पे रहते हैं संदीप जी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मकान हमने रखा हुआ था उसमें

0: ये गाते करते हैं सब म्यूजिक का,
1: किराए के मकान की कई सारी परेशानियां होती हैं, आप जानते हैं इस बात को। कुल मिलाकर के स्थायी रूप से कोई भी मतलब वो नहीं है ठिकाना नौकरी का। अच्छा अभी कोई, अब तो मिल भी गए, शादी भी हो गई और गाइडेंस भी दे दिया, कोई गीत गा रहा है। जी तो हाँ। कोई आ रहा है गीत इस सिचुएशन पर, दो लाइनें अगर गुनगुना सकें आप दोनों।
2: जी
1: कीबोर्ड कल्पेश जी खुद बजा रहे हैं। जी

0: सफल मेरे सफल मेरे सफल मेरे।
1: वाह बहुत खूब जबरदस्त, क्या बात है। तो ये मतलब आप दोनों का एक दूसरे से वादा भी है, तो कल्पेश जी ने ये भी सोचा होगा ना कि ऑर्केस्ट्रा तो मैं करता हूँ तो ये शास्त्रीय ही कर ले तो ठीक है, क्या जरूरत है दोनों को ऑर्केस्ट्रा करने की, क्यों अच्छा कल्पेश जी मतलब जो है कि कोई आपने परीक्षा भी ली थी क्या, कोई गाना वाना सुन के सुना के बताओ तब जा करके मतलब पसंद करेंगे ऐसा कुछ था या नहीं, बस ठीक है सब।
0: नहीं, ये सब हुआ था कि जब हमारे घर में ये लोग आए थे तब मेरे पापा भी संगीत के ज्यादा ये जो है शौकीन है।
1: अच्छा अच्छा वाह।
0: तो वो भी बैठे थे तो मैं तो ये जब उनकी जो मुलाकात ले रहा था पापा ने बोला कि देखो भैया आप उनको गाना बाना जरा गवाओ, तो पता चले कि ये लड़की कैसा गाना गाती है कि नहीं है। तो फिर मैंने पूछा देखो आप एक गाना मुझे सुनाइए, तब पता चलेगा कि ऑर्केस्ट्रा में आवाज की ज्यादा होती है, साउंड डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि बड़े बड़े साउंड पर गवाया जाता है। यहाँ तो थ्री वे सिस्टम है या फोर वे सिस्टम, इसमें ये लोग गाना गवाते हैं आजकल जो मैरिज फंक्शन में हो, रिसेप्शन के तौर पे तो ये साउंड चलता है। तो उन्होंने गाना सुनाया था, पहला गाना था उनका आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे।
1: क्या बात है क्या बात है।
0: वो गाना मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, उनका पहला गाना।
1: हाँ।
0: और मैंने मैंने मैंने तो समझ लिया था कि आपकी काबिल क्या है।
1: वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि आपके काबिल ने समझा। तो अक्षिका जी सुना दीजिए फिर दो लाइनें।

0: बहुत जबरदस्त जबरदस्त समझा और तक मतलब इसी सिलसिले को
1: आगे बढ़ा रहे हैं आप दोनों, ये बहुत अच्छी बात है और ये कहीं ना कहीं हम सब का भी बहुत फेवरेट गीत है। तो गीत की बात हुई, क्षिका जी क्या आपने भी कभी ख्वाहिश जताई थी कि भाई मैं भी कुछ सुनूं? उसकी जरूरत नहीं पड़ी?
2: नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जब मैं इस गाने के बाद हमने इनको एक मैंने और मेरी सिस्टर ने गरबा सुनाया था
1: अजा।
2: उसके साथ वो मतलब गुनगुना रहे थे तो मुझे तभी पता चल गया
1: अजा कि बढ़िया कि तभी मतलब कि ठीक है गाना वाना आता है मतलब आपने समझ लिया। अच्छा क्या बात है। तो मतलब कुल मिलाकर के आप दोनों के परिवार खुश थे, संतुष्ट थे और सहमत थे?
2: जी सर बिल्कुल, मेरा परिवार तो पहले से ही मैं बीच में आपको एक बात बताना भूल गई थी।
1: बताइए बताइए।
2: जब इनको कॉल किया था वो विपुल जी ने, मैंने आपको अभी बताया पहले, तो वो कॉल खत्म होने के बाद विपुल जी ने हमको बता दिया था, मुझे और मेरी सिस्टर को, कि मतलब उन्होंने तो मतलब उनके दिमाग में तो 4-5 साल से ये बात चल रही थी हम दोनों को मतलब
1: 4-5 सालों से मतलब कल्पेश जी गाइडेंस दे रहे थे लेकिन जो है वो गाइडेंस जो है यहाँ पर आकर के सफल हुआ मतलब
2: जी। तो उन्होंने हमको बताया था कि ये मतलब अच्छी जगह है और पर्सन भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग देख लीजिए एक दूसरे को परिवार को मिलाकर, अगर आपको ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाना मतलब ये बात
1: मतलब उनकी तरफ से तो पूरा कन्फर्म ही था सारा कुछ
2: जी जी।
1: वो तय आपको करना था, आपकी फैमिली को करना था
2: जी।
1: तो कल्पेश जी
3: हाँ जी,
1: कितनों को गाइडेंस दिया आपने अक्षिका मैम से पहले ये बताइए।
3: गाइडेंस देने में तो मैं ऐसा है कि ज्यादा गाइडेंस तो उन्होंने ये अक्षिका जी को दिया है, दूसरे लोगों मेरे पास गाइडेंस सिर्फ ही गाइडेंस में ही आते थे।
1: अच्छा और कुछ नहीं था मतलब?
3: और कुछ नहीं था और उनको मैंने ज्यादा गाइडेंस दे दिया है, जो दे दिया है वो आजकल हम लोग साथ में है। और ये
1: तो एक बात बताइए ना कि भाई जो कहते हैं ना एक वो एक दिल में जो धक-धक होती है
3: जी।
1: वो किसी और को भी गाइडेंस देते हुए हुई थी कि भाई यहीं पर ही हुई वो?
3: ना वो इसलिए क्योंकि हमको एक हमारी जो स्कूल जो है
1: जी
3: उसमें तो एक सिखाया गया था कि भाई मेरे जो गुरु है अजीत सिंह वाघेला करके,
1: क्या बात है
3: म्यूजिक के
1: जी जी जी,
3: तो उन्होंने बताया था क्योंकि जब ये सब मुझे संगीत सिखा रहे थे तब हम लोग हमारी एमटी दोसी स्कूल में दो लोग हम साथ में ही थे, लेडीज लोगों को और जेंट्स लोगों को साथ में ही सिखाते थे
1: जी जी जी जी।
3: तो ये भी होता था कि भाई हमारे अजीत सर को कभी कभी क्योंकि उनके उनके डायबिटीज था उनको, तब कभी कभी ये बीमार रहते थे तो कभी उनको संगीत क्लास में नहीं आते थे पीरियड लेने के लिए,
1: जी जी जी।
3: वो ज्यादा जो कहते हैं ना रजा पर रहते थे, उनकी हाजिरी नहीं होती थी। तो मुझे बताया गया था कि जब आप कोई लेडीज को भी म्यूजिक सिखाओ तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम बस यही एक काम करेंगे कि जो
1: आजकल के हमारे करके कोई गलत भावनाएं मन में नहीं आनी।
3: हाँ बस बस बस वही
1: बहुत। और कोई जब अपने गुरु को याद करता है ना तो बहुत खुशी होती है, मुझे भी अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने और गुरु की शिक्षा को आपने अक्षरशः उसका पालन किया, ये बहुत अच्छी बात है जो कि बहुत कम लोगों में होता है ऐसा, लेकिन होना यही चाहिए। और जिन लोगों के अंदर ये भावना होती है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी होते हैं और वो सब के सब सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि गुरु का आशीर्वाद उन सबके साथ होता है। खैर तो संघर्ष का दौर शादी के बाद से ही शुरू हो गया था या फिर सब कुछ सही चल रहा था?
2: सर इसमें ऐसा है कि शादी के बाद ही संघर्ष वैसे बोले तो शादी से पहले ही हो गया था, क्योंकि शादी जब इनको मतलब हमने शादी करनी थी हमको, तो थोड़ा बहुत मतलब फ्रेंड सर्कल से और सबसे मतलब उधारी वो सब करना पड़ा था, तो वो जो हमको है वो चुकाने में शादी के बाद 3 साल लगे थे सर। तो ये संघर्ष की बात है, उस वो 3 साल के बाद हम लोग
3: धीरे-धीरे
2: करके हम लोग मतलब प्रोग्रेस में थे अपना मकान या कुछ करने करने के लिए, या थोड़ी बहुत बचत भी बड़ी करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि इनका जो है वो ऑर्केस्ट्रा का काम तो ऐसा है कि जो मानसून के 4 महीने होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है मतलब प्रोग्राम वगैरह,
1: ठीक है,
2: तो सितंबर महीने से शुरू होता है ये भागवत सप्ताह वगैरह और जून महीने तक चलता है, तो इस दरमियान जो भी मतलब अर्निंग होता है हम उसमें से थोड़ी बहुत बचत करते हैं और रूटीन खर्च में थोड़ी बहुत खर्च होती है, तो 4 महीने में जो हमने बचत की होती है वो सब मतलब यूज हो जाती है, फिर सितंबर महीने से हमें जीरो से शुरू करना होता है।
1: यानी कुमला के संघर्ष तो तभी से पता था कि होगा आगे, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे का साथ निभाने का जो वादा किया है
2: जी सर,
1: उसके आगे वो संघर्ष जो है वो फीका है, बचत आप करके 4 महीने तो चला लेते थे, लेकिन इस बार तो पूरा साल ही ऐसा निकल गया, तो कैसे फिर काम चलाया आप लोगों ने, जरा अगर आप लोग बताना ठीक समझे तो बताइए हमारे सुनने वालों को।
2: सर ऐसा है कि अभी यहाँ पे गुजरात में कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, ब्लाइंड कपल्स और ब्लाइंड फ्रेंड्स, तो जिनको हमारी परिस्थिति का पता था उन्होंने जिनसे जितना हो सका उतना हमको हेल्प किया है अपनी ओर से
1: जी,
2: तो जैसे तैसे करके चल रहा है सर।
3: फिर यहाँ तो ऐसा है संदीप जी कि ये तो शहर है राजकोट, तो उसमें क्या होता है कि जो किराए का मकान होता है तो वहाँ मकान मालिक जो होते हैं वो हम थोड़ा कम भी किराए दे या तो वो ये लोग ये सोचते हैं कि आप खाना वाना कम खाइए, मतलब हमारा किराया जो है वो पहले दे दीजिए।
1: अच्छा, यानी किराएदारों का तो खैर वो मकान मालिक का थोड़ा सा ऐसा ही रहता है,
2: और होता है सर, और एक प्रॉब्लम वो हमने ये मतलब एक्सपीरियंस किया सर कि ब्लाइंड होने की वजह से जल्दी से कोई
3: मकान नहीं मिलता,
1: ये बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर विषय है ये श्रोताओं, आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित हैं, पति पत्नी हैं, तो उनका क्या कसूर है, लेकिन लोग इस आधार पर उनको मतलब मकान देने तक से कतराते हैं, ये थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है,
2: क्योंकि हम ये सोचते हैं संदीप जी कि अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो इसका तो हम सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका क्या किया जा सकता,
1: इसका क्या किया जा सकता, वो लोगों ने एक दुर्भावना मन में मतलब ऐसी उनके घर कर गई है
2: जी जी,
1: ये बहुत ही गलत है, लेकिन ये
3: और संदीप जी दूसरा तो ये है कि हम जब कोई भी किराए का मकान लेते हैं तब हमको ये कहना पड़ता है कि देखो आप उन लोगों को एक ये होती है बात के ये लोग साफ सफाई रखेंगे या कोई ये छोड़ देंगे,
2: या तो कोई गिर गए या दुर्घटना हो गई तो ये हम पर आ जाएगा सब, या ऐसे 2-3 रीजंस हो सकते,
1: मतलब वही मतलब जो कहते हैं ना कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए मैं हमेशा से यही बात मानता हूँ कहता हूँ कि मतलब हमारे अपने समाज को जागरूक करने से ज्यादा जरूरी है कि हम ये मुख्य धारा का जो समाज है ना उसको जागरूक करें
2: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
3: फिर उनको ये भी बताना पड़ता है मकान मालिक को, देखो आप हमें एक बार मकान दे दीजिए, 2 महीने या 3 महीने के बाद हम फिर अगर मकान को हमें बदलना है तो ये तो सर ये जोखिम हमें उठाना है, हम ब्लाइंड लोग हैं तो हमें
2: चांस दीजिए हमको मतलब,
3: तो उनको डेमो बताना पड़ता है कि ये लोग साफ रखते हैं,
1: बताइए बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है अक्षिका जी,
2: जी सर,
1: कि खासकर महिलाएं और उनके फैमिली के लोग इस बात की चिंता करते हैं, समझते हैं कि भाई शादी के बाद लड़की का जीवन जो है वो कैसा रहेगा, उसको तकलीफ तो नहीं होगी, आप जब ये बता रही हैं कि संघर्ष कहीं ना कहीं शुरू से ही था
2: जी सर,
1: फिर भी आपकी फैमिली को या आपको कभी लगा नहीं कि यार आगे चल के कैसे काम चलेगा कैसे होगा, ये बात कभी मन में नहीं आई?
2: वो सर इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है।
1: हाँ बताइए बताइए।
2: शादी से पहले जब हमारा मतलब शादी फाइनल हुई तो मेरी फैमिली वाले गए थे इनके घर पे देखने के लिए
1: जी।
2: तो उस वक्त मेरे क्योंकि पहले मुझे मैं सच कबूल करूं तो मुझे पहले खाना बनाना या कुछ नहीं आता था शादी से पहले।
1: जी जी जी जी।
2: तो मेरे फादर ने उनका मतलब स्वभाव थोड़ा स्ट्रिक्ट है
1: जी।
2: तो उन्होंने जब वहाँ देखने के लिए गए थे तो उनको बताया था सबको कि मेरी बेटी है वो अर्निंग करने में आपके बेटे को जरूर हेल्प करेगी लेकिन वो खाना कभी नहीं बनाएगी।
1: अच्छा
2: जी ऐसा बोल दिया था मेरे फादर ने।
1: ओके।
2: और तो ये मेरे मतलब मेरी देवरानी है तो उन्होंने कहा था कि भाई ये रसोई नहीं आती इसको तो ये क्या करेंगे ये लोग मतलब। तब ये जो साहब हैं वो खड़े हो गए कि उनको नहीं आती वो सीख लेगी कोई बात नहीं जिंदगी हमें निकालनी है।
1: बिल्कुल सही है।
2: तो वहां से मेरी मदर और सभी को मतलब ये विश्वास हो गया था कि कुछ भी हो जाए ये इनको भूखी नहीं रखेंगे या दुखी नहीं रखेंगे।
1: ये बात सुनकर के मतलब आपके पिताजी भी प्रभावित हुए
2: जी।
1: जब ये बात ठीक है कल्पेश जी को तो गाइडेंस तो देनी थी चाहे चाहे गाने की दो चाहे खाने की दो
3: नहीं वो क्या है संदीप जी के मारे मेरे मित्र है विपुल व्यास जो उन्होंने उनका जो गुरु है वो तो उनका और उनकी पत्नी जी है मेरी भाभी
1: जी।
3: तो उनका भी मुझे एक सपोर्ट था कि देखो अक्षिका जी को खाना बना नहीं आएंगे उनको खाना नहीं आता है तो हम लोग इसमें हेल्प करेंगे इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है
1: जी।
3: तब मुझे ये एक प्रकार का एक हिम्मत मिला था कि चलो ये हमारे भाई साहब है वो मुझे लाइफ में पूरा सपोर्ट करेंगे
1: जी जी जी
3: करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो संदीप जी ये खाना उनको आता है या न आए लेकिन म्यूजिक मेरा फेवरेट विषय था मुझे तो यही एक बात है कि
1: संगीत के रूप में खाना मिल ही गया वैसे ही क्या
3: बस बस बस, बस, बस
1: संगीत की साधना करने वाला व्यक्ति मिल गया तो खाना बनाना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।
3: और दूसरी बात ये कि उन्होंने जब पहली मेरी मुलाकात थी तब उन्होंने मुझे एक तबला ये आजकल लेडीज लोग तबला कम बजाते हैं संदीप जी।
1: हाँ हाँ हाँ ये हमने भी काफी कम सुना है और तो अजमेर में देखा है हमने एक व्यक्ति को जी।
3: तो उनके पास एक बहुत अच्छा ये हुआ कि भाई म्यूजिक में उनको तबला बजाना आता है तो लेडीज लोग जब तबला बजाती है तो उनके हाथ तो वैसे ही कोमल होते हैं
1: जी
3: तो तबला भी अच्छे तरीके से बजता है
1: क्या बात।
3: लेकिन हाँ ये जब तबला बजाती है तो लगता है कि नहीं ये कोई मर्दाना हाथ पड़ा है तबले पर।
1: ये जब तबला बजाती है तो आप बच जाते हैं फिर चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आप कीबोर्ड बजाते हैं अक्षिका जी तबला बजाती हैं और आप दोनों गा भी लेते हैं तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी तो छोटी मोटी आपके घर में ही हो गई।
3: हम हमारे घर पे तो करते हैं लेकिन
1: मकान मालिक बर्तन बजा देते हैं तो काम पूरा हो गया सही है तो
3: लेकिन हमारे
1: अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी अक्षिका जी गुजराती गरबे की
2: जी सर।
1: गुजराती परिवार है और जो है अच्छा माहौल है
2: जी
1: तो
2: सर।
1: थोड़ा सा गरबे की भी झलक हो जाए हमारे सुनने वालों के लिए
2: जी। बिल्कुल सर
1: जी।

ചുമ്മേരി രേ മാണി ചുമ്മേരി രേ.

0: वाह जबरदस्त,
1: क्या बात है, पूरा माहौल गरबामय हो गया
2: यहाँ पर। थैंक यू
1: जी। तो श्रोताओं, आप सब समझ रहे होंगे कि कार्यक्रम बहुत मस्ती से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आप सबने भी यहाँ तक इस कार्यक्रम को सुना है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप सबका प्यार है इस कार्यक्रम के प्रति। लेकिन मैं बताऊं आपको श्रोताओं कि जितना आसान जीवन हम समझते हैं उतना आसान है नहीं। अभी इन दिनों पिछले कुछ महीनों से इस संघर्ष के साथ इन दोनों का जीवन चल रहा है। वो संघर्ष कार्यक्रम में मतलब बता पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अक्षिका जी की प्राइवेट जॉब भी हुआ करती थी, वो जॉब भी चली गई, और अब बहुत ज्यादा मुश्किलें इस परिवार के ऊपर हैं। फिर भी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान से ये परिवार आगे बढ़ रहा है। अक्षिका जी, ये जॉब वाली कहानी क्या है, जरा बताएं हमारे श्रोताओं।
2: जी सर, जॉब में ऐसा है कि जो मेरी सिस्टर है वो एक स्कूल में जॉब करती थी, नचिकेता स्कूलिंग सिस्टम करके, जो कि यहाँ पे एक कॉमेडी आर्टिस्ट है हमारे गुजरात में, स्नेहराम दवे करके, उनकी खुद की स्कूल है ये। तो मेरी बहन इसमें जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे जब म्यूजिक के लिए वैकेंसी हुई म्यूजिक टीचर की, उसने मैं उनको बात की साईराम जी को कि मेरी सिस्टर है ऐसे म्यूजिक के लिए, मतलब सब कुछ बताया मेरे बारे में उसने
1: जी।
2: तो मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरी जॉब लग गई वहाँ पे
1: जी।
2: वो उसमें मैं इसको मतलब आभारी हूँ उसकी, मेरी सिस्टर की वजह से मेरी ये छोटी सी जॉब हो गई
1: जी।
2: लेकिन बच्चे नहीं आ रहे और फीस भी नहीं आ रही, तो कुछ वेतन भी नहीं आ रहा है वहाँ पे।
1: कुछ ऐसा आश्वासन है अक्षिका जी कि जब बच्चे आ जाएंगे, स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो आपको वापस रख लिया जाएगा, या उसकी भी कोई संभावना नहीं है?
2: नहीं सर, ऐसा तो है, उन्होंने बताया कि हम किसी को भी मतलब नौकरी अभी छोड़ेंगे नहीं, स्कूल शुरू होगा तब देखा जाएगा, ऐसा बोला।
1: अच्छा अक्षिका जी, आपने शुरू में जिक्र किया था कि बहरीन में आपने अध्ययन किया है।
2: जी सर।
1: तो वहाँ पे विशेष विद्यालय में आपने अध्ययन किया?
2: जी, ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पे।
1: वहाँ के विद्यालयों में, और आपने गुजरात में विद्यालय देखे होंगे, हो सकता है गुजरात के बाहर तो आपका जाना नहीं हुआ होगा इंडिया में।
2: नहीं,
1: लेकिन बहरीन में और गुजरात में आप क्या परिवर्तन आपने देखा, वहाँ पे स्थिति क्या थी और यहाँ क्या है, थोड़ा सा ये भी श्रोताओं को सुनना जरूरी है।
2: जी सर बिल्कुल। तो वहाँ पे ऐसा है सर कि यहाँ ब्रेल की शुरुआत जब शुरू से की जाती है सिखाने की, वहाँ पे ब्रेलर पर की जाती है, सिखाया जाता है सीधे।
1: वहाँ पे ये जो स्लेट वगैरह सिस्टम है, 2 लाइन, 4 लाइन या 27 लाइन, ये सब नहीं है वहाँ पे?
2: कुछ भी देखने को आपको बहुत ही कम मिलता है वहाँ पे।
1: अच्छा। तो बच्चा ब्रेलर, जैसे पहली क्लास के बच्चे को हमारे यहाँ कीबोर्ड वगैरह सिखाया जाता है
2: जी,
1: वहाँ पे कुछ नहीं ऐसा?
2: नहीं, बस ब्रेलर से ही सिखाया जाता है सीधे।
1: अच्छा
2: जी
1: जी जी जी। फिर इसके अलावा?
2: और उसके अलावा तो मतलब फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं यहाँ।
1: हाँ, उसी मामले में हम पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ के विद्यालयों में आपने सुविधाएं ज्यादा देखी या ऐसा नहीं है?
2: बहुत सुविधाएं तो बहुत मिली वहाँ पर मुझे। सबसे पहले तो स्कूल बस भी आती थी लेने और छोड़ने के लिए, स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक।
1: हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं थी?
2: नहीं, हॉस्टल में जरूरत नहीं थी, और जरूरत हुई थी एक बार, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे रह नहीं सकती थी, क्योंकि उनका जो खाना होता है सर वो तो नॉनवेज होता है।
1: तो
2: ये हॉस्टल में मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए, वैसे मेरे फैमिली भी वहाँ पे थी तो मैं, मुझे जरूर नहीं पड़ी हॉस्टल में रहने की।
1: अच्छा, लेकिन आप डे स्कॉलर थे तो आपके लिए बस आती थी?
2: जी, सभी के लिए, मतलब जो बाहर रहते थे उनके लिए बस आती थी, और क्लास में एसी था सर, उसके बाद बस में भी एसी था, और घर पहुंचे तो घर में भी एसी था।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह,
2: सुविधा का लाभ मिला था मुझे।
1: वाह, एसी का पूरा माहौल था मतलब।
3: मतलब मुझे एसी लेना पड़ेगा अभी।
1: ये इशारा समझ लो कल्पेश जी आप। मतलब बहरीन और गुजरात में अंतर देख लो आप। तो कुल मिलाकर के ये है कि मतलब एक तरह से माहौल, मतलब जो रहा वहाँ का, आपको वहाँ पर एडजस्ट होने में दिक्कत नहीं आई?
2: दिक्कत आई थी सर, क्योंकि पहले तो ये लैंग्वेज ही सबसे पहले तो मुझे वो स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिल रहा था क्योंकि एज एन इंडियन वो किसी को नहीं, मतलब वहाँ पे जो वहाँ के अरब कंट्रीज के जो होते हैं उनको ही एडमिशन देते थे, और मुझे एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो बोहरा समाज की थी, तो उनकी वहाँ पे पहचान थी, तो उनकी रिक्वेस्ट से मुझे एडमिशन मिला था वहाँ पे। और अरबी लैंग्वेज सीखने में भी मुझे 6 साल लग गए थे।
1: अरे बाप रे बाप, अच्छा।
2: जो ये, लेकिन जब आई तब इतनी अच्छी आ गई कि ये मैं नहीं बोलती, लेकिन वहाँ पे रेडियो स्टेशन पे जब मैं पार्टिसिपेट करती थी कॉलिंग लाइव कॉलिंग प्रोग्राम, तो वो लोग बताते थे कि आपकी बोलने से पता नहीं चलता कि आप अरेबिक नहीं हो, अरेबियन नहीं हो।
1: अच्छा, आप बोल के बताइए जरा कि रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, रेडियो मधुबन।
1: हो गया, सुनते रहो मुस्कुराते रहो भी आ गया।
2: नहीं वो तो नहीं आया क्योंकि ऐसा है कि
1: मैं समझ गया यार,
2: 20 साल हो गए छोड़े हुए, तो फिर वो भूल चुकी।
1: ये तो है। अच्छा, अरबी गीत तो आते होंगे आपको, संगीत हाँ। क्योंकि आपने कहा शुरू से आपको था, तो हो जाए फिर 2 लाइनें किसी अरबी गीत की भी।
2: जी बिल्कुल।

आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

about this eternal relationship. And allowing it

शांति। आज 11 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के मधुर महावाक्य में बाबा कहते हैं, तुम बच्चों ने बाप को यथार्थ समझा है कि परम पिता परमात्मा कौन है। वह पारलौकिक बाप है। लौकिक बाप होते हुए भी दुनिया में मनुष्य पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। एक और फादर कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा कहकर के बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य को जब पूछते हैं कि हे परमपिता परमात्मा किसको कहा, उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन अब बाप को यथार्थ रीति तुम पहचानते हो और इसीलिए तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। बाबा कहते हैं, जैसे कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो बच्चों की अब बाप के साथ प्रीत जुड़ी है यथार्थ पहचान के आधार पर। दूसरा बाबा कहते हैं, जितनी प्रीत तीव्र है उतना पुरुषार्थ भी तीव्र होता है। बाबा कहते, बच्चे अब तुम्हारी प्रीत कोई देहधारी से नहीं है, अब तुम्हारी प्रीत उस परमपिता परमात्मा के साथ है। और इसीलिए अब बुद्धि में आता है कि हमें बाप का यथार्थ रूप से मददगार बनना है। तो प्रीत बुद्धि आत्माएं मददगार बनती है और बाप से पूरा वर्षा लेने का तीव्र पुरुषार्थ करती है। तो प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा, हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं, किससे? भोलेनाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे, आत्माएं सुन रही है इन कानों द्वारा। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बाबा ने आकर के हम बच्चों को अपना परिचय भी देकर के हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया है। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। आत्मा का भी परिचय दिया तो स्वयं का भी परिचय दिया। क्या कहा? मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वो फादर है? कौन कहते हैं कि वो फादर है? आत्मा। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है।
हम आत्मा को दो बाप है, एक साकार एक है निराकार। वह परम पिता है ये समझानी और कोई दे न सके, बाप के सिवाय और कोई ये पूछ न सके। कौन सी बात नहीं पूछ सकते हैं? बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए वह पारलौकिक बाप के लिए कहते हो? ये परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर ये किसके लिए कहते हो? लौकिक बाप के लिए या पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। कैसा बाबा रियलाइजेशन दे रहे हैं। दो बाप का परिचय भी कितना सुंदर तरीके से देते हैं। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता, परम पिता कहने से या गॉड फादर कहने से ही वह बाप है ये सिद्ध होता है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से वह बाप सिद्ध नहीं होता, गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है, बाबा सबसे पूछते हैं तुमको कितने फादर्स है? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है, क्या महिमा है? सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। लौकिक बाप के लिए नहीं कहेंगे कि पतित पावन है। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको, पारलौकिक बाप से प्रीत है। यथार्थ पहचान मिली तो जरूर है उस बाप से प्रीत तो जुड़ेगी। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का अभी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं, पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं। ये सब चीजें बड़ी महंगी होती है, विलायत वाले बनाते हैं वो फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं, ये सब चीजें बाहर से आई हुई है। अभी तो भारत भी सक्षम है इन सब चीजों को बनाकर बेचने के लिए। अब जो चीज खरीद करेंगे सो जरूर काम में तो आएगी, फेंकने के लिए थोड़ी है। बाबा कहते हैं फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत अविनाशी खंड क्यों है? क्योंकि अविनाशी बाप का ये जन्म स्थान है, दिव्य अलौकिक जन्म स्थान है। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहां लेते हैं जहां कभी खत्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं है, अर्थात यूरोपवासी यादव नहीं होते, न बौद्धी न क्रिश्चियन आदि होते हैं।
अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं, भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं, अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है, तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं, यह है सबके कयामत का समय अर्थात मौत का समय। तो उन यादों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, यूरोपवासी यादों की भी बाबा कही ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी, बाबा की श्रीमत है बच्चों को कि कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके, भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है, ये तो अच्छी रीति समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। बाबा कहते इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं, हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। तो बाबा कहते हैं जिसकी तीव्र प्रीत है वो पूरा पुरुषार्थ करते हैं 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करने के लिए, वह बाप सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है, तो एक तो हमारी प्रीत बाबा से है, दूसरी हमारी प्रीत नई दुनिया से भी है। तो बाबा कहते नया मकान बनता है तो पुराने मकान से विपरीत हो जाते और नए मकान से प्रीत जुड़ जाती है, समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा, देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी ये खलास होते हैं, हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े, बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। क्यों बाबा कहते एक बाबा से प्रीत रखो, क्योंकि बाबा कहे और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी, फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं मनुष्य, माँ बाप मित्र संबंधी आदि सबको याद करने के बावजूद भी अपने इष्ट देवी देवताओं को कितना याद करते हैं, पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से क्या होगा, मुक्ति को पा लेंगे, इसलिए गंगा जल मुख में डालते हैं। बाप कहते यहां है ज्ञान की बात, ये ज्ञान गंगा की बात है, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है, ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है, ज्ञान अमृत सुनने की बात है, ये कोई स्थूल रूप में पीने की चीज नहीं है, ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है, बाकी यह है ज्ञान की बात। बाबा के भोग के दिन जो अमृत मिलता है उसको भी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, उससे कोई पतित पावन नहीं बनेंगे, ज्ञान अमृत से ही पतित से पावन बनेंगे।
तो बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात किस चीज का ज्ञान? बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले ना सके, पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं, बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं, मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य, सतयुग था दैवी राज्य, शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है, तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है इसलिए विजयी है, विनाश काले प्रीत बुद्धि है इसीलिए विजयी है, इस पर विजयी है, 5 विकारों पर और सारे विश्व पर विजय, सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, विकारों पर विजय पाने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, ये अच्छी रीति याद रखना।

है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में है सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है, यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। विकारी बंधन से छूट करके निर्विकारी संबंध में जाते हैं सतयुग में, फिर वहां 21 जन्म निर्विकारी संबंध में रहते, वहां कोई भी प्रकार के विकारी बंधन में फिर नहीं आएंगे। वहां है ही निर्विकारी संबंध, इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है, ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे ये तो ठीक बात है। जो समझेंगे वो कहेंगे ये तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, दैवी गुण भी यहां धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? कैसे बाबा हम बच्चों को शुद्ध जीवन की ओर प्रेरित करते हैं, तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता, अर्थात जिसके जीवन में अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियों वाला कभी ऊंच पद पा नहीं सकता है। चाहे वो आदतों की अशुद्धि हो, खान पान की अशुद्धि हो, संस्कारों की अशुद्धि हो, तो बाबा कहते वह ऊंच पद पा नहीं सकता। यह कोई दैवी चीज नहीं है, सतयुग में नहीं होती है। सिगरेट पिएंगे व लसन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। कई बच्चे बाबा को क्या कहते, बाबा ये छोड़ दिया तो हमारी तबीयत ही खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। ये बुरी आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझाने दी जाती है, देवताओं को कभी ये भोग नहीं लगाया जाता है, तो तुमको इन जैसा यहां ही बनना है, अर्थात वो संस्कार हमें यहां ही धारण करना है। तुम छीछी चीजें खाते रहेंगे तो वह बांस आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वाले से, बाबा कहते सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है, तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है, जैसे विष्णु की संतान है। तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो, यहां हो तुम ईश्वरीय संतान, यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। ये ब्राह्मण जन्म सर्वोत्तम जन्म है, देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं, यह है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो,
फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब्राह्मण बने हैं, तुम जीते जी मरे हो फिर जाकर देवता बनेंगे, गर्भ से जन्म मिलेगा। यहां तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने, बाबा ने आकर हमें धर्म का बच्चा बनाया, धर्मात्मा बनाने, बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। ये मनुष्य कितने ऊंच है, जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते, बाबा कहते ये मनुष्य कितने ऊंचे हैं। देवताएं बहुत ऊंचे पुरुषोत्तम है, इनमें सब दैवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए, पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सत्ययुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे, 84 जन्म लेंगे। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है, विराट रूप से ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो चोटी, ब्राह्मण हो चोटी, बाजोली होती है ना, ऐसे गोल गोल घूमते हैं। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहां सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबर वार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार, कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती है। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84 जन्म, 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है, देवताओं से भी तुम उच्च हो। तुम जानते हो हम 100 पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूछते नहीं, न हमको कोई पूछते हैं, वहां हम है ही पूज्य। फिर कलाएं कम होती जाती है, हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता भूत पूजा। पंचभूतों का शरीर बना है, इसीलिए अगर इसकी पूजा करते हैं तो कहते हैं भूत पूजा। हर एक में 5 भूत है, दे अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। जो इन 5 विकारों के वशीभूत है उसको कहेंगे भूत संप्रदाय। वशीभूत है गया ना, तो भूत संप्रदाय अथवा आसुरी संप्रदाय, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है, क्या गाई है, कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, मनुष्य से देवता ये करतन लागी वार। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, वही परमात्मा आकर के देवता बनाते अर्थात पतित से पावन बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्र को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगाने हैं। तो प्रीत एक बाप से, दूसरा नई दुनिया से और नए संस्कारों से। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग्युक्त युक्ति युक्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग्युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। भक्ति मार्ग में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग्युक्त बनो। योग्युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं योग्युक्त बनते हैं। बाबा कहते उनका हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है। कनेक्शन है योग्युक्त युक्ति युक्त। आज का स्लोगन, निमित और निर्माण चित, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। निमित और निर्माण चित, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते सरल चित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नैनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। अच्छा, ओम शांति।